0: साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान, कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा, कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जीएनटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागिनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रख रही हैं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रिलीज होगा रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम। एआर रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया। चाइना में 37वें शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ, सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियों ने बिखेरी रौनक, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
5: हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो, तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है, माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलों, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है। साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

0: चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाह रहे हैं। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी, भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया, जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, आहा हा। गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या? बोले द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलियुग में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया, अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो।
1: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा? गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान? कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा? कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जयंती के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागिनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रिलीज होगा रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना। जय जय राम एआर रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब अपने नाम किया। चाइना में 37वें शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ, सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियों ने बिखेरी रौनक, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। शहर शहर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, बप्पा की प्रतिमा होगी स्थापित। ब्रह्म योग में विराजेंगे गजानन, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेश उत्सव। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। मुंबई पुलिस ने उत्सव के दौरान लोगों से की भीड़ वाली जगहों पर संयम बरतने की अपील, पुलिस का करें सहयोग। महाराष्ट्र के ठाणे में रेत पर सजे बप्पा के 5 रूपों के भव्य दर्शन, आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। तमिलनाडु में भी गणेश उत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विनय नगर मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। भारी संख्या में रथ यात्रा देखने के लिए पहुंचे भक्तगण, ढोल बजाकर धूमधाम से निकाली गई बप्पा की रथ यात्रा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में विराजमान है गजानन की 164 साल पुरानी 15 फीट की प्रतिमा, कल उमड़ेगा आस्था का सैलाब। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लखी मेले में दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। त्रिनेत्र गणेश के जयकारों से गूंजा पूरा रणथंभौर, तो वहीं लखी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। संभल में गणेश चतुर्थी और गणेश चौथी मेले का शानदार आगाज हुआ, 5 अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। गणेश चौथ मेला पिछले 66 सालों से किया जा रहा है आयोजित, सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 2 अक्टूबर तक चलेगा गणेश चौथ मेला, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर भव्य समारोह का आयोजन। गणेश जी की प्रतिमा को दिया गया एक विशेष रोबोटिक आकार, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारत का बनी प्रतीक। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार, बाल गणपति से सेल्फी और माखन चोर तक कई रूप। बप्पा के आगमन से पहले अकोला में झमाझम बारिश, भक्तों में उत्साह का माहौल, उत्सव की खरीददारी जारी। अकोला के ACC ग्राउंड के गणपति बाजार में उमड़ी भीड़, पुणे कोंकण और पेन की मशहूर प्रतिमाएं भी यहां पर मौजूद। केक काटते और सेल्फी लेते हुए नजर आए गणपति बप्पा, अनोखे रूपों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक का दिल जीता। बप्पा की स्थापना को लेकर भक्तों में खासा उत्साह, परिवार के साथ बाजार पहुंचे लोग पसंद की प्रतिमा भी खरीदी। मुंबई की किंग सर्कल में GSB महागणपति दर्शन के लिए उमड़े भक्त, 66 किलो से ज्यादा सोने से सजे हैं गजानन। GSB महागणपति को मिला 703 करोड़ का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर, देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है गिनती। सोने चांदी की चमक के साथ वैदिक परंपरा भी खास देखने को मिली, पूजा सेवा और अन्नदान से जुड़ा है GSB महागणपति उत्सव। 21 फीट ऊंचे लालबाग चौराहे की भव्य शोभा यात्रा सादगी और भक्तिभाव के साथ निकली बप्पा की यात्रा। इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा बने आकर्षण का केंद्र, होलकर अंदाज की पगड़ी बनी पहचान। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रख रही हैं। हरतालिका तीज पर व्रती विधि विधान से करती हैं शिव पार्वती की पूजा अर्चना। सुहागिनें 16 श्रृंगार कर मनाती हैं हरतालिका तीज का पर्व। शुभ मुहूर्त में व्रती महिलाएं करती हैं पूजा अर्चना। देशभर के मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन के लिए रखा जा रहा है हरतालिका तीज व्रत। व्रती महिलाओं में दिख रहा है खास उत्साह और उमंग। शिव पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है हरतालिका तीज। सुहागनों के साथ कई जगह पर कुंवारी कन्याएं भी रख रही हैं। अयोध्या में 7 नवंबर को भव्य दीपोत्सव। तैयारियां हुई तेज। सरयू घाटों की सजावट और रोशनी बनेगी खास आकर्षण। दीपोत्सव पर सरयू तट का बदलेगा भव्य स्वरूप। पुल से लक्ष्मण घाट तक 1 किलोमीटर तक सजेगा क्षेत्र। हजारों दीपों से जगमगाएगा अयोध्या का सरयू तट। महाआरती में दिखेगा अवध की धार्मिक संस्कृति के रंग। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजेंगे सरयू घाट। शाम ढलते ही अलौकिक नजर आएगा रामनगरी का तट। दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। घाटों का रेनोवेशन पूरा होते ही दिखेगा भव्य स्वरूप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई शुरू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। स्मारक स्तंभ का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा। काम की हुई समीक्षा। नृपेंद्र मिश्र ने पुराने अस्थायी मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। एमपी के आगर मालवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात। लाडली बहना योजना की 40वीं किश्त खाते में कुल 1,835,00,000 रुपए ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन समारोह। खेल विभाग ने टीम और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। घाटी में खेलों को बढ़ावा देना टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हिस्सा। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जैसलमेर पहुंची विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थानी अंदाज में हुआ देशी और विदेशी मेहमानों का स्वागत। राजस्थानी गीत ढोल नगाड़ों और रेड कार्पेट से हुआ पर्यटकों का शानदार स्वागत। 75 पर्यटकों ने किया शाही ट्रेन का सफर। नए पर्यटन सीजन में पैलेस ऑन व्हील्स का नया अंदाज देखने को मिला। 6 कमरों में मार्बल फ्लोरिंग और मेटल क्राफ्ट की सजावट। रेलवे में दिखा राजस्थानी शिल्प और आधुनिक लग्जरी का मेल। पर्यटक सोनार दुर्ग और रेगिस्तान की धोरों को करेंगे दीदार। चर्चित फिल्म हनुमान अंश की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर पहुंची कैंची धाम। बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज। महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की रही शानदार शुरुआत। शेफाली वर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 59 रन का अहम योगदान दिया। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में महज 111 रन ही बना सकी। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने बरपाया किया है श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 की हार का भी बदला लिया। एशिया कप में सभी 5 जीत कर अजय और विजेता बना भारत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
8: है। गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान, कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा, कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की, भगवान गणेश के विशिष्टता की और उनके पूजा विधान की। आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व के बारे में, गणपति महोत्सव के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 14 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव समाप्त हो जाएगा। देखिए, गणपति महोत्सव में हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। हैं तो सब गणपति की ही मूर्तियां, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा उपासना जिस मूर्ति की होती है वो होती है पीले रंग के गणपति की, और रक्त वर्ण लाल रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के जो गणेश जी की मूर्ति है, इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं होती। हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति, या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो, उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। और ये हरिद्रा गणपति की मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, जैसे विवाह और संतान के लिए, बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है, जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी अगर आप पूजा करें, श्वेत गणपति की उपासना करें,
तो कर्जों से, ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जो संकटों का नाश करते हैं। इनकी उपासना से जीवन के हर संकट का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं, ये महागणपति हैं, सारे स्वरूप इनके अंदर विद्यमान होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या

या लाल रंग की मूर्ति स्थापित करना बेहतर होगा। की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय में करिएगा। और अगर आपने पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो साथ में कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर लिक्विड डाइट जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास जितना संभव हो भगवान गणेश की पूजा करें। घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करें। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेश वक्रतुंडाय हूं, या संकट नाशन गणपति स्तोत्र, या गणपति अथर्व शीर्ष, जो संभव हो उसका पाठ करिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार करिए, भगवान गणेश के मंत्र का जप करिए या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा, इस दोष का उपचार हो जाएगा। जब आपकी पूजा हो जाए तब प्रसाद लोगों में बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस सरल तरीके से, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी का पर्व हम सबको मनाना है। भले ही हम घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें, लेकिन 14 सितंबर को हम सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। क्या सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो मध्यम आकार की होनी चाहिए। अगर खुद नदी से मिट्टी ला करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य जो चाहें चढ़ाएं प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन गणेश जी को कभी भी
तुलसी दल।

0: ना चढ़ाएं, और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो बेवजह क्रोध ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। इस बार जो गणपति की स्थापना का और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 14 सितंबर को होगा प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 के बीच में। इस समय में अगर आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए, गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपके घर में पहले से ही गणपति की मूर्ति जरूर होगी, आप उन्हीं गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी पर यानी 14 सितंबर को दोपहर के समय में करिएगा, आरती करिएगा, मंत्र पढ़िएगा और संध्या काल में उनकी पूजा करिए, चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। बिना प्रतिमा स्थापित किए हुए भी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे या करेंगी तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से सुबह शाम उनकी उपासना करें और घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। घर का भोजन, माहौल, वातावरण जितना पवित्र होगा उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी पर एक दूर्वा की माला हरे या पीले धागे में गूंथ करके दूब घास की माला बना लें, वो गणपति जी को पहनाएं। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें और ये माला अनंत चतुर्दशी पर जल में प्रवाहित कर दें, इसको हटा दें। आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जीएनटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रख रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रिलीज होगा रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम। एआर रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया। चाइना में 37वें शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ, सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियों ने बिखेरी रौनक, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो सबसे पहले जेएनटी के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए पंडित जी से हम जानेंगे श्री गणेश की महिमा के बारे में और गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव को मनाने के तरीके क्या होने वाले हैं, पूजन कैसे करना है, इसकी विधि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है जानने का कि आज का गुडलक मंत्र क्या है।
0: अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से सुबह शाम उनकी उपासना करें और घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। घर का भोजन, माहौल, वातावरण जितना पवित्र होगा उतना ही बेहतर रहेगा।
4: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी से जान लेंगे 14 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है।
0: जी, आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व के बारे में, गणपति महोत्सव के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 14 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव समाप्त हो जाएगा।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मेष राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेंगे भगवान गणेश की प्रतिमाओं के बारे में। आखिर अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या होता है और इसे घर में या फिर किसी और जगह पर स्थापित किस प्रकार करना चाहिए?
0: देखिए, गणपति महोत्सव में हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। हैं तो सब गणपति की ही मूर्तियां, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा उपासना जिस मूर्ति की होती है वो होती है पीले रंग के गणपति की, और रक्त वर्ण लाल रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के जो गणेश जी की मूर्ति है इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं होती। हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। और ये हरिद्रा गणपति की मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, जैसे विवाह और संतान के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है, जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी अगर आप पूजा करें, श्वेत गणपति की उपासना करें, तो कर्जों से, ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जो संकटों का नाश करते हैं। इनकी उपासना से जीवन के हर संकट का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं, ये महागणपति हैं, सारे स्वरूप इनके अंदर विद्यमान होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणेश महोत्सव पर गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, तो गणपति की मूर्ति मध्यम आकार की होनी चाहिए। पीले रंग की या लाल रंग की मूर्ति स्थापित करना बेहतर होगा।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न पुष्पलता जी ने हमें लिखा है। पुष्पलता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1998। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरा सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा? पुष्पलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको यूपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस की तैयारी भी करनी चाहिए। इस क्षेत्र में आपको प्रशासनिक नौकरी मिलेगी। साल 2028 आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ एजुकेशन के फील्ड में भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकती हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी अगला प्रश्न नरेंद्र जी का है और नरेंद्र जी ने हमें सिरसा हरियाणा से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1964। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है सिरसा हरियाणा। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके परिवार में एक मुकदमा चल रहा है। काफी समय से मैं इसको सुलझाना चाहता हूं, मुकदमा सुलझ नहीं पा रहा है, तो प्रॉपर्टी का लाभ कब तक हो सकेगा? नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी का मामला है वो इस साल के आखिरी तक आपसी सुलह समझौते से हल होगा और अगले साल के शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो जाएगा। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या हलवा पूड़ी का दान निर्धनों में करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में, गणेश महोत्सव के बारे में। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आखिर पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, इसका विधि विधान क्या होना चाहिए?
0: देखिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तब तो आपको पूजा करनी ही है, और अगर आपने मूर्ति स्थापित नहीं भी की है तो भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसका सही तरीका क्या होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय में करिएगा, और अगर आपने पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो साथ में कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर लिक्विड डाइट जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास जितना संभव हो भगवान गणेश की पूजा करें। घी का एक दीपक जलाएं, जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करें। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेश वक्रतुंडाय हूम, या संकट नाशन गणपति स्तोत्र, या गणपति अथर्व शीर्ष, जो संभव हो उसका पाठ करिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार करिए, भगवान गणेश के मंत्र का जप करिए, या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा, इस दोष का उपचार हो जाएगा। जब आपकी पूजा हो जाए तब प्रसाद लोगों में बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस सरल तरीके से, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जानेंगे दैनिक राशि फल के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानते हैं।
0: तुला राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो गणेश चतुर्थी पर पूजा कैसे करनी है ये पंडित जी ने बताया। इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेंगे कि क्या कुछ सावधानियां रखें गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने में, जिससे आपकी पूजा अर्चना में कोई बाधा ना आए।
0: गणेश चतुर्थी का पर्व हम सबको मनाना है, भले ही हम घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें, लेकिन 14 सितंबर को हम सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। क्या सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो मध्यम आकार की होनी चाहिए। अगर खुद नदी से मिट्टी ला करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य जो चाहें चढ़ाएं प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो बेवजह क्रोध ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। इस बार जो गणपति की स्थापना का और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 14 सितंबर को होगा प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 के बीच में। इस समय में अगर आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके तीसरे सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न पारिजात जी ने हमें लिखा है और पारिजात जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, महिला हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1998। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है लखनऊ। पारिजात कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पारिजात आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस में कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और साल 2027 इसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन आपका कमजोर है, उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें और मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
4: और चलिए आज का आपका आखिरी सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का चौथा सवाल आप किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न अमित जी ने हमें लिखा है और अमित जी हमें हापुड़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1999। जन्म का समय शाम के 4:35। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं बने रहिए, वही आपके लिए बेहतर है। आगे और किसी नौकरी में जाएंगे ऐसा कम लगता है, लेकिन ये लगता है कि नौकरी के साथ साइड में कोई व्यापार करेंगे आप, खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का या दवाइयों का, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से 2028 के नवंबर के बाद से आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो पंडित जी जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो लोग अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करते हैं वो गणेश चतुर्थी का लाभ कैसे ले सकते हैं।
0: जी देखिए, गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपके घर में पहले से ही गणपति की मूर्ति जरूर होगी, आप उन्हीं गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी पर यानी 14 सितंबर को दोपहर के समय में करिएगा, आरती करिएगा, मंत्र पढ़िएगा और संध्या काल में उनकी पूजा करिए, चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। बिना प्रतिमा स्थापित किए हुए भी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे या करेंगी तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी।
4: और चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 14 सितंबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।

0: दिन 14 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, साल के अंत में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की उपासना की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, जहां तक संभव हो इनकी पूजा दोपहर के समय में करिए। सुबह और शाम भी करना अच्छा है, लेकिन पूर्ण लाभ लेने के लिए इनकी पूजा दोपहर को करें। पूजा में दूर्वा अवश्य अर्पित करें और संपूर्ण लाभ के लिए रोज कर सकें तो रोज या जब भी मौका मिले गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए शुभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि 14 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 14 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सी धातु का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मकर। आपको एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका करियर और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ले लेते हैं अपना जरूरी सवाल। पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी पर एक दूर्वा की माला हरे या पीले धागे में गूंथ करके दूब घास की माला बना लें, वो गणपति जी को पहनाएं। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें और ये माला अनंत चतुर्दशी पर जल में प्रवाहित कर दें, इसको हटा दें। आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए

0: अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेश उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पंडालों में विराजेंगे बप्पा और अगले 10 दिनों तक धूमधाम से विनायक की पूजा की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुंबई में मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल आज सुबह 8 बजे से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और लालबाग च राजा के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। वैसे तो लालबाग चौराजा की झलक 11 सितंबर को ही शाम 7 बजे आ गई थी, लेकिन आज से गणेश उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। तो आज से अगले 10 दिन इस पंडाल में लालबाग चौराजा के दिव्य दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता रहेगा। बता दें कि इस साल बप्पा नारंगी रंग की धोती पहनकर विराजमान है। लालबाग चौराजा की स्थापना 1934 में की गई थी और तब से हर साल मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। माना जाता है कि लालबाग चौराजा के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज तड़के हुई दिव्य आरती की तस्वीरें। वैसे तो मुंबई में हर साल बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है और शहर के कोने कोने में बने पंडालों में गणपति के दर्शन होते हैं, लेकिन सिद्धिविनायक की बात ही अलग है। हर दिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासतौर से आज गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के शुभारंभ के पावन अवसर पर यहाँ खासतौर से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर सहित देश भर के गणेश मंदिरों में खास तैयारियां और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों के लिए खास दर्शन की व्यवस्था की गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति का एक अनोखा स्वरूप। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ठाणे में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के भव्य पंचमुखी गणपति सैंड आर्ट का अनावरण किया। ये विशाल कलाकृति भगवान गणेश के 5 स्वरूपों को रेत के माध्यम से बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। लगभग 30 टन रेत से तैयार इस अद्भुत प्रतिमा को पूरा करने में कलाकार और उनकी टीम को 4 दिन लगे। बारीक नक्काशी, सूक्ष्म विवरण और रेत को आकार देने की असाधारण कला इस स्थापना को खास बनाती है। ये कलाकृति गणेश उत्सव की भक्ति, भारतीय संस्कृति और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ती है। सुदर्शन पटनायक की कला ने एक बार फिर से ये संदेश दिया है, जब आस्था को कला का स्पर्श मिलता है तो उत्सव एक यादगार अनुभव बन जाता है।
2: भगवान गणेश जी का पूजा के लिए एंटायर महाराष्ट्र जो है हर कोने में सेलिब्रेशन है, भारत वर्ष होता है, सारा विश्व में होता है। और हमने बहुत सारे भगवान गणेश जी का स्कल्पचर अराउंड द वर्ल्ड किया है और उसमें बहुत सारे प्राइजेस है, बट यहाँ पर हम लोग ने इको फ्रेंडली गणेश भगवान जी का ये स्कल्पचर्स बनाया है, जो 30 टन्स ऑफ सैंड में अदानी रियल्टी में ये बना हुआ है, क्योंकि ये एक अलग सा मैसेज लोगों के लिए है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने भी इको फ्रेंडली के ऊपर काफ़ी ये किए हैं, तो इसलिए हमने रेत में आप देख सकते हैं हर कोई डिटेल्स इसमें बना हुआ है, लड्डू से लेकर माउस से लेकर हर कोई चीज़ को हमने रेत में इसमें उभारा है। तो मैं सोचता हूँ लोगों के लिए एक अलग सा मैसेज होगा, वो भगवान गणेश जी का जो पंचमुखी है, 5 डिफरेंट फेसेस है और उसको वो रेत के थ्रू ले चलते हैं।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं तिरुपति ब्रह्मोत्सव से पहले चेन्नई में निकाली गई शानदार शोभा यात्रा की तस्वीरें। इसमें सजे धजे हाथियों के साथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। चेन्नई ब्रह्मोत्सवम शोभा यात्रा चेन्नई और तिरुपति के बीच की एक बेहद ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक परंपरा है। ये शोभा यात्रा तिरुमला में आयोजित होने वाले सालाना श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम के उपलक्ष्य में निकाली जाती है, जिसमें चेन्नई से खास रूप से तैयार किए गए पवित्र छतरियां भगवान वेंकटेश्वर को भेंट करने के लिए ले जाई जाती हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक चेन्नई केशव पेरुमल मंदिर में होती है और इस साल की भव्य शोभा यात्रा 13 सितंबर

0: सितंबर को चेन्नई से शुरू हो चुकी है और 18 सितंबर को तिरुपति पहुंचेगी। इसमें भक्त ब्रह्मोत्सव समारोह के लिए भगवान वेंकटेश्वर को भेंट के तौर पर खास छत्रियां लेकर जा रहे हैं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे डॉग से जो प्यार, दुलार और मुस्कुराहट से मरीजों को जीने का हौसला दे रहा है। ये है ग्रीस का पहला एनिमल हेल्थ केयर वर्कर जिसको हेल्थ सिस्टम में शामिल किया गया है।
1: यह है डायलन, ग्रीस का पहला डॉगी जो अस्पताल में भर्ती कैंसर मरीजों की सेवा में लगा है। ये अस्पताल में भर्ती कैंसर मरीजों से मिलता है और उन्हें जिंदगी जिंदा दिली से जीने की प्रेरणा देता है, उनका उत्साह बढ़ाता है। डायलन की चर्चा ग्रीस में खूब हो रही है क्योंकि इसकी अस्पताल में मौजूदगी से ही मरीजों की जिंदगी में मुस्कुराहट लौट आती है। डायलन की मदद से अस्पताल प्रशासन मरीजों के डर को कम करने की कोशिश करते हैं।
2: Είναι ο πρώτος σκύλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εντάχθηκε ως υγειονομικός υπάλληλος. Ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι να επισκέπτεται τους ασθενείς στις πιο δύσκολες στιγμές τους, την ώρα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, και να τους παίρνει λίγο το μυαλό, να τους κάνει λίγο να ξεφεύγουν από αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη δυσκολία, έστω τη μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής τους. Οπότε ο Ντίλαν με την παρουσία του τους χαρίζει.
1: कैंसर मरीजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी से लड़ना। इस तनाव में डायलन महज अपनी मौजूदगी से मरीजों में हंसी खुशी और राहत के पल लाता है, क्योंकि एक बार कैंसर का पता चलने के बाद मरीजों के जीवन से वो बेपरवाही का एहसास गायब हो जाता है और मुस्कान की वापसी हुई है।
3: Πρώτη φορά που τον βλέπω είμαι κατενθουσιασμένη. Πέρασε η θεραπεία, δεν την κατάλαβα καθόλου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
4: Μου έδωσε μια θετική ενέργεια. Μόνο μόλις τον χάιδεψα και τον άγγιξα, ένιωσα σαν να με καταλαβαίνει, σαν να μου παίρνει τη θλίψη από μέσα, να μου μεταδίδει τη δική του ενέργεια, τη δική του άβρα.
1: Dog therapy trainer और handler का मानना है कि भले ही वो मरीजों का शारीरिक इलाज नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको जल्द ठीक होने में मदद जरूर करते हैं। कहा भी गया है कि अगर प्यार और आत्मीयता से किसी जरूरतमंद से जोड़ा जाए तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेश उत्सव। जीएनटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। गणेश चतुर्थी पर जयपुर में शानदार तरीके से सजा मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार, राजसी पोशाक और आभूषणों से किया गया है बप्पा का श्रृंगार। सुबह 6:15 से शुरू हुए दर्शन। आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा हरतालिका तीज का पर्व, सुहागिनों पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रख रही है व्रत। धीरज ने रचा इतिहास, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2026 में धीरज बोमा देवरा ने जीता गोल्ड मेडल, स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले पुरुष रिकर्व आर्चर बने। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब कर लिया कब्जा, पीएम मोदी ने दी बधाई।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: गणपति बप्पा मोरया, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत करेंगे। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी के साथ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का महापर्व आज शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर देश भर के गणेश मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ जुट रही है। मुंबई से लेकर जयपुर और दिल्ली में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, तो ये रंग भी आपको आगे दिखाएंगे।
2: तो वहीं आज देश भर में हरतालिका तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुहागिने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रख रही हैं, तो इस पर्व पर और क्या होता है खास बताएंगे आगे।
1: तो वहीं रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अयोध्या में इस साल आयोजित होने वाला दीपोत्सव भव्यता, आध्यात्मिकता और अवध की सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा है। क्या कुछ हो रही है खास तैयारियां बताएंगे आज।
2: इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से गुड न्यूज भी आई है। भारत ने दुबई में महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार किताब पर कब्जा किया और इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम और देशवासियों को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री के ने जूनियर हॉकी टीमों को भी जीत पर सराहा है, तो इन टीमों ने कैसे दी है विरोधियों को मात बताएंगे आगे।
1: और साथ ही आपको लिए चलेंगे चीन के शंघाई, जहां पर इन दिनों शहर रंगों और रोशनी से सराबोर है। हुआंगफू नदी के किनारे सजी शाम में जब रंग बिरंगी झांकियां निकली तो पूरा शहर किसी बड़े उत्सव के मंच में बदल गया। मौका 37वें शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल के आगाज का था, जहां चाइना के साथ दुनिया के कई देशों की संस्कृति एक ही परेड में नजर आई। तो इसके सभी रंग आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
2: आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है और आज से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेश उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मुंबई में मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल आज सुबह 8 बजे से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज तड़के विनायक की दिव्य आरती की गई। तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान यहां पर भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की गई है।
2: गणेश उत्सव के पहले दिन नागपुर के श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में उत्सव का माहौल नजर आया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर ढोल ताशों के साथ नाचते गाते हुए मंगला आरती में शामिल होने पहुंचे। गणपति उत्सव के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये मंदिर करीब 250 साल पुराना बताया जाता है।
1: गणेश उत्सव के सिलसिले में ठाणे में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के भव्य पंचमुखी गणपति सैंड आर्ट का अनावरण किया गया। ये विशाल कलाकृति भगवान गणेश के 5 स्वरूपों को रेत के माध्यम से बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है और इसका निर्माण 30 टन से ज्यादा रेत से किया गया है।
2: तो दक्षिण भारत में भी गणेश उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान विनायक की अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के साथ मदुरई की थिरुपरुन कुंद्रम पहाड़ी पर जलाई जाने वाली दिव्य ज्योति भी दर्शाई गई है।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में मंदिरों में भगवान विनायक की विशेष पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं और पुरोहितों ने इस अवसर पर विशेष हवन और यज्ञ करके गणपति का आवाहन किया।
2: गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर में तड़के ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में गणपति की भव्य प्रतिमा है। यहां पर गणेश चतुर्थी पर गौरी गणेश उत्सव का आयोजन होता है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
1: चेन्नई में सजे धजे हाथियों के साथ भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा तिरुमला में आयोजित होने वाले सालाना श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम के उपलक्ष्य में निकाली जाती है, जिसमें चेन्नई से विशेष रूप से तैयार किए गए पवित्र छत्रियां भगवान वेंकटेश्वर को भेंट करने के लिए ले जाई जाती है।
2: एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम की जीत के बाद आगरा में क्रिकेटर अदिति शर्मा के घर पर लोगों ने जश्न मनाया। अदिति शर्मा के परिजनों ने मिठाइयां बांटी और टीम की शानदार सफलता पर खुशियां भी मनाई। ऑलराउंडर अदिति शर्मा ने महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा 14 विकेट अपने नाम किए।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ा महापर्व आज से शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर देश के तमाम प्राचीन गणेश मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। तमिलनाडु के शिवगंगा से लेकर राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के सीहोर तक आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है।
1: शिवगंगा के पिल्यारपट्टी मंदिर में गणेश चतुर्थी पर भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया गया। इधर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश को सिंजारा मेहंदी अर्पित की गई है, जबकि सीहोर के प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय भव्य मेले की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा कई तरह के धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के ठाणे में जाने माने सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने पंचमुखी गणपति सैंड आर्ट बनाई। लगभग 30 टन रेत से तैयार इस अद्भुत प्रतिमा को पूरा करने में कलाकार और उनकी टीम को 4 दिन लगे हैं।
0: फिर तस्वीरें आप देखिए, देश भर से कुछ ऐसी भव्य तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर जगह पर श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई है, किस तरह से पंडालों में श्री गणेश के आगमन की यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई थी और कैसे उनकी स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, भव्य सजावट की गई है और देश भर के गणेश मंदिरों में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए।

तो चलिए अब सबसे पहले आपको मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर लेकर चलते हैं, जहां पर गणेश चतुर्थी के शुभ दिन की शुरुआत बप्पा के भव्य श्रृंगार और मंगला आरती के साथ हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं मुंबई की। मुंबई में भव्य सजावट पंडालों की हो चुकी है, जगह जगह पर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। तो देश भर में तो पंडाल सज ही रहे हैं, लेकिन मुंबई की एक खास बात है और वहां पर भी पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है। ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर है ये, जहां पर गणेश चतुर्थी के शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है बप्पा के भव्य श्रृंगार और मंगला आरती के।

0: महाराष्ट्र के गणेश उत्सव में सबसे खास और सबसे चर्चित दरबार सजता है मुंबई के लाल बाग में। लाल बाग के राजा का बप्पा के दर्शन के लिए यहां पर आम से लेकर खास तक हर कोई पहुंचता है। लाखों श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार करते हैं और मनोकामना पूरी करने की उम्मीद में बप्पा के दरबार में शीश नवाते हैं। लाल बाग चराजा के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, देश ही नहीं बल्कि दुनिया से यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ते हैं, खासतौर से गणेश चतुर्थी के पर्व पर, जब कुछ खास तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, खास व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: तो गणेश उत्सव लगभग 10 दिनों तक मनाया जाएगा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब लाल बाग चराजा के दर्शन आप करिए। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है।

0: चलिए अब देश से आई अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, धर्मेंद्र मुंबई से और धनंजय अकोला से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले धनंजय, आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइएगा। अकोला में अभी आप कहां पर मौजूद हैं? गणेश चतुर्थी के पर्व की धूम आज सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है, कैसी वहां पर दिखाई दे रही है?
1: दीपाली जी और पूजा जी, आपको सबसे पहले गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र के अकोला से और अकोला के दर्शकों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम फिलहाल है अकोला के ACC जो जहाँ पर गणपति बप्पा के बाजार में बहुत ही अलग अलग और सुंदर प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और सबसे अहम बात है कि सुबह का वक्त है और ग्राहक जो है वो आप अपने लाडले को घर घर ले जाने के लिए जो है वो यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अकोला में जो है गणेश पर्व जो है बड़े धूमधाम से जो मनाते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि आज जो है वो हरतालिका की तीज है, हरतालिका की तीज के चलते जो है सुबह यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम जरूर है, लेकिन सबसे अहम बात है कि दोपहर के बाद जो है गणेश जी की स्थापना करनी है, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से ये ग्राउंड में जो है वो गणपति बप्पा की प्रतिमाएं जो है लेने के लिए जो ग्राहक है वो यहाँ पर आपको कम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो है एक उल्लास जरूर है। मुझे बोलिए कि कितना उल्लास है यहाँ पर, कितना उल्लास है?
2: हर साल की तरह गणपति बाप्पा का तो आगमन एक बच्चों के लिए बोलिए परिवार के लिए एक उल्लास का ही विषय रहता है, और गणपति बाप्पा रिद्धि सिद्धि के दाता है तो उनके वजह से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। बच्चों को ये जो 10-12 दिन का उत्सव रहता ये बिल्कुल रोज उमंग और आनंद के साथ।
1: आप थोड़े भावुक हो गए, इमोशनल हो गए थोड़े आज,
2: वो तो बाप्पा का आगमन है और उनका एक खुशी है कि वो आगमन तो रहेगा ही ना।
1: ठीक है, तो देखिए कुछ बाप्पा को ले जाते हैं यहाँ पर, देखिए कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर है, गणपति बाप्पा कितने खुशी है आज, कितने खुशी है,
3: बहुत खुशी है, किसी मत त्योहार
1: क्या कहेंगे, बाप्पा घर आ रहे हैं, अगले दिन अगले 10 दिन क्या रहेगा,
3: उत्साह रहेगा, जल्लोष रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा।
1: आज तीज भी हरतालिका की और अगले 10 दिन मोदक पप्पा के लिए किस तरह से
0: जी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग यहाँ पर। धनंजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें देखेंगे। इसी बीच धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वहां पर जिस तरह से बेहद शानदार तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं?
4: बिल्कुल, आपको और JNT की पूरी टीम को गणेश चतुर्थी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में, जो न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। और देखिए किस तरीके से इस समय लालबाग के राजा बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज कलर की धोती पहनकर, और फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है। आपको बता दें कि इस बार लालबाग के राजा एक अलग ही थीम में नजर आ रहे हैं, जिसकी जो सबसे बड़ी खास वजह से है वो है रामेश्वर की थीम। पहले ही गुड न्यूज टुडे ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अपने ये साफ किया था कि रामेश्वर की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी जाएगी, और साथ-साथ वो चीजें देखने को भी मिल रही है। आप देखें कितना भव्य सेट इस समय सजाया गया है, चांदी का पूरा सेट है लालबाग के पीछे और आसपास आप देखें। साथ ही साथ लालबाग के राजा का ये जो दरबार है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि त्रिशूल है, डमरू है, और पूरे डायमंड से ये पूरी की पूरी चीजें बनाई गई है। इस बार शंकर भगवान को ध्यान में रखते हुए, शिव जी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी थीम यहाँ सजाई गई है। सुबह तकरीबन 5 बजे से ही लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए उनका दरबार खोल दिया गया, और देखिए तमाम लोग पहली सुबह ही, तड़की सुबह ही तमाम लोग हजारों की तादाद में इस समय लालबाग के राजा का दर्शन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि दो तरह की कतारें होती हैं लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए, जिसमें पहली जो कतार मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जहां तक भी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु गणेश भक्ति नजर आ रहे हैं। इन्हें 2-3 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद लालबाग के राजा तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा, दूर दर्शन करके ही लालबाग के राजा का जो पैर है पग है उसे छूने का मौका नहीं मिलेगा। बावजूद इसके हर कोई अपना कैमरा निकाल करके अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके लालबाग के राजा का दर्शन करा रहा है। साथ ही साथ आज का ये क्वालिटी जो टाइम है उसे अपने कैमरे में लोग कैद भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कतार हर साल लालबाग के राजा के लिए लगाई जाती है वो पग छूने वाली, पैर छूने वाली कतार होती है। और जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि दो दिन पहले से ही कतारों में लोग खड़े हो गए थे और तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे लाइन में लगने के बाद लालबाग के राजा के पैर छूने का मौका मिल रहा है। आप देखें बेहद खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। एक आरती सुबह 7 बजे हो चुकी है, दूसरी जो है अब सीधे 12:30 के आसपास होनी है और उसके बाद शाम की एक आरती होनी है। 3 बार लालबाग के राजा यानी कि बप्पा का श्रृंगार किया जाता है और इसी तरीके से
0: धर्मेंद्र देखिए लालबाग के राजा की मान्यता काफी ज्यादा पुरानी है। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो वहां पर तो जरूर जाती हैं दर्शन के लिए। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह भी क्योंकि मुंबई में ही मौजूद है, क्या वो अभी तक वहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं? क्या कोई कार्यक्रम है ऐसा वो भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे?
4: देखिए जो भी आम और खास जितने वीआईपी वीवीआईपी होते हैं उन सभी की रजिस्ट्री यहाँ हो जाती है और चूंकि लालबाग के राजा पर देश दुनिया की नज़र होती है और वो सेलिब्रिटी हैं इसलिए उनकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम होना चाहिए। जब मुंबई पुलिस इजाज़त देगी तब उसके बाद ही सेलेब यहाँ एंटर कर सकता है। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो कभी भी आज लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ और भी महाराष्ट्र के जितने भी मिनिस्टर हैं और बहुत सारे सेलेब्स हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ज़्यादातर सभी खुद भी अपने घर पर ही गणेश जी को विराजमान करते हैं। 1.5 दिन की गणपति होती है, 3 दिन की गणपति होती है, 7 दिन की होती है और इस बार 10 दिन के बाद लालबाग के राजा और तमाम गणपतियों का विसर्जन होना है। तो जैसे ही 1.5 दिन की गणपति, 3 दिन और 5 दिन की गणपति से लोग छुट्टी पाएंगे एक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। जाहिर है कि बहुत से सेलेब्स के वायरल वीडियो इस समय चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हर कोई देख रहा है, हर किसी ने बप्पा को अपने घर में स्थापित किया है और यही वजह है कि वीआईपी वीवीआईपी अभी 2-3 दिन नहीं आ पाएंगे लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। लेकिन जो तमाम श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बेसब्री से साल भर इंतजार करा है लालबाग के राजा का, वो सब अब धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मान्यता है, वाकई में सही कहा आपने, ऐसा हमेशा ही उदाहरण के तौर पर देखा गया है कि लालबाग के राजा से जो कुछ भी श्रद्धालुओं ने मांगा है वो उन्हें समर्पित कर देते हैं, बड़े ही दयालु हैं। और खास बात ये है कि एकमात्र ऐसे गणेश जी भगवान हैं, ईश्वर हैं हिंदू हमारे सनातन धर्म में जिनके लिए उपवास करना जरूरी नहीं है, ये खुद भी खाते रहते हैं और जो भक्त हैं वो भी बकायदा खाते पीते बप्पा का दर्शन करने फिलहाल लालबाग के राजा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं। और एक तमाम
5: जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ धर्मेंद्र और धनंजय। इसी बीच जिस तरह से देश भर में धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, घर घर में ना सिर्फ बप्पा का आगमन हो रहा है बल्कि पूजा पंडालों में भी बप्पा विराजमान हो चुके हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं।
0: ऐसा ही एक नामी पूजा पंडाल मुंबई में सजा हुआ है जिसका नाम है जीएसबी सेवा मंडल, जो कि इस साल अपना 72वां महागणपति उत्सव मना रहा है। मुंबई का ये मंडल अपनी प्राचीन वैदिक परंपराओं, भव्य आभूषणों और करोड़ों रुपए के बीमा कवर के लिए जाना जाता है।

0: सज गया है विघ्नहर्ता का दरबार, भक्तों की लगी है कतार। पंडाल में गूंज रहे हैं मंत्रोच्चार, हर तरफ हो रही जय जयकार। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडाल जीएसबी सेवा मंडल की हैं, जो इस साल अपना 72वां गणेशोत्सव मना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ये गणेश पंडाल अपनी प्राचीन वैदिक परंपराओं, भव्य आभूषणों और अब आधुनिक इको फ्रेंडली पहलों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस साल भी जीएसबी सेवा मंडल ने बप्पा की प्रतिमा को 66 किलो से अधिक सोने के आभूषणों और 335 किलो से ज्यादा चांदी और अन्य कीमती रत्नों से सजाया है। इसी वजह से इस पंडाल को मुंबई का सबसे अमीर गणपति पंडाल कहते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के सबसे अमीर गणपति पंडाल ने इस साल अपने इंश्योरेंस कवर में भी भारी भरकम बढ़ोतरी की है। मंडल की ओर से बताया गया है कि इस साल गणेशोत्सव के लिए 703 करोड़ रुपए का विशाल बीमा कवर कर लिया गया है, जबकि इससे पहले मंडल ने साल 2025 में 474 करोड़ रुपए और साल 2024 में 400 करोड़ रुपए का बीमा कराया था। ये बीमा सुरक्षा मंडल के कीमती सोने चांदी के आभूषणों, श्रद्धालुओं, वॉलंटियर्स, पुजारियों, सुरक्षा कर्मियों, रसोइयों और पंडाल को किसी भी दुर्घटना से कवर करता है। खास बात यह है कि जीएसबी सेवा मंडल की ओर से इस साल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जरूरी कदम उठाया गया है, जिसके तहत पारंपरिक और प्रिंटेड रसीदों को खत्म कर दान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है, ताकि कागज की बर्बादी को कम किया जा सके। मंडल का कहना है कि महागणपति की प्रतिमा भी इको फ्रेंडली है, यानी इस बार गणेशोत्सव में गो ग्रीन की थीम को प्रमुखता से अपनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए पर इसी पर बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र और धनंजय। धनंजय, आपके पास आते हुए एक बार फिर से धनंजय तस्वीरें दिखाइएगा कि वहां पर पंडाल किस तरीके से सजे हुए हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज्यादा आप देख पा रहे हैं और इस बार कैसे कैसे गणपति मार्केट में देखने को मिल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल दीपाली जी, मार्केट में इस वक्त जो गणपति जो ट्रेंडिंग के है ना, वो खासकर लालबाग का तो है ही है, क्योंकि लालबाग जो है वो सबसे है। देखिए लालबाग की ये सुंदर मूर्ति जो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पापा की जो धोती है और पापा का स्वरूप है, उनकी जो आंखें हैं, मानो पापा खुद हम से बात कर रहे हैं और खूब बात करते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे अहम बात वो है कि इस मार्केट में जो है बहुत ही वेराइटीज की जो पापा की प्रतिमाएं हैं, जिस तरीके से बाल स्वरूप जो है वो अधिकतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, और भक्तों की भीड़ जो है आप धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है भक्त अभी बाप्पा को अपने घर ले जाने के लिए जो है बड़े आतुर हुए हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था, आज हरतालिका की तीज थी और हरतालिका की तीज के चलते जो है वो पहले महिलाओं की हरतालिका तीज का स्थापना होगी, उसके बाद गणपति बाप्पा की स्थापना होगी। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट में जिस तरीके से जो भक्तों की भीड़ है वो अब धीरे धीरे दीपाली जी और पूजा जी जो है वो जमना शुरू हुई है।
1: बिल्कुल धनंजय जी, आप बने रहिए, अब मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन करवा रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, लालबाग चौराहा को मन्नतों का राजा कहा जाता है, यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत लेकर पहुंचता है वो पूरी हो जाती है। वहां पर जो लोग पहुंचे हैं उनमें किस तरह का उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, जरा लोगों से बात कीजिए।
3: बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी बात बताऊं जिसमें वाकई में बहुत ही आश्चर्य भी और मजेदार भी है। कल जो है यहाँ पर दान पेटी खुलेगी और तमाम यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं ने जो कुछ भी अर्पित किया है ईश्वर को, गणेश जी को, उन सारी चीज़ों का जिक्र, उन सारी चीज़ों का जो जायका है वो दान पेटी में देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि पिछली बार जब दान पेटी खुली थी तो उसमें कई चिट्ठियाँ मिली थी और उन चिट्ठियों में किसी माँ ने अपनी बेटी की शादी की दरखास्त जो है मिन्नत में बप्पा से मांगी थी, तो किसी पिता ने अपने बेटे की नौकरी लग जाए ये चीजें मांगी थी, और तो और कई चिट्ठियां ऐसी भी थी जो अपने मनपसंद प्रेमिका और प्रेमी से शादी करने का जिक्र भी भगवान तक लोगों ने पहुंचाया। और खास बात यह है कि कई चिट्ठियां उनमें ऐसी भी निकली,
1: और यही मान्यता है धर्मेंद्र की उनकी दुआएं जल्द से जल्द पूरी भी होंगी। आप बने रहिएगा, तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा आगे। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए जीएनटी पर जारी रहेगा गणेशोत्सव।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जीएनटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधारे बप्पा। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। गणेश चतुर्थी पर जयपुर में शानदार तरीके से सजा मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार, राजसी पोशाक और आभूषणों से किया गया है बप्पा का श्रृंगार। सुबह 6:15 से शुरू हुए दर्शन। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में गणेश उत्सव पर विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की प्रतिमा का अनावरण, वेस्ट मटेरियल से बनी है प्रतिमा, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व, सुहागनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रख रही हैं व्रत। तीरंदाज धीरज ने रचा इतिहास, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2026 में धीरज बोम्बा देवरा ने जीता गोल्ड मेडल, स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले पुरुष रिकवर आर्चर बने।

0: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। जीएनटी पर गणपति पधारने वाले हैं और गणेश चतुर्थी को लेकर महाकवरेज लगातार जारी है। पूरे देश में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। प्राचीन और सिद्ध मंदिरों में तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जयपुर के मोती डोंगरी गणपति मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है।
1: आज यहाँ गणपति बप्पा को विशेष भोग लगाए जा रहे हैं। लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु का हुजूम उमड़ रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर, मुंबई और मुंबई के लालबाग चौराहा के दर्शन इसके जरिए आप कीजिए। सिद्धिविनायक मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई। सुबह सुबह आरती हुई और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है।

तो देखिए, देश भर के तमाम गणपति मंदिरों में आज बप्पा का भव्य श्रृंगार हुआ है। नागपुर के गणपति मंदिर में बप्पा का दरबार प्यारा सजा है और इस भव्य दरबार को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। पंडाल सज चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बप्पा का दरबार किस तरीके से सजा हुआ है। 10 दिनों तक अपने भक्तों के बीच बप्पा ऐसे ही रहेंगे और भक्तों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह सवेरे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। भक्त नाचते गाते बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। और अब आपको महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे धूमधाम के साथ लालबाग के राजा का स्वागत हुआ। भक्तों ने नाच गाकर फूल बरसाकर बप्पा का अभिनंदन किया। किस तरह का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर भक्ति आस्था में लीन लोग नजर आ रहे हैं।

0: तो चलिए अब तस्वीरें आपको मुंबई से और अकोला की दिखाते हैं। अकोला से हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र मुंबई से। सबसे पहले धर्मेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, देखिए गणपति बप्पा को मोदक काफी ज्यादा पसंद है, अगर भोग प्रसाद की बात की जाए तो श्रद्धालु गणपति जी को खुश करने के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आप?
1: देखिए सबसे खास बात तो ये है कि लालबाग का राजा का दर्शन करने के लिए लोग कतारों में तो खड़े होते हैं और चाहते भी हैं कि उन्हें बहुत कुछ अर्पित करें, लेकिन फिलहाल लालबाग के राजा तक पहुंच पाना और अगर पहुंच भी गए तो वहां पर 2 सेकंड से ज़्यादा रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉर्मली जो पूजा की थाली होती है, नारियल होता है या मोदक होता है, वो चीज़ें यहाँ पर लोग नहीं लाते हैं। लेकिन हाँ, दान पेटी यहाँ पर हर जगह रखी हुई है, जो कोई भी अपने क्षमता से चढ़ाना चाहता है दान पेटी में दक्षिणा वो चढ़ा देता है और इस तरीके से बप्पा खुश होते हैं। वैसे भी बप्पा जो हैं वो खुद ही इतना ज्यादा प्यार उपहार के रूप में लौटा रहे हैं यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि उन्हें उनके लिए कुछ लाया जाए और लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो देखिए किस तरीके से बढ़ती ही जा रही है। हर कोई चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बार लालबाग के राजा का दर्शन कर ले, उन्हें छू ले, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में यही चीजें लेकर के लोग उनके दरबार में पहुंचे हुए हैं। और इस बार तो आप देखें लगातार जहां तक भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु हैं। देखिए एक आंकड़ा आपको बताएं कि रोजाना लगभग 3 लाख 4 लाख के आसपास जो गणेश भक्त हैं वो लालबाग के राजा में दर्शन करने आते हैं और जहाँ दूर से ही 2-3 घंटे भले ही लोग इस कतार में खड़े हैं जहाँ सिर्फ उन्हें मुख्य दर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन दूर से ही लालबाग के राजा दिखने शुरू हो जाते हैं। लोग अपने मोबाइल पर आरती शुरू कर देते हैं, आरती गाना शुरू कर देते हैं और लालबाग के राजा को जी भर के देखते हैं, क्योंकि दूर से लेकर के यहाँ तक आने में भी तकरीबन 1/2 घंटे लगते हैं, यानी कि 1/2 घंटे तक आप लालबाग के राजा को बकायदा निहार सकते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, देखिए ना कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं और हमेशा ही कलरफुल जो उनको धोती है वो श्रृंगार के रूप में पहनाई जाती है। इस बार लालबाग के राजा तो बेहद खूबसूरत लग ही रहे हैं, लेकिन उनका ये जो आसन बनाया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। रामेश्वरम की थीम जो है इस बार लालबाग के राजा में देखी जा रही है और फिर से एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से ऊपर त्रिशूल बनाया गया है, डमरू रखा गया है और डायमंड से पूरा का पूरा ये माहौल को सजाया गया है। आपको बताया कि लालबाग के राजा के लिए तमाम वो चीजें यहाँ पर रखी गई हैं जिससे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। सबसे प्यारी जो बात है वो लालबाग के राजा की आंखों में है, ऐसा लगता है जैसे वो देख रहे हैं खुद ही, ओरिजिनल एकदम रियल आंखें दिख रही है और अपने जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखों में आंखें देखकर ये कहते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, आपके जितने भी दुख हैं मैं हर लूंगा, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, मैं आपको खुशहाली दूंगा। और वाकई में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद जब बप्पा को लोग देखते हैं तो एक अलग ही तरह की ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही तरह की ताकत ही सी आ जाती है, थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हर कोई सिर्फ और सिर्फ बप्पा को निहारता रहता है।
0: जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। अब जरा एक बार अकोला लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी धनंजय सामले मौजूद हैं। धनंजय, अकोला में बेहद शानदार तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और हर बार की तरह इस बार भी विशाल झांकियां निकाली जा रही हैं।
2: बिल्कुल पूजा जी, अकोला का जो इतिहास है वो बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि अकोला में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर खुद जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 12 भाई गणपति की जो है वो प्रतिमा और वो सार्वजनिक पंडाल जो है 12 भाई का मानो 12 जाति के अलग अलग लोगों को इकट्ठा कर जो है वो गणेश सार्वजनिक पंडाल की स्थापना की गई है। सुबह 12 बजे जिस तरीके से हम बताने वाले हैं कि उस 12 भाई गणपति का महत्व क्या है और उसके दर्शन भी अपने दर्शकों को करवाएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि गणपति को जिस तरह से आपने पहले धर्मेंद्र जी को पूछा कि सबसे अच्छा भोग जो है गणपति बाप्पा का मोदक होता है, लेकिन भोग के साथ ही गणपति बाप्पा को चढ़ाए जाने वाला जो दुर्वा है वो भी बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए इस बाजार में जो है गणपति बाप्पा के लिए दुर्वा जो है वो यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया गया है और जिस तरीके से कोई इसको इस तरीके से ले जाता है और इसमें से 21 जो है वो 21 जुड़िया जो है मानो 1 3 3 की जुड़िया जो है वो 21 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जोड़ी जाती है। मानो इसका भी बहुत महत्व है, गणपति बाप्पा को ये जो है ये दुर्वा चढ़ाना भी जो है इसका भी बहुत महत्व है, इससे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो साथ ही जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गणपति के सामने रखने वाले जो ओटी हो, ओटी कहते हैं, जिसमें अलग अलग बादाम, सुपारी, हल्दी, ये सब कुछ होता है। और सबसे अहम बात बोले तो गुलाल होता है, और ये गुलाल जो है वो गणपति बप्पा के लिए खासियत रखने वाला होता है। यही जो गुलाल है, ये गुलाल के साथ अभी जो है वो इस गुलाल को घेर कर एक दूसरे को लगाते हैं। हमारे साथ कुछ अभी कह, देखिए गुलाल गणपति बाप्पा को लगाने के लिए कितना अच्छा होता है, और सबसे अहम बात यही है कि आज गुलाल का क्या महत्व होता है जो गणपति बाप्पा के लिए उड़ाया जाता है।
3: ये गणपति बाप्पा के लिए यानी बहुत यानी उनको बहुत महत्वपूर्ण है, गणपति बाप्पा।
2: आज आज गणपति बाप्पा का उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है?
3: बहुत अच्छा मनाया जा रहा है,
2: मनाया जा रहा है। तो देखिए
3: काफी देर तक चलेगा, काफी देर तक भी चलेगा,
2: काफी देर तक चलेगा। अभी हरतालिका की
3: हरतालिका
2: की पूजा है, इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल जो है भीड़ यहाँ पर कम नजर आ रही है पूजा की, लेकिन धीरे धीरे जो है माहौल देखिए आपकी यहाँ पर माहौल बनता जा रहा है। जो ग्राहक है वो अपने गणपति बाप्पा को घर पे ले, देखिए ये गाड़ी पर भी जो है अपने बाप्पा को अपने लाडले को ले जा रहे हैं। यहाँ पर अभी उन्होंने ढककर रखा है कि बप्पा को जब तक उनकी होती है।
0: ठीक है, काफी खूबसूरत तस्वीरें दिखाई आपने धनंजय। धर्मेंद्र आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।
4: और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर पूरी धूमधाम के साथ लाल बाग के राजा का स्वागत हुआ। भक्तों ने नाच गाकर फूल बरसाकर बप्पा का अभिनंदन किया।
5: ये वो पल हैं जिसका गणेश भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। अकोला की सड़कों पर बप्पा की शोभा यात्रा निकल रही है और विघ्नहर्ता के आगमन पर उनके भक्त खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पूरी सादगी के साथ मुंबई की तरह यहाँ भी 21 फीट के लालबाग चौराहा पधार रहे हैं और भक्त दिल खोल कर उनका स्वागत कर रहे हैं।
2: अकोला का लालबाग का राजा जो है इसकी एंट्री हुई, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ सादगी के साथ जो है यहाँ पर लालबाग के राजा की जो है सवारी बड़े जल्लोष के साथ और धूम के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब बप्पा आने के बाद में जो है, क्योंकि बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, विघ्न जो सबसे बड़ा विघ्न था, बारिश नहीं थी, वो कल से जो है झमाझम बारिश जो है वो शुरू हुई है। और लालबाग की जैसे ही एंट्री हुई है, कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर जो है लगभग 21 फीट की ये मूर्ति है, और जो पीताम्बर पहने हैं वो जो है कितना सुंदर पीताम्बर है, और दोनों पैर के जो है वो यहाँ पर चांदी के पैर है, उनके हाथ जो है वो चांदी का है, और जो दांत है वो भी जो है वो चांदी के। मानो ये जो अकोला का लालबाग का राजा है, ये हर संकट में भगवान जो है, हर संकट में लोगों के जो है वो साथ में आता है। और यहाँ पर जो है ना डीजे है ना बड़े ढोल है, बाकी सादगी से जो भजन कीर्तन के साथ जो है लालबाग की यहाँ पर जो रथ की सवारी है वो लोग भाविक और महिलाओं भी यहाँ पर कहती नजर आ रही है।
5: 21 साल से इसी तरह हर साल यहाँ बाप्पा की शोभा यात्रा निकाली जाती है और गणेशोत्सव के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखाई देता है।
6: उत्साह तो बहुत है, जैसे सब है, सबके चेहरे पे खुशी है। आप देख रहे हो कल्याण गणेश उत्सव मंडल है, सब बापा को एकदम धूमधाम से लेके आ रहे, बारिश भी लेके आए बापा साथ में, काफी आनंद की बात है। बड़ा संकट था जो बापा अपने साथ हरने की बात कर रहे हैं।
2: अगले 10 दिन कितनी खुशी है, कितना जल्लोष होगा?
6: अगले 10 दिन तो ऐसी खुशी है जैसे ये 10 दिन खत्म ही ना हो, काफी आनंद है।
5: अब बापा के आगमन की एक और तस्वीर देखिए। कल्याण गणेश उत्सव मंडल की शोभा यात्रा में पूरी धमक के साथ बप्पा पधार रहे हैं, ढोल ताशे की थाप पर भक्त झूम रहे हैं, अपने आराध्य का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हर ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है, जहां से भी शोभा यात्रा गुजर रही है भक्त फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान हर दिन यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भारी संख्या में भक्त बप्पा के दर्शन के लिए पधारेंगे। इसे देखते हुए हर लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे।
0: तो बेंगलुरु में भी गणपति बप्पा की भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध डोडा गणेश मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया। फूलों से सजे गणपति के दिव्य स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया। भव्य श्रृंगार के बाद विधि विधान से आरती की गई। आरती के दौरान मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा।
4: और अब जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आस्था का सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर मंगल मूर्ति गणपति बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है, तो वहीं उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है।

0: देखिए, पूरे देश में गणेश उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। अब आपको झांसी के माणिक चौक का नजारा दिखाते हैं, जहां धूमधाम के साथ बप्पा पधारे और भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का स्वागत किया है।
1: झांसी की ये रौनक यहां गणेश भक्तों का उत्साह साफ बयां कर रही है। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजे और डीजे की धूम है। बप्पा के आगमन पर भक्त झूम रहे हैं। शहर के माणिक चौक, बड़ा बाजार, बीकेडी, सिंधी चौराहा, मिनरवा, सदर बाजार समेत तमाम जगहों पर गणपति प्रतिमाओं का आगमन हुआ। शहर भर में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर ओर गणेशोत्सव की उमंग दिखाई दे रही है।
2: ये जो गणपति जी आ रहे हैं, ये हमारे माणिक चौक के राजा हैं, जो कि अभी इनका आगमन है। और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, ऐसा माहौल जैसा मुंबई में होता है, ऐसा हमारे झांसी में ये माहौल बना है।

0: की 35वीं वर्षगांठ है। बप्पा की शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। जाहिर है, गणेशोत्सव के लिए झांसी शहर सजकर तैयार है और भक्त अपने आराध्य की सेवा सत्कार में जुटे हैं। अजय झा, झांसी, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।
2: गणेशोत्सव के रंग जेएनटी पर लगातार जारी हैं। कुछ ही देर में जेएनटी में गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। आप बने रहिए जेएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर,

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जीएनटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा।

मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत डुगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ शुरू हुआ जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया। गणेश चतुर्थी पर जयपुर में शानदार तरीके से सजा मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार, राजसी पोशाक और आभूषणों से किया गया है बप्पा का श्रृंगार। सुबह 6:15 से शुरू हुए दर्शन। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा हरतालिका तीज का पर्व, सुहागने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गणेश उत्सव पर विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की प्रतिमा का अनावरण, वेस्ट मटेरियल से बनी है प्रतिमा, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। तीरंदाज धीरज ने रचा इतिहास, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2026 में धीरज बोमा देवरा ने जीता गोल्ड मेडल, स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले पुरुष रिकर्व आर्चर बने।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की, भगवान गणेश के विशिष्टता की और उनके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय, प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व के बारे में, गणपति महोत्सव के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 14 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव समाप्त हो जाएगा। मेष राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, गणपति महोत्सव में हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। हैं तो सब गणपति की ही मूर्तियां, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा उपासना जिस मूर्ति की होती है वो होती है पीले रंग के गणपति की, और रक्त वर्ण लाल रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के जो गणेश जी की मूर्ति है इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं होती। हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं, और ये हरिद्रा गणपति की मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, जैसे विवाह और संतान के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है, जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी अगर आप पूजा करें, श्वेत गणपति की उपासना करें, तो कर्जों से ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जो संकटों का नाश करते हैं। इनकी उपासना से जीवन के हर संकट का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं, ये महागणपति हैं, सारे स्वरूप इनके अंदर विद्यमान होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणेश महोत्सव पर गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो गणपति की मूर्ति मध्यम आकार की होनी चाहिए। पीले रंग की या लाल रंग की मूर्ति स्थापित करना बेहतर होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तब तो आपको पूजा करनी ही है, और अगर आपने मूर्ति स्थापित नहीं भी की है तो भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसका सही तरीका क्या होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय में करिएगा, और अगर आपने पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो साथ में कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास जितना संभव हो भगवान गणेश की पूजा करें। घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करें। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेश वक्रतुंडाय हूं, या संकट नाशन गणपति स्तोत्र, या गणपति अथर्व शीर्ष, जो संभव हो उसका पाठ करिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार करिए, भगवान गणेश के मंत्र का जप करिए या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा, इस दोष का उपचार हो जाएगा। जब आपकी पूजा हो जाए तब प्रसाद लोगों में बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस सरल तरीके से, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी।
धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी का पर्व हम सबको मनाना है, भले ही हम घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें, लेकिन 14 सितंबर को हम सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। क्या सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो मध्यम आकार की होनी चाहिए। अगर खुद नदी से मिट्टी ला करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य जो चाहे चढ़ाएं प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो बेवजह क्रोध ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। इस बार जो गणपति की स्थापना का और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 14 सितंबर को होगा, प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 के बीच में। इस समय में अगर आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए, गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपके घर में पहले से ही गणपति की मूर्ति जरूर होगी, आप उन्हीं गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी पर यानी 14 सितंबर को दोपहर के समय में करिएगा, आरती करिएगा, मंत्र पढ़िएगा और संध्या काल में उनकी पूजा करिए, चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। बिना प्रतिमा स्थापित किए हुए भी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे या करेंगी तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी।
अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से सुबह शाम उनकी उपासना करें और घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। घर का भोजन, माहौल, वातावरण जितना पवित्र होगा उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी पर एक दूर्वा की माला हरे या पीले धागे में गूंथ करके दूब घास की माला बना लें, वो गणपति जी को पहनाएं। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें और ये माला अनंत चतुर्दशी पर जल में प्रवाहित कर दें, इसको हटा दें। आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है, माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलो, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है।, है साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाह रहे हैं। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में।
और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी, भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया और जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया,
लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा। जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
9: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
11: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
12: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
13: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
13: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ। जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
9: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
16: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
17: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां

0: बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रीस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से। जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी

0: 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेश चतुर्थी की भव्य रौनक, 10 दिन तक धूमधाम से चलेगा गणेशोत्सव। जीएटी के साथ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व, पधार रहे हैं बप्पा। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत डगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ शुरू हुआ जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत। सवाई माधोपुर में लखी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, भक्तों ने लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गणेश उत्सव पर विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की प्रतिमा का अनावरण, 20 मटेरियल से बनी है प्रतिमा, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कॉइन एग्जीबिशन 2026 का आयोजन किया गया, दुर्लभ सिक्के, पुराने बैंक नोट, डाक टिकट, पदक और ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी, भारी संख्या में लोग पहुंचे। मुरादाबाद के चित्रगुप्त कॉलेज के छात्रों ने बनाई नीम करौली बाबा की तस्वीर, 8 घंटे की मेहनत से तैयार की गई तस्वीर, रंगोली ने सबका मन मोहा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन और आज से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पंडालों में बप्पा विराजेंगे और अगले 10 दिनों तक धूमधाम से विनायक की पूजा की जाने वाली है। आपको दिखा रहे हैं गणपति की 25 तस्वीरें। सबसे पहले मुंबई की तस्वीर देखिए, मशहूर लालबाग के राजा की तस्वीर है ये, जहां पर पंडाल आज सुबह 8 बजे से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और लालबाग चौराहा के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। वैसे तो लालबाग चौराहा की झलक 11 सितंबर को ही शाम 7 बजे आ गई थी, लेकिन आज से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। तो आज से लेकर अगले 10 दिन इस पंडाल में लालबाग चौराहा के दिव्य दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता रहेगा। बता दें, इस साल बप्पा नारंगी रंग की धोती पहनकर विराजमान हैं। लालबाग चौराहा की स्थापना 1934 में की गई थी और तब से हर साल मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि लालबाग चौराहा के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश उत्सव गुड न्यूज टुडे के साथ पूरे देश में आज गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है और आज जीएनटी का स्टूडियो भी बप्पा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी शगुप्ता और गीतिका बप्पा की एक खूबसूरत प्रतिमा लेकर आ रही हैं, तो चलिए देखते हैं बप्पा के स्वागत की कैसी तैयारी चल रही है।

0: तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जीएनटी किस तरह से बप्पा का स्वागत कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जीएनटी में बप्पा पधार रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हर त्योहार की तरह गणेश चतुर्थी का पर्व भी बड़े ही धूमधाम से जीएनटी भी मना रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे। किस तरह से उनकी स्थापना की जाती है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से विधि विधान है, कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं अपने अपने घरों में, ये तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पंडित जी के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारियां देंगे और जीएनटी के स्टूडियो में बप्पा विराजने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको अब से कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है, देश भर में धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की जा रही है। लाल बाग चराजा दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। आपके बप्पा जीएनटी के घर में फाइनली पधार चुके हैं,
2: लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कुछ मिनटों का इंतजार है और उसके बाद बप्पा के मुख दर्शन सभी को हो जाएंगे।
1: देखिए इंतजार की घड़ियां ना, जैसे हम इम्पेशेंट हो रहे थे, आई एम श्योर कि आप भी इम्पेशेंट हो रहे होंगे, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। मुख दर्शन के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीएनटी में हम स्थापित करने जा रहे हैं अपने गणपति बप्पा को। देव एक बार फिर से सभी बोलिए साथ में, गणपति बप्पा
3: मोरिया।
1: मांगा

0: तो देखिए जीएनटी के स्टूडियो में बप्पा विराज रहे हैं, उनकी स्थापना की जा रही है गणेश चतुर्थी के इस पर्व को बेहद शानदार तरीके से जीएनटी मना रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने जा रहे हैं, बस कुछ क्षणों का इंतजार और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान है, तमाम चीजें तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया है। जयंती परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बप्पा का आगमन हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी बेहद शानदार तरीके से जीएनटी गणेश चतुर्थी के इस पर्व को मना रहा है। हर त्योहार की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से जीएनटी के स्टूडियो में बप्पा विराज रहे हैं और उनका स्वागत किस तरह से किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन और आज से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है।
1: आज करेंगे गणपति बप्पा की स्थापना विधिवत तरीके से। आज आपको बताएंगे कि गणपति की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, पूजा अर्चना किस प्रकार से होगी। हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति

0: चलिए मुख्य दर्शन सबके सामने हम करने जा रहे हैं जीएनटी के घर में। तो मुख्य दर्शन की प्रक्रिया क्या होगी अरविंद जी? आपके पास आपने जिस प्रकार से हमें गाइड किया था कि गणपति जी की मूर्ति इस प्रकार की होनी चाहिए, विधि ये होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त कौन सा है, ओवर टू यू।
1: बिल्कुल, देखिए जो गणपति जी की मूर्ति है उस मूर्ति के विषय में बताया था मैंने कि लेफ्ट की तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है गणपति जी बैठे हुए पोजीशन पे होनी चाहिए। और जो विशिष्ट बात गणपति की होती, कहते हैं कि रक्तम लंबोदरम शूर्पा कर्णकम रक्तवास्तम, जिनका जो है कलर सिंदूरी कलर है और जिनके आसन भी जो है सिंदूरी है, यानी लाल कलर का जिनका आसन होता है, तो ऐसी विशेष क्या विशेषता देते हैं? कहते हैं कि इस तरह के गणपति जो है पारिवारिक सुख समृद्धि देते हैं। और जिनकी सूंड दाई तरफ होती है उनको तीक्ष्ण गणित, जिनकी सूंड जो है दाई तरफ होती है वो तीक्ष्ण गणेश कहे जाते हैं, अर्थात उनकी आराधना उनकी पूजा में विशेष करके जो है व्यक्ति को सावधानी बरतनी पड़ती है, विशेष व्यक्ति को ध्यान देना पड़ता है। लेकिन लेफ्ट की तरफ जब सूंड होती है तो वो बड़े ही शांति प्रदायक होते हैं और पारिवारिक सुख समृद्धि में विशेष आराम के साथ जो है पूजा की जा सकती है। तो इस प्रकार के गणेश आप लोग भी अपने घर में लाएं और इस प्रकार के गणेश को जो करते हैं कहते हैं विघ्नहर्ता, और उन्हीं के विषय में कहा गया है कि एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। जो एक दंत वाले हैं, वक्रतुंड हैं, ऐसे जो सदैव अविरल कृपा करने वाले हैं, उन गणपति की यदि आप आराधना करते हैं तो जीवन में आपके आने वाले हरेक प्रकार के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो विपदा हैं, वो हर तरह से आपकी जो है शमन होंगी, नष्ट होंगी।
0: जी अरविंद जी, अब ये बताइए कि मुख दर्शन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और पूजा में आपने क्या क्या सामान रखा है, सामग्री के बारे में?
1: देखिए सामग्री के बारे में बता दें कि ये गणपति जी के लिए जो है विविध प्रकार का स्नान है, इसमें दूध से, दही से, घृत से, शहद से, पंचामृत से, गंधोदक आदि स्नान है। फिर इसके बाद गणपति भगवान का जो है अलंकार श्रृंगार होगा, वस्त्रादि होगा, उसके बाद इनका जो है ये अलंकार से जो उनके लिए जो है रोली है, मोली है, सिंदूर है और यज्ञोपवीत है, अक्षत है, ये आपके बिलपत्र हैं, दूर्वा है, आदि आदि चीजों से उनका श्रृंगार होगा, उनका पूजन होगा।
0: तो मुख दर्शन कैसे करेंगे?
1: मुख दर्शन ये कि बस जैसे अपने इस कपड़े को हटाएंगे वैसी जो है मुख दर्शन।
0: आगे बढ़ते हैं, आप शुरू करते हैं, बताते जाइए क्या क्या करना है।
1: देखिए सबसे पहले तो उनको जो है खोलना होगा, तो आप उनको
0: गणपति बापा
2: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
2: मोरया,
0: गणपति बापा
2: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
2: मोरया,
0: गणपति बापा
2: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
2: मोरया,
0: गणपति बापा
2: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
2: मोरया,
0: गणपति बापा
2: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
2: मोरया।
1: अब देखिए इनको इस दर्शन को कहते हैं अवर्ण दर्शन, अर्थात भगवान का हम दर्शन जो है कर रहे हैं। और इसी में होता है जब विशिष्ट गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उसमें चक्षोर मिलन होता है, पहले उनकी नेत्रों को जो है खोला जाता है, तो एक तरह से उनका प्राकट्य हुआ है और प्राकट्य में उनको जो है अब ध्यान करते हैं और प्राकट्य में उनके लिए जो है आवाहन करते हैं।

इससे जो है भगवान गणेश का प्राकट्य हो गया, संकट ध्वनि हमने की, और संकट ध्वनि के बाद अब सबसे पहले जो है यह संकल्प किया जाता है कि हम गणपति की जो आराधना करते हैं किस लिए और उस आराधना से हमें क्या विशेष लाभ मिलता है। ठीक है, तो संकल्प के लिए हम कामना करेंगे और उस कामना के साथ साथ जो है जो त्रिदिवसीय या जितने दिन के लिए आप भगवान गजानन गणेश को यहाँ विराजमान करते हैं उसके लिए हम संकल्प लेते हैं।

0: हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणी गृहीत्वा, ऐसे हस्ते गंधाक्षत जो है पुष्प ले लिया और अक्षत ले लिया। अब जो है संकल्प करते हैं कि हमने भगवान गजानन गणेश की जो स्थापना की है वह स्थापना में हम क्या मांग, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें किस चीज की जो है विशेष कामना है। तो इसके लिए जो है कामना करते हैं कि विष्णोर विष्णोर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोदये प्रार्थये श्री श्वेतवाराह कल्पे जुंध आर्य पुण्यक्षेत्रे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे पक्षे शुक्ले पक्षे शुभ पुण्यतिथौ अद्य चतुर्थ्यां शुभ महापुण्यतिथौ शुभवासरे नुतायां सोमवासरे नुतायां एतत् काले मध्याह्न काले वेलायां समये। अब यहाँ पर जो है तो अपना व्यक्ति उद्देश्य बोलता है, जिस तरह जो भी उसकी कामना होती जिस तरह का उसको उद्देश्य होता है, तो जैसे इस तरह से जो है व्यक्ति अपने लिए कामना करता है। हम जो है चैनल के लिए है, तो चैनल के लिए हमने जो है कामना की है विशेष करके, विशेषतः शुभ समाचार। शुभ समाचार मतलब अपना जो गुड न्यूज जीएनटी है उसका जो हिंदी अर्थ हुआ वो शुभ समाचार संस्थानी, ये एक संस्थान के रूप में अवस्थित सर्वेशाम प्रबंधका नाम तथा चा समाचार भाषा भाषिका। तो इसमें मैंने यह उल्लेख किया कि अवस्थित सर्वेशाम प्रबंधका नाम, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं जितने भी पद में हैं, तथा चा समाचार भाषक भाषिका जो हमारे एंकर हैं पुरुष में, जो हमारी एंकर हैं महिलाओं में, नाम चा सर्वेशाम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप निवारण पूर्वकम, उनका हर तरह से किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। और अस्मिन शुभ समाचार संस्थान चतुर्दिक वृद्धि लाभार्थम अस्मिन समये कलश नवग्रह षोडश मात्रिका सप्तगत मात्रिका आवाहनम पूजनम तत्रादो निर्विघ्नता पूर्वकम सिद्ध्यार्थम गणेशाम्बिका पूजनम एक तंत्रेण संक्षिप्त रूपेण करिष्यामि। तो इस तरह से हमने ये जो संकल्प लिया, अब संकल्प के बाद जो है पूजन शुरू करेंगे। तो ऐसे संकल्प जो है उनके चरणों में छोड़ दिया, अब इसके बाद जो है हम जो है पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है शांति पाठ करते हैं। हरे ओम मा द्योः शांतिरंतरिक्ष गो शांति हे पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति हे वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे सर्वगो शांति हे शांतिरेव शांति हे सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। अरे ओम मा। इसके बाद अपन जो है गणेश जी का ध्यान, अब जो है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले संक्षिप्त सभी का जो है आवाहन हो जाएगा। तो इसमें आवाहन सभी के लिए जैसे कि यहाँ पे हम संक्षिप्त आवाहन करेंगे कलश का, नवग्रह का, षोडश मात्रिका का, सप्तगृत मात्रिका का। तो एक तंत्रेण सभी का आवाहन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कलश का। हरे ओम मा तत्वा जामि ब्रह्मण बंदमानस्तदशास्ते जजमानो हर्वी अहेडमानो वरुण बोध्युरु समान आयु। हरे ओम मा वरुणस देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप लिए आप लोग लिए, मैं यहाँ पे लंबे मंत्र नहीं बोल रहा, मंत्र जो है छोटे ही बोल रहा हूँ। आप जो है इसी प्रकार से क्रम, मतलब इस लाइव को जो देख रहे हैं या इसको जो भी आप लोग जो है सुन रहे हैं, अपने घर में इसी प्रकार आप पूजन कर सकते हैं।
1: और पंडित जी, किसी के पास अगर सामग्री में से कुछ नहीं है सामान, तो
0: नहीं है कोई नहीं, यदि सामग्री मान लीजिए नहीं है तो बस अपने अंतःकरण मन भाव से कहते हैं कि मनसा परिकल्पयामि पूजयामि। मन से उस भाव को आप जो है व्यक्त कर लें कि हे प्रभु आपके मेरे पास इस चीज की कमी है, लेकिन मैं भाव से आपको अर्पित करना चाहता हूँ निश्चित रूप से।
1: और जिन लोगों की छुट्टी नहीं है, जैसे हम लोग ऑफिस आए हैं, तो वो लोग कैसे भगवान का नाम,
0: जिनकी छुट्टी नहीं है जहाँ जिस अपने कार्य में है वहीं पे जो है गणपति का वो ध्यान करें, गणपति उसी में उनको जो है आशीष देंगे। तो अब अपन जो है षोडश मात्रिका का, सप्तगृह मात्रिका का, नवग्रह का ध्यान करेंगे।

विघ्नेश्वराय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, गृह देवताभ्यो नमः, सप्तघत मातृकाभ्यो नमः। अब जो है ग्रहों का करेंगे और उसके साथ साथ सब जो है आपकी षोडश मातृका करेंगे। षोडश मातृका कौन है? ये 16 देवियां हैं। इन्हीं 16 देवियों में से कोई ना कोई हमारी कुल देवी होती है जिसका हम पूजन करते हैं। अरे ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया लोक सेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशा हेदिकम पूजा वृद्धे पूजे षोडशा षोडश मात्र के भ्यो नमः। ऐसे हमने उन 16 देवियों का आवाहन किया। अब इसके बाद जो है ग्रहों का आवाहन करेंगे।

0: नवकूलाग्रह ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, ऐसे हमने जो है नवग्रहों का आवाहन किया और नवग्रह को यहाँ विराजमान किया।
1: तो पंडित जी ये बताइए, किसी को इतना ज्ञान नहीं है कि ये सब चीजें, ये सब प्रक्रिया अगर करनी है, उनके लिए आसान सा प्रक्रिया क्या रहेगी?
0: आसान सा प्रक्रिया यही है कि वो अपने जो है जैसे मन में भाव लाएं और भाव ला करके भगवान का जो है किसी भी मतलब भाव से अपने भज करके, और भगवान कहते हैं ना कि भाव भावो ही विद्यते देवो न पछाणे न मृणमय, भगवान व्यक्ति की भावना पे वास करते हैं, श्रद्धा पे निष्ठा पे वास करते हैं। जिसको नहीं ज्ञान है तो उसकी कोई बात नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, हमने सबका इस तरह से आवाहन कर लिया और आवाहन करने के बाद अब जो है प्राण प्रतिष्ठा का अब जो है करते हैं। तो अब हम जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जैसे कि अभी हमारी गणपति बप्पा की मूर्ति जो है पार्थिव की है, और पार्थिव मूर्ति जो है होने से इसमें कुछ चीजें हैं जो हम चढ़ा नहीं सकते, जैसे जल है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, तो ये चीजें हम इनमें चढ़ाएंगे तो ये मिट्टी है। ठीक है, इसलिए ये चीजें इसमें न चढ़ा करके हम ने ये पात्र रखा है, इस पात्र में वो सारी चीजें चढ़ाते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, किनका? बप्पा का। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हाथ स्पर्श करें नीचे। हरे ओम मा मानो जियो त्रिजुखाता मा जस्य बृहस्पतिर् जज्ञामि मन्तानो त्वरिष्ठं जज्ञगोंसामि मन्दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामोम प्रातिष्ठा। हरे ओम मा अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा रक्षन् च अस्यै देवात्मा माहि मामहेति न कश्चन। हरे ओम मा विघ्नेश्वराय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामी प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। छोड़ दीजिए। तो ये हमने ऐसे कर लिया, और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं थोड़ा नीचे बैठा हूँ। जब आप अपने घर में इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो अपना एक हाथ हृदय में लगाएं और एक हाथ उनके हृदय में लगाएंगे, यह मंत्र बोल लें। और मंत्र नहीं आता है तो आप भाव से भगवान गजानन से कामना करें कि हे गणपति, मैं आपको अपने घर में 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आके जो है विराजमान हो। तो ये हमने जो है उनको मंत्रों के द्वारा जीव तत्व प्राण तत्व मतलब प्राण प्रतिष्ठा की है। अब आगे का पूजन जो है आपको बताते हैं।
1: और प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी कोई भी कर सकता है?
0: हाँ, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की
1: कोई नियम है उसके?
0: वही यही मैंने जो बताया कि मान लीजिए मंत्र नहीं आता है तो आप आंख बंद करके प्रार्थना करें कि आप यहाँ पे आए विराजे और मैं आपको प्रतिष्ठित कर रहा हूँ
1: संकल्प के साथ।
0: हाँ, एक मन की संकल्प के साथ, मन की भावना के साथ, मन से। क्योंकि किसी भी मूर्ति में जब तक आप प्राण नहीं डालेंगे, भाई बाजार में जब तक मूर्ति होती है तो वह पत्थर है, वह मिट्टी है, लेकिन जैसे अब वह मूर्ति मंदिर में आती है तो भगवान की रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इसी तरह कलश का करेंगे। हरे ओम मा मानो जियो त्रिजुगता मा जिसे मंतानो त्वरिष्ठं जज्ञगोंसामि मन्दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामोम प्रातिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। हरि ओम मा वरुणस देवताभ्यो नमः, कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ओ वरुण आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। इस तरह से कलश का हो गया। अब जो है भगवती का प्राण प्रतिष्ठा रह गया। तो भगवती यानी गौरी, ये मैं ध्यान दिला दूं आप सभी को कि ये मत सोचें कि गौरी नहीं है, हमने गौरी ये पुंज का बना रखा है और ये पुंज यहाँ पे हमने रख रखी है। तो कभी भी गणेश जी का पूजन बगैर माँ गौरी के मतलब जो है अलग नहीं होता, सदैव माँ गौरी के साथ होता है। 365 दिन में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है कि गणेश जी का पूजन लक्ष्मी जी के साथ जो है दिवाली को होता है। तो ये माँ गौरी हैं, तो गौरी जो है उनके दाहिने होती हैं। और जैसा मैंने पूजा में रखा है आपको अपने घर में इसी प्रकार रखना है। आपके ये जैसा मैंने कलश रखा है, जैसे दीप रखा है, जिस तरह से शंख रखा है, जिस तरह से घंटी रखी है, और जैसे मैंने सामान लगाया वैसी आपको सामान जो है लगाना है। अब इसके बाद जो है आगे जो है पूजन करते हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा माँ गौरी का भी कर देते हैं। अरे ओम माँ मनो ज्योतिजुगता माँ जिसमंतानो त्वरिष्ठं जज्ञगोंसामिमन्दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामोम प्रातिष्ठा। ओ माँ गौरी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब इस तरह से हमने सभी को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। अब यहाँ से जो है पूजन करते हैं। तो ये देखिए जल है, और इस जल को आपको कैसे करना है, आपको यह जल जो है सबसे पहले आप जो है माता गौरी को और कलश को, फिर बाद में गजानन गणपति को, इसलिए कि गणपति आपके विशेष हैं, प्रधान हैं। तो आज गणपति प्रधान है इसलिए गणपति को बाद में होगा। हरे ओम। और इससे पहले एक चीज और बता दूं, दीप का पूजन हम कर चुके हैं, तो दीप यहाँ पे जैसे आपने प्रज्वलित कर रखा तो दीप के लिए भी आप एक मंत्र जो है बोल सकते हैं। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जो हो सूर्यो अजायता सूत्रा प्राण मुखाग्नि राजायता। पूजन पहले दीप का हो चुका है, प्रज्वलित कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर हमने ये बता दिया कि आप ऐसे दीप का कर सकते हैं। दीप क्या है? दीप हमारे कर्म का साक्षी है। हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है? दीप है। जैसे शादी में जब हम अग्नि के फेरे लेते हैं तो ये कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के, तो अग्नि क्या है? प्रकाश है। उसी प्रकार दीप क्या है? प्रकाश है, हमारे कर्म का साक्षी है।
1: तो पंडित जी की अखंड ज्योति जलाई है आपने?
0: जी जी जी, ये ज्योति
1: जितने दिन हम गणपति बप्पा को स्थापित किया है उतने दिन ज्योति
0: रहेगी। अब इसके बाद जो है आप गणपति का पूजन करेंगे तो सबसे पहले हरि ओम माँ, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इसको बार बार फिर मैं बता दूं कि पहले आप जो है गणपति का और पहले माँ गौरी का कलश का और फिर बाद में गणपति का। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्य मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानी अंते समर्पयामि। पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्य मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानी अंते समर्पयामि। पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्य मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानी समर्पयामि। इसके बाद आप जो है आपने ये क्या किया? पाद्य अर्घ्य पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्य मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानीयम समर्पयामि, यह आपने गणपति का स्नान कराया। अब इसके बाद देखिए इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, ये आपके पास जो है जब तैयार हो जाएगा तो ये दूध है, ये दही है, ये घृत है, ये शहद है, ये पंचामृत है, ये शर्करा है और ये गंधोदक स्नान के लिए है। इसको आप क्रम से जो है स्नान कराएं, और मान लीजिए आप टोटल नहीं ये क्रम से कर पा रहे तो सिर्फ पंचामृत बना लें, उससे भी आपका हो जाए।
2: पंडित जी जैसे हम भोग लगाते हैं, बप्पा को भोग लगता है, वैसे तो बप्पा को लाडू और मोदक बेहद पसंद है, लेकिन जब हम घर में विराजमान करते हैं गणपति बप्पा लेकर आते हैं तो तीनों टाइम भोग लगता है, तो वो भोग किस तरह का लगाएं?
0: वो अभी भोग लगाऊंगा, उस क्रम में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। अभी इसका जो उस क्रम पे अभी पहुँचते
2: जी
0: जी, तो सबसे पहले देखिए दूध है, आपको दूध ऐसे करना है। हरे ओम माँ पाया हा पृथ्वी अम पाया ओख अधिक उपायो दिव्य अंतरिक्षे पायो धा हा पायस्वती प्रदिशा संत मयम्मा पय स्नानते समर्पयामी। अब आपने दूध चढ़ा दिया, क्रमशः ऐसे आप चढ़ाते जाएंगे दूध जो है ऐसे करके तीसरे नंबर पे आपको जो गणपति को चढ़ाना। फिर इसके बाद तुरंत आपने जल, हरे ओम माँ शुद्धोदक स्नानते समर्पयामी शुद्धोदक स्नानते समर्पयामी। इसके बाद आपने जो है दधि का स्नान कराना। हरे ओम माँ दधिक रावणो अकारिखम जिष्णु रस्य बाजिना सुरभिनो मुख दधि स्नानते समर्पयामि। अब दधि के स्नान के बाद पुनः फिर आपको जो है जल से स्नान कराना है। हरे ओम माँ शुद्ध स्नानते समर्पयामि। इसके बाद फिर आपको दधि के बाद किसका? घृत का। हरे ओम माँ घृतम मीमिक्षे नवनी समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थम प्रीतम घृत स्नानते समर्पयामि। इस तरह से आपने जो है घृत का स्नान करा देना है। व्रत के बाद जैसे आप स्नान कराते हैं फिर शुद्ध जल का स्नान करना। हरे ओम माँ शुद्ध वाला शुद्ध, हरे ओम शुद्धोदक स्नानते समर्पयामि। इसके बाद आपको कराना है किसका? शहद का स्नान। ये आपकी शहद है। हरे ओम माँ ओम मधु पाता रितायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णाः संतो खरी मधुनक्ता मुतो सोख मत पार्थिव गो रजः मधु देवरस्तुनः। और मधु के बिल्कुल पतली धारा से ऐसे स्नान कराएं। हरे ओम माँ मधु स्नानते समर्पयामि मधु स्नानते समर्पयामि। पुनः आप जो है शुद्ध जल का स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नानते समर्पयामि। इसके बाद आप शर्करा स्नान कराएं। हरे ओम माँ शर्करा, हरि ओम माँ अपाग्गो सूर्ये संतग्गो समाहितम माँ शर्करा स्नानते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानते समर्पयामि। अब आपने शुद्ध जल से स्नान करा दिया, अब बारी आती है कि आप पंचामृत से स्नान कराएं। हरे ओम माँ पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवत्सरिता पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृत स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा शुद्धोदक स्नानम्। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है गणपति भगवान का अभिषेक करते हैं, किससे करते हैं? दूध से करते हैं। तो गणपति भगवान का यहाँ अभिषेक आप कर सकते हैं, और किस चीज से? गणपत्य अथर्वशी से। क्या है? हरे ओम मा नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। इस तरह से गणेश जो है गणपति अथर्वशी से सूक्त है, और उसके मंत्रों से आप जो है अभिषेक कर सकते हैं।
2: एक और जल का, ये जो जल भरा हुआ है इसके अंदर जो आपने रखा है, क्या ये अक्षत है या?
0: इसी का नंबर। तो अब जैसे हमने पंचामृत स्नान कराया, ये गंधोदक स्नान है, ये अष्ट गंधक यानी आठ प्रकार का जो चंदन है अष्टोक, ये उसका जो है गणपति जी का स्नान है। तो अब ये जो है स्नान कराएंगे, हरे ओम माँ गंधोदक स्नानान्ते समर्पयामि श्रीखंडम चंदनम दिव्यम हरि ओम माँ श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रहिताम। अब हमने गंधोदक स्नान करा दिया। गंधोदक स्नान के बाद जो है अब आप इनका शुद्ध जल से स्नान करा के अब हम इनको जो है वस्त्र पहनाएंगे।
1: तो पंडित जी एक और चीज बताइए, आपने जितनी भी सामग्री से इनका अभिषेक किया है या स्नान के उसके बाद आपने जल जरूर इस्तेमाल किया है, ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए है कि देखिए कोई भी जब हम स्नान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम शहद है शरीर गीला हो गया, घृत है शरीर में वो चपकता है, तो उसकी जो है सफाई के लिए
2: पानी से
0: करना जरूर है। अब जो है गणपति को ये हम वस्त्र पहनाएंगे और देखिए वस्त्र के विषय में कहते हैं क्या, रक्तम लंबोदरम सूरपा। भगवान गणेश का रक्त कैसा है? बिल्कुल इस तरह है, रक्तम लंबोदरम सूरपा कर्णकम रक्तवाससम। तो हम ये जो है गणपति जो की जो है हाँ पहना, तो ये देखिए आपको जो है बता दें
1: अच्छा पंडित जी, वस्त्र पहनाने का भी अंग, वस्त्र पहना रहे हैं इसका भी अर्थ जरा दर्शकों को बता दीजिए एक बार। इसका रंग यही होना चाहिए, सिंदूरी,
0: हाँ सिंदूरी कलर होना चाहिए। गणपति जी ने देखिए वस्त्र पहन लिए। अब ये वस्त्र जो पहने हैं तो आप नॉर्मल जानते हैं कि व्यक्ति का जब स्नान वगैरह आदि होता है तो वस्त्र पहनता है, ये वही वस्त्र गणपति ने पहने हैं। बस कलर का ध्यान देंगे, कलर जो है तो इसी प्रकार का होना चाहिए या सिंदूरी कलर भी हो सकता है, ये विशेष भगवान गणपति को प्रिय है। अब वस्त्र के बाद जो है हम जो है हाथ थोड़ा सा आचमन करेंगे, हस्तो प्रक्षालय, क्योंकि वस्त्र पहनाने के बाद हाथ जो है अशुद्धि में आ जाए, तो ऐसे हम जो है आचमन करेंगे। इसके बाद गणपति की जो जी को जो है यज्ञोपवीत पहनाएंगे, ठीक। तो वस्त्र का मंत्र है हरि ओम मा सुजात, हरि हरि ओम मा वस्त्रांते समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सा सर्म परोतव सा वसो अग्नि विश्व संप्रभ, हरि ओम मा वस्त्रांते समर्पयामि। मंत्र में यहाँ लंबे नहीं बोल रहा क्योंकि समय का अभाव है, तो इसलिए आप जो है इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आता है तो आप बोलिए, और शायद किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे एस्ट्रो तक के माध्यम से वह जो है व्यक्ति पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीएनटी के माध्यम से पूछ सकता है।
1: देखिए मंत्र अगर पंडित जी किसी को कंठस्थ नहीं है तो सिंपल सा कोई मंत्र भी बताइए,
2: छोटा सा, ताकि छोटा सा बिल्कुल।
0: देखिए मंत्र भी आपको मंत्र नहीं आता है कोई बड़ा, तो आप बड़े आराम से ओम गं गणपतये नमः इसको बोल करके आप सुना सकते हैं। अब इस तरह से आप यज्ञोपवीत पहनाएंगे, ये पीला है बिल्कुल, तो इसलिए इसमें मैंने हल्दी आदि नहीं लगाई है, नहीं व्हाइट यदि आपके पास यज्ञोपवीत है तो उसमें हल्दी आदि लगा के ही यज्ञोपवीत पहना। हरि ओम मा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरस्ता आयुष्यमुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतान्ते उपनहियामि। ऐसे हमने गणपति भगवान को यज्ञोपवीत पहनाया। इसके बाद फिर से हम जो है आचमन किया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने अभी वस्त्र पहनाया था, वस्त्र के बाद फिर उपवस्त्र। एक वस्त्र होता है कि जो आप नीचे पहनते हैं, एक वस्त्र होता है जो ऊपर पहनते हैं, तो एक वस्त्र हम जो है गणपति को और पहना रहे हैं।

0: एक वस्त्र हम उनके पास में जो है ऐसे रख देते हैं, उनने वस्त्र जो है ऑलरेडी पहन रखा है, तो एक वस्त्र हम ऐसे ही जो है नीचे रख देते हैं,
1: चरणों में रख देते हैं,
0: उनके चरणों में रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है गणपति यहाँ पे साथ साथ देखिए वस्त्र कलश में है ही, तो कलश भगवान को भी वस्त्र हो गया है, और उसके वस्त्र के बाद जो है अब आपका आता है चंदन। तो शुद्ध तक यज्ञोपित वस्त्र के बाद जो आचमन करा दिया, अब आपका आता है चंदन। तो ये चंदन है, चंदन हमने जो है लगाया भगवती माँ गौरी को, माँ गौरी को ये मोली लपेट रखी है, इसी को हमने जो है वस्त्र उनका कर रखा है, तो माँ गौरी का ये वस्त्र हो गया। अब यहाँ से जो है चंदन होगा, तो फिर क्रम यही शुरू हो जाएगा कि पहले माँ गौरी, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहताम। अब जो है भगवान गजानन को चंदन लगाएंगे। हरे ओम माँ श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहताम चंदनांते समर्पयामि चंदनांते समर्पयामि। ये देख रहे हैं जो सिंदूरी कलर है ये उन्हें विशेष की है। चंदन के बाद हम जो है उनको अक्षत पहले शुरू करेंगे, श्री हरि ओम माँ अक्षतांते समर्पयामि अक्षतांते समर्पयामि, ऐसे अक्षत लगाएंगे।
1: पंडित जी चंदन अक्षत के साथ साथ एक सवाल आपसे जानना चाहती थी, बहुत से लोग हैं जो गणपति को तुलसी चढ़ा देते हैं, लेकिन गणपति जी को तुलसी नहीं उनको दूबा चढ़ाई जाती है, हाँ। तो इसके पीछे की वजह ही बताइए।
0: इसके पीछे की देखिए वजह यह है कि गणपति, यह एक जो है कहानी है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। गणपति भगवान से तुलसी जी ने विवाह का जो है आग्रह किया था
1: जी।
0: और भगवान गणपति ने अपने आप को अखंड ब्रह्मचर्य रहने के लिए जो है कहा था, तो इस बात पे विवाद हुआ, तो उनने फिर जो है गणपति ने तुलसी जी को श्राप दिया था कि तुम आप जो है आप मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ोगे। यह एक उनका आपसी विवाद था, कहानी थोड़ी बड़ी है, टाइम कम होने के कारण मैंने
1: बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया
0: है। इसके बाद जो है अक्षत
2: दुर्वा का जरा पंडित जी एक बार महत्व बता दीजिए,
0: पहले बता। अक्षत के बाद जब आप जो है उनको अक्षत चढ़ा देंगे, तो इसके बाद जो है पुष्प माला चढ़ाएंगे। आप यह देखिए हमने जो है इसके बाद देखिए जो गणपति भगवान को सिंपल माला भी पहनाएंगे, और ये जिस भी के विषय में आप पूछ रही इसके विषय में भी आपको जानकारी। तो पहले जो है
2: पंडित जी ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ दुर्वा माला। अच्छा। मैंने पहले दुर्वा चढ़ाते हुए मैंने देखा है, दुर्वा माला मैंने पहली बार देखा है।
0: तो ये जो है आपने जो है यहाँ पे हमने माँ गौरी को माला पहना दिया, मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीन वही प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रीतम पुष्पमाल्यंचा समर्पयामि, ऐसे हमने माँ गौरी को पहना दिया। इधर जो है गजानन गणपति को जो है माला पहना,
1: पंडित जी माला भी गेंदे के फूल की लाए हैं, बिल्कुल जो गणपति बप्पा को पसंद है जो रंग, उसी रंग की माला भी आई है, क्यों पंडित जी?
0: जी जी जी।
2: एक और चीज दर्शकों को भी साथ में गीतिका बताते चले कि देखिए ये तो आपको हम संक्षिप्त विधि बता रहे हैं कि गणपति की स्थापना आपने कैसे करनी है, आपको सामग्री में किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या सामान आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल मंत्र के जरिए आपका भाव अगर सही है तो आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं।
1: मंत्र होगा ओम गंग गणपताये नमः, आप इस मंत्र के जप के साथ अपने बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा विधि विधान पूजा नहीं आती है तो ये सिंपल सा एक मंत्र है जिससे बप्पा प्रसन्न हो जाएंगे।
0: ये देखिए हमने माला है, ये माला गणपति जी को आप पहनाएंगे और इसका बाकायदे मंत्र बोलेंगे। हरे ओम मा मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहताम पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आपका होगा दुर्वा, तो गणपति भगवान को जो है दुर्वा विशेष की है, लेकिन उसके पहले जो है हम दुर्वा जो चढ़ाएंगे उससे पहले दुर्वा यहाँ माँ गौरी को चढ़ाएंगे। हरे ओम माँ कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दुर्भे व्रतानुसहस्रेण सते न च दुर्वांकुरान श्रुतान मंगल प्रदान आनीत देवात ग्रहण गणनायका दुर्वांकुरान्ते समर्पयामि। ये हमने गणपति भगवान को दुर्गा माला पहना।
1: पंडित जी हम जब बप्पा को लेने गए थे हमने पंडाल में भी शगुफ्ता पूजा की, अर्चना की, बप्पा को भोग चढ़ाया और उनको दुर्वा वहाँ भी चढ़ाई थी।
0: तो दुर्वा का अभी शगुफ्ता आप पूछ रही थी, तो दुर्वा का हम आपको महत्व बताते हैं। दुर्वा क्या है कि देखिए दुर्वा भगवान गजानन गणेश को क्यों विशेष प्रिय है, क्योंकि जो भगवान गजानन गणेश ने जो है राक्षस का वध किया और उस राक्षस के वध से उनके पेट में अग्नि की ज्वाला बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई, तो उसको शीतल करने के लिए, हालांकि भगवान शिव ने किसी को कुछ, भगवान शिव ने चंद्रमा दिया, अन्य लोगों ने बहुत कुछ जो है उनको शीतल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन जब ऋषियों ने इस दुर्वा को रगड़ करके उनके मस्तक पे लगाया और उसी दुर्वा को उनने जो है पान भी किया, तब जाकर के उनके शरीर में अतिशय शीतलता और ठंडक पहुंची, क्योंकि जिस राक्षस को मार रहे थे वह राक्षस अग्नि का विशेष जो है ज्वालामय था, तो दुर्वा से उन्हें जब विशेष ठंडक मिली तो वह दुर्वा उनको अतिशय प्रिय हुई और उनने फिर दुर्वा को वरदान दिया कि जब तक आप मेरी पूजा में अर्पित नहीं होंगी तब तक मेरी पूजा अधूरी मानी, तो इसलिए दुर्वा चढ़ाते, एक कारण ये। दूसरा कारण सगुप्ता ये है कि ये जैसे दुर्वा में एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी खूटी है, तो मतलब होता है कांडात कांडत प्ररोहंती परुखा परुकस्परी एवा नो दुर्वे प्रतानु शास्त्री न सते नचा, एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी। हे गजानन, हे ये जो है भगवान विघ्नेश्वर, उसी प्रकार मेरे कुल में वृद्धि होती रहे कि एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, सदैव मेरे कुल में जो है वंश वृद्धि होती रहे।
2: मतलब और जिस प्रकार जीएनटी की भी तरक्की होती रहे और जीएनटी के सभी मेंबर्स की भी तरक्की होती रहे।
0: नहीं, जीएनटी का ही मैंने संकल्प बोला है, आपने ध्यान नहीं दिया?
2: नहीं, मैंने दिया, मैं वही अपने आप को भी ऐड कर रहा
0: हूं। भाषक माने जो एंकर, भाषिका माने जो आप लोग हैं एंकरिंग करते हैं, उनका विशेष उत्तर उत्तर उन्नति हो।
1: पंडित जी, आपने जो जीएनटी के दर्शक हैं उनका भी मतलब
0: सबका बोला है, संकल्प में सभी का बोला है। तो हाँ, तो जैसी जिस तरह से दुर्वा ये हरी भरी रहती है, हे गजानन गणेश विघ्नेश्वर, उसी प्रकार मेरा जीवन सदैव हरा भरा बना। दुर्वा का ये विशेष महत्व होता है और दुर्वा गणपति की पूजन में विशेष है। अब ये बात आती है कि
2: क्या लेके आए हैं, बेलपत्र।
0: हाँ, बेलपत्र। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि दुर्वा को चढ़ाते कैसे
2: जी।
0: दुर्वा को चढ़ाते कैसे, देखिए दुर्वा को जब चढ़ाते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, ठीक, लेकिन जिस वक्त दुर्वा को रखेंगे उस वक्त दुर्वा को गजानन गणेश जी के इधर रखते हैं, ठीक है। इधर रखने का अभिप्राय क्या होता है कि इधर से वो खाते हैं, ठीक, सब शीतल कर देते हैं। तो भगवान गजानन गणेश को जो है दुर्वा चढ़ती है, तो इस तरह से जो है दुर्वा गजानन गणेश को आप चढ़ाएं और दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, उससे जो है विशेष लाभ होगा
2: जी।
0: अब ये जो मैंने दुर्वा की माला बनाई है, ये गजानन गणेश जी को दुर्वा की माला पहना है।
2: पंडित जी, आपने हमारे गणपति में चार चांद और
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर। पंडित जी, आपने शुरुआत में ये नहीं बताया कि हमारे पापा हैं कैसे।
0: अरे बहुत सुंदर हैं, सुंदर के लिए उनकी कोई उपमा ही नहीं।
1: जैसा आपने बताया था, हम वैसे ही पापा लेकर आए हैं ना।
0: बहुत ही सुंदर आपने आई है, बिल्कुल सुंदर की कोई उपमा नहीं है। तो अब अपन ने जो है दुर्वा चढ़ा दी है। दुर्वा की बात जो है, इनका जो सर्वोप्रिय चंदन है वो सिंदूर है, और सगुप्ता जी बता दें कि ये सिंदूर सिर्फ दो ही भगवान को चढ़ता है, एक गणपति बप्पा को, एक हनुमान जी को, और शंकर जी को चढ़ता है, लेकिन कब चढ़ेगा, जब माँ गौरी के साथ में पूजन, कि माँ गौरी को सिंदूर चढ़ता है तो शंकर जी को चढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ अलग शंकर जी का यदि पूजन हो रहा है तो वहाँ सिंदूर उनको भी नहीं चढ़ता। इसके इनको क्यों चढ़ता है।

0: इस तरह से बप्पा को सिंदूर चढ़ा दिया। तो सिंदूर उनको अर्पित किया। सिंदूर के बाद जो है आपने नाना परिमल द्रव्य, ये हमने जो है नाना परिमल द्रव्य जिसमें तीन चार प्रकार का चंदन होता है उसको मिला रखा है और मिला करके अर्पित करेंगे। वही क्रम है। हरि ओम मा अहिरिव भोगै हि प्रजेति बाहुञ्जाया हि तिम परिबाधमानः हस्तनुभ्यसन भाजनान पुमान पुमागुसं परिपातु विश्वतः नाना परिमल दिव्यान्ते समर्पयामि। अब हमने ये सब चीज जो है चढ़ा दी है, नाना परिमल द्रव्य चढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो है आप बप्पा को जो यहाँ पे अब नंबर आता है कि इनका जो पूजन है अंग पूजन होता है। अंग पूजन कहते हैं कि जिसमें आपके जो है पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय मन के सहित हम भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हैं, तब जाकर के हमारी जो है साधना में किसी प्रकार का सफलता मिल पाती। क्योंकि सबसे चंचल क्या है, हमारा मन है। हमारी और मन कैसे होता है, जब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ज्यादा चंचल होती है तब मन की चंचलता ज्यादा बढ़ जाती है। एक ये, दूसरा उनके जिस गुप्तांग में हमारा हाथ स्पर्श नहीं हो पाता है उन अंगों का यहाँ पे पूजन करती है।
1: पंडित जी अर्पित के साथ हमने समर्पित भी कर दिया अपने भगवान के प्रति, हम इसी संकल्प के साथ बैठे हैं यहाँ पर।
0: जी जी जी। फिर इसके बाद जो है आप जो है धूप जो है प्रज्वलित करके जो है चढ़ाएं, तो धूप अभी जो है बप्पा को लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग 21 11 31 51 जो है दुर्गा की जो आपकी गांठें होती हैं ऐसे बना करके वो भी उनका अंगों से पूजन करते हैं।
2: एक और चीज आपसे अरविंद जी जानना चाहेंगे कि दुर्गा कहते हैं कि गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में बहुत जरूरी है। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ जितनी भी पूजा होती है उसमें हम तुलसी को रखते हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा में हम नहीं रखते।
0: यही अभी क्वेश्चन इन्हें किया था। दरअसल तुलसी से क्या था श्वेता जी, कि तुलसी का उनका जो है विवाद है, और विवाद ये है कि माँ तुलसी ने उनसे निवेदन किया था कि मैं आपकी अर्धांगिनी के रूप में आपके जीवन में आना चाहती हूँ। गजानन गणेश बोले कि नहीं, मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य जो है रहूंगा। इस उसमें दोनों के बीच जो विवाद हुआ, तो फिर गणेश जी ने उनको एक तरह से श्राप दिया कि आप मेरे पूजन में कभी गिरा ही नहीं होंगे। ठीक, तो ये मेन कारण है, इसलिए तुलसी उनको नहीं चढ़ती
2: और उनके प्रसाद में भी नहीं चढ़ती।
0: उनके प्रसाद में भी दुर्वा डलता है और उनको दुर्वा विशेष चढ़ती है, क्योंकि दुर्वा उनकी परम प्रिय जो है वस्तु है। और अब आप जो है देखिए धूप है, ये धूप भी क्यों अपन लगाते हैं, इस धूप का ये जो धुआं है जहाँ अंग प्रत्यांगों में हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, इस धुएं से उनका पूरा अंग प्रत्यांग जो है सुशोभित हो सुगंधित हो जाता है और अंग प्रत्यांग का पूजन हो जाता है। मंत्र मैं लंबे नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मंत्र आपको आते हैं तो बोल सकते हैं, और नहीं आता है तो धूपम समर्पयामि। हरि ओम मा धूरषि धुर्ब धुर्बंतन धुर्ब जम्बयन धुर्ब महादेवा नाम स्पन्ते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आप धूप दिखाने के बाद प्रत्यक्ष आप जो है दीप दिखाएंगे। ठीक है, तो दीप के लिए जो है ये हमने प्रज्वलित कर रखा है, और दीप को ऐसे आप पुष्प लेकर के ऐसे आप जो है अलग से एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। पुष्प आप ऐसे लेके दीप की तरफ दिखाएंगे और बोलेंगे मंत्र, चंद्रमा मनसो जक्षो हो सूर्यो अजायता शूत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता धूप दीपान्ते समर्पयामि धूप दीपान्ते समर्पयामि। अब आपने जो है दीप दिखाया, दीप के बाद पुनः जो है हमने हाथ धुला। देखिए यहाँ पे कोई अशुद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ धुल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि दीप को मैंने स्पर्श किया। क्या है, अग्नि तत्व है हमारे हाथ में, लगा मुझे कि यह जो है गर्म है, अग्नि तत्व है, तो मैंने हाथ में जल डाला तो क्या हुआ, शीतल हो गया। जैसा मैं पूजन कर रहा हूँ वैसा महसूस कर रहा हूँ, कहने का तात्पर्य यहाँ परमपिता परमात्मा बैठे हैं तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि साक्षात विघ्नेश्वर गजानन विराजमान यहाँ पे हैं। ठीक, तो इसलिए हमने हाथ को धुला। अब यहाँ
1: पंडित जी आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं दोनों साथियों से भी जानना चाहती हूँ क्या फील हो रहा है इस टाइम, क्या भाव चल रहा है। श्वेता
2: मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग पहली बार जब हमारे यहाँ गणपति आए थे गुड न्यूज टुडे में, पिछली बार आप ही लोग लेकर के आई थी, और बहुत ही सौभाग्य की बात है, आप लोग खुद उस फीलिंग को जान रही होंगी कि कितना अच्छा महसूस होता है। मैं पहली बार इसमें शामिल हो रही हूँ आज आप लोगों के साथ, तो मैं सच्चे मन से कहूँ, एक तो ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा है ही, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गणपति हैं, तो उनके लिए जितना

0: कम है।
1: बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, श्वेता भी अहम कड़ी है इस चुनाव में। श्वेता हमारे साथ ही थी जब हम तीनों ने जाके, चार पांच लड़कियां हम गई थी एंकर, सभी ने मिलकर चुनाव किया है। क्या चल रहा है दिमाग में?
2: कुछ नहीं, बप्पा के आते एकदम सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। बप्पा की मतलब प्रतिमा सामने होती है और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो। बप्पा की आंखों में देखिए, आप भी देखिए हमारे माध्यम से, आप खो जाएंगे।
1: देखिए एक ही लाइन में कहूंगी कि हम इस वक्त निशब्द हैं,
2: निशब्द
1: ज्यादा है। शब्द कहने के लिए हमारे पास है नहीं, सिर्फ दिमाग में और दिल में चल रहा है जो भी चल रहा है।
0: एक एक और चीज शगुफ्ता, अगर दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं गणपति जी को, खास करके इनकी जो पगड़ी है ना, जो इन्होंने साफा बांध रखा है, ये गुड न्यूज
1: का कलर है। ऊपर लोगो भी देख लो जरा, घंटे के साथ मैच करते हुए हम देख रहे हैं।
0: तो ये जो इन्होंने पगड़ी पहनी है ना रेड एंड व्हाइट वाली, ये गुड न्यूज टुडे का कलर है और गुड न्यूज टुडे के गणपति हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे लगने चाहिए।
1: चलिए एक बार कर लेते हैं, गणपति बाप्पा
0: मोरया,
1: मंगल मूर्ति
0: मोरया।
1: यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये खास कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए जीएनटी, वापस आते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: देश भर में धूमधाम के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, जीएनटी पर पधारे बप्पा। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकार। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ शुरू हुआ जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का हुआ स्वागत।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल में गणपति विराज रहे हैं। मुंबई से लेकर पुणे, नागपुर से लेकर जयपुर में तमाम गणेश पंडालों की भव्यता देखते ही बन रही है। इनमें गणपति की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित है। देखिए, गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर मुंबई की रौनक तो अलग ही नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लालबाग चौराहा के दरबार में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं, तो वहीं सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई के जेसीबी पंडाल में सोने चांदी से बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है।

0: की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के अलग अलग जगह से, और सीधा अब आपको जीएनटी स्टूडियो भी लिए चलते हैं जहां पर हमारे तीन सहयोगी मौजूद हैं। शगुफ्ता कैसा महसूस कर रही है, जीएनटी में भी अब गणपति पधार चुके हैं, श्वेता और गीतिका भी हमारे साथ जुड़ी है।
1: जैसा आप महसूस कर रही हैं पूजा, ठीक वैसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बार फिर से पूजा आप उस तरफ हम इस तरफ जयकारे के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि माहौल इतना सकारात्मक है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो देखिए स्थापना की विधि तो हम शुरुआत कर चुके हैं उसकी, तो उस विधि के मिड में हम पहुंच चुके हैं। श्वेता मेरे साथ है, गीतिका मेरे साथ है, कहाँ तक पहुँचे पंडित जी?
2: अपन ने जो है तो धूप और दीप अर्पित करके नैवेद्य के लिए जो है करना था, उसी टाइम पे आपका भेजा है। ये मोदक विशिष्ट प्रिय है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण उमा सुकम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो लंबोदर को विशेष जो उनको प्रिय है वो मोदक है, तो मोदक का भोग लगाते हैं। आप मुझे संक दीजिए, थोड़ा संकट ध्वनि करेंगे। यह प्रसाद जब लगाते हैं तो संकट ध्वनि करते हैं, तो एक बार संकेत ध्वनि करेंगे। यदि मंत्र नहीं आता है तो तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित, वैसे मंत्र है हरि ओम मानाभ्या आसीद अंतरिक्ष गो शेषणोर्द्यो हो समवटता पद्याम भू मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित समर्पयामि आचमनीयम ते जलम जलम समर्पयामि। अब यहाँ आप चार बार आचमन कराएंगे, सभी का भोग लगा दिया, सभी के लिए गौरी के लिए भी यहाँ जो है वरुण है, कलश है, इसमें सभी 33 कोटि देवी देवता हैं, और अब यहाँ गजानन है, तो इनको सभी को आप जो है करेंगे हरि ओम माँ हरि हरि ओम माँ नैवेद्यान्ते समर्पयामि आचमनीयम जलन्ते समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाचमन्ते समर्पयामि। और यहाँ की चाहें तो आप मुद्रा भी जो है कर सकते हैं। इसके बाद नैवेद्य के बाद आप जो है फल चढ़ाएंगे, तो यहाँ हमारे पंचमेवा भी हैं और यहाँ पे हमारे जो है ऋतु फल भी हैं। फल का मंत्र बोलते हैं ओम मा जा फल निर्जा अफला अपुपा जाणी बृहस्पति प्रसुदास्तानो मुंचन गुहस इदम फलम मया देव्यस्ता पुरतस्तवा तेन मे सफल सफला उत्तीर्भविष्य जन्मनि जन्मनि। मतलब तात्पर्य हुआ कि हे प्रभु, जैसा मैं आपको बिल्कुल यह फल चढ़ा रहा हूँ, उसी तरह जिस कामना से जिस भाव से मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरी भी कामना उसी तरह फलीभूत हो, मुझे भी ऐसा ही फल की प्राप्ति हो। आचमनीयम जलन्ते समर्पयामि, और प्रसाद का मतलब होता है कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसाद से देव प्रसन्न होकर के व्यक्ति को आशीष देते हैं जो उनकी पूजा आराधना करता है। इसके बाद फिर आपने क्या चढ़ाना है, इसके बाद आपने जो है मुख वासार्थे सफल तांबूल पुंगी फलम, मुख की शुद्धि के लिए ये तांबूल आपका पुंगी फल है। पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलेरिदम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रगृहितम सफल तांबूल पुंगी फलम ते समर्पयामि। अब इनका मुख वासार्थे सफल तांबूल पुंगी फल हो गया। इसके बाद करुत वर्थनार्थे चंदनम, इस चंदन को आप ऐसे ले लें, देखिए मैंने दोनों उंगली से ले लिया और इस चंदन को ऐसे छोड़ते हैं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार्जम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीयताम। आपने देखा होगा पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, तो ये हर तरह से इसको कहते हैं साष्टांग होकर के पूरी तरह से हम जो है चंदन भगवान को अर्पित करते हैं।
1: पंडित जी एक चीज बताइए, कोई ऐसी एक चीज जिसके बिना गणपति की पूजा हो ही नहीं सकती, सामग्री में ऐसी एक चीज?
2: देखिए सा गुप्ता जी, हो तो सकती है, जब कुछ भी नहीं होता तो व्यक्ति भाव से पूजन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधान उनकी ये दुर्वा दुर्वा सर्वोपरि है। अब हमने ये चंदन चढ़ा दिया, इसके बाद जो है अब आपका आता है दक्षिणा द्रव्यम, क्योंकि जब हम दक्षिणा देते हैं तभी विशेष करके जो है प्रसन्न होता है कोई भी व्यक्ति। हम आप कार्यरत हैं, हमें भी पैसा मिलेगा तभी प्रसन्न होंगे, जब हम पैसा भगवान को अर्पित करते हैं वह दक्षिणा 100 गुना होकर के 1000 गुना होकर के भगवान हमें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। हरि ओम माँ दक्षिणा दिव्यांते समर्पयामि, हरि ओम माँ दक्षिणा दिव्यांते समर्पयामि। इस तरह से हम जो है गजानन गणपति को दक्षिणा अर्पित की। अब इसके बाद जो है आपका अखंड श्रीफल, ये आपका अखंड श्रीफल, यदि कोई सामग्री आपकी अधूरी रह गई है तो ये अखंड श्रीफल आपको पूरा करता है। लेकिन इसको चढ़ाने का तरीका कैसा है, कोई भी देखिए कलश में भी हमने जो रखा है वो इधर आपकी तरफ मुंह है, इसका मुंह आपकी तरफ उलझी, क्यों? क्योंकि जो कुछ आप कहते हो ये सुनते हैं और फिर उस चीज को ये पूर्ण करते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसे रख देते हैं वो गलत है, कुछ ऐसे रख देते हैं ये गलत है, कुछ ऐसे रख देते हैं वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, जब आप चढ़ाएं आगे
1: की तरफ होना,
2: जब आप यस जब आप चढ़ाएं तो ऐसे, जब उनको चढ़ा रहे हो तो ऐसे, और जब रखें तो ऐसे, क्योंकि जो आप कह रहे हो तो ऐसे वो सुन रहे हैं, फिर आप जब लास्ट में प्रार्थना कर रहे हो तो आपको प्रतिफल दे रहा है। हरि ओम माँ पूर्णा दर्भी पारा पत सुपूर्णा पुनरापत बसने वीणा इखमूर जग्गु शातक रातो अखंड श्री फलांते समर्पयामी। इस तरह से हमने जो है गजान गणेश का पूजन जो है कर लिया, अखंड श्री फल चढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो है आप आरती करते हैं, तो आरती में जो है वैदिक आरती आपकी जो है किए दे रहा हूँ छोटी सी, इसके बाद संध्याकालीन टाइम पे आरती गजानन गणेश की बड़ी होगी।
3: पंडित जी, थाल में हमने सारी चीजों का इस्तेमाल किया, लौंग इलायची भी जो है वो बड़ी खास मानी जाती है जब गणपति जी को
2: मुखवास आरती सफलता इसमें इसमें लौंग इलायची सुपारी और साथ में पान का पत्ता, ठीक है। आपकी ये ये चढ़ाई है, इसको बिजिया कहती है, समी कहते हैं, तो जो हमारे सभी दुखों का शमन करते हैं, तो ये हमने समी चढ़ाई है। इस तरह से हर चीज, ये हमने इत्र चढ़ाया है, इसके विषय में कहते हैं कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। जिस तरह से नवनूतन बालक जन्म लेता है तो उसका हर अंग प्रत्यंग सुगंधित होता है, क्योंकि वो निरोग स्वस्थ होता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से कोई वास तक नहीं आता। हम आप यदि एक दिन ब्रश ना करें तो वास आती है। उसी प्रकार हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मेरा अंग प्रत्यंग, मैं हर तरह से निरोग स्वस्थ रहूं, मेरे किसी भी अंग प्रत्यंग में किसी प्रकार की भी कोई रोग व्याधि बाधा।
4: या साथ ही साथ अरविंद जी ये भी बताइए कि चूंकि हम यहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप यहाँ पर प्रकांड पंडित बैठे हैं जो कि हर एक बात हमें बता रहे हैं, लेकिन जो लोग घर में इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो घर में अपने यहाँ गणपति लेकर आए हैं डेढ़ दिन के गणपति या फिर पांच दिन के, तो वो उतने कर्मकांड नहीं जान पाते होंगे, उनके लिए क्या है, वो क्या
2: उनके लिए यही सर्वोपरि रहेगा कि वह ओम गंग गणपतये नमः भाव विभोर हो के पूरी भाव के साथ जो है मन में बोलें, और यथा जो भी उनके पास है, उनके पास यदि कुछ भी नहीं है तो मात्र उनके पास जो प्रसाद है उस प्रसाद को अर्पित करके गजानन गणेश भगवान को प्रसन्न कर सके। मैंने यही बताया ना, प्रसादो देव प्रसन्नानां और प्रसादो सर्व दुख हनन, प्रसाद से देव प्रसन्न होके सभी दुखों का हमारे हनन करते हैं। तो एक अमोघ मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, यह मंत्र आपके जीवन में हर तरह की विपदा परेशानी कष्ट को नष्ट करेगा। सबके पास सामग्री आप सच करें नहीं, हर व्यक्ति जोड़ पाता, हर व्यक्ति को मंत्रों का नहीं ज्ञान होता, भाव से और श्रद्धा से। तो अब अपन जो है आरती का कर लेते हैं, मैं वैदिक मंत्रों के साथ जो है आरती बोल देता हूँ। हरे ओम माँ इदगो हवे हे प्रजानन मे अस्तु दशवे रग्गो सर्वगण गुस्वस्ताये आत्मा सानी प्रजसानी लोका सान्य भया सानी हे प्रजम बाहुलाम में करो त्वन्नम पयो हे तो सुदत्ता। और एक लाइन बोल दे रहा हूँ।

0: आप आरती कर लें, मान लीजिए आपको नहीं आता तो कर्पूर गौरम करुणावतारम कुछ भी आप बोल लें, या नहीं कुछ भी आता है तो ओम गंग गणपतये नमः बोल करके भी आप कर दें। अब हमने जो है आरती उनको दिखा दी और आरती के बाद आचमन ऐसे करा देंगे और इस तरह से फिर रख देंगे। ठीक, अब आप जो है आरती वगैरह हो गई, अब इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये मैं फिर कह दूं कि बहुत मैंने बृहद मंत्र नहीं बोले, बड़ी बहुत प्रक्रिया लंबी नहीं की है, लेकिन यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो जीएनटी के माध्यम से या एस्ट्रो तक के माध्यम से क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि पूजन की प्रक्रिया विशाल होती है। मैंने यहाँ समय के अभाव की शॉर्टकट की है।
1: जीएनटी
0: के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं और हम जीएनटी नहीं कर रहे हैं। और अब यहाँ पे गजानन गणेश जी की आप जो है स्तुति और प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ जो है मुझे पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि आप सभी जो है सदैव जीएनटी में धार्मिक चीजें विशेष दिखाते हैं, और जीएनटी एक ऐसा चैनल है कि कभी कोई भी त्योहार यदि आता है, किसी चैनल में आए या ना आए, लेकिन जीएनटी के माध्यम से आपको उस त्योहार का भली भांति ज्ञान मिलेगा, चाहे कोई भी त्योहार। तो प्रार्थना करते हैं गजानन गणेश से। हरे ओम मुदा करत मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरम वसंतकम विलासी लोकरंचकम अना

0: नागाननाय सकला यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कलशस् देवताभ्यो नमः वरुणस् देवताभ्यो नमः सप्तगतमातृकेभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। यहाँ मैंने सभी देवताओं का पूजन किया है, प्रधान पूजन गजानन गणेश का किया है और उनके साथ फिर बता दूं ये पुंज में माँ गौरी रखी हुई हैं, ये कलश हैं, संक्षिप्त आवाहन एक तंत्रेण मैंने नवग्रहों का, षोडश मातृका का, सप्तर्घत मातृका का और प्रधान पूजन भगवान गजानन गणेश का किया है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। माँ की पूजा की प्रक्रिया कर्मकांड की और इससे ऊंची है और बड़ी है। यदि किसी को कोई मतलब ऐसा हो कि नहीं मैं नहीं इस चीज को किया तो सिर्फ समय शॉर्टेज होने के कारण मैंने नहीं किया। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। सगुप्ता जी आप लोग ये जो गणपति हाँ चढ़ा दीजिए आप लोग ये जो गणपति गणेश जी आप लोग लाए हैं ये बहुत ही अद्वितीय सुंदर और जिस तरह से गणेश गजानन गणेश जो है विशेष आशीष देते हैं वो होते हैं। आप जो लेफ्ट की तरफ को मुड़ी हुई सूंड है इस का पूजन पारिवारिक लोग करते हैं। कहने का तात्पर्य जो दाम्पत्य जीवन में जो अपने बच्चों के सहित रहते हैं वह लोग करते हैं क्योंकि ये बड़े शांति प्रकृति के होते हैं।
1: जबकि अरविंद जी ये जो बात आपने कही बिल्कुल सही है कि ये परिवार में करते हैं और यही जब हम सिद्धि विनायक जाते हैं तो वहाँ उल्टी तरफ रहता है।
0: यस
1: दाई तरफ
0: तो दाई तरफ का श्वेता जी ऐसा है कि उनको तीक्ष्ण गणेश कहते हैं। पूजन उनका भी होता है लेकिन उनके उनका पूजन जो करता है उसको बड़े नियम संयम के पालन करते हैं। हम आप परिवार वाले व्यक्ति हैं, परिवार वाले व्यक्ति से कई प्रकार की गलतियां होती हैं, उतनी कठिन साधना नहीं हो पाती, तो इसलिए यह गणपति शांति प्रकृति हैं, शांति स्वरूप हैं, शांता भाव है तो इनका करते हैं। जो आप दाई तरफ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी साधना थोड़ी कठिन है, उनकी साधना में नियम संयम बरतने पड़ते हैं और उनकी साधना में तंत्रोक्त विधान भी चलता है। जो सीधे गणेश होते हैं उनकी साधना प्रायः जो है साधु महात्मा और बड़े तपस्वी लोग करते हैं अलग अलग स्तर। तो आप बड़ी सुंदर तस्वीर लाए हैं और जैसा कि होना चाहिए रक्तम लंबो धरम सुरपा आप बिल्कुल रक्त कलर का लाए हैं और उनका जिस तरह का जो है मुकुट जैसा होना चाहिए बिल्कुल उस तरह की आप भी।
1: ये उन्हीं की प्रेरणा है, हम तो यही मानेंगे क्योंकि जब हम गए थे चुनाव करने के लिए तो हमने यही कहा था कि भाई हम क्या चुनाव करेंगे गणपति का, गणपति हमें चुनेंगे कि हमारे यहाँ यानी कि गुड न्यूज टुडे पे कौन से गणपति आते हैं।
2: और पिछली बार मुझे याद है आपसे हम पूछ कर ही लेके आए थे पिछली बार भी मूर्ति, तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। हमने कहा इस बार कोई त्रुटि हम करेंगे नहीं, वैसे ही गणपति सुंदर
0: से। और मेरी प्रार्थना है गणपति से भगवान गजानन से कि जिस भाव से जिस कामना से आप लोग गणपति जी को लाए हैं गणपति वह सारी कामना जो है आपकी और हमारी जीएनटी संस्थान और हमारे आज तक संपूर्ण संस्थान की जो है उत्तर उत्तर प्रगति करें और उत्तर उत्तर उनको जो है निरोग स्वस्थ और दीर्घायु।
1: अरविंद जी आपने बहुत अच्छी पूजा कराई पूरे विधि विधान से, हालांकि मैं बाद में जुड़ी शगुफ्ता गीते का शुरू से थे, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ गणपति उत्सव से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं आपको हम बता दें कि वो सारी तस्वीरें सारी खबरें पूरे देश से इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे।
2: लेकिन हम इस वक्त आपको लेकर गीतिका कुछ कहना चाहेंगे,
3: जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी गणपति बप्पा
2: मंगल मूर्ति मौर्या। लेकिन इस वक्त आपको लेकर चलते हैं कैमरा के उस तरफ जहां पर हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है। देश भर से रंग कैसे निकल कर आ रहे हैं गणपति को लेकर उत्सव को लेकर वो आपको दिखाते हैं।
4: देखिए पूरे विधि विधान से कैसे पूजा करनी है अरविंद जी तो आपको समझा ही रहे थे, अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा के पंडाल में आज सुबह 8 बजे से भक्तों के लिए खोल दिए गए पंडाल और लालबाग चौराजा के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। वैसे तो लालबाग चौराजा की झलक 11 सितंबर को ही शाम 7 बजे आ गई थी, हम सभी ने आपको दिखाई भी, लेकिन आज से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है तो आज से लेकर अगले 10 दिन तक इस पंडाल में लालबाग चौराजा के दिव्य दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता रहेगा। आपको बता दें कि इस साल बप्पा नारंगी रंग की धोती पहनकर वहां पर विराजमान है जो कि खूबसूरत लग रहे हैं। लालबाग चौराजा की स्थापना 1934 में की गई थी, ये तस्वीरें आप देखिए, और तब से ही हर साल मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि लालबाग चौराजा के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
5: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं। आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है। ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है, जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देख कर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है। पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु। लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है। आपको बताया कि परसों रात से ही पग छूने वाली जो कतार है वो लग गई थी। जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्ति नजर आएंगे। रोजाना लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3-4 लाख के आसपास गणेश भक्त आते हैं और धीरे धीरे आंकड़ा तीसरे चौथे दिन से बढ़ी जाएगा, क्योंकि 3 दिन की गणपति बहुत से मुंबईकर अपने घरों में ही मनाते हैं। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें मिन्नतों का भी राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी सच्चे दिल से लालबाग के राजा से मांग लिया जाए वो उन्हें मिल जाता है। देखिए बहुत ही बड़ी तादाद में तो गणेश भक्त यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन VIP VVIP भी यहाँ पर आते हैं और उनकी सुरक्षा का भी अच्छा खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। AI कैमरा लगा दिए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर तैनात है। BMC अधिकारी भी अपने तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं व्यवस्था।
4: तो चलिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए और अकोला से धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मुंबई आपको लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, देखिए समय लगातार अब बढ़ रहा है। सुबह जब आप 9 बजे लगभग तस्वीरें दिखा रहे थे, तब से लेकर अब आप क्या देख पा रहे हैं, श्रद्धालु की संख्या कितनी बढ़ चुकी है वहां पर?
5: देखिए लगातार जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ लालबाग साउथ मुंबई में है और यहाँ पहुँचने के लिए भी मुंबई के कोने कोने से जो लोग आते हैं 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो धीरे धीरे अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बप्पा का दर्शन करते ही जा रहे हैं। जो पग के दर्शन की कतार है वो भी बढ़ते जा रही है, उसका समय भी बढ़ते जा रहा है। अभी तक 7-8 घंटे में दर्शन हो जाया कर रहा था, अब उसका समय बढ़ते हुए 9-10 घंटे जा चुके हैं। और जो मुख्य दर्शन की कतार है उसका भी समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल जो हैं वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हुए थे और बकायदा उन्होंने डमरू बजा करके गणपति बप्पा की श्रद्धा की, आरती की और उसके बाद गए। इसके साथ मराठी कलाकार हैं सिद्धार्थ जाधव, वो भी अभी आए थे अपने परिवार के साथ, उन्होंने भी दर्शन किया। और जो सबसे बड़ी अपडेट है कि भाई लालबाग के राजा में कौन आएगा यहाँ दर्शन करने, तो जानकारी के मुताबिक भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ आने वाले, क्योंकि कुछ देर पहले बॉम्ब स्क्वाड की टीम, बहुत सारी पुलिस यहाँ पर सुरक्षा है या नहीं किस तरीके से है इसका जायका लेकर गई है और धीरे धीरे अब वो भी यहाँ पहुँचेंगे। उनके अलावा भी बहुत सारे VIP VVIP पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ जो पहुंचने की सबसे बड़ी जो कारण है वो है बप्पा और बप्पा की खूबसूरती, साथ ही साथ उनका ये भव्य पंडाल। बप्पा की आरती अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है, 1:30 बजे का समय दिया हुआ है और 1:30 बजे आरती होगी, जिसके लिए 1/2 घंटे तक जो लोग जहां खड़े हैं वहीं सब खड़े हो जाएंगे और जिन्हें मौका मिल पाएगा अब आरती के समय दरबार में उनके अगर वो पहुंचे हुए हैं तो आरती का पूरी तरह से लुत्फ़ उठाएंगे। इसके अलावा शाम की भी आरती 8 बजे की है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि शाम की जो आरती होती है और दोपहर की जो आरती होती है कहीं ना कहीं किसी एक बड़े नामी गामी के साथ होती है। कोई ना कोई एक बॉलीवुड सितारा या महाराष्ट्र का कोई कद्दावर नेता अपने परिवार संग पहुंचता है, उनके साथ आरती करते हैं। इस समय ऑरेंज की धोती पहनकर गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कुछ देर पहले ही कुछ विदेशी आए थे जिन्होंने यूएसए डॉलर की माला हार बप्पा को पहनाई थी, अब उसे निकाल दिया गया क्योंकि तमाम लोग और भी आ रहे हैं और दूसरे भी हार पहनाए जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मालाएं बप्पा को पहनाई जा रही है कि हर दिन 10 मिनट पे उनके शरीर से सारी चीज़ें उतार दी जाती हैं। इस बार जो सबसे बड़ी खासियत है वो रामेश्वरम है, जैसा कि गुड न्यूज़ टुडे ने हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अपने बताया था कि इस बार रामेश्वर की थीम के साथ गणपति बप्पा यानी लालबाग के राजा का चलचित्र है और बिल्कुल उसी तरह से नज़ारा दिख भी रहा। उनका मंदिर चांदी से पूरी तरह से सजाया गया है और सबसे खासियत क्या है कि ये मंदिर के ऊपर की जो टीली है उसे आप देखें कि धनुष माफ करिएगा त्रिशूल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डमरू है और डायमंड से इस पूरी चीज़ों को सजाया गया है। इस तरह की सज्जा सजावट गणपति बप्पा के दरबार में पंडाल में हर जगह देखने को मिल रही है। ये नज़ारा तो सिर्फ यहीं का है लेकिन अब थोड़ा सा श्रद्धालुओं की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो
4: भी बात करेगा। नज़ारा एक बार फिर से वहां का देखेंगे। एक बार हम धनंजय के पास चलते हैं जो कि अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, वहां पर पंडाल को किस तरीके से सजाया गया है, तस्वीरें दिखाइएगा। अब गणेश उत्सव को लेकर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या देख पा रहे हैं?
6: बिल्कुल, यहाँ पर गणेश उत्सव की जो तैयारियां लगभग पूरी होने में है। आप देख सकते हो कि बप्पा की ये भव्य मूर्ति जो है पिछले 90 सालों से जो है मारवाड़ी प्रेस का ये गणपति और ये पूरा जो है ये लकड़े का महल यहाँ पर उन्होंने बनाया। बप्पा की लगभग 17 से 18 फीट की जो बप्पा की प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमा को लेकर जो है यहाँ पर भक्तों की बड़ी आस्था है। देखिए भक्त जो है अभी तो पंडाल पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ, बावजूद जो है भक्त जो है इतने आतुर है कि अपने बप्पा के जो चरण है चरण छूने के लिए। देखिए गणपति बप्पा मोरिया की जो है यहाँ पर जो है घोषणाएं दी जा रही है क्योंकि गणपति बप्पा जो आए हैं वो बारिश लेकर आए हैं। इस साल इन्होंने क्या किया है क्योंकि मारवाड़ी प्रेस के जो गणपति है वो बप्पा का पंडाल है वो 90 सालों से जो है सामाजिक भी काम कर रहा है और सबसे अहम बात है कि इनके कार्यकर्ता जो है किस तरह से पूरे साल भरे में बप्पा की पूरे वर्गणी में से जो है तुम्हारे दान दक्षिणा मिलती है उसमें से क्या कार्य किया जाता है।
7: सर्वप्रथम गणपति बप्पा मोरिया, इस वर्ष हमारा 90वां वर्ष श्री मारवाड़ी प्रेस गणेश उत्सव मंडल द्वारा स्थापित किया गया है। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की पूरी स्थापना की गई है। इस वर्ष प्रमुख देखावे हमारे अष्टविनायक दर्शन, खाटू श्याम जी, शंकर पार्वती जी, सावरिया सेठ आदि मानो इनकी स्थापना की गई है। और मुख्यतः इस वर्ष हमारे यहाँ पर हमारे जो सदस्य है प्रशांत निधि चांडक, उनके द्वारा इच्छा पूर्ति होने पर गणेश जी को पादुकाएं भेंट की गई है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद। चांदी की पादुकाएं भेंट की गई है इसलिए मैं मारवाड़ी प्रेस गणेश उत्सव मंडल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
6: देखिए बप्पा के चरणों में बप्पा के पास मांगी जो मनोकामनाएं हो पूरी तरीके से पूरी होती है, इसलिए बप्पा के भक्त जो है अपने स्व इच्छा से जो है वो बप्पा पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। सबसे अहम बात यही है कि इस पंडाल जो है ये पूरी तरीके से लकड़े का पंडाल, जिस तरीके से ये महल बनाया गया है आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े बड़े झूमर यहाँ पर लगाए गए हैं और सबसे अहम बात है कि साल भर जो है पूजा जी साल भर जो है ये पंडाल जो है अलग अलग काम करता है। मानो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी वो जो है अन्नदान करते हैं, रक्तदान का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और सबसे अहम बात यही है कि पंडाल ये सिर्फ 10 दिन पूर्ते
4: जी देखिए काफी समय लंबे समय की मेहनत के बाद ऐसे खूबसूरत पंडाल सजकर तैयार होते हैं। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ जीएनटी पर गणेश उत्सव को लेकर महाकवरेज जारी रहेगी लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

और बेटिया में आज देखिए सितारों के घर आए बप्पा। सितारों ने मनाई खुशियाँ दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में धूमधाम के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, जयंती पर पधारे बप्पा। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ शुरू हुआ जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत। हैदराबाद विकसित भारत 2047 थीम पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित, बुलेट ट्रेन, बैलगाड़ी और रोबोटिक मूषक शामिल। 1947 से 2047 तक भारत की यात्रा के अलग अलग चरणों को दर्शाया गया। सवाई माधोपुर में लखी मेले में आस्था का सैलाब, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, भक्तों ने लगाए गणपति बाप्पा के जयकारे। बंगाल के बर्धवान में कॉइन एग्जीबिशन 2026 का आयोजन, दुर्लभ सिक्के, पुराने बैंक नोट, डाक टिकट, पदक और ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी, भारी संख्या में पहुंचे लोग। मुरादाबाद के चित्रगुप्त कॉलेज के छात्रों ने बनाई नीम करोड़ी बाबा की तस्वीर, 8 घंटे की मेहनत से तैयार की गई तस्वीर, रंगोली ने सबका मन मोहा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल में गणपति विराज रहे हैं। मुंबई से लेकर पुणे, नागपुर से लेकर जयपुर में तमाम गणेश पंडाल में भव्यता देखने को मिल रही है। इनमें गणपति की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित है। गणेश चतुर्थी के इस मौके पर मुंबई की रौनक तो अलग ही है। लालबाग चौराहा के दरबार में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है, तो वहीं मुंबई के जेसीबी पंडाल में सोने चांदी से बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया। पुणे का दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर हो या नागपुर का श्री गणेश टेकड़ी मंदिर, हर जगह बप्पा विराजमान हो रहे हैं। बप्पा के स्वागत में मंगल आरती गाए जा रहे हैं, तो वहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुल मिलाकर पूरे देश में आस्था के रंग में सराबोर भक्त बप्पा की पूजा आराधना में जुट रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें। मंदिर में आज तड़के हुई दिव्य आरती। वैसे तो मुंबई में हर साल बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है और शहर के कोने कोने में बने पंडालों में गणपति के दर्शन होते हैं, लेकिन सिद्धिविनायक की बात ही अलग है। हर दिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासतौर से आज गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के शुभारंभ के पावन अवसर पर यहाँ खासतौर से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर सहित देश भर के गणेश मंदिरों में विशेष तैयारियां और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की गई है।

0: चलिए अब आपको मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दर्शन कराते हैं, जो कि मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ पर हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद ही मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है। चिंचपोकली चिंतामणि गणपति की ये तस्वीर आप देखिए, हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में और दर्शन के लिए।
1: मुंबई में गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो चुका है। इस वक्त हम चिंचपोकली चिंतामणि के मंडल में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहाँ पर पांच बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहां पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहां पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परेल इलाके में गणपति है उनके, उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है, जो ये पर्व है अगले 10 दिनों तक रहने वाला है। मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई।
0: चलिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के जीएसबी पंडाल की, जहां पर मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति की भी आज से भव्य दर्शन शुरू हो रहे हैं। सबसे अमीर गणपति के रूप में इनकी मान्यता है और इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमती रत्न से सजे हैं जीएसबी के महागणपति। जीएसबी के गणेश उत्सव को 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस भी कवर भी दिया गया है। तो वही महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत का उत्साह देखते ही बन रहा है। बप्पा की प्रतिमाएं घर घर पहुंचने लगी हैं और उनके स्वागत में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई खुशी से झूमता नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं, हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा मोरया गूंज रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस उत्सव में अपनी खुशी और आस्था के रंग रहा है।

तो वहीं पुणे में आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंखनाद के साथ श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति का जुलूस निकला, जिसमें की बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी दिखी और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक पेश की है।

चलिए अब आपको दिखा रहे हैं नागपुर में गणेश उत्सव की तस्वीरें। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में भव्य और दिव्य रूप से गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ। यहां भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण के साथ मंगला आरती की गई। श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ यहां पर हुआ।

तो वहीं बेंगलुरु में भी गणपति बप्पा की भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध डोडा गणेश मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया। फूलों से सजे गणपति के दिव्य स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया है। भव्य श्रृंगार के बाद विधि विधान से आरती की गई। आरती के दौरान मंदिर परिसर गणपति बप्पा मौर्या के जयकारों से गूंज उठा। दुआई जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आस्था का सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर मंगल मूर्ति गणपति बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया तो उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुट गई है।

चलिए आपको जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंदिर में गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। तो जीएनटी पर गणेश उत्सव को लेकर महाकवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ सुनेगा।

और बेटिया में आज देखिए सितारों के घर आए बप्पा। सितारों ने मनाई खुशियाँ दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके अपने पसंदीदा चैनल जीएनटी पर भी गणपति पधार चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना हुई। आइए आपको दिखाते हैं जीएनटी पर गणेश उत्सव के रंग।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पल।
2: तो देखिए, जैसा कि हमने यानी जीएनटी की टीम ने आपसे वादा किया था कि हम तैयार हैं गणपति बप्पा को अपने बप्पा को घर में लाने के लिए, तो आपको इस यात्रा में हम करने जा रहे हैं शामिल।
3: तो देखिए कैसे बप्पा का मंडप सच के तैयार हो चुका है। बप्पा विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हमने वादा किया था सस्पेंस से पर्दा आज ही उठेगा।
2: बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में उठ जाएगा बप्पा, क्योंकि जीएनटी के घर में पधारने वाले हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि बप्पा आपके तमाम विघ्नों का नाश आज हम सब के साथ जरूर करेंगे।
3: तो चलिए, आप भी हमारे साथ बप्पा को घर लेकर आते हैं।
2: चलिए गीतिका,
3: चलिए
2: चलिए।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
4: गणपति बप्पा
1: मोरया,
4: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
4: गणपति बप्पा
1: मोरया,
4: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
2: देखिए, जितने ज्यादा एक्साइटेड हम हैं, आई एम श्योर कि जीएनटी के दर्शक भी उतने ही एक्साइटेड हैं। देखिए, आज आपको मौका मिलने वाला है जीएनटी के बहुत ही सुंदर गणपति के दर्शन करने के लिए।
3: शगुफ्ता, इतना सस्पेंस मत बनाओ, मुझे लगता है लोगों में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। और लेकिन इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली है।
2: बिल्कुल, आप थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि गणपति पप्पा यही कह रहे हैं कि थोड़ी सी परीक्षा जो है हम आपकी लेने वाले हैं। हमारी भी बहुत ली है और आई थिंक काफी कंफ्यूजन के बाद हमने फाइनली अपने सुंदर से गणपति का चुनाव किया है।
3: बहुत तो मेहनत लगती
2: लिफ्ट
3: है।
2: खुल गई है, लिफ्ट खुल गई है, चलते हैं।
1: मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
4: गणपति बप्पा
1: मोरया,
4: मंगल मूर्ति मोरया।
2: देखिए, इतनी एक्साइटमेंट है ना, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आपको बता नहीं सकते, क्योंकि गणपति बप्पा भी आई थिंक इंतजार कर रहे होंगे।
3: बिल्कुल, जितना इंतजार हमें रहता है उतना ही इंतजार बप्पा को भी रहता है हम सबके साथ समय बिताने का।
2: तो चलिए आप भी हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद सुंदर से गणपति आने जा रहे हैं जीएनटी के घर में।
3: और देखिए कितनी तैयारी हमने की है, शगुफ्ता ने कितनी सुंदर थाली सजाई है बप्पा।
2: देखिए एक बार,
3: भोग जो लगता है वो बेसन के लड्डुओं का लगता है, और हमने बप्पा की पसंद के बेसन के लड्डू भी लिए।
2: अच्छा, ये जो थाली है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब गणपति जी को लेने जाते हैं तो वहां पर जाकर गणपति जी की आरती की जाती है। इस थाली में आपको फूल नजर आएंगे, ये कपड़ा रखा गया है जिससे उनके मुख को कवर किया जाएगा लाने से पहले। यहाँ पे आपको चावल नजर आएंगे, वहां पे हम जोत जलाएंगे, धूप है, अगरबत्ती है, और सारी चीजों का इंतजाम हमने कर लिया है।
3: तो तैयारी बिल्कुल फुल ऑन है, बस अब बप्पा का स्वैग देखना बाकी है।
2: स्वैग से करेंगे बप्पा का स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3: गणपति का चुनाव जो किया है वो बेहद सुंदर तरीके से किया है, और हमारी गुड न्यूज टुडे की जो टीम है बहुत मेहनत लगी है बप्पा को ढूंढने में।
2: परिश्रम लगता है भाई इस काम को करने में, लेकिन एक बार फिर से जयकारा हो जाए, गणपति बप्पा
1: मोरया,
4: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
2: चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि गणपति जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें भी इंतजार है कि कब आएंगे हमारे बप्पा।
3: तो बिना समय गवाए चलिए लेने चलते हैं बप्पा को।
2: चलिए, तो चलिए, आखिरकार हम प्रस्थान कर चुके हैं। जिस चीज का इंतजार था हमें भी बड़ी बेसब्री से, वो अभी थोड़ी ही देर बाद आप सबके सामने,
3: बेसिकली सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है।
2: गणपति बप्पा
1: मोरया,
4: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
2: अच्छा, एक और चीज है, अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोड्यूसर ने, जिनका नाम है अमान। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है गणपति जी की स्थापना को लेकर। अमान क्या कहेंगे?
5: उत्साह काफी है, पहली बार जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो एक चीज नई है एकदम, देखना है कैसा होगा क्या होगा।
2: तो आप क्या सोच रहे हैं हमारे बप्पा कैसे होंगे?
5: पप्पा जैसे हैं पप्पा वैसे ही होंगे।
2: नहीं मतलब आजकल जो जेंजी है, हमारे पप्पा जेंजी वाले पप्पा होंगे।
5: हमारे पप्पा के नए अवतार जरूर देखने को मिल रहे हैं, एक से एक अवतार।

0: और जो जो उनका असल स्वरूप है उस तरीके से ही बप्पा होने चाहिए। बाकी आजकल तो एक से एक अलग अलग स्टाइल और अलग स्वैग के साथ जो है वो बप्पा मिला है।
1: हम स्वैग से ही स्वागत करने वाले हैं अपने बप्पा का। लेकिन गीतिका एक ये भी बात है ना कि आप सब देख कर ना मंत्रमुग्ध होने वाले हैं। सच में
2: इतने सुंदर है, इतने सुंदर। ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए हम पे जो हमने अपने बप्पा का चुनाव किया है, बप्पा ने जो हमें चुना है।
1: यस,
2: तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जब आप बप्पा का चेहरा देखेंगे ना, आप खो जाएंगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैसा शगुफ्ता बोल रही है, और हमने बहुत मेहनत की है शगुफ्ता, जब हम लोग गए देखने के लिए, हमने पूरी हंटिंग की, तो हमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि आसान नहीं होता है।
1: बिल्कुल वही बात ना कि बप्पा आपका चुनाव करते हैं, आप उनका चुनाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम इंसानों की इतनी हैसियत तो है नहीं।
2: बिल्कुल,
1: भगवान का चुनाव किया जाए तो भगवान खुद चलकर हमारे पास आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और बढ़ते हैं आगे।
3: गणपति बप्पा
2: मोरया,
3: मंगल मूर्ति
2: मोरया। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने बप्पा को लेने।
1: आइए तो चलिए, जहाँ पर पहुँचने का इंतजार था फाइनली हम दोनों पहुँच गए हैं। मैं और गीतिका आए हैं अपने बप्पा को घर लेने के लिए। तो अभी आपको थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर नहीं, इनफैक्ट ऑफिस जाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो मुख दर्शन आपको नहीं करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद हम करवाएंगे मुख दर्शन।
2: बस जो इंतजार है ना, उसकी घड़ियां खत्म होने वाली है। आप यकीन मानिए, बस खत्म होने वाली है।
3: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा

0: चलिए, जो इंतजार आपने किया और जो इंतजार हमने किया, फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन अभी आपको मुख दर्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑफिस में जाकर आरती करेंगे, उसके बाद होंगे।
1: यहाँ हमने आरती कर ली है, बप्पा की आरती हो चुकी है, बप्पा को भोग लग चुका है, लेकिन मुख दर्शन ऑफिस जाके होंगे, तो थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा।
0: अब देखिए, इतना पेशेंस आपने दिखाया है, इतना धैर्य थोड़ा सा और दिखाइए ना, क्योंकि जीएनडी की टीम तैयार है, हम निकल पड़े हैं बप्पा को घर लाने के लिए। अब इनको यहाँ से हम लेकर जाएंगे ऑफिस और वहाँ पर जाकर होगी गणपति की स्थापना।
1: तो जीएनडी के बप्पा का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है और बस थोड़ी ही देर और बची है, थोड़ा सा वक्त और बचा है बप्पा के दर्शन के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप भी हमारे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
0: चलिए

0: स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। आपके बप्पा जीएनटी के घर में फाइनली पधार चुके हैं,
1: लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कुछ मिनटों का इंतजार है और उसके बाद बप्पा के मुख दर्शन सभी को हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां ना, जैसे हम इम्पेशेंट हो रहे थे, आई एम श्योर कि आप भी इम्पेशेंट हो रहे होंगे, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। मुख दर्शन के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीएनटी में हम स्थापित करने जा रहे हैं अपने गणपति बप्पा को। देव एक बार फिर से सभी बोलिए साथ में, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में धूमधाम के साथ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही है बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, जीएनटी पर पधारे बप्पा। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकार। पुणे में निकले श्रीमंत दगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ शुरू हुआ जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत।

हैदराबाद विकसित भारत 2047 की थीम पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित, बुलेट ट्रेन, बैलगाड़ी और रोबोटिक मूषक शामिल। 1947 से 2047 तक भारत की यात्रा के अलग अलग चरणों को दर्शाया गया। बद्रीनाथ धाम में वराह जयंती पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान, अलकनंदा नदी तट पर स्थित पवित्र वराह शिला का पूजन, उतारी गई आरती। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता कबीर दोहन सिंह, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में की पूजा अर्चना, फिल्म हनुमान अंश को बताया शानदार मूवी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम शहरों सहित पूरे देश में गणेश उत्सव का शुभारंभ। मुंबई में मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल में आज सुबह से शुरू हुए दर्शन, उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। लालबाग के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। 11 सितंबर को दिखाई गई थी लालबाग चौराहे की पहली झलक, आज से अगले 10 दिन तक होंगे दिव्य दर्शन। लालबाग चौराहे के पंडाल में इस साल नारंगी रंग की धोती पहनकर विराजमान है बप्पा। दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंचेंगे लाखों भक्त। मुंबई के किंग्स सर्कल के जीएसपी महागणपति के भी आज से भव्य दर्शन, सबसे अमीर गणपति के रूप में है मान्यता। इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से सजे महागणपति जीएसबी के गणेशोत्सव को 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज तड़के हुई दिव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिद्धिविनायक मंदिर में तड़के से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता, दर्शन पूजन के लिए लगी कतारें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष तैयारियां और अनुष्ठान किए गए हैं, भक्तों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था है। मुंबई में चिंचपोकली चौराहे के दर्शन भी शुरू हुए, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं हस्तियां। चिंचपोकली चौराहे के पंडाल में पहुंचे प्रणव और करण अडानी, भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, परिवार सहित आरती की। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी की गणपति की पूजा, भक्ति भाव से विनायक की आरती की। आज से घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पंडालों में विराजे बप्पा और अगले 10 दिनों तक धूमधाम से होगी विनायक की पूजा। पुणे में निकली श्रीमंत दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा, रथ पर सवार नजर आए गणपति, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रीमंत दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में दिख रहे हैं महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत। श्रीमंत दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में दिखी नारी शक्ति की झांकी, महिलाओं ने पेश किया युद्ध कौशल। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ की गई मंगला आरती, श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में गणेश उत्सव के सिलसिले में चरम पर दिखा लोगों का उत्साह, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में शानदार तरीके से सजा मोती डोंगरी वाले गणपति का दरबार, सुबह 6:15 से शुरू हुए दर्शन। स्वर्ण मुकुट से सजे मोती डोंगरी वाले गणपति, राजसी पोशाक और आभूषणों से किया गया है शानदार श्रृंगार। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने आज सुबह किए मोती डोंगरी वाले गणपति के दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर गुवाहाटी में भी गणपति के दर्शन और पूजा के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, भव्य तरीके से सजा गणपति का दरबार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लक्खी मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। हैदराबाद में बेगम बाजार के फीलखाना इलाके में अनोखे गणपति के दर्शन, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। तीन लाख 80,000 से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से सजी है गणपति प्रतिमा, अलौकिक दर्शन। प्रतिमा का वजन है 48 किलोग्राम, पंचधातु से किया गया है निर्माण, पीतल का बेस है। आठ कुशल कारीगरों ने 8 महीने में बनाई मूर्ति, तो वहीं दशावतार और तिरुपति बालाजी के डिजाइन शामिल। लगातार तीसरे साल हुई है यहां पर गणपति की स्थापना, दिखाई गई बेहतरीन कारीगरी। नागपुर में गणेश उत्सव की धूमधाम के साथ शुरुआत, गाजे बाजे के साथ बप्पा के घर ले जा रहे हैं भक्त। नागपुर के चितारोली इलाके में गणपति प्रतिमाएं लेने के लिए उमड़े लोग, इसी इलाके में सबसे ज्यादा प्रतिमाओं का होता है निर्माण। अकोला में धूमधाम से हुआ बप्पा का स्वागत, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते घर ले जाए गए गणपति बप्पा। एक परिवार में पिता और बच्चे मिलकर बप्पा को लाए अपने घर, बेहद उत्साह और श्रद्धा का माहौल नजर आया। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार, बाल गणपति से सेल्फी और माखन चोर तक कई रूप। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में श्री गणेश सिद्धपीठ में दिख रही गणेशोत्सव की रौनक, दर्शन पूजन के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतारें। चंदौसी के मंदिर में गणपति का किया गया भव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन में जुटे श्रद्धालु। चंदौसी में निकाली गई गणपति की भव्य शोभा यात्रा, बैंड बाजे के साथ किया गया स्वागत। राजस्थान के पाली में बनाई गई गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। हैदराबाद के खैरताबाद में 69 फीट ऊंचे गणपति पंचमुखी प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। डोडा गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर तमिलनाडु की थूथुकुड़ी के मंदिरों में भगवान विनायक की विशेष पूजा, हवन और यज्ञ करके गणपति का आवाहन किया। थूथुकुड़ी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान विनायक की अनोखी प्रतिमा स्थापित, प्रतिमा के साथ मदुरई की थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर जलाई जाने वाली दिव्य ज्योति के भी दर्शन। त्रिची में भगवान गणेश की ऊंची पिलियार मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त, 7वीं सदी का बताया जाता है मंदिर। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर विराजे गणपति, भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के पिल्लयारपट्टी में करगप्पा विनायक मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शिवगंगा जिले में भगवान गणेश का अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर करगप्पा विनायक मंदिर है, मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में मान्यता है। चेन्नई में सजे धजे हाथियों के साथ निकली भगवान बालाजी की शोभा यात्रा, तिरुमला में आयोजित होने वाले सालाना श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम के उपलक्ष्य में आयोजित। शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं हजारों लोग, चेन्नई से विशेष रूप से तैयार पवित्र छतरियां लेकर तिरुपति जाते हैं श्रद्धालु।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: और बेटिया में आज देखिए सितारों के घर आए बप्पा, सितारों ने मनाई खुशियाँ। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक बिखरी हुई है, और ऐसे में बाबा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक भक्त हैं विजय कुमार। वाराणसी में एक कलाकार के रूप में विजय की भी भगवान गणेश के प्रति अपार श्रद्धा है, जिसको व्यक्त करने के लिए वो दशकों से अपनी आकर्षक पेंटिंग को लेकर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे विजय कुमार आंखों पर पट्टी बांध कर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का हुनर जानते हैं।
8: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग, देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे। मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांध कर कैनवास पर उतारा, तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
9: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यही सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आंख पे पट्टी बांधा ईशान ने और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने और उस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
8: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में धूमधाम किसान गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही है बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, जीएनटी पर पधारे बप्पा। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत भागवत की शोभा यात्रा, दग्धचेत गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। विकसित भारत 2047 थीम पर बप्पा तैयार किए गए, बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। बद्रीनाथ धाम में वराह जयंती पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान, अलकनंदा नदी तट पर स्थित पवित्र वराह शिला का पूजन, उतारी गई आरती। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता कबीर दोहन सिंह, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना की, फिल्म हनुमान अंश को बताया शानदार मूवी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर
4: सतपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रिंकी, यानी रिंकी भाभी। गणेश उत्सव का पावन पर्व है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा गणपति उत्सव स्पेशल शो। आज हमारी मनोरंजन की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे बप्पा यानी गणपति जी छाए हुए हैं, तो आइए बप्पा का नाम लेकर करते हैं अपने शो का श्री गणेश। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर।

के रंग में रंगे सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए धूमधाम से सितारे करेंगे पापा का वेलकम, मनाएंगे गणेशोत्सव।

सलमान अति सुंदर में खानदानी पायल को लेकर होगा बवाल, दादी करेगी जिद।

0: के सामने आया रुद्र का सच, होगा रुद्र के काले इरादों का पर्दाफाश।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: एल्विश की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला।
1: बाद में न कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग।
0: सैराब ने कहा अपने फैंस को अलविदा, सितारे हुए इमोशनल।
2: तो सब लड़ेंगे ना मेरे साथ?
3: हम लड़ेंगे।
0: और शुरू हुआ अनुपमा का नया मिशन, धरने पर बैठी अनुपमा। देखेंगे ये सभी नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: सीरियल मन अति सुंदर में दादी की एक जिद ने घर में खड़ा कर दिया है बड़ा बवाल। दादी चाहती है कि राध्या अपनी खानदानी पायल अंतरा को सौंप दे, लेकिन राध्या इसके लिए तैयार नहीं। आखिर क्या है दादी की इस जिद का कारण और क्यों राध्या ने पायल देने से किया इनकार, चलिए देखते हैं।
5: तुम्हारे पांव में जो खानदानी पायल है,
0: पायल को लेकर शुरू हुआ बवाल।
5: जितना कह रहे
0: दादी की जिद,
5: इसीलिए हम चाहते हैं राधे खानदानी पाए तौर पर अंतरा को दे
6: दे। हम इस घर को वंश नहीं दे सकता, लेकिन हम इस घर की बहू हैं। माने जब हमें पायल दी थी तब उन्होंने हमसे कहा कि इस खानदानी पाए घर की बहू का अधिकार होता।
0: राध्या की बेबसी,
6: हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये पायल किसी और को नहीं दे सकते।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, और वो हो रहा है खानदानी पायल को लेकर जो है राध्या के पैरों में। तो शुरुआत करते हैं दादी के ड्रामों से। असल में राध्या को किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन दादी उसे जाने नहीं देना चाहती, तभी तो अपनी तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाती है। इतना ही नहीं, वो तो ग्लास भी गिरा देती है और राध्या से बुलवाती है ताकि राध्या को देरी हो और वो बाहर ना जा सके।
6: अब

0: नहीं दादी, तो राध्या को काम पर काम दिए जा रही है। टूटे ग्लास की सफाई करने के बाद दादी ने नाश्ते का फरमान जारी कर दिया, जिस पर राध्या नाश्ता लेकर भी आई। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।
1: कब तक आराम करती होंगी? ऐसे लेटे रहूंगी तो पाँव थोड़ी ठीक होगा, थोड़ा चलूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा।
2: ठीक है दादी, जैसा आपको सही लगे।

0: दादी ने राध्या से ऐसी चीज मांग ली है जो राध्या उन्हें दे नहीं सकती, जो है खानदानी पायल जो राध्या के पैरों में है। और दादी चाहती है कि ये पायल अंतरा को मिले क्योंकि वो इस खानदान का वंश जो आगे बढ़ाने वाली है। फिलहाल तो राध्या बात को टाल कर चली गई, लेकिन दादी कहाँ चुप बैठेगी। देखिए कैसे घर वालों के सामने उन्होंने कर दिया तमाशा शुरू और जिद पर अड़ गई कि ये खानदानी पायल राध्या को अंतरा को देनी ही पड़ेगी, जिस पर राध्या इनकार कर रही है, लेकिन दादी उसके सुनने को तैयार नहीं।
1: वंश दे रही है तो उसको भी लगना चाहिए कि वो इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार में उसकी भी कोई अहमियत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि राध्या खानदानी पायल तौर पर अंतरा को दे दे। अब तो आपको लगने लगा है कि राध्या को बच्चे से ज्यादा अपने फेवर पे है। देखो तभी तो अंतरा को पायल देने से मना कर रही
2: है। हम इस घर को वंश नहीं दे सकते, लेकिन हम इस घर की बहू है। मानी जब हमें ये पायल दी तब उन्होंने हमसे कहा कि इस खानदानी पायल घर की बहू का अधिकार होता है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये पायल किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप कहें तो हम मुझे अपने सारे खानदानों को दे दें, लेकिन इस पायल हमें घर की बहू होने के नाते नहीं है, हम होने के नाते हम
1: तो जिसे कसम खा रखी है ना हमारी हर बात को लक्ष्मण रेखा की तरह लांघने की, मन मर्जी करती हो। अरे बहू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम सज धज के आराम से महारानी की तरह बैठी रहो, घर की बहू की और भी जिम्मेदारियां होती हैं, और जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर के लिए वंश पैदा करना, और वो तो तुम कर नहीं सकती। इसलिए घर के वंश को जो आगे बढ़ा रही है वो है अंतरा। अंतरा आगे बढ़ाएगी तो खानदानी पायल पर भी अंतरा का ही अधिकार होगा।
0: भाई ये तमाशा चल ही रहा होता है कि प्रथम और अंतरा भी वहाँ पहुँचते हैं, और देखिए कैसे प्रथम इस बात के लिए मना कर रहा है और अंतरा भी पायल लेने से इनकार करती है।
3: ये सब क्या हो रहा है? अब राध्या को अपनी पायल अंतरा को देने के लिए कैसे बोल सकती है?
2: नहीं दादी, आई एम सो सॉरी, मैंने ये फैसला किसी लालच में आकर नहीं किया है। मैं सच में राध्या और प्रथम की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
0: लेकिन दादी की जिद के आगे किसी की भी चलती कहाँ है, ऐसे में मजबूरन राध्या को अंतरा को पायल देनी पड़ती है। और जैसे ही वो अंतरा को पायल देती है तभी आ जाता है डॉक्टर का कॉल, जो बताते हैं कि अंतरा सरोगेसी के लिए अभी फिट नहीं है। ऐसे में अंतरा को भी शॉक लगता है और फिलहाल पायल भी अंतरा के पास नहीं जाती है। तो भाई अब देखना होगा कि अंतरा और दादी मिलकर कौन सी नई चाल चलते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: बिग बॉस फेम एल्विश यादव ने मनाया अपना जन्मदिन और इस पार्टी में लगा सितारों का मेला, जहां टीवी और सोशल मीडिया के कई नामचीन चेहरे शामिल हुए। तो चलिए देखते हैं एल्विश की बर्थडे पार्टी के खास नजारे।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई।

लगा सितारों का मेला। एल्विश को मिली ढेर सारी बधाइयाँ। भाई मौका है एल्विश यादव के बर्थडे का और इंडस्ट्री में है उनके ढेर सारे फ्रेंड्स जो आज आए हैं इनकी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए और इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देने के लिए। तो सबसे पहले मिलते हैं बर्थडे बॉय एल्विश से जो सूट बूट में आज पार्टी मूड में है

0: भाई बर्थडे पार्टी है, ऐसे में आज सभी सितारे पार्टी मोड में हैं। इनकी स्टाइलिंग की बात करें तो आज सब पर चढ़ गया है पार्टी का ही फीवर। तो आइए देखते हैं एल्विश की बर्थडे पार्टी में कौन कौन हुआ शामिल। तो भाई सबसे पहले पार्टी की शान बढ़ाने पहुँचे नुसरत और अभिषेक, जो एल्विश को ढेर सारी बधाइयां देने यहाँ पहुँचे हैं।
1: अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई।
0: इसके अलावा यहाँ साथ साथ नजर आए अंकिता विकी। जैस्मिन अली।
2: देख तेरा रंग सावला हुआ बावला।
0: करण और तेजस्वी। वहीं केशवर और सुयश, ये सभी जोड़ियों में एल्विश की बर्थडे पार्टी में हुए शामिल। इसके अलावा एल्विश की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए कई और सितारे पहुंचे हैं, जैसे कि शिवांगी जोशी।

ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ। ਯੋਗੇਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ

इसके अलावा कई और सितारे पहुंचे हैं एल्विश को ढेर सारी बधाई देने के लिए। वैसे आज इनकी लुक की बात करें तो सबने ज्यादातर ब्लैक कलर को चुना है और सभी आज पार्टी लुक में नजर आए। यहाँ देखा इनके फैशन का जलवा। वैसे इसी के साथ नजर डाल लीजिए पार्टी के इन इनसाइड विजुअल पर, जहाँ है मस्ती, धमाल और बहुत कुछ।

0: टीवी सीरियल सैराब जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। ऐसे में सीरियल के लास्ट डे शूट पर पूरी टीम इमोशनल नजर आई और शूटिंग के बाद फेयरवेल फोटोशूट भी हुआ। ऐसे में दर्शक हैरान हैं कि आखिर इतनी जल्दी ये शो ऑफ एयर क्यों हो गया। आइए देखते हैं इस फेयरवेल शूट के इमोशनल पल।
1: सैराब का रैप अप
2: साइनिंग

കോൺട്രോവേർഷ്യൽ കിസ്സോ കി. स्टार प्लस पर हाल ही में शुरू हुआ था सीरियल सैराब, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे थे रोहित चंडेल और मदिराक्षी, जिसकी कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। जहां रोहित निभा रहे थे एक रॉकस्टार का किरदार, तो वहीं मदिराक्षी बनी थी डॉक्टर। और ये कहानी किस तरीके से एक यंग लड़का एक मैच्योर लेडी के प्यार में पड़ जाता है, उसकी थी। और इस कहानी ने दर्शकों का शो के दौरान खूब दिल जीता।

लेकिन एक दिन अचानक रोहित चंडेल ऐसी खबरों में उलझ गए कि शो की नैया कहीं न कहीं वहीं डूब गई। जी हाँ, रोहित के साथ जो हादसा हुआ उसके चलते उन्हें करीबन 2 महीनों के लिए जेल में भी जाना पड़ा, भाई उन पर FIR दर्ज हुई।

0: और FIR भी ऐसी कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन लग रहा था, जिसके बाद शो में रोहित यानी कि ईशान के कैरेक्टर को रिप्लेस किया कृष्णा कौल ने। भाई कृष्णा को देखे तो कहीं न कहीं उनमें रोहित की झलक ही नजर आ रही थी, लेकिन दर्शक उनसे जुड़ नहीं पाए और अपने पुराने ईशान को भुला भी नहीं पाए। और कहीं ना कहीं कम टीआरपीस के चलते शो को बंद करवाने की नौबत आ गई। जी हाँ, तभी तो हाल ही में शो का रैपअप भी हुआ।
1: क्या बजाने वाले हो?
2: ये अवार्ड चाहे मुझे दिया गया है, पर सैराब एक टी

यानी कि 12 सितंबर को शो का आखिरी दिन शो था, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, वही रोहित चंडेल को उसी दिन बेल मिली, यानी कि वो उसी दिन जेल से बाहर आए जिस दिन उनके शो का लास्ट डे शूट था। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर तुरंत ही एक पोस्ट शेयर किया जहां पे उन्होंने अपनी आपबीती बताई और ये भी कहा कि वो कितना ज्यादा फॉर्चुनेट है क्योंकि शो के कलाकारों ने उन्हें खूब सपोर्ट किया। भाई मदिराक्षी उनके लिए एक अहम भूमिका बनकर खड़ी रही थी, उन्होंने इस मुश्किल समय में रोहित का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में मदिराक्षी का तो शुक्रिया किया ही, साथ ही कृष्णा कौल का भी शुक्रिया अदा किया कि किस तरीके से उन्होंने ईशान के किरदार में ढलकर उसको काफी जस्टिस दिया। लेकिन भाई कहानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला कर लिया। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं आखिर कैसा रहा शो का लास्ट डे शूट।

0: पे कैसे ये उभरता शो कंट्रोवर्सी में उलझ कर बंद हो गया पता ही नहीं चला, जिसके चलते फैंस भी बेहद अपसेट हैं। भाई उन्होंने इस कहानी का मोड़ कुछ और ही सोचा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत इस कहानी की काफी कम दिनों की होगी। भाई हम यही उम्मीद करेंगे कि ये कलाकार आपसे हमेशा यूं ही जुड़कर रहे और आपको एंटरटेन करते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
0: स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में नई अनुपमा की एक मुश्किल खत्म होती नहीं है कि दूसरी दस्तक दे देती है, और अब वो बिल्डर के इस झूठे फ्रॉड में फंसकर देखिए कैसे अपना हक मांगने के लिए पहुंच गई है, जहां पर उसी की तरह कई और लोग बिल्डर के झांसे में फंस चुके हैं। देखिए कैसे अनुपमा आज बन रही है उन सभी लोगों का सहारा, क्योंकि भाई कुछ लोग दिल के इतने कमजोर हैं कि अपने इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। लेकिन देखिए कैसे अनुपमा के एक सीख ने उन्हें ये सबक सिखा दिया है कि उन्हें अपने लिए हार नहीं माननी है।
2: अरे घर की कीमत इंसान के जान से ज्यादा है क्या? बोलो, संभालो अपने आप को, उठो उठो भाई, उठो उठो उठो उठो। ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? जिंदगी है, रोज करवट बदलती है, रोज नया पन्ना पलटती है। अगर किसी पन्ने पे धोखा लिखा हो तो तुम क्या किताब ही बंद कर दोगे? अगला पन्ना पलटो ने भाई। अगर कान्हा जी की कृपा रही ने, तो अगले पन्ने पे तुम्हें उम्मीद नजर आएगी, और उसके अगले पन्ने पे हिंसा। सचू कहूं छू,
3: मेरा सब कुछ चला गया, मुझे तो मेरी सांस भी अब मुझे बोझ लगती है।
2: समझती हूँ भाई तुम पर क्या बीत रही है, समझती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो हाल है वही मेरा हाल है, वही हम सबका हाल है। अरे हर सांस ऐसे लग रही है जैसे सीने में फांस बन के चुभ रही है।

अगर जान चली जाएगी तो हमारे परिवारों का क्या होगा, तुम्हारे उन बच्चों का क्या होगा जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी जिंदगी तुम्हें बनानी है। अरे हमारी जिंदगी क्या इतनी सस्ती है कि एक घटिया धोखेबाज लालची मक्कर बिल्डर के लिए ऐसे लुटा दे, अरे गुना वो करे और सजा हम अपने आप को दे। इतने बेवकूफ है क्या हम? अरे मैं तो खुद भी टूट गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इस बिल्डर के लिए मरना नहीं चाहती। ना मैं मरी हूँ और ना इस फ्रॉड के लिए मैं मरूंगी। अरे सब कहते हैं कि लड़ो मरो, मरना तो सभी को एक दिन, उससे पहले कम से कम अपने हक के लिए लड़ो तो।

स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई आज मनाया जा रहा है तीज का त्योहार और देखिए कैसे घर के सभी मर्द अपनी अपनी लेडीज को सजा रहे हैं और हाथों में रचा रहे हैं उनके मेहंदी।

0: अच्छा मैं भी आया।
1: मुंबई में गणेशोत्सव की होती है जबरदस्त धूम, जहां घर घर पधारते हैं बप्पा। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री के कई कलाकार अपने घरों में बप्पा को लेकर आते हैं और करते हैं उनका स्वागत आगमन उत्सव के साथ। तो मिलते हैं उन सितारों से जिनके घर पर हुआ है गणपति जी का आगमन।

0: आज गा कर हुआ गणपति बाप्पा का आगमन। देखिए सितारों की गणेश भक्ति
1: आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है।
0: बाप्पा आए खुशियाँ लाए,
1: उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, जिसकी
0: भाई धूमधाम से हो चुकी है गणेशोत्सव की शुरुआत। और ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी आप सबके चहेते सितारे अपने घर पर बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। कोई नाच गा रहा है, किसी की आंखें नम है, किसी के लिए ये साल बेहद खास है तो कोई पहली बार पापा को अपने घर ला रहा है। भाई सबके दिल में पापा के लिए आस्था भरपूर है, तभी तो वो पहुंच गए हैं गणपति बाप्पा को अपने घर ले जाने के लिए और करने के लिए उनकी दिल से सेवा। ये सारे नज़ारे आपके लिए सास बहू और बेटियां लेकर आया है, तो आइए देखते हैं इस साल कौन कौन गणपति बाप्पा को अपने घर ले जा रहा है और किसके लिए ये साल एकदम खास होने वाला है। तो आइए देखते हैं बाप्पा के आगमन की धूम। तो भाई दिव्यांका और विवेक पहुंच गए हैं पंडाल में अपने बापा को घर ले जाने के लिए। इन्होंने की बापा की आरती और ये साल दिव्यांका और विवेक के लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल उनके बच्चे भी उनके साथ बापा की आस्था में लीन होने वाले हैं। भाई ये पहली बार होगा जब दिव्यांका और विवेक अपने बच्चों संग इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे, जिसके लिए ये दोनों ही काफी एक्साइटेड है।

नाच गाकर पापा का आगमन कर रही हैं दीपिका सिंह और उनके साथ है उनके हस्बैंड रोहित। हर साल की तरह इस साल भी वो पापा के स्वागत के लिए तैयार हैं और उनकी सेवा करने के लिए भी

0: साल की तरह इस साल भी देवीना और गुरमीत पहुंच गए हैं पापा को अपने घर ले जाने के लिए और आज इनकी बच्चियां भी इनके साथ हैं। वैसे इस साल की खास बात ये है कि देवीना गुरमीत की बच्चियों ने अपने हाथों से डेकोरेशन किया है और इस साल ये काफी एक्साइटेड है अपने साथ पापा को ले जाने और उनकी सेवा करने के लिए।
1: इमोशन तो हर बार की तरह मतलब है डेफिनेटली, गणपति पापा आ रहे हैं इस बार और भी ज्यादा इमोशनल है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो उसके लिए आपको एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। पापा हमारे लिए बहुत ही काइंड थे, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो एज अ बंगाली मैं बाहर से आई, गुरमीत बिहार से यहाँ आए हैं और यहाँ आके जब आप गणपति बापा जो कि एकदम महाराष्ट्र के एक्चुअल उत्सव है और उसमें हम लोग जब रंग गए तो बापा भी मतलब दिल खोल के हमारे साथ खड़े हुए
2: हैं। चूज किया है कलर सब कुछ डिजाइन इन्होंने किया है, ये तो एक्चुअली दो दिन से सो ही नहीं रहे, उनको बस इंतजार कर रहे हैं कि गणपति जी कब आएंगे घर पे, तो ये बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि बच्चों में इस ईद से भगवान को समझ पाए, वो आस्था समझ पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक देवीना काफी
1: बताऊँ तो हम लोग कभी ऐसे सिखाए नहीं है, कभी भी नहीं, जो वो करते पता नहीं खुद ही उसने किया, उसको देख के इसने करना स्टार्ट कर दिया और एक्चुअली हमें मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि भगवान का आशीर्वाद ले लो, भगवान का आशीर्वाद है तो वो सीख जाते हैं। देखो कितना क्यूरियस है।
2: नहीं, खुशी होती है, मुझे लगता है कि ये मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा था, जब बचपन में मैं देखता था उनको पूजा करते हुए वैसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ, वैसे ही भगवान पे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास रखता हूँ। आई थिंक वो मैंने उनसे सीखा, मेरे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है।

तरह इस साल भी नाच गा कर संभावना सेठ पापा का आगमन कर रही हैं और देखिए कैसे वो पापा की भक्ति में लीन हो चुकी हैं। वैसे संभावना और उनके हस्बैंड के लिए ये साल काफी खास है। उनके घर नन्हा मेहमान जो आया है, ऐसे में ये साल है एकदम स्पेशल।

श्री तालुखंडे पहुंची हैं इस पंडाल में अपनी मम्मी और इस नन्हे से बच्चे के साथ, जो कर रही हैं बापा की आरती और तैयार हैं ये घर में इनका स्वागत करने के लिए।

0: अर्जुन बिजलानी पहुंच गए हैं पंडाल में अपनी बीवी और बच्चे संग, जो ले जा रहे हैं पापा को अपने घर। भाई हर साल अर्जुन दिल से पापा की भक्ति करते हैं, और इस बार क्या खास होने वाला है आइए उन्हीं से जानते हैं।
1: स्पेशल मोमेंट यही होता है कि पापा हर साल आपको सेवा करने का मौका देते हैं, कि हर साल आप लाभ पाते हो, और आई थिंक उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। और अगर आप देखें तो हर साल जितने लोग घर पे गणपति लाते हैं उनकी संख्या बढ़ती है।
2: जी जी,
1: लालबाग का राजा तो मैं जाता ही हूँ, इस साल भी जाऊंगा। और बहुत मुझे ये 11 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ गणपति पापा के लिए, और गॉड हैज बीन वेरी काइंड हमारी फैमिली के ऊपर, हमेशा उनकी ब्लेसिंग रही है। तो मेरे लिए ये फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है। उसी बात पे कहूंगा गणपति बापा मंगल मूर्ति।

पंडाल पर हर साल भारती बप्पा को अपने घर ले जाने आती है, लेकिन आज भारती नहीं आई है बल्कि आए हैं उनके बेटे गोला, जो पापा को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। इसके अलावा डेजी शाह है, जो धूमधाम से बप्पा का स्वागत कर रही है।

बापा आ चुके हैं पर अभी भी लाइटिंग बाकी है, उनका डेकोरेशन जो है वो पूरा बाकी है, सो स्टिल प्रोसेस में है। अभी हमारे पास है 2 घंटे है 12 बजने तक के, सो होपफुली तब तक रेडी हो जाएगा सब कुछ। वही जो हम लोग जनरली होता है, मतलब पूरी फैमिली आ जाती है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली अहमदाबाद से, गुजरात से, हम सब साथ में रहते हैं। देन पहले दिन सारे फ्रेंड्स वगैरह, आप सभी भी आते हो पहले दिन की आरती के अंदर, तो बस यही है। बार ग्रे कलर के हैं, तो मैंने 7 साल तक मरून कलर के गणपति रखे थे। आई थिंक 7 साल के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा अभी पापा का कलर चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है। सो देन पिछले साल इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम ग्रे गणपति लाएंगे। इस बार भी ग्रे ही है, बट दिस टाइम अराउंड इट्स लिटिल ग्रे सिल्वर टाइप्स। वो तो डेफिनेटली है, पर कहते हैं कि जब पापा से आप कुछ मांगते हो तो उसे आपको रिवील नहीं करना चाहिए, सो बुरी नज़र। सो आई थिंक मैं तब तक रिवील नहीं करूँगी जब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। बेटर होम, अ बिगर होम, दैट हैपेंड। आई वॉन्टेड अ बेटर कार, वो हुआ। आई वॉन्टेड अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, वो हुआ। पहले मेरे पास सिर्फ एक बच्चा था, फिर उसके बाद मैंने विश किया था कि एक और आए, तो एक और आया, उसके बाद एक और विश किया था तो एक और आ गया, सो अभी 3 है मेरे पास। तो हाँ, ऐसी छोटी छोटी थोड़ी बड़ी बड़ी विशेज भी है, विच आई डोंट रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, जो पूरी भी हुई है, बट इट्स जस्ट दैट क्या होता है ना, कनेक्शन आपका और भगवान का एक पर्सनल होता है, उसको अगर आप ज़्यादा, आप डेफिनेटली लोगों को एडवाइस कर सकते हो, एडवोकेट कर सकते हो कि आप जो डिवाइन है उनके साथ आप अपना रिश्ता है उसे स्ट्रेंथन करें, बट जो चीज़ें आप उनसे मांगते हैं वो भी काफ़ी पर्सनल होती है, जिसे आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। ओ माई गॉड, नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी 2-3 प्रेयर्स है जो मैं शावर लेने के बाद करती हूँ। इट डजंट रियली, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह 7 बजे उठ के ये मेरे प्रेयर्स करनी है। मेरा मानना ये है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से करो। आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका जो इंटेंशन है वो जेन्यून होना चाहिए। वो आप भले रात के 4 बजे करो या दोपहर के 3 बजे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे।

0: बस यार जो हर साल होती है आई थिंक इससे अच्छी कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती। आई थिंक पापा जब घर आते हैं तो बस लाइफ अमेजिंग हो जाती है और हम वेट करते हैं यार हम सब। और इस बार मेरे साथ सर आए हैं बहुत सारे यार, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए पापा को, तो पापा आ रहे हैं आई थिंक कुछ 14-15 साल हो गए। जीवन भर का रिश्ता है, जीवन भर का नाता है।
1: गणपति बप्पा बंगाल मूर्ति।
0: थोड़ी साउथ इंडियन फील है थोड़ी, और कोशिश की हम थोड़ी अलग रहे। हम लोग पंजाबी हैं लेकिन थोड़ी साउथ इंडियन फील है, तो देखते हैं आप लोग आएंगे तो आप लोग पता लगेगा।

गणपति बप्पा व्हाइट है, तो ये हमारा थीम है। और तो कुछ नहीं, बस लोगों का प्यार जो मिलता है, जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं, मैं चाहती हूँ कि बप्पा हम सबको खुशियाँ दे, हम सारे लोगों की जो भी डिफिकल्टीज है वो दूर करे, हमें शक्ति दे और आगे का पूरा साल एकदम खुशी से भर दे। बार हम पहली बार 3 दिन का बिठा रहे हैं, नहीं तो हम हमेशा 1.5 दिन का करते हैं, पर इस साल हम 3 दिन का रख रहे हैं और ये हमारा 5वां साल है। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, मैं हर साल सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए ही रुकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये मैं दिल से करती हूँ, मुझे कोई बोलता नहीं है, ये दिल से आता है। और बचपन से मुझे बहुत मैं बप्पा के बहुत करीब हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरे गाने आएंगे, मैं गाना गा रही हूँ, मेरे सॉन्ग्स आएंगे, यस। और अभी फिल्म्स में अभी हमारी एंट्री होगी, तो थैंक यू गणपति।

0: बाप्पा, मंगल मूर्ति।
1: मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये पूछना सही नहीं है कि क्या मूड है, ये पूछना चाहिए कि हार्ट बीट कितनी तेज हो रखी है, क्योंकि ऐसा गेस्ट घर पे आ रहा है जिससे ये शहर चलता है, और हर जगह जब भी शुरुआत नहीं होती है तो वो गणपति महाराज के नाम से होती है। सो आई थिंक आज के दिन में हर इंसान यही चाहेगा कि एक अच्छी शुरुआत हो, और जितने भी दिन के लिए लोग गणपति रख रहे हैं वो पूरे प्यार से और शिद्दत से और मेहनत से रखते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे रखें, चाहे वो एक कमरे के घर में रखें या फिर एक महल के घर में रखें। बस दिल ये है कि दिल से अच्छी ख्वाहिश हो और महाराज से अच्छी प्रार्थना हो और सबको खुशियाँ रहे, मज़ा आए। मैं दिल्ली का रहने वाला, बॉम्बे में 20 साल निकल गए अगर, और उसके बाद इतना अगर लोगों का अपनापन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो उसके बीच में जो जर्नी थी वहाँ तक पहुँचने के जितने भी विघ्न है वो बाबा नहीं आ रहे हैं, और जितने बार भी सिद्धि विनायक में गया हूँ मुझे बहुत शौक है।
2: बहुत खुशियाँ, मैं चाहती हूँ कि हम में से किसी कोई संगठन आए, सारे संगठन ये हर दें, और यही बापा जी के चरणों में ये प्रार्थना है, सबको बहुत खुश रखे और समृद्धि दे।
3: हर साल मैम बापा,
2: मैं तो जब मैं इनसे शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं अकेले पीजी में भी रहती थी तब से लेकर आ रही हूँ, तो मेरी तो बहुत श्रद्धा है, मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, सो बचपन से लेकर आज तक देखती ही आई हूँ, और इनको भी कुछ कहना है, इनसे
3: बोलिए बोलिए बोलिए।
2: से गणपति बप्पा मोरिया,
3: दिखाई नहीं दे रहा, घूम के

पापा आते हैं, बहुत सारी दुआएं देके जाते हैं और बहुत प्यार देते हैं, और मैं बहुत दिल से पापा को रखता हूँ मेरे पास। हमारे घर पे 7 दिन के गणपति होते हैं, बहुत ही मेरी मम्मी, हमारा परिवार, पूरी लोग इतने खुश होते हैं जिसका हिसाब हूँ। और मेरे लिए इस साल के पापा तो बहुत ही अलग है, क्योंकि कल कुछ आएगा पापा के इसमें मेरे तरफ से, तो कल ही बात करेंगे इस मामले में।

भाई ये तो एक ओकेजन है, मेरी फैमिली ने ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक रखा है कि मन्नत मांगी थी, तो इनके घर पर ला रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इनके साथ आया हूँ। एंड मैं यहाँ आने के बाद मुझे जो आनंद आ रहा है वो क्या बताऊँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्टर्स के साथ होती हैं, पूजा तो होती है, साथ में शूटिंग्स भी होती हैं, तो हमें निकलना भी पड़ता है और घर वाले थोड़े से वो भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है तो मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।

0: तो आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं।
1: कांची जल्दी चलो, कितना टाइम लेती हो तैयार होने में?
2: I'm ready. चले।
3: है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। जल्द आने वाला है रियलिटी शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा, जहां पर जोड़ियां देंगी रियलिटी चेक। और ऐसे में इस शो का हिस्सा बने हैं शब्बीर आलूवालिया और कांची कौल।
4: प्यार करो तो पंगा, प्यार ना करो तो भी पंगा, बेचारा पति करे तो करे क्या,
5: जमाना चाहे कोई भी हो।
3: साथ है राहुल वैद्य और दिशा परमार। सामने आई है इसकी एडवांस झलक, जहां शुरू हो गई है दोनों जोड़ियों की नोकझोंक। आप भी डाल लीजिए इस खास झलक पर एक नजर।
6: ये क्या प्रिय,
7: ज्यादा तानसेन मत बनो, 10 दिन से कपड़े नहीं सूखे हैं।
6: किंतु प्रिय,
7: किंतु विंतु कुछ नहीं, धूप वाला गाना आता है तो गाओ वरना चुप रहो।

अमरनाथ फेम एक्टर मनीष जौरा ने खरीदा है अपना नया घर। ऐसे में उन्होंने की अपने नए घर पर खास पूजा। देखिए कैसे वो परिवार संग कर रहे हैं अपने ड्रीम हाउस में खास पूजा।

0: जल्द होने वाला है डॉक्टर आरंभी और मन्नत का महासंगम एपिसोड, जहां पर आरंभी और मन्नत एक दूसरे की हिम्मत बनेंगी और सिखाएंगी अपने दुश्मनों को सबक। देख लीजिए इसकी खास झलक।
1: तुनारी को शक्ति का रूप लेकर सच और सही की ढाल बनना होगा।
2: राक्षसों से नहीं डरेंगे, ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे
1: और जीतेंगे भी। हम एक दूसरे की हिम्मत है और हथियार भी।

0: नए नए रियलिटी शोज, नए नए कंटेस्टेंट्स पर बनना सबको सिर्फ एक ही है, प्रियंका चहर चौधरी।
1: साथ ही प्रियंका चहर चौधरी ने ये वीडियो डाला है जहां वो बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को कह रही हैं कि वो उसकी कॉपी ना करे। अब ये इशारा किसकी तरफ है?
0: थिंकिंग की कुछ नए लेसन दे दो, क्योंकि पुराने वालों से ना मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ और आई एम श्योर आप सब भी हो गए होंगे। सो आई एम थिंकिंग टू गिव देम सम न्यू लेसन। व्हाट यू से, कमेंट बिलो।
2: सीरियल जगधात्री में आ गया है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहां जगधात्री को पता चल चुका है कि रुद्र जिंदा है और वो उसे पकड़ने के मिशन में निकल चुकी है। लेकिन गणेशोत्सव की भीड़ के बीच क्या जगधात्री रुद्र को पकड़ पाएगी? देखिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा।
1: बदला रुद्र का अंदाज, के सामने आई रुद्र के जिंदा होने की सच्चाई।
3: उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, जिसकी रखवाली आ रहे।
1: त्योहार पे होगा सच का खुलासा।

टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी है और ऐसे में जगधात्री का साथ दे रही है एसीपी गीता। जी हाँ, एसीपी गीता के किरदार में नजर आ रही है मोना बासु और अब गीता और जगधात्री मिलकर सच का पता लगा रहे हैं और सच की खोज में ये लोग इतने आगे बढ़ गए कि जगधात्री को रुद्र नजर आ गया। भाई पहले तो जगधात्री को शक था कि रुद्र जिंदा है, लेकिन आज उसने अपनी आँखों से देख लिया। हालांकि रुद्र का सूट बूट में उसका अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है, एटीट्यूड हो या फिर हो चेहरे और बॉडी पर बनाए ये टैटू। कहीं ना कहीं रुद्र को भी पता है कि जगधात्री ने उसे देख लिया है, तभी तो वो जगधात्री से छुपकर भाग रहा है।

0: वो रुद्र था, अभी देखा मैंने उसे।
1: घर तो रोका क्यों नहीं, चले तो भाज।
2: चल रहा है गणपति बप्पा का आगमन और इसका फायदा उठाते हुए रुद्र ने अपने चेहरे पर गुलाल लगा लिया है ताकि जगधात्री उसे पहचान ना सके। लेकिन जगधात्री ने ठान लिया है कि वो रुद्र को पकड़ कर ही रहेगी।

0: दूसरी तरफ एसीपी गीता पहुंच गई है जगदात्री के घर पर घर वालों से पूछताछ करने के लिए, जिस वजह से घर वाले भी शौक में हैं।
1: गीता अहलावत नाम से हमारा एसीपी गीता अहलावत क्राइम ब्रांच, आप लोगों के घर की बहू को रुद्र देशमुख के मर्डर केस में अरेस्ट किया सर, उसी सिलसिले में आप लोगों से बातचीत करने आई थी।
2: हाँ, अरेस्ट किया और वो भाग गई, कुछ पता चला
3: आप उसके बारे में? कुछ पता नहीं आई यहाँ
1: जी? नहीं,
3: क्या कारण है आपका?
1: मैं तो आप लोगों से सवाल करने आई थी।
3: सीरियसली, मुझे की मर्डर चेयर से फरार हो गई और आप हमें क्वेश्चन करने आई हैं यहाँ पे?
1: जी, मर्डरर से जो सवाल करने थे हमने कर लिए और वो मिलेगी तो और अच्छे से करेंगे, पर फिलहाल आप सबकी बारिश है।
3: एक्सक्यूज मी, आप यह हम सबसे सवाल कर रहे हैं?
4: आपने आने में काफी देर क्योंकि मर्डर मिल भी गई और जेल पहुंच
2: भी गई।
4: आपने आने में काफी देर कर दी ऑफिसर, क्योंकि मर्डर पकड़ी भी गई और जेल भी पहुंच चुकी।
0: जैसे ही ये बात तपस्या को पता चली तो उसके तो होश उड़ गए। पहले तो उसने ड्रामा किया और झट से जाकर रुद्र को कॉल किया।
2: मतलब आदमी अपने घर के बच्चे के खोने का दुख ना मनाए, इसी डिलेमा में जिंदा है या मर
5: गया। आप लोग प्लीज ये सारी बातें क्यों मेरे सामने ये बातें कर रही हैं? आप लोग प्लीज बाहर जाइए।
3: किसी भी चीज की जरूरत हो ना तुम हमें बताना। ये पे है ना।

0: मनी ड्रामा हुआ वो तो इसी पे आई थी एंड वो तुम्हारे केस के रिलेटेड ना क्वेश्चंस पूछ रही थी. क्या हुआ? क्या होगा? हम पकड़े जाएंगे, हमें जेल हो जाएगी, फिर क्या होगा? प्लीज टेल मी.
1: अब ऐसे में देखिए जगदात्री भी जुट गई है कि जैसे तैसे रुद्र का फोन ऑन हो और वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके. तो भाई अब देखना होगा गणेशोत्सव, क्या जगदात्री कर पाएगी रुद्र के काले इरादों का खुलासा या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड़. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
2: गणेश चतुर्थी का त्योहार नाचते गाते बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस बार किन किन सितारों के घर पधारे हैं हमारे प्यारे बप्पा.
3: एक दो तीन चार गणपति तेरी जय जयकार, पाँच छह सात आठ गणपति तेरी क्या बात.
1: सितारों के घर आए बप्पा,
3: तेरी जय जयकार, पाँच छह सात आठ गणपति तेरी क्या बात, विघ्नों का तू है.
1: भक्ति में लीन टीवी की बहू, बेटियां और बेटे, गणेशोत्सव की धूम.

साल की तरह इस साल भी अनुपमा की बा यानी कि अल्पना बुच अपने घर पर पापा को लेकर आई है और इस साल भी उन्होंने रखी है एक अनोखी थीम। भाई आज की इनकी थीम है लीला का मेला, जहाँ पापा रिलैक्सिंग मूड में है और यहाँ लगा है मेला। तो भाई पूरे दिल से अल्पना बाबा की सेवा करती है, अपने हाथों से थीम की सजावट करती है, पूरा परिवार एकजुट होकर त्योहार मनाता है। तो आइए अल्पना से ही जानते हैं उनकी इस खास थीम के बारे में और साथ ही गणेश उत्सव में क्या खास होने वाला है इसके बारे में।

0: हर जब पंडाल और मंडप में जहाँ मूर्तियाँ होती है ना, हमने वो बराबर नोटिस किया है कि हर मूर्ति राह देखती है कि मुझे किसके घर जाना है। वो अपने आप ही वो एक वाइब्स बनती है, अपने आप ही आपको पसंद आ जाती है वो मूर्ति कि ये आएगी मेरे घर। और वो बापा भी हमारी राह देखते हैं कि मुझे लेकर जाओ। तो वैसी ये मूर्ति है। हर साल मूर्ति के जो बापा की बैठक होती है, तो वो कभी राजा के रूप में होती है, कभी पंडित के रूप में होती है, उस तरह से उनकी बैठक होती है। पर इस बार मैंने जो बैठक मतलब मेरी मूर्ति में जो बापा का पोस्चर है वो इस तरह से है कि वो एक सुकून से आराम से पैरों पे पैर चढ़ा के हम जैसे कैसे रिसोर्ट में जाते हैं और आराम से बैठे, तो ऐसे वो मेरे घर आए और एकदम आराम और शांति के लिए आए। कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं ये इस तरह का डेकोरेशन करने में। और मुंबई में हम लोग इतने व्यस्त हैं अपने काम में, तो सुबह काम पर जाने से पहले रात को आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी मेहरबूज मेरी जो हाउस हेल्प है सोनी, उन दोनों ने बहुत मेहनत की। और लास्ट 7 दिन से मेरी बेटी भव्या, क्योंकि वो खुद आर्ट डायरेक्टर है, और मेरे दामाद ध्रुव राठौड़, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मतलब रोज़ रात को 2 बजना तो हमारे लिए कॉमन था, रोज़ रात को 2 बजे ही हम सोए। सब अपने अपने काम से आते थे और ये डेकोरेशन हमने किया है। और शुरुआत हम ये मंदिर से करते हैं क्योंकि कहीं पे भी, खास करके गाँव में जो मेले होते हैं, वहाँ पहले भगवान का दर्शन किया जाता है। भगवान का दर्शन करके फिर हम आगे अपने जीवन का आनंद लेते हैं, पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस हिसाब से पहले यहाँ हमने एक साईं बाबा की मूर्ति और ये मंदिर बनाया है। साथ में प्रकृति को याद करके हमने यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन पेड़ भी बनाया है, जहाँ पे जिसकी छाँव में गाय खड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये हुआ ये। फिर यहाँ से हम जब मेले में मंदिर से उतर के हम मेले में आते हैं, पहले हम मंदिर में जाने के लिए यहाँ एक फूलों की छोटी सी एक दुकान बनाई है। उसके बाद में जब हमने दर्शन कर लिए, फिर हम एंटरटेनमेंट की ओर, मेला तो मजे जहाँ मजा करने लोग आते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। तो ये एक है जो ये अखाड़ा, मतलब वहाँ पहलवान लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और वो मेले के दिन यहाँ पे कंपटीशन होती है। गांव-गांव से पहलवान लोग आते हैं और कंपटीशन में जीतते हैं, प्राइज मिलते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह का एक अखाड़ा बनाया है। उसके बाद औरतें भी ऐसे, अब कैसा है कि ऑनलाइन शॉपिंग 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाती है, पर तब ऐसा नहीं था। साल में एक बार हम शॉपिंग करने जाते थे ऐसे मेले में। तो औरतें पूरे साल वो सपना देखती है कि इस बार मेले में मैं ऐसी साड़ी खरीदूंगी, वैसी साड़ी खरीदूंगी, मुझे इस रंग की साड़ी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी की दुकान बनाई है, आप देख सकते हो छोटी छोटी साड़ियाँ भी लटक रही है। फिर यहाँ पे ये बैंगल्स, साड़ी खरीदना है तो उसके साथ तो अलंकार तो आते ही आते हैं, तो ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए बैंगल्स कांच की मैंने एक छोटी सी वो रेखड़ी बनाई हमने। फिर ये हमारे बापा, आपने देख लिए। इसके बाद खाना पीना होता है, तो खाने पीने के लिए यहाँ पे ये बुढ़ी के बाल, जैसे कैंडी फ्लॉस बोलते हैं, तो ये बुढ़ी के बाल हमने बनाए। ये अभी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई खड़ा भी रहता होगा या कोई दुकानों के बाहर या मेले में रहता हो, तो ये हमने बनाए। और ये सबको प्यारी ऐसी पानीपुरी वाला वो तो होती है। यहाँ पे एक ये जो है, हम गाय को घास, हम खाते हैं तो साथ में हम अपने प्राणियों को क्यों भूखा रखें, तो इसलिए ये जो गाय है यहाँ पे वो घास बेच रही है, तो हम उसे गाय को भी खिला दें। फिर आती है बच्चों की बात, बच्चे कैसे मजा कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये मेरी गो राउंड है। ये सब कुछ हमने हाथ से उसे बनाया है। इसमें से बहुत, मतलब 10% चीज शायद ऐसी होगी जो कुछ बाहर से खरीदोगे, सब कुछ हाथों से बनाया है। और ये यहाँ पे टिफिन हाउस यानी साउथ इंडियन एक सुंदर होटल बनाई है। आज का मेनू भी यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे फरसान मिलेंगे, सेव और वो सब। और ये यहाँ पे सर्कस है, यहाँ पे सर्कस है, और ये जाइंट वेल। और ये है लीला का मेला, क्योंकि आप सभी जानते हो कि लीला, मैं किरदार करती हूँ अनुपमा में, और लीला का मेला इसलिए कि बस लोग जैसे ईश्वर की लीला में हम आनंद लेते हैं, ऐसे मेरे मेले में भी यहाँ पे आप आइए और आनंद लीजिए।
1: ये रिश्ता क्या क्या कहलाता है के सेट पर आए हैं बाप्पा और प्रोड्यूसर राजन शाही और साथ पूरी कास्ट एंड क्रू मिलकर बाप्पा की भक्ति में लीन हो चुकी है। आइए देखते हैं ये नज़ारे।

अनुपमा के सेट पर भी बाप्पा बिराजे हैं और कास्ट एंड क्रू मिलकर बाप्पा की भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं सेट के ये नज़ारे कि कैसे यहाँ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है में काजल का किरदार निभाने वाली प्रीति अपने घर पर बप्पा लेकर आई है और इनकी थीम भी है एकदम अनोखी। कृष्ण रूपी बप्पा है ये और देखिए कैसी है इनकी गणेश भक्ति। आइए इन्हीं से जानते हैं इस बार की इनकी थीम और एक्साइटमेंट के बारे में।

0: एक्चुअली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जस्ट गई हूँ और पहला गणपति मुझे जो दिखा और मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और इतने प्यारे लगे ना हमें विद बांसुरी और कपड़ी क्या था हमारे साथ। तो इसी तरह मम्मा ये पिंक और ये जो वाइट का कॉम्बिनेशन है, इनकी पगड़ी और जो दुपट्टा लगा हुआ है, पूरे कपड़े साथ में स्टिच्ड है, तो देखते एकदम पसंद आ गए एकदम। और मेरा पिंक का फेवरेट है ही एक्चुअली। तो ये चीज़ तो रेडीमेड है, पर ये जो फ्लावर्स है ये ऊपर के सब फिर मैंने लगाए आकर, ये जो लड़ियां हैं पीछे आकर लगाई। आप कितना भी रेडी करके ले लो पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब आप खुद का कुछ इनपुट ना लगाओ, जैसे लाइट्स लगाई है, ये ब्लू कलर की लाइट्स लगाई है, छोटे छोटे जो इनपुट्स, ये मुझे बहुत मज़ा आता है क्राफ्ट करने, तो वो थोड़ा थोड़ा लास्ट तक चलता रहता है। अरे नहीं, यहाँ थोड़ी ऑरेंज होनी चाहिए, यहाँ ब्लू होनी चाहिए। तो ये 19वां साल है मेरा, शादी के पहले से गाती हूँ, तो हर बार जो भी मांगा है गणपति जी से हमेशा मिला है। छूट चल रही है मेरी को रात को, मैं आती हूँ 9 बजे और इसकी एग्जाम भी है 2 हफ्ते से, तो आने के बाद पहले तो उसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन में लगती हूँ। लाइक 12 बजे के बाद मैं 1 घंटा थोड़ा बहुत डेकोरेशन में लगती हूँ, साफ सफाई बहुत सारी चीज़ें होती है, पर एक्चुअली वो ताकत दे देते हैं, बिल्कुल थकावट नहीं होती। मैं कल भी मैं आई हूँ, मैं 1 मिनट 2 घंटा बैठे, 2 घंटे से कंटिन्यूसली चढ़ाई करो करो कुछ नहीं करो चढ़ाओ। मेट्स को कितना भी बोल दो वो अप टू द मार्क नहीं होता आपको, जब तक आप खुद नहीं करो ना तो मज़ा नहीं आता। और ये इतने सालों का रूटीन है ना कि ये 3-4 दिन इतनी थकावट होती है पर मज़ा आता है। हमारा सेट है क्योंकि मैं बॉम्बे की बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, तो जो वरण भात बोलते हैं महाराष्ट्र का, तो वरण भात, आलू की सब्जी, खीर और पापड़ अचार, ये जो फर्स्ट जो भगवान को फेवरेट है भगवान का खाना। थैंक यू गणपति जी, आपने हमें इतना कुछ दिया है। और आजकल जो हालात हो रहे हैं दुनिया के, बस उसको भी ठीक कर दीजिए। हम एज अ फैमिली तो खुश है, पर मैं दूसरी फैमिलीज को भी चाहती हूँ कि दूसरी फैमिलीज भी खुश रहे। और इतनी सारी जो नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं उसके लिए भी मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि इतनी सारी फैमिलीज एक साथ जा रही हैं वो ना जाए। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको जो रख रहे हैं, जो इतनी मेहनत करके दूसरों के घर जा रहे हैं, हर साल इसी तरह मनाइए। खूब खूब शुभकामनाएं। मेरे बेटे ने पहली बार गणपति जी को इस बार उठाया, ही इज वेरी एक्साइटेड और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
1: बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, पर
0: मैं ये डर रहा था,
1: मतलब बहुत ज्यादा डर रहा था, पर मम्मा ने हेल्प कर ली, तो इसमें क्या
0: प्रॉब्लम नहीं हुई ना।
1: हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
2: ये 4th साल है जब आलिशा पनवर के घर बापा बिराजे हैं और इस साल भी वो बाल रूपी गणेशी अपने घर पर लेकर आई हैं। तो आइए देखते हैं कैसी है इस बार की इनकी बापा की तैयारियां, सजावट और एक्साइटमेंट।

हर साल बहुत स्पेशल होता है गणपति पे. ये मेरा चौथा साल है गणपति रखने का एंड लकीली एंड बप्पा के आशीर्वाद से मैं रख पा रही हूँ हर साल. तो आई फील वेरी लकी. मुझे बचपन से गणेश चतुर्थी का बहुत शौक था और अब जैसे मैं वो पूरा कर पा रही पप्पा के साथ सेलिब्रेट करके, तो वो सोने पे सुहागा है. और मेरे पप्पा बहुत क्यूट हैं क्योंकि ये बाल गणपति का रूप है और एक बहुत ही खिलखिलाता हुआ स्माइली फेस है. मज़ा आ रहा है. अभी अभी पप्पा की मुंह दिखाई हुई है, बड़े क्यूट लग रहे हैं. मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से. एंड नॉर्थ इंडिया में पप्पा को घर लेकर नहीं आते हैं. ये जो त्यौहार है महाराष्ट्र का, ये मैंने जब मैं यहाँ नई नई आई थी मुंबई, तो मैंने देखा, तो इट फैसिनेटेड मी. तो मेरा शुरू से जब मैं नई नई मुंबई आई थी, मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती थी, तो मुझे हमेशा मन में इच्छा होती थी कि किसी दिन मुझे भी रखना है, यू नो, मैं भी पप्पा अपने लेकर आऊँगी अपने घर पर और फिर सबको बुलाऊँगी दर्शन के लिए. अब कर पा रही हूँ. लेकिन बचपन में मैं उन्हें घर तो नहीं लेकर आ पाती थी, लेकिन हाँ, मेरा फास्ट होता था हमेशा गणेश चतुर्थी पे. मैं उनकी पूजा करती थी अच्छे से. एंड पप्पा के साथ एक अच्छा रिश्ता है बिकॉज रक्षाबंधन पे उन्हें राखी भी बांधती हूँ मैं और मेरी छोटी बहन. सो आई थिंक ऐसा त्यौहार है ना ये, कि पॉजिटिव वाइब्स होती है चारों तरफ. आप जिन लोगों से इतने वक्त तक नहीं मिले होते उनसे भी मिल लेते हो, और ऑब्वियसली पप्पा आपके साथ आपके घर पे, तो यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑल अराउंड यू एंड दे आर सो पॉजिटिव.

आदर्श गुप्ता अपने परिवार संग गणेशोत्सव का ये त्योहार मना रहे हैं। इन्होंने पापा की मुँह दिखाई कराई, पापा की आरती की और परिवार मिलकर हो गया गणेश जी की भक्ति में लीन। वही विघ्नहर्ता के लिए इन्होंने साज सजावट की है। तो आइए देखते हैं किस तरह ये मना रहे हैं गणेशोत्सव।

0: को
1: गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और जैसे कि आप देख रहे हैं गणेश जी काफी मशहूर होने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये देखिए क्या ये सब मामी ने सजाया है। वैसे तो एकदम मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से पंडाल को सजा देगी, और बाकी का अभी मैं देख रहा हूँ ये मैंने लगाए हैं, ये देखिए यहाँ पे असली दिया जलेगा अभी जब गणेश जी का मुख दिखाया जाएगा। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग देखना हमारे गणपति जी कितने क्यूटे, हमें आपको बोलना चाहूँगा।
2: और आप सभी को देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों से सभी से हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें उत्कर्ष के लिए, शिवांगी स्नेहा के लिए, कि ये प्रोग्रेस करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, और गणपति बप्पा इनके विघ्न लाइफ के हरे।

0: इसके अलावा बॉलीवुड हो या टेलीविजन, सभी सितारे अपने घर बापा का आगमन कर रहे हैं। बापा की भक्ति में लीन हो चुके हैं और मना रहे हैं गणेशोत्सव का ये त्योहार आस्था के साथ। मुंबई से शीतल कावा, कुणाल उपाध्याय और नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सास बहू और बेटियां के गणपति स्पेशल में आज बस इतना ही। हमारी यही कामना है कि बप्पा का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और आपके घर खुशियों से भरे रहे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में धूमधाम के साथ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, गणपति मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। जीएनटी पर गणेशोत्सव की रौनक, भक्तिभाव से बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संग मनाइए गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व। मुंबई में एक्टर सोनू सूद समेत कई हंसियों के घर आए बप्पा, तुषार कपूर और दूसरे कलाकारों के घर भी पधारे गजानंद, सितारों ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। पुणे में निकली श्री मंदिर दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ भव्य दिव्य जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत।

0: तो चलिए आप भी मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है और आज से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया है। घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पंडालों में विराज रहे हैं बप्पा। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से विनायक की पूजा अर्चना होगी। आपको दिखाते हैं गणपति के 25 तस्वीरें। सबसे पहले देखिए मुंबई में मशहूर लाल बादशाह राजा की तस्वीर। लाल बादशाह राजा के पंडाल को आज सुबह 8 बजे से भक्तों के लिए खोल दिया गया है और लाल बादशाह राजा के इस दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। माना जाता है कि लाल बादशाह राजा के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए एक और शानदार तस्वीर आपको दिखाते हैं लाल बादशाह राजा के पंडाल से। ही ये तस्वीर भी आई है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लाल बादशाह राजा को आज अमेरिकी करेंसी डॉलर की विशाल माला अर्पित की गई। देखिए श्रद्धा अपनी अपनी है, हर कोई अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने आराध्य को प्रसन्न भी करता है, तो यही तस्वीर उसकी वानगी है। वैसे तो देखिए मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा को हर साल गणेशोत्सव के दौरान भक्तों द्वारा भारी मात्रा में दान चढ़ाया जाता है, लेकिन अमेरिकन डॉलर की माला इस बार आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर एक भक्त की ओर से लाल बादशाह राजा को अमेरिकी डॉलर की माला अर्पित की गई। देखिए रौनक और रंग लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई के जीएसबी पंडाल की तस्वीर आई है सामने, वो आपको दिखा देते हैं। मुंबई के किंग्स सर्कल के जीएसबी गणपति पंडाल की तस्वीरें आई हैं। आज सुबह से भव्य दर्शन यहां पर शुरू हो गए। सबसे अमीर गणपति के रूप में इनकी मान्यता है। इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से सजे हैं जीएसबी के महागणपति। जीएसबी के गणेशोत्सव को 703,27,00,000 रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई के चिंचपोकली चार राजा की तस्वीरें। मुंबई के चिंचपोकली का प्रसिद्ध गणेशोत्सव, जिसे चिंचपोकली चा चिंतामणि कहा जाता है, मुंबई के सबसे पुराने और भव्य मंडलों में से एक है। इसकी स्थापना 1920 में चिंचपोकली के स्थानीय मिल मजदूरों और निवासियों द्वारा की गई थी। यहां पर आज सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। चिंचपोकली चा राजा के दर्शन करने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज और हस्तियां भी पहुंचती हैं। इनमें अडानी परिवार के प्रणव और करण अडानी भी शामिल रहे। अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये भी मुंबई की ही तस्वीर, सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीर, जहां की मान्यता है कि यहां पर अगर एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मंदिर में आज तड़के सुबह दिव्य आरती हुई। वैसे तो मुंबई में हर साल बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया ही जाता है। शहर के कोने कोने में बने पंडालों में गणपति के दर्शन होते हैं, लेकिन सिद्धि विनायक की बात ही अलग है। हर दिन मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खास तौर से आज गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव के शुभारंभ के पावन मौके पर यहां खास तौर से भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अगली तस्वीर देखिए जरा। गणेशोत्सव के अवसर पर भव्य पंडालों के अलग अलग तस्वीरें आई हैं। घर घर पर बप्पा बिराजे हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। बप्पा सबके घर पर आए हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के यहाँ गणपति पूजा की तस्वीरें। सीएम फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा पर गणपति बिराजे। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भक्तिभाव के साथ गणपति की पूजा और आरती की। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। चलिए ये तस्वीरें गणपति पंडाल की हैं। तमाम लोगों की अटूट आस्था इसमें है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर हर किसी के घर पर बप्पा की पूजा होती है। आपको दिखा रहे हैं मुंबई में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के घर गणेशोत्सव की तस्वीरें। चलिए ये तस्वीर भी आई है, देख लीजिए जरा। इस तस्वीर को भी पुणे की तस्वीर है। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ूसेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंखनाद के साथ श्रीमंत दगड़ूसेठ गणपति का जुलूस यहां पर निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की।
1: गणपति हमारे साथ।
0: चलिए ये तस्वीर भी देख लीजिए जरा, नागपुर की तस्वीर है, श्रद्धा आस्था उल्लास की तस्वीर है। नागपुर शहर के मशहूर गणपति नागपुर के राजा का पंडाल में आगमन हुआ, विधिवत पूजा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के साथ नागपुर के राजा गणपति बप्पा अपने भव्य पंडाल में विराजमान हुए। देखिए तस्वीरें ही तस्वीरें, और एक और अलग तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो आपके सामने है। ये तस्वीर आई है नागपुर के प्रसिद्ध श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में गणेशोत्सव की। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में भव्य और दिव्य रूप से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। महाराष्ट्र के जालना की तस्वीर भी देख लीजिए, गणेशोत्सव का त्योहार यहां भी मनाया गया। जालना में गणेश चतुर्थी का भव्य उत्साह देखा गया। यहां के राजूर का राजूरेश्वर गणपति मंदिर काफी प्रसिद्ध है। चलिए महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें भी देख लीजिए, रंग उल्लास उत्सव यहां भी मनाया गया। अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत का उत्साह देखते ही बन रहा है। बप्पा की प्रतिमाएं घर घर पहुंचने लगी हैं, उनके स्वागत में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई शामिल हुआ। अब देखिए गणपति का एक अनोखा सा स्वरूप। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ठाणे में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के भव्य पंचमुखी गणपति सैंड आर्ट का अनावरण हुआ। ये विशाल कलाकृति आपके सामने है। तस्वीरें आई हैं जयपुर के गणेशोत्सव मंडल से सामने। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर जयपुर में मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार शानदार तरीके से यहां पर सजाया गया, और इस मौके पर यहां पर भव्य संख्या में लोग पहुंचे। जयपुर के मोती डूंगरी की तस्वीर, यहां के मंदिर की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, मंदिर में गणपति के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। और ये तस्वीरें रखते हैं आपके सामने सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। इस मंदिर में 3 दिवसीय लक्खी मेला गणेश चतुर्थी पर पूरे परवान पर नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस मौके पर पूजा अर्चना की। देश के पूर्वोत्तर में गणेशोत्सव की धूम है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर असम के गुवाहाटी के प्रसिद्ध गणपति मंदिर की। गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अगली तस्वीर है उत्तर प्रदेश में चंदौसी के गणेश सिद्धपीठ मंदिर के। चंदौसी में श्री गणेश सिद्धपीठ में गणेशोत्सव की रौनक दिखाई दी। यहाँ दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें भी लगी रही। दक्षिण भारत में श्री गणेशोत्सव के रंग देख लीजिए। हैदराबाद में गणपति की तस्वीरें आई हैं। सोने चांदी से सुसज्जित गणपति के दर्शन के लिए हर कोई मंत्रमुग्ध होया। हैदराबाद की तस्वीर देखिए, गणपति की तस्वीर। हैदराबाद के खैरताबाद में गणपति की 69 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर लगाई गई, जिसको कहा जाता है पंचमुख संकटहारा महागणपति। बंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर की तस्वीरें, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में तड़के से ही यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। तमिलनाडु की तस्वीर है, गणेशोत्सव की तस्वीर है। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में मंदिरों में भगवान विनायक की विशेष पूजा अर्चना हुई। तमिलनाडु में थूथुकुड़ी से गणेशोत्सव की एक और शानदार तस्वीर, यहां पर चतुर्थी के मौके पर भगवान विनायक की अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई। ये तस्वीरें देखिए चेन्नई में गणेशोत्सव की। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर गणपति विराजे, और वहां की ये तस्वीरें। अब ये तस्वीर है तमिलनाडु के पिल्लयारी पट्टी में करगप्पा विनायक मंदिर की। इस मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी। तो चलिए जगेंद्रपुर, ऐसे ही तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारी वहां कवरेज दिन भर जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज़। नमस्कार।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85% से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में धूमधाम के साथ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह से आ रही बप्पा के स्वागत की तस्वीरें, गणपति मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़। जीएनटी पर गणेशोत्सव की रौनक, भक्ति भाव से बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियों के घर आए बप्पा, तुषार कपूर और दूसरे कलाकारों के घर भी पधारे गजानन, सितारों ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ भव्य दिव्य जुलूस, ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भगवान गणेश की आराधना का विशेष उत्सव है गणेश उत्सव। हर साल गणपति बप्पा आते हैं और भक्तों से अगले बरस जल्दी आने का वादा करके विदा हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति के हर स्वरूप से बरसती है कृपा। श्री गणेश के अंग अंग से भक्तों के लिए आशीर्वाद बरसता है, उनके व्यक्तित्व में छिपे हैं कई रहस्य। आज हम आपको भगवान गणेश के अलग अलग अंगों के रहस्य के बारे में समझाएंगे। श्री गणेश के अद्भुत स्वरूप में छिपा है विशेष संदेश।

देवताओं में जिन्हें अग्रणी स्थान प्राप्त है। गणपति की महिमा का बखान धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने भी गणेश जी की स्तुति का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। वो कहते हैं कि अंजन निर्विकल्प निराकार मयंकर, इसका अर्थ है गणेश जी का कभी जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मे हैं, वो निराकार।

धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गणपति का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ। उसके बाद की लीला ने गणपति को गजानन नाम दिया। माना जाता है कि गणपति के अंग अंग में मानव का कल्याण छिपा है। उनके हर अंग से बरसती है भक्तों पर कृपा। वो सुख करता है तो साथ ही दुख हरता भी है। बुद्धि और विद्या के दाता संकट हरी भगवान सर से लेकर पांव तक कृपा बरसाते हैं करुणा।

0: भगवान के चाहे स्वरूप स्थूल स्वरूप हो, तो हर चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं देखना चाहिए, जितना आनंद चाहते उतना कम जाने, ये कहलाता है। भगवान के स्वरूप के दर्शन करके आनंद ले। भगवान के छोटे नेत्र हर व्यक्ति को बुराइयां न ढूंढने का संकेत देते हैं। बड़े कान लोगों की भावनाओं को समझने और सुनने के लिए कहते हैं, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, और हर कार्य को नियंत्रण से करना उनकी सूंड बताता है। और नियंत्रण कौन से कार्य पर रखे, ये भगवान का बड़ा मस्तक बड़ा सिर ये इस बात को हमें बताता है।
1: बड़े बड़े कान हो या फिर छोटी छोटी आंखें, उनका बड़ा सा मस्तक हो या फिर बप्पा की एक दंत बनने की कथा, उनके स्वरूप में मानव का कल्याण निहित है। प्रथम पूजनीय है बप्पा। जितने अनूठे गुण हैं, उतना ही रहस्यमय है उनका स्वरूप। आज हम अपनी इस खास पेशकश में गणपति के स्वरूप की महिमा का बखान करेंगे। वो लंबोदर क्यों कहलाते हैं, उनकी सूंड में कौन सा रहस्य छिपा है, क्या कहती है उनकी संपूर्ण काया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणपति के व्यक्तित्व में ही मानव जीवन का दर्शन छिपा है, उनकी काया में ही मानव के लिए सीख छिपी है। बस हमें उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके हर अंग से सीख लेकर उसे अपने जीवन में उतारना है। जानकार बताते हैं कि गणपति के हर अंग में छिपा है एक रहस्य। कहने को गणपति के साक्षात रूप का दर्शन सारे विघ्नों को हरने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति के अंग अंग में वरदान विराजमान है। उनका हर अंग एक संदेश देता है जिसे अक्सर लोग नहीं समझ पाते। आज गणपति के अंग अंग से मिलने वाले वरदान के बारे में जान लीजिए और पा लीजिए गणपति की संपूर्ण आभा का अचूक वरदान। सबसे पहले हम आपको भगवान गणेश के बड़े मस्तक की महिमा बताते हैं।
0: उनका बड़ा मस्तिष्क बड़ी बुद्धि और तीव्र बुद्धि का द्योतक है। जब भगवान विचार करके ही लिखते हैं, महाराज ने भी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को ही चुना था, और उनकी विनम्र प्रार्थना में यही बात छुपी थी कि आप जो शब्द बताएंगे मुझे समझेंगे और उसके पश्चात ही आप लिखेंगे। तो गणेश जी के अतिरिक्त इतनी बुद्धिमान कोई व्यक्ति ही नहीं था जो कि महाभारत लिख पाते।
1: श्री गणेश का बड़ा मस्तक। गणेश जी का मस्तक काफी बड़ा है। माना जाता है कि बड़े सिर वाले नेतृत्व करने में योग्य होते हैं, इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर ये भी ज्ञान देता है, अपनी सोच को हमेशा बड़ा बनाए रखिए। पुराणों में गणपति के जीवन की कथाएं हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश का एक दंत रूप, आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला।
0: इसमें दो बातें कथा जुड़ी आती हैं कि एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव के दर्शन जब करने गए तो मार्ग में उनको गणेश जी ने रोक लिया। क्रोधवश परशुराम जी ने उनसे युद्ध किया और भगवान के परशु से ही भगवान का एक दांत टूट गया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव और माता पार्वती ने क्रोधवश परशुराम जी को श्राप भी दिया था। परंतु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश जी की स्तुति उन्होंने की परशुराम जी ने और एक दंत उनको नाम दिया।
1: एक दंत करेंगे दुखों का अंत। बचपन में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम ने अपनी फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया। गणपति का टूटा हुआ दांत बुद्धिमता और दृढ़ निश्चय का वरदान देता है। उनके टूटे हुए दंत के दर्शन से भक्तों को हर वस्तु के सदुपयोग का वरदान मिलता है। गणपति का दंत सिखाता है कि जीवन में कुछ भी बेकार नहीं होता, हर वस्तु का सदुपयोग हो सकता है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी जीवन की समस्याओं को हल करने में सबसे आगे रहते हैं। धर्म ग्रंथों में कई प्रसंग हमें मिलते हैं, जब भी देवों पर कोई संकट आया तब गणपति ने अपनी युक्ति से हर बाधा को पार किया। गणपति के बड़े कान भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, लेकिन गजानन के बड़े कान भक्तों को क्या वरदान देते हैं, चलिए आपको बताते हैं।
0: बी ए गुड लिसनर, सबसे पहला संकेत यही मिलता है कि आपको सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। जो व्यक्ति सर्व प्रकार के लोगों की सुनता है, और विशेष तौर पर बप्पा के बड़े कानों का एक अर्थ और है, हम तो मांगते ही रहते हैं, हम तो भगवान के अतिरिक्त और किससे मांगेंगे, तो भगवान हमारी छोटी से छोटी बात भी करुणा स्वरूप इतने सुंदर है कि अपने बड़े कानों से हमारी छोटी से छोटी भावनाओं को भी सुन लेते हैं और हमारे पर कृपा करते हैं।
1: गणेश जी के बड़े कानों का रहस्य, गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसीलिए इन्हें गजकर्ण और सूपकर्ण कहा जाता है। अंग विज्ञान के मुताबिक लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का रहस्य ये भी है कि वो सबकी सुनते हैं और फिर बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। गणपति के कर्णों के दर्शन से गज विनायक बुद्धिशाली और विवेकशाली होने का वर मिलता है। ये भी भाव पैदा करते हैं कि भक्त सही और गलत में सही निर्णय ले सके। प्रथम पूज्य श्री गणेश की महिमा दिव्य है, उनके हर अंग से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। गणपति को बड़े पेट के कारण लंबोदर भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे भी है उनके भक्तों के लिए एक संदेश। आगे हम आपको बताएंगे गणपति के बड़े पेट और उनकी सूंघ का रहस्य। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो।
2: वो एक दंत भी हैं, लंबोदर भी हैं, गजानन भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसे सुखहरता श्री गणेश की कृपा मिल जाए उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होना तय है। भगवान गणेश को लंबोदर भी कहते हैं, लंबोदर यानी बड़ा हो उदर जिसका। चलिए आपको बताते हैं गणपति के बड़े उदर से कौन सी कृपा मिलती है, और साथ ही आपको बताते हैं गणपति ने अपना वाहन मूषक को ही क्यों चुना।

0: शास्त्रों में गणेश जी को अव्यक्त और अनंत कहा गया है, अर्थात ये विचारों से परे, अभिव्यक्ति से परे तथा शाश्वत हैं। इसीलिए उनके जैसा कोई नहीं, ये सर्वव्यापी है। आस्था कहती है कि सर से लेकर पांव तक संकटहारी है गणपति, चाहे उनकी सूंड हो या फिर बड़े बड़े कान या फिर हो बड़ा सा पेट, उनकी भक्ति वरदान से कम नहीं। अभी आपने गणपति के बड़े मस्तक, बड़े कान और एक दंत का रहस्य जाना। चलिए आपको बताते हैं कि भगवान की आंख छोटी क्यों है और इसके पीछे आखिर कौन सा राज छिपा है। गणपति की आंखों का रहस्य। गणपति की आंखें छोटी हैं। गणेश जी की छोटी आंखें हर चीज को सूक्ष्मता से देखने का ज्ञान देती हैं। हर कार्य में देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। कहते हैं कि जिस इंसान को गजानन गणेश का आशीर्वाद मिल जाए, उसे जीवन में कोई विघ्न बाधा छू तक नहीं सकती। गणपति महोत्सव के दौरान माना जाता है कि गणपति धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं, उनकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं गणेश जी के कल्याणकारी सूंड की। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हों, उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।
1: सूंड इस प्रकार से बताती है कि एक तो कर्म और एक कर्म के ऊपर नियंत्रण। किसी भी कर्म को करना आसान है, परंतु नियंत्रण से करने में ही वो किसी कार्य को संपन्न करती है। अपने कार्यों पे जिस व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, वही कार्यों को विशेषता से और विशेषज्ञता से लेकर आता है।
0: श्री गणेश जी की कल्याणकारी सूंड गजानन की सूंड हमेशा हिलती जुलती रहती है। सूंड हमेशा हर पल सक्रिय रहने का संकेत देती है। गजानन की सूंड का दर्शन भक्तों को हमेशा सजग और सक्रिय रहने का वरदान देता है। भक्तों पर लंबोदर अंग अंग से कृपा बरसाते हैं, तभी तो वो शुभता के देव कहलाते हैं। आपको बता दें कि गणपति को बड़े पेट के कारण ही लंबोदर कहा जाता है। गणेश जी का बड़ा पेट ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ बातों को भी पचाना सीखें।
1: लंबोदर कहने के कई कारण हैं। भगवान को एक तो मोदक अधिक प्रिय है, इस कारण से भी भगवान का उदर बड़ा है, लेकिन साथ में भगवान का अभिप्राय है कि सुंदर सुस्वादु भोजन ही पेट में न जाए। इसके अतिरिक्त लोगों के जो कष्ट है उनको भी हरते हैं, और भगवान का स्वरूप इतना सुंदर कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में सुख की कामना रखने वाला व्यक्ति हो, जीवन ऐश्वर्यशाली चाहता हो, तो भगवान के लंबोदर नाम का जाप करना और लंबोदर के दर्शन करना अनंत फलदायी हो जाता है।
0: क्या है गणपति का बड़ा उदर? गणपति का पेट बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है, यानी लंबा है उदर जिनका। गणपति के बड़े पेट के दर्शन से भक्तों में हर अच्छी और बुरी बातों को पचा लेने का गुण विकसित होता है। किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सूझबूझ का भाव स्थापित होता है। अंग विज्ञान के मुताबिक बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। तो देखा आपने कितने रहस्यमय है गणपति। बप्पा ने अपनी उन चीजों को भी अपनी खूबी बना लिया जिन्हें कई लोग कमी मानते हैं, इसीलिए तो बप्पा खास हैं। चलिए अब आपको बताते हैं गणपति को मोदक सबसे प्रिय क्यों है। मोदक में छिपा है ज्ञान। भगवान गणपति का प्रिय भोग मोदक है। मोदक का अर्थ होता है आनंद देने वाला। साथ ही मोदक मान का प्रतीक है। मोदक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, जिसका अर्थ है हमेशा सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिससे वो जीवन का आनंद ले सके। माना जाता है कि जीवन की हर विघ्न बाधा का नाश करने के लिए गणपति की आराधना अमोघ है। गणपति की भक्ति और उनकी उपासना करके आप मनवांछित फल पा सकते हैं, क्योंकि अगर विनायक प्रसन्न हुए तो जीवन में हो जाएगा शुभता का श्री गणेश। लेकिन अद्भुत स्वरूप वाले श्री गणेश ने मूषक को क्यों चुना अपना वाहन, ये भी बताएंगे।
1: मूषक छोटी इच्छाओं का प्रतीक है। बाकी कथा इसमें भी आती है कि एक राक्षस था जो मूषक स्वरूप धारण करके पूरे इस धरती को आक्रांता कर रहा था, खोद डाला था। तब भगवान ने उसके ऊपर है ना पास डालकर उसको अंकुश में रखा और उसको अपना वाहन स्वीकार किया था। इसका जो स्वरूप मूषक का है, एक तो वो कारण और दूसरा अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको बड़ा संयमित करना, ये भगवान के वाहन का विशेष स्वरूप बताता है।
0: गणेश जी का वाहन चूहा ही क्यों? गणेश जी को बुद्धि और तीव्र समझ वाला देवता माना जाता है। चूहा भी ऐसा ही तीव्र बुद्धि वाला जीव है, साथ ही ये अत्यंत चंचल भी है। गणेश जी बुद्धि और चंचल मन को नियंत्रित करते हैं। मान्यता ये है कि गजमुखासुर को गणेश जी ने चूहे के रूप में अपना वाहन बना रखा है। मान्यता ये भी है कि एक गंधर्व शाप के कारण पहले मूषक बना, फिर गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी की उपासना बिना मूषक के करने पर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। आगे हम आपको बताएंगे गणपति की वर मुद्रा और उनकी कुल्हाड़ी का रहस्य। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो।
2: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बता रहे हैं गणपति के स्वरूप में छिपे रहस्यों के बारे में। गजानन के ये शुभकारी अंग कैसे लाते हैं आपके जीवन में उमंग, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं कौन से बप्पा के अंग हैं जो जिनमें छिपा है मानव का कल्याण।

0: भगवान गणेश अपने हाथ से सभी को आशीर्वाद देते हैं। वो प्रथम पूजनीय हैं और ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है। माना जाता है कि मृदुल पुराण और गणेश पुराण में गणपति के 32 स्वरूपों का वर्णन है, जिनके हर स्वरूप से बरसता है आशीर्वाद।
1: गणेश जी की गर्दन गणपति बनने का, गणाध्यक्ष बनने का आशीर्वाद भगवान ने जब सिर लगाया हाथी का तभी मिला। इनको गणाध्यक्ष भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। गण का अर्थ है समूह, गण का अर्थ है देवताओं के देवता, और साथ में सबसे पहले अग्रध्यक्ष। सारी दिशाओं को भी गण कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए सारी दिशाओं के स्वामी भी गणपति हैं। तो भगवान के स्वरूप का हर एक शरीर के अंग का विशेष महत्व बढ़ जाता है।
0: आज हम अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे भगवान गणपति के स्वरूप में समाये ज्ञान की बात, जिसका बोध आप सभी को होना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उनकी चार भुजाओं से कैसे बरसती है भक्तों पर कृपा। भगवान गणेश की चार भुजाओं में छिपी है मानव कल्याण की कामना। यह हमें जीवन में संयम, नियंत्रण, आत्मसंतोष और सतमार्ग पर चलने का संदेश देती है। पहली भुजा में धारण करते हैं अंकुश, ये मन और इच्छाओं पर संयम रखने का प्रतीक है। दूसरी भुजा में साधते हैं पाश, ये मोह अहंकार और बुराइयों को नियंत्रित करने का संकेत देता है। तीसरी भुजा में मोदक लिए हुए हैं, ये आत्मज्ञान, आंतरिक सुख और संतोष का प्रतीक है। चौथी भुजा आशीर्वाद मुद्रा है, ये भक्तों को अभयदान, करुणा और सुरक्षा का आश्वासन देती है।
1: भगवान को सबसे पहले तो गणेश पंचरात्र, गणेश पुराण और गणपत्य जो संप्रदाय है उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि ये गणेश जी इस चार युगों में अलग अलग प्रकार से इनके अवतारी हैं, परंतु हर अवतार का मूल अवधारणा इस संसार का कल्याण करना ही है।
0: माना जाता है कि जो भी संसार के साधन हैं, उनके स्वामी श्री गणेश हैं। वो हमेशा ज्ञान और सुख और शांति का आशीर्वाद सभी को देते हैं। चलिए आपको बताते हैं गणपति की कुल्हाड़ी में जीवन का कौन सा संदेश छिपा है। भगवान गणपति का शस्त्र, भगवान के शस्त्र का नाम है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से गणपति ने कई राक्षसों का अंत किया। हाथों में कुल्हाड़ी दर्शाती है कि वो सभी बंधनों से मुक्त हैं। अगर मनुष्य चाहे तो वो भी ऐसा कर सकता है, वो क्रोध, लालच और बुराइयों को काट सकता है। साथ ही ये संदेश देती है कि हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एकमात्र ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जिसके सर पर श्री गणेश की कृपा हो, भला उसे कोई बाधा कैसे परेशान कर सकती है। माना जाता है कि गणेशोत्सव में श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अनंत चतुर्दशी तक बप्पा धरती पर ही रहेंगे। और माना यह भी जाता है कि इस समय जो भी भक्त उनकी उपासना करता है वो मन वांछित फल पा सकता है। तो अब देर नहीं कीजिए, इस गणेशोत्सव पर गजानन से मांग लीजिए शुभता और मंगल कामना का आशीर्वाद।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत देश में हो चुकी है। शहर शहर बप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सजे हैं, जो लोगों के

0: घड़ी में बापात, चाबी के गुच्छों और पेन में विघ्नहर्ता की छवि, पेंटिंग्स में बापा, धातु और लकड़ी में बापा का स्वरूप, कांच के शोपीस और सजावटी आइटम में गजानन की छवि। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ गौरीपुत्र गणेश ही नजर आएंगे। ये कोई दुकान नहीं है बल्कि विघ्नहर्ता का ये अनोखा सा संसार सजा है गुजरात के जामनगर के रहने वाले दिलीप ध्रुव के घर में, जहां बापा की एक दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, तीस नहीं, बल्कि 3,000 कलाकृतियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं।
1: मेरे पास टोटल मिला के 3,000 गणपति है, उसमें से 800 गणपति की मूर्तियां है, 200 किचन है, 500 गणपति की वुडन फ्रेम है, और सब मिला के 3,000 हो गए है। और मेरे पास मैंने ये सब एक गणेश गैलरी में एक डिस्प्ले किया है और लोगों पर अच्छी तरह से देख सके, इसलिए मैंने गैलरी बनवाई है।
0: इस अनोखी गैलरी में बाप्पा अलग अलग आकार, साइज, डिजाइन और रंग में मिल जाएंगे। इन 3,000 कलाकृतियों का संग्रह करने में दिलीप भाई को 40 साल का लंबा वक्त लगा है, तब जाकर वो ये अनोखा संसार सजा पाए हैं। दिलीप भाई का दावा है कि आप जिस स्वरूप में बाप्पा को सोचोगे उस स्वरूप में बाप्पा उनके पास मौजूद हैं।
1: लास्ट 40 इयर्स से गणपति का कलेक्शन कर रहा हूँ। आज मेरे पास गणेश जी के हर एक स्वरूप पे गणपति है, स्कूटर चलाता, पछी क्रिकेट रमता गणपति, क्या आप कोई पण स्वरूप में बोलो मेरे पास गणेश जी है।
0: गणेशोत्सव के मौके पर बाप्पा की अनोखी गैलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो यहाँ पर आ रहा है वो बाप्पा के इस विशाल संग्रह को देखकर अभिभूत है।
2: जामनगर में करीब 9 दिनों का 8 दिनों का वो गणपति का महोत्सव चलता है, उसमें आपको अलग अलग स्वरूप अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3,000 से भी ज्यादा गणपति के अलग अलग स्वरूप और गणपति के अलग अलग मीडियम में आपको गणपति देखने को मिलेंगे। प्रतिमाएं हैं, पोस्टर्स हैं, कीचेन्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि आपने शायद देखा भी नहीं होगा। चावल में भी बने हुए हैं, सब तरह के आपको देखने मिलेंगे मूषक महाराज के साथ में। तो आप जरूर एक बार इधर आइए और अपने इस आर्ट गैलरी का लाभ लीजिए।
0: आस्था और भक्ति जब अपने चरम को छू जाए तो वो केवल एक भावना नहीं रह जाती बल्कि भक्त का भगवान के प्रति अटूट समर्पण बन जाता है। ऐसा ही समर्पण दिलीप भाई का विघ्नहर्ता के प्रति है, जिसे उन्होंने इस अनोखी गैलरी की हर छोटी से छोटी चीज में संजोया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। गुड न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की रौनक श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियों के घर में राजे बप्पा, तुषार कपूर सहित अन्य कलाकारों के घर भी पधारे मंगल मूर्ति, सितारों ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ जुलूस में दिखे आस्था के रंग, ढोल ताशों के साथ गणपति का स्वागत।

इंदौर के खदराना में 7 करोड़ के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार। भगवान को चढ़ाया गया 1.25 लाख मोदक का भोग। 10 दिनों तक चलेगा महाउत्सव। बद्रीनाथ धाम में वरहा जयंती पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित पवित्र वरहा शिला का पूजन, उतारी गई आरती।

बिहार के कपिल देव रावत ने रचा नया इतिहास। 72 की उम्र में 24,000 फीट की पैराग्लाइडिंग युवाओं के लिए बने मिसाल।

बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो भाई हमारे जीएनटी स्टूडियो में भी बप्पा पधार चुके हैं, तो हर और जय घोष बप्पा का हो रहा है। और गुड न्यूज टुडे पर भी आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग मना रहे हैं बप्पा के साथ गणेश चतुर्थी। आपके साथ मैं हूँ रवजोत रंधावा। गणेश चतुर्थी पर 200 साल बाद इस तरह का महासंयोग बना है, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे विघ्नहर्ता। भगवान गणेश का महापर्व है, आज से शुरू हो चुका है, जगह जगह पर इसके तमाम रंग भी देखने को मिल रहे हैं। और गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर देश भर के गणेश मंदिरों में किस तरह की रौनक है, कैसे भक्तिभाव के साथ भक्त पहुंच रहे हैं, बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। कतारें कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन भक्तों में जरा भी थकान नजर नहीं आती। मुंबई हो, जयपुर हो, कोई भी जगह हो, दिल्ली हो, हर जगह पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो रंग भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगी कि क्योंकि बप्पा पधार चुके हैं, खुशियां हर तरफ बिखरी हुई है, लेकिन बप्पा से क्या संदेश हम दे सकते हैं, बप्पा क्यों आए हैं, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और हम अपनी तरफ से किस तरीके से बप्पा के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, उनको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बप्पा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो आप रहिए हमारे साथ।

0: तो देखिए पूरा देश एक तरीके से बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। जीएनटी स्टूडियो में भी बप्पा विराजमान है, हर और जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शहर शहर बप्पा के दिव्य पंडाल सज चुके हैं, गणपति विराज चुके हैं और मुंबई से लेकर पुणे तक, नागपुर से लेकर जयपुर तक, तमाम जगहों पर, तमाम गणेश पंडालों में भव्यता दिव्यता साफ नजर आ रही है और इनमें गणपति की मनमोहक मूर्तियां सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी है। वैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां तो पंडाल भी आकर्षण का केंद्र है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई की रौनक वैसी बहुत अलग होती है। सबसे ज्यादा तो लालबाग चौराहा के दरबार की रौनक वाकई देखने लायक होती है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे मन्नतों के राजा भी इनको कहा जाता है और इसीलिए रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त यहाँ पहुंचते हैं। पुणे की तस्वीरें, जहां पर दगडूशेठ हलवाई मंदिर हो या फिर नागपुर का श्री गणेश टेकरी मंदिर, हर जगह पर केवल और केवल आपको बप्पा के भक्त लंबी कतारों में नजर आएंगे। बप्पा विराजमान है तो जाहिर सी बात है कि उनके दर्शन के लिए हर कोई पहुंच रहा है, लेकिन स्वागत जिस तरीके से हुआ है वो भी वाकई देखने लायक है। हर जगह पर शोभा यात्राएं निकाली गई। इस बीच अपने बिल्कुल पारंपरिक और ठेठ अंदाज में बप्पा विराजे हैं और वैसे ही ठेठ अंदाज में आपके पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे पर भी बप्पा पधारे, तो देखिए किस तरीके से हमने बप्पा का स्वागत किया।
1: तो देखिए जैसा कि हमने यानी जीएनटी की टीम ने आपसे वादा किया था कि हम तैयार हैं गणपति बप्पा को, अपने बप्पा को घर में लाने के लिए, तो आपको इस यात्रा में हम करने जा रहे हैं शामिल।
2: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया,
3: गणपति बप्पा
2: मोरया,
3: गणपति बप्पा
2: मोरया,
3: मंगल मूर्ति
2: मोरया।
1: तो चलिए, जो इंतजार आपने किया और जो इंतजार हमने किया, फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन अभी आपको मुख दर्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑफिस में जाकर आरती करेंगे, उसके बाद भी

0: गणपति जी को, खास करके इनकी जो पगड़ी है ना, जो इन्होंने साफा बांध रखा है, ये गुड न्यूज
1: टुडे का लग रहा है। ऊपर लोगो भी देख लो जरा, घंटे के साथ मैच करते हुए हम देख रहे हैं।
0: तो ये जो इन्होंने पगड़ी पहनी है ना रेड एंड व्हाइट वाली, ये गुड न्यूज टुडे का कलर है और गुड न्यूज टुडे की गणपति है, तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे लगने चाहिए।
1: चलिए एक बार कर लेते हैं, गणपति पापा
0: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
0: मोरिया।
2: भाई हमने भी पूरे स्वैग के साथ बप्पा का स्वागत किया है, जैसे हर कोई कर रहा है हर जगह पर, और मुंबई में तो रौनक नजर आ रही है। वैसे मुंबई नहीं बल्कि अगर हम बात करें पूरे देश की हर जगह पर, तो देखिए देश पूरी तरह से गणेशोत्सव के रंग में रंग चुका है। और इसी बीच हम आपके सामने अपने आपके पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे की तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, किस तरीके से विधि विधान के साथ हमने बप्पा का स्वागत किया। तो आज बप्पा की पूजा अर्चना किस तरीके से हुई वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि गणेश चतुर्थी यानी कि बप्पा से हम क्या सीखते हैं, क्यों इस बार ये पावन पर्व बहुत ज्यादा खास हो गया। दरअसल आपको ये भी बताएं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही, यानी कि आज चतुर्थी तिथि है, ये पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत आज सुबह 7:06 से हो चुकी है और ये तिथि कल तक चलेगी, यानी कि समापन होगा कल यानी मंगलवार को सुबह 7:44। तो आज ही गणेश चतुर्थी पर हरतालिका तीज का पर्व भी मनाया जा रहा है। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होगा और गणपति जी प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। हर मांगलिक कार्य सबसे पहले बप्पा की पूजा के साथ ही शुरू होता है। वहीं 1893 से महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की परंपरा रही है और इस बीच गणेश चतुर्थी पर 200 साल बाद एक बड़ा और महासंयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर भद्रयोग मालव्य योग बन रहा है और जब बुध अपनी राशि में हो तब भद्र योग बन रहा है। बुध अपनी राशि यानी कि कन्या में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ जब शुक्र अपनी या फिर उच्च राशि में हो तो मालव्य योग बनता है। अभी फिलहाल शुक्र अपनी राशि तुला में गोचर कर रहे हैं, भद्र और मालव्य योग भी पंच महापुरुष योग में ही शामिल। बुध का कन्या राशि शुक्र का तुला राशि में होना बहुत ही खास माना जाता है, ज्योतिषीय संयोग और शुभ संयोग इसमें माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर भी रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग बन रहे हैं और आज से गणेशोत्सव की शुरुआत भी हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई समेत देश भर के गणपति पंडालों में भक्तों का रेला लगा है। दिल्ली, जयपुर, सूरत, गली गली बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। तो चलिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई की रौनक दिखाने के लिए, धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली में किस तरीके से रौनक है वो बताने के लिए हमारे साथ श्वेता झा मौजूद हैं, क्योंकि असली रौनक मुंबई में होती तो पहले धर्म आप ही के पास आना चाहेंगे। गली गली हर जगह पर बप्पा विराजमान हो चुके हैं, आज मुंबई कैसी लग रही है, क्या पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगी हुई है?
3: बिल्कुल नवजोत, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने सुंदर इस समय गणपति बप्पा लग रहे हैं, मुंबई भी बिल्कुल उतनी ही सुंदर लग रही है। हर तरफ शानदार लाइटिंग्स, हर तरफ फूल और हारों से पंडालों को सजाया गया है, एक से बढ़कर एक स्वरूप लेकर के बप्पा जो है मुंबई, महाराष्ट्र, इस पूरे देश में पधारे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि रौनक मुंबई में ही देखने को मिलती है। सुबह से ही हमने गुड न्यूज़ टुडे के सारे दर्शकों को लालबाग के राजा का और वहाँ के इलाके, वहाँ के परिसर का हमने जो है रिपोर्टिंग करी, उन्हें दिखाया। लेकिन अब मैं पहुँच चुका हूँ उपनगर मुंबई में, एक ऐसे पंडाल, एक ऐसे मंडल में जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद भी और हमारे दर्शक भी दर्शन करें। बड़े अस्थीले से लोग यहाँ पर पहुँच करके जो है सेल्फीज भी ले सकते हैं, बड़े ही प्यार से आरती यहाँ गा सकते हैं। भव्य रूप गणपति बप्पा का मुंबई, उपनगर मुंबई में देखा जा रहा है। साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बप्पा बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, चर्चित हो गए। जब इनका आगमन हुआ था तो इतने ढेरों वायरल हुए थे इनके वीडियोस कि क्या ही कहना। ये देखिए मानव रूप लेकर के गरुण यहाँ पर विराजमान है और उनके ऊपर विट्ठल के रूप में गणपति बप्पा देखे जा रहे हैं। और वाकई में देखिए जहाँ एक तरफ बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद बप्पा के चरणों को छूने का मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ की ये तस्वीर है। बड़े प्यार से अस्थीले से यहाँ पर लोग आकर के बप्पा का प्यार ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, श्रद्धा भी यहाँ देखी जा रही है। और खास तौर से देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं विठल के रूप में बप्पा। और विघ्न हरने के लिए उपनगर मुंबई साकी नाका में इस समय स्थापित हो चुके हैं और जिनके दर्शन के लिए तमाम लोग दूर दराज से आ रहे हैं। नवजोत,
2: यही खूबसूरती, यही रंग है देखिए इस उत्सव का, क्योंकि खास तौर पर मुंबई में जहाँ पर धर्म मौजूद है, आपको हर दिन अलग अलग जगह किस तरीके से बप्पा के पंडाल सचे, क्योंकि थीम बेस्ड पंडाल वहाँ पर होते हैं, तो उसकी रौनक दिखाएंगे। लेकिन बप्पा क्योंकि केवल मुंबई महाराष्ट्र के ही नहीं, बप्पा तो पूरे विश्व के हैं, और इसीलिए हर जगह पर बप्पा का रंग चढ़ा हुआ है। जरा दिल्ली का रंग दिखाने के लिए हम सीधा आपको लिए चलते हैं, श्वेता झा हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, हालांकि मुंबई में तो बहुत अलग अनोखा रंग रहता है, लेकिन दिल्ली भी बप्पा के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है जहां आप मौजूद है, खासतौर पर दिखाइए तस्वीरें।
0: बिल्कुल, सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और सही कहा आपने, लगातार हम बता भी रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात ही अलग होती है, इस समय वहाँ रौनक देखने लायक होती है। लेकिन भाई दिल्ली भी पीछे नहीं है, देश की राजधानी है, और यहाँ पे दिल्ली चा राजा, जैसे मुंबई चा राजा हम दिखाते हैं, तो यहाँ दिल्ली के महाराजा यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और सबसे पहले उनकी खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने भव्य और दिव्य लग रहे हैं दिल्ली के महाराजा। आपको बता दें कि अगर आप गौर से देखें और हमारे कैमरामैन शैलेंद्र दिखाएं, तो इस बार यहां का जो थीम है वो है विघ्नहर्ता से विकास करता। तो आप गणपति के हाथों में ड्रोन देखेंगे, साथ ही साथ आप ब्रह्मोस देखेंगी, और आप देखिए किस तरह से, क्योंकि शंख तो उनके हाथ में है ही, गदा भी उनके हाथ में है, और उनका वाहन जो कि मूषक है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा किस तरह से प्रगति और उन्नति को दर्शाता इस बार यहाँ का दिल्ली का महाराजा जो है वो आपको नजर आ रहा है। और उनके पोशाक पर अगर आप नजर डालें तो पीतांबर और लाल उनका पोशाक है, उनकी ज्वेलरी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें सजाया गया है, और ये जो फेटा बांधा गया है वो भी अद्भुत है, ऑर्किड के फूल से बाकायदा पूरा ये जो मंच है वो सजाया जा रहा है, पूरे पंडाल की शोभा यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको हम बताएंगे। हालांकि यहाँ इस बार सिर्फ गणपति उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि आस्था और भक्ति का 25 साल मनाया जा रहा है, 25वां सेलिब्रेशन है यहाँ पर इस गणेश मंडल का। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि विघ्नहर्ता की पूजा सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य से पहले हम करते हैं, तो पहले मंत्र होता है। तो बनारस से खुद पुजारी जी आए हुए हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं।
4: हमारा नाम माधव शास्त्री है।
0: तो माधव जी, सबसे पहले जो गणपति का नाम लेने से पहले भी हम मंत्र कहते हैं,
4: गणपति का प्रथम मंत्र है लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनेनम परमम पवित्रम उद्यद्यवाकर ज्वलिका एकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। सारे विघ्नों को हरने वाला एक यही मंत्र है, और इसी मंत्र के प्रारंभ से शुभ काम शुरुआत होते हैं।
0: बिल्कुल, तो इसी मंत्र के प्रारंभ से शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और इस गणेश मंडल की शोभा किस तरह से इस बार सज रही है वो हम जानते हैं जी। आप अपना नाम बताएं।
5: मनोज वर्मा, मैं संस्था का संरक्षक हूँ
0: जी। मनोज जी ये बताएं, कैमरामैन शैलेंद्र को कहूंगी कि दिखाते रहिए। देखिए मनोज जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ गणपति तो हम देख ही रहे हैं जो दिल्ली के महाराजा हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मंच पर हम देख पा रहे हैं इस बार जो विशेष है, राधा कृष्ण की प्रतिमा। शैलेंद्र आप आगे दिखाते जाइए, राधा कृष्ण की प्रतिमा, और साथ ही साथ पंडरपुर से भगवान विट्ठल जी आए।
5: हाँ बिल्कुल आए हैं, भगवान विट्ठल जी हमारे यहाँ आए हैं, और हमारा ये इस टाइम इन्होंने स्पेशली सॉरी मैं
0: आप जिस तरह देख सकते हैं भगवान विट्ठल यहाँ पर विराजमान है, और साथ ही साथ संत तुकाराम यहाँ पर मौजूद हैं। विष्णु के अवतार कहा जाता है भगवान विट्ठल को, और जो कि आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ रुक्मणी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी पूजा भी हो रही है। महाराष्ट्र का चूंकि आपने नाम लिया, तो संत तुकाराम वहां पर बहुत बड़े ज्ञानी कवि थे, संत थे, और भगवान विट्ठल को विशेष करके जो कि विष्णु के अवतार हैं उनकी पूजा वो किया करते थे। तो इस बार यहाँ की जो शोभा है वो ये बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग भी दिल्ली के महाराजा के दर्शन के लिए यहाँ आएंगे, उनको ये बता दें द्वादश ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर बनाए गए हैं, उनके दर्शन भी वो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो आप आएंगे तो महाराजा, दिल्ली के महाराजा यानी कि गणेश जी के दर्शन के लिए, लेकिन उनके पिताजी के भी दर्शन यहाँ पर होंगे,
2: यानी पूरे परिवार के दर्शन यहाँ हो सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है जैसा आप बता रही हैं कि देखिए मुंबई में अभी तक हम यही कह रहे थे कि मुंबई में थीम बेस्ड पंडाल होते हैं, कोई ना कोई संदेश होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से तकनीक का एक संदेश यहाँ पर बप्पा देते नजर आ रहा है, पूरा शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है यानी दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ जहाँ आप मौजूद है कि वहाँ 25 साल से लगातार दिल्ली चा राजा की यहाँ पर धूम रही है, और बिल्कुल वैसी रौनक है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तीन खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुमित्रा मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य श्रीपद भी मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत क्योंकि आप ही से करूंगी आचार्य राज मिश्रा, पहला सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 200 साल बाद कहा जा रहा है कि ये बड़ा और महासंयोग बन रहा है, इस वक्त ग्रह दशा कैसी है, कौन से शुभ योग, कौन से शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं, पहले शुरुआत इसी से करेंगे।
6: नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं अपना, आपका और जयंती का एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो हम लोग अपने कानों से सुनते हैं उसके द्वारा जो हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं और हमारा जो परमात्मा से कनेक्टिविटी जो होती है, क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को कहता है कि जिस प्रकार आप सुनते हैं, जिस प्रकार आप विचार करते हैं, वो विचार आपका ब्रह्मांड के अंदर जाता है और ब्रह्मांड उसको कई गुना करके वापस करता है। तो मैं जीएनटी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हम लोग हर एक तीर्थ क्षेत्र का दर्शन कर पाते हैं और उसके माध्यम से हमारा जो ब्रेन है वो पॉजिटिव होता है और फिर ब्रह्मांड में वो ऊर्जा जाती है और हमें कई गुना करके वापस मिलती है और हमारी सराउंडिंग जो चीजें हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं इसके लिए हृदय से जितना भी धन्यवाद करूं गुड न्यूज का, मुझे लगता है बहुत कम होगा। आज के ग्रह पर बात करेंगे, बहुत सुंदर संयोग है, लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोग अपने घर पर दर्शक बैठे हुए हैं और बैठ करके गणेश जी का सुंदर दृश्य हम सब लोग देख पा रहे हैं। अलग अलग जगह गुड न्यूज के माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम देख पाए, लेकिन इतना ही नहीं, आइए हाथ जोड़ करके एक बार गुड न्यूज के माध्यम से अपने टीवी को, अपने फोन को आज मंदिर समझते हुए, क्योंकि गणेश जी का सुंदर दर्शन हो रहा है, एक बार स्मरण करेंगे और उसके बाद आज के ग्रह संयोग पर चर्चा करेंगे। अगर नवजोत जी ने समय दिया तो बिल्कुल, तो ये हाथ जोड़ करके एक बार श्रद्धा से प्रणाम कर ले भगवान गणेश जी को, हम सभी लोग अपने घरों में बैठ करके उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं।

0: ஜனம் உமாசுதம் சோக விநாசகாரகம் நமாமி விகனே ஸ்வர பாத பங்கஜம். கணேஷ பகவான் கீ ஜெய், விக்னஹர்த்தா பகவான் கீ ஜெய். तो नवजोत जी, अगर मैं इस बार ग्रह संयोग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं ग्रह इस बार खुद हमें वो प्रेरणा देने आए हैं कि इस बार गणपति की आराधना करने से हमारा जीवन परिवर्तित निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं कह सकता हूं इस बार अगर ग्रह योग की बात की जाए, आज कितना सुंदर संयोग है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों इंपॉर्टेंट प्लैनेट, चंद्रमा स्वग्रही होकर के इस टाइम पर विराजमान है। बुद्ध जो कि बुद्धि के दाता माने जाते हैं, श्री रामचरितमानस में बुद्ध को भगवान गणेश जी से जोड़ करके देखा जाता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंद करो कर जोर भय प्रसन्न प्रोम सकल मंज मनोरथ मोर। वो बुद्ध उच्चस्थ होकर के आज गणेश उत्सव के दिन स्वग्रही गोचर कर रहे, उच्चस्थ होकर के और स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। अगर आज मैं बृहस्पति की बात करूंगा, एग्जॉल्टेड पोजिशन के अंतर्गत उच्चस्थ पोजिशन के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति, बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा, गजकेसरी योग का और शुक्र चंद्रमा के साथ होने से गजकेसरी योग और लक्ष्मी पार्वती योग का सुंदर निर्माण आज हो रहा है। ऐसा संयोग बहुत कम होता है। कई बार आपके साथ चर्चा किया है मैंने नवजोत जी, और मैंने कहा है कि ये गणेश उत्सव वास्तविकता में मुझे लगता है कई सौ वर्षों बाद वाला गणेश उत्सव है, जिसमें दो बार हमें सर्वार सिद्धि योग 16 और 21 तारीख को प्राप्त होने जा रहा है। अमृत सिद्धि योग 16 तारीख को, रवि योग को वास्तविकता में बहुत दिव्य है, विचित्र है। मैं निवेदन करूंगा सुंदर गणेश जी का दर्शन घर में जीएनटी लगाकर करते रहिए, घर मंदिर बन जाएगा, कोना कोना सात्विक हो जाएगा। जी
1: बिल्कुल राजीव, वैसे आपको मैं स्टूडियो में आज मिस कर रही हूँ, आपको यहाँ से क्योंकि जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमारे गुड न्यूज टुडे के बप्पा के भी दर्शन करवा रहे हैं हम आपको, और हम जितने भी हमारे दर्शक हैं गुड न्यूज टुडे के उनको हम दर्शन करा ही रहे हैं। अच्छी खबरें, पॉजिटिविटी, जिसकी जिक्र राजी कर रहे थे बार बार, देखिए हमारा मकसद ही ये है और इसीलिए बप्पा हमारे साथ हैं, ताकि समाज में हर जगह पर पॉजिटिविटी फैले, सकारात्मक हो और नकारात्मकता का पूरी तरह से नाश हो, कोशिश यही रहती है और बप्पा से हम आशीर्वाद भी राज्य यही मांगेंगे। सुमित्रा जी आपके पास आऊंगी, सबसे पहले आपको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना अहम इस बार का गणेश उत्सव आपकी नजर में है, और 200 साल बाद जैसे राजीव भी बता रहे थे कि बहुत अहम योग बन रहे हैं। हम हर बार बप्पा से कुछ कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हम सीखने की बात करते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो भगवान हमें सिखा जाते हैं, अगर हम उन्हें धारण कर ले तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखी भी हो सकता है। क्या करना चाहिए
2: जी? नमस्कार, सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से सबको शुभकामनाएं आज गणेश उत्सव की। मैं राज जी से बिल्कुल एकमत हूँ, आज आप लोगों ने इसकी एनर्जी को इतना बढ़ा दिया, इतना हम अपने घर पर गणेश जी के सामने बैठकर इतनी एनर्जी नहीं हुई जितनी आज जीएनटी पे बैठकर हुई। ये सारे लोग बोलेंगे हमारे सबके गूज बम्स हुए, मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ, मतलब इसमें आना हमारे लिए ही एक सौभाग्य है। सबसे पहले बोलूंगी कि गणेश जी हमेशा विघ्नों को हरते हैं, और विघ्न हमारे जीवन में, हमें हर पग पर लगता है कि हमारे जीवन में ये विघ्न है, हमें ये नहीं मिला, इस टाइप के एटीट्यूड अभी देखिए सभी के, सिर्फ जेन जी जनरेशन के नहीं, सारे लोगों के हैं। हमें जो चाहिए हमें लगता है हमें हमेशा उससे कम मिल रहा है। तो आज गणेश जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो गणेश जी सबको देंगे और हमारे माध्यम से हम देना चाहते हैं, कि शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि गणेश जी जो है ना वो अधिपति होते हैं, है ना, वो ब्रह्मांड के अधिपति है, और यहीं से उनके नाम से ही शुरुआत होती है सब चीज़ों की। और काफ़ी सारे लोग आप देखेगा अपने घर में आज पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि आज आप गणेश जी को ज़रूर 21 दूर्बा चढ़ाएं और ज़रूर भगवान को 21 मोदक चढ़ाएं। अगर आप ये नहीं चढ़ा सकते, आप चावल को ही कलर करें और यही भगवान को आप अर्पित करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं, और हम लोग आज घर में कहीं पर भी अंधेरा नहीं रखें, कोशिश ये रखें कि रोशनी का पूरा रखें, जो रोशनी रहे जहाँ भी आप बप्पा को स्थापित किए हैं, और तुलसी भगवान को बिल्कुल ना चढ़ाएं, क्योंकि मैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बोलना चाहूँगी कि इको फ्रेंडली तरीके से हम गणेश उत्सव को मनाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई बहुत हार्ड केमिकल्स वाले भगवान की प्रतिमाओं को ना लाएं, मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा लाएं। इस साल एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि मैं देखा होगा ट्री गणेश निकला है इस बार मूर्ति के रूप में, उसके अंदर बीज होते हैं, तो आप अपने घर पे ही पूजा करिए, जो विसर्जन अपने छत पे ही जाकर करिए, और बाद में इसी मिट्टी को आप किसी गमले में डाल दीजिए तो उसमें से पौधा के रूप में आप समझिए गणेश जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, और वो पौधे के रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके घर में रहेंगे, और कहीं ना कहीं पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो बप्पा हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। हमें अगर देखिए आप, अगर हम सुंदरता की बात करें, आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक्स में इन्वेस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए, देखिए कितने सारे ऐप्स आ गए हैं फोटो खींचने के लिए। तो ये इस दिशा में जब हम जाते हैं तो गणेश जी को देखो, तो उनकी बॉडी ह्यूमन है और गर्दन सिर जो उनका लगा हुआ हिस्सा है ये हाथी का है, तो और हम इन्हीं से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हमें मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर काबिलियत है और हमारे फंक्शनैलिटी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बढ़िया से काम करते हैं तो हमारे गुणों को देखा जाता है, हमारे रूप रंग को नहीं देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है जो हम सब तक जाना चाहिए कि किसी को हम जज नहीं करें कि वो कुरूप है, और खुद भी अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है तो अपने आप को विकलांग या फिर डिफेक्टिव नहीं समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आपने कहा कि बप्पा को जब आप घर ला रहे हैं तो किस तरीके से घर लेकर आएं और कैसे घर में पॉजिटिविटी बप्पा ला सकते हैं, और इसी पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ एक और सवाल रहेगा कि घर का वास्तु भी क्या बप्पा की कृपा से ठीक हो सकता है, उस पर आगे बात करूंगी। लेकिन आचार्य श्रीपद, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत खास है इस बार का गणेश उत्सव। आचार्य राज मिश्रा ने बताया, डॉक्टर सुमित्रा भी हमें बता चुकी हैं, लेकिन वो लोग जो कि घर पे बप्पा को लेकर आए, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तमाम परंपराओं रिचुअल्स का पता होता है, लेकिन कई लोगों की इच्छा होती है कि हम भी लेकर आए, भले उन्हें उन तमाम रिचुअल्स का परंपराओं का ना पता हो, लेकिन कहते हैं कि भगवान तो भाव देखते हैं, लेकिन फिर भी उन भावों के साथ साथ हम कहीं से किसी चीज़ की चूक ना रह जाए, ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है वो लोग जो कि बप्पा को घर पर ले आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप?
3: सबको प्रणाम, और पहला धन्यवाद चैनल जीएमटी को और आपका माध्यम से ये जो मैसेज आ रहा है सारे देश को, ये आज का दिन जो कि सबसे पवित्र होता है हम लोग का साल में, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी दैट इज द स्पेशल की आषाढ़ का महीना दैट इज 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है पृथ्वी, देन आपका ये आ रहा है जो मिड पॉइंट में नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए। तो इसमें भूगोल भी बोलता है, हम लोग का एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं कि दैट इज स्पेशल मंथ। देखिए इस मंथ में कि सृष्टि में सबसे पहला भगवान है गणपति बाबा, जिनके अंदर बल भी था, बुद्धि भी था और उनमें सब कुछ भरा हुआ था। तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन सबके लिए स्वतंत्र होता है। आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज जा रहा है सारे देश के स्टूडेंट को कि आज के दिन क्या करना चाहिए। आज एक 200 साल के बाद स्पेशल योग बन रहा है, बहुत सारा योग, जिसमें एक स्टूडेंट के लिए जिससे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी विद्या बुद्धि टैलेंट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टू फेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड ऑल कॉम्पिटिशंस, तो रिलेटेड प्लैनेट बुध जो कि उच्च के है, दैट इज एक योग बनता है, महान योग। गुरु भी उच्च का है, जो भी विद्या बुद्धि के अधिपति है, स्पीच वाणी के अधिपति भी है, और बुद्धि और आपका विद्या उसके साथ आपका जो कि ज्ञान का भी अधिपति है, गुरु भी उच्च के। शुक्र जो भी एक पंडित प्लैनेट बोला जाता है वो भी खुद के हाउस में, उसके साथ रवि जो कि राजकीय ग्रह होते हैं जो ब्रेन एंड हार्ट को इंडिकेट करता है एस्ट्रोलॉजिकली, तो कितना विल पावर रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा हम लोग के अंदर, कितना पावर रहेगा टू फेस एनी प्रॉब्लम्स एनी चैलेंज, वो रवि भी उच्च में है। उसके साथ राहु और केतु को देखो, वो भी मूल त्रिकोण में, एक राहु कुंभ राशि में अरे आपका सिंह राशि में, उसके साथ हम देखेंगे तो शनि जो कि न्याय के अधिपति है, जो डिसीजन बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो मीन राशि में है और गुरु के दृष्टि में। तो इतना सारा योग में स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा टिप्स कि आज के दिन सूर्यास्त से 38 मिनट्स बिफोर जो कि एक स्पेशल मुहूर्त होता है दैट इज गोधूलि मुहूर्त, उस मुहूर्त में एक येलो कलर के पेपर में या व्हाइट पेपर में येलो मीन्स हल्दी मार के उसके ऊपर लाल काली में लिखना है ओम गम गणपते नमः, उसको 9 times 9 बार लिखिए, उसी पेपर को भगवान को समर्पित करते हुए जिस बच्चे के नाम पर ही होगा उसी बच्चे के नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके एक ताबीज में भरिए और उसको भगवान को समर्पित करिए और 108 बार भगवान जी का गायत्री पाठ करना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे लंबोदराय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात्। उसको 108 बार पाठ करके उसे तावीज में भरिए और उसको बच्चे को पहना दीजिए। तो उससे क्या होगा कि विद इन दिस ईयर 100% की बच्चे के अंदर मेमोरी पावर डेवलप होगा, उसमें विद्या बुद्धि डेवलप होगा और सारे घर में वस्तु को देख लेके हम बात करेंगे। तो आज ही
1: उस पर आऊंगी पंडित श्रीपति जी, लेकिन यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गुड न्यूज टुडे पर आप हमारी बड़ी और महा कवरेज देख रहे हैं। बप्पा हमारे घर पधारे हैं सभी को आशीर्वाद देने के लिए, सबके घर पॉजिटिविटी भरने के लिए। तो आप रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक तुरंत लौटते हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
2: तो गुड न्यूज टुडे में भी बप्पा पधार चुके हैं और बप्पा के साथ ही आज हम अपने इस स्पेशल शो को कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जरा जल्दी से मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्म, इस बार मुंबई की रौनक कैसी है, क्या कुछ अलग इस बार देखने को मिल रहा है?
4: कोशिश करते हैं, मतलब देखिए, हिंदू मुस्लिम एक होकर के बप्पा को विराजमान कर रहे हैं और कुछ इस तरह का अवतार, इस तरह के बप्पा को यहाँ पर लाया जाता है। वाकई में देखिए, देखने के बाद ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है लाइन वगैरह लगती होगी यहाँ पर, तो थकावट दूर हो जाती होगी बप्पा को देखिए। बिल्कुल,
5: काफ़ी लोगों का हुजूम उड़ता है यहाँ पे और संभालना, अभी हमको 11 दिन संभालना भारी पड़ता है लोगों को, और इसमें साकिना का चौकी पुलिस स्टेशन का काफ़ी सहयोग रहता है, उनका सपोर्ट रहता है, RTO का सपोर्ट रहता है, उस हिसाब से लोगों को दर्शन मिलता है। एक एक करके दर्शन के लिए छोड़ा जाता है और गर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है।
4: देखिए, उपनगर मुंबई में साकी नाका सिग्नल का मतलब ही है बहुत ज्यादा भीड़, हमेशा ही यहाँ पर जो है होते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं।
2: साकी नाका की बात कर रहे हैं लेकिन हर जगह मुझे लग रहा है इतनी भीड़ होगी, प्रशासन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन भाई बावजूद इसके हर भक्त को दर्शन मिलते हैं और चाहे वो वॉलंटियर्स हो या प्रशासन हो, अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि कोई भी बिना दर्शन किए भक्त वहां से लौटे नहीं। एक बार दिल्ली चलते, सीधा श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, और इस पंडाल की रौनक बताइए, क्या क्या है?
6: बिल्कुल, तो मुंबई की रौनक लगातार धर्मेंद्र दिखा ही रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, मैं आपको बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी जैसा कि मैंने आपको थीम बताया, यहां पर विघ्नहर्ता से विकासकर्ता गणेश यहां पर है। और समय के साथ कहते हैं ना कि गणपति भी बदलते हैं, तो जरा जूम इन करके दिखाइए गणपति को। छोटी सी आंखें इस बार बताती है कि लक्ष्य पर ध्यान रखो, लंबी सूंड यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालो, बड़ा पेट यानी अच्छे बुरे अनुभवों को पचाने की क्षमता रखो, और मूषक पर सवार गणपति यानी अपनी इच्छाओं और चंचल मन को नियंत्रित रखो। तो एक तरह से अगर देखा जाए कि गणपति जो है आज के समय के हिसाब से वो मैनेजमेंट लेसन भी हमें देते हैं। जी हाँ, जैसा वक्त कहते हैं ना कि जैसा वक्त होता है उसी हिसाब से हमारे ईश्वर जो हैं वो भी प्रकट होते हैं। एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए 51 शक्ति पीठ। वैसे हमारे जो शक्ति पीठ है 52 शक्ति पीठ है, हमारे कैमरामैन चलाएंगे, तो ये जो पूरा सेक्शन है अलग से जो यहाँ पंडाल में बना है ये 52 शक्ति पीठ का है और प्रतिकृति हमारी शक्ति पीठों की यहाँ पर बनी हुई है। पुजारी जी लगातार बने हुए हैं, जरा इनके बारे में बताएं पुजारी।
7: ये भगवान गणेश जी की स्थापना के अवतरित में जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है, वैसे ही तीनों देवियों के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और पूर्ण रूप से शक्ति की आराधना भी अवतरित है, क्योंकि हमारे देश में बिन शक्ति की आराधना के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये भी एक प्रेरणा स्त्रोत्र है कि भगवती की आराधना निरंतर रूप से करनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए श्वेता मैं लौटूंगी, आप नजर बनाए रखिए, मुंबई हो या दिल्ली हर जगह पर रौनक है और खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आचार्य राजमिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि इस बार बप्पा के आगमन में किस तरह के शुभ योग, शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम मूर्ति का चयन करते हैं, अब तो सभी के घरों में बप्पा विराजमान हो चुके हैं, मनोकामना के लिए किस तरह से बप्पा की आराधना करनी चाहिए?
8: देखिए, निश्चित रूप से भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगो मांगत तुलसीदास कर जोरे, पसंग राम सिय मानस मोरे। यदि कोई भी कामना आपको पूर्ण करनी है तो भगवान गणेश जी के पास निश्चित रूप से संभव है। और श्री रामचरित मानस के उस विषय को मैं दोबारा कहूँ, जो सुमिरत से जहो गण नायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्ध गुण सदन। जब हम भगवान गणेश जी के स्मरण की बात करते हैं और कामना से परिपूर्ण जब स्मरण की बात करते हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हम सभी के घरों में गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण है कि हम क्या गणेश जी को अर्पण कर दें, जिसको स्वीकार करके भगवान गणेश अपनी कृपा प्रदान करके हमारे जीवन को बेहतर कर दें। मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ, ये चीजें शिव पुराण के रुद्र संहिता में बाकायदा वर्णन है, जहां पर स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती से बात करते हुए ये कहते हैं कि अगर कोई सिंदूर भगवान गणेश जी को चढ़ा दे, सिंदूर अर्पण करने से भगवान गणेश वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो भक्त के मन में इच्छा होती है। सिंदूर जो पीला वाला सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को स्पेशली चढ़ता है, यदि मन के अंदर कोई भी कामना स्पेशली आपके है, तो उस कामना का स्मरण करके और भगवान गणेश जी के चरण में जाकर के सिंदूर अर्पण करना चाहिए, उससे भगवान आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। यदि आपके घर के अंदर शरीर में रोग रहता है किसी के, स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है, और मेडिसिन इत्यादि पर यदि बहुत खर्चा होता है, परेशान रहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? शहद लेकर के जाना चाहिए, भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ओम गंगड़ पतये नमः इस मंत्र का 108 बार बैठ करके स्मरण करना चाहिए। उसके बाद रोगी को उस शहद को 40 दिन तक थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, उसके स्वास्थ्य में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। जिस दिन शुरू कीजिएगा उस दिन की रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा और बात कीजिएगा। जी जी नवजोत जी,
2: बिल्कुल। तो ये दो मनोकामनाओं का जिक्र हमने किया है, लेकिन सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वास्तु का भी कनेक्शन है क्या बप्पा के आगमन से? और उन लोगों के लिए भी बताइएगा जिनके घर, जो किसी कारणवश अपने घर पे बप्पा को नहीं ला पाए हैं, लेकिन भाव है, श्रद्धा है, वो लोग क्या कर सकते हैं?
9: क्योंकि देखिए, बहुत जन एक दूसरे को गिफ्ट में गणेश जी भी देते हैं, तो सभी के घर में एक से ज्यादा गणेश जी तो है ही। एक दूसरी भी मान्यता है कि बहुत जन गणेश जी को अपने गेट के बाहर फोटो भी चिपकाते हैं या मूर्ति लगाते हैं। तो इन दोनों से जुड़ी मैं वास्तु दोषों पर बात करना चाहूंगी कि सबसे पहला, अगर कोई आपको एक से ज्यादा गणेश जी का गिफ्ट किया है, तो आप देखिए, गणेश जी जब हम अपने पूजा में भी लगाते हैं ना, तो दो तरीके से लगाते हैं। गणेश जी को लक्ष्मी जी के साथ भी बैठाते हैं और एक शिव परिवार में गणेश जी भी होते हैं। तो ये दो फोटो तो ऑलरेडी हो गई हमारे पास। इसके अलावा अगर दो से ज्यादा अगर गणेश जी आपके पूजा में हैं, तो वो आपको वास्तु दोष देते हैं। तो आप दो से ज्यादा तो नहीं रख सकते, आप किसी दूसरे रूम में रख सकते हैं, नहीं तो बेटर, अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी का संग्रहालय बताया था जिन्होंने 3000 गणेश जी रखे हैं वहां पर, आप बेटर है उनको गिफ्ट में भेज दे, तो संग्रहालय भी बढ़ जाएगा। संग्रहालय में रखा जा सकता है, पर घर में वो अलाउड नहीं है। अब सेकेंड बात आती है कि जब अभी गणेश जी को हम लोग ला रहे हैं, तो देखिएगा, एक साइड होता है जिसमें सूंड उनका राइट साइड फेस कर रहा है और एक जिसमें लेफ्ट साइड फेस कर रहा है। तो जब आप ला रहे हैं तो कौन सा वाला लाएं? अगर हम घर में लाने की बात करते हैं और घर में पूजा कर रहे हैं, तो हम एक होता है वाममुखी और दूसरे होते हैं सिद्धि विनायक। जो वाममुखी होते हैं जिसमें लेफ्ट साइड बाईं तरफ होता है उनका सूंड, इसको तो आप लाके आप पूजा करिए, ठीक है। लेकिन जो दाहिने तरफ होता है उसके बहुत सारे कठोर नियम है। तो मैं यूजुअली, अगर आप पूरे उसके शास्त्रीय पक्षों से अगर आप पूजा नहीं कर सकते और आप जस्ट एक उत्सव की तरह उसे मना रहे हैं और थोड़ा बहुत आप रिचुअल्स कर रहे हैं, तो आपको दाहिने साइड वाले सूंड वाले गणेश जी को नहीं लाना चाहिए। अब थर्ड है कि गणेश जी के फोटो को हम बाहर लगाएं कि नहीं लगाएं। अब जिन्होंने लगा दिया है वो क्या करेंगे, उनके लिए पहले बताती हूँ। अगर वो साउथ दिशा या साउथ वेस्ट का आपका इंफ्लुएंस है और आपने अगर लगा दिया है बाहर की तरफ गणेश जी को, तो आपको उसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल वर्जित है। बाकी इसके अलावा किसी भी दिशा में अगर आपने बाहर लगाया है, तो आप देखिए गणेश जी के ठीक पीठ के पीछे हम लोग बोलते हैं दरिद्रता रहती है, तो आपने अगर बाहर लगाया तो कहाँ आ रही है दरिद्रता, आप अपने घर में इनवाइट कर रहे हो। तो एकदम उनके बैक टू बैक पूरे पीठ से सिंक्रोनाइज करके आप वहां पर उस फोटो को एक और लगा दीजिए। अगर आपको गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए तो गणेश जी को अंदर रखिए कि गेट खुलते ही वो दिखाई दे, पर उससे बाहर मत रखिए। और बाहर प्रोटेक्शन के लिए वहां पे स्वास्तिक बनाइए, ओम लिखिए, शुभ लिखिए, ये आप कर सकते हैं, पर उनको बाहर रखना बहुत अच्छा एडवाइजेबल नहीं है।
2: बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जिसका ख्याल सभी लोग रख सकते हैं। आचार्य श्रीपद, अब आपके पास आना चाहूंगी, वास्तु का जिक्र आप कर रहे थे, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें।
10: जी, सबको प्रणाम फिर से। तो ये टिप्स यही है कि आज के दिन हम सबके घर में यदि कुछ वास्तु है या नहीं है, हम लोग को पता हो या ना, आज हम लोग को क्या करना चाहिए, न भगवान श्री गणेश जी का प्रतिमा जो कि लाल कलर का थोड़ा सिंदूर का कलर होगा तो उसी प्रतिमा, या आपका जो व्हाइट कलर वाला एक मूर्ति, आप नॉर्थ या ईस्ट डिरेक्शन में आपका आइदर आपका खुद के ठाकुर घर में हो या आपका घर का जो एंट्रेंस के पास हो उसी साइड में आप स्थापना कर सकते हैं। और जो बात हो रहा था, ये सुमित्रा जी बोल रहे थे कि आपका गणेश मूर्ति जो बाहर अंदर रखने के लिए, तो 100% की आपका घर के अंदर जब हम बाहर जाएंगे तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे, इसलिए अंदर एक फोटो रहना चाहिए एंट्रेंस के ऊपर, वो जो भी डायरेक्शन हो। बट बाहर रखना ना रखना आपके ऊपर, श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान को हम क्यों बाहर रखें, क्यों उनको हम इतना बाहर रख के छोड़ेंगे, तो वहां पे स्वस्तिक का ओम सिंबल रख दीजिए। बट यहाँ पे घर में क्या होगा, स्टूडेंट का रूम होता है, स्टडी रूम के बारे में बोल रहा हूँ, तो स्टडी रूम में बच्चे लोग के लिए उनके टेबल के ऊपर जो वेस्ट या साउथ को फेस करके एक भगवान जी का गणेश जी का प्रतिमा या उनका छवि उनको रखना चाहिए। और बच्चे को हर दिन बोलना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान जी के ओम गण गणपते नम, उसको 108 बार भगवान को प्रणाम करके जाप करके वो शुरू कर सकता है। और साथ में यहाँ पे हर बुधवार को जो कि भगवान जी का बार होता है, उसी दिन जैसे कि 7 लड्डू और 7 में डूबा, ये 7 डूबा उसको भगवान को अर्पण करें, या उसका मदर जो है माँ है वो कर सकते हैं, भगवान गणेश जी के उनका व्रत रख सकता है हर बुधवार को। वो 54 वीक तो कंटिन्यू करना चाहिए, फिर 54 बुधवार तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि 100% के बच्चे के अंदर वो इच्छा जो कि इंटरेस्ट टुवर्ड्स पढ़ने के लिए उसका जनरेट हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश जी का जो ताबीज बोले थे, उनका नाम लाल कलर के काली में एक येलो पेपर में ओम गण गणपते नमः उसको लिख के बच्चे को पहना दीजिए, एक पिल्ला इसमें जैसे कि ताबीज में।
2: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपने दिए हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, क्या कर सकते हैं वास्तु के लिए, कैसे बप्पा से आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो जीएनटी पर बप्पा पधार चुके हैं, और आपको ये भी बताते चले कि बड़ा उत्सव जीएनटी पर लगातार जारी है, क्योंकि जीएनटी से ही हम आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, और बप्पा आए ही इसलिए ताकि समाज में पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप रहिए हमारे साथ, दर्शन करते रहिए पप्पा के।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक हर जगह पर बिखरी हुई है। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ऐसी एक भक्त विजय कुमार हैं, वाराणसी में एक कलाकार के रूप में विजय की भी भगवान गणेश के प्रति अपार श्रद्धा है, जिसको व्यक्त करने के लिए वो दर्शकों से अपनी आकर्षक पेंटिंग्स को लेकर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे विजय कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने के हुनर को जानते हैं।
3: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग, देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे, मगर देखिए ना कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा, तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
6: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और इस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया, और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
3: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: दस दिनों तक चलेगा बप्पा का उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के साथ ही शहर शहर बप्पा के दिव्य भव्य रंग अनोखे पूजा पंडाल लगातार नजर आ रहे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। लेकिन गुजरात के जामनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर बप्पा का एक ऐसा भक्त है जिन्होंने अपने घर में ही बप्पा का अनोखा संसार सजा रखा है और इस अनोखे संसार में विघ्नहर्ता की 3000 कलाकृतियां मौजूद है, जो कि गणेश उत्सव के महापर्व के दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

0: घड़ी में बापात, चाबी के गुच्छों और पेन में विघ्नहर्ता की छवि, पेंटिंग्स में बापा, धातु और लकड़ी में बापा का स्वरूप, कांच के शोपीस और सजावटी आइटम में गजानन की छवि। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ गौरीपुत्र गणेश ही नजर आएंगे। ये कोई दुकान नहीं है बल्कि विघ्नहर्ता का ये अनोखा सा संसार सजा है गुजरात के जामनगर के रहने वाले दिलीप ध्रुव के घर में, जहां बापा की एक दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, तीस नहीं, बल्कि 3,000 कलाकृतियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं।
1: मेरे पास टोटल मिला के 3,000 गणपति है, उसमें से 800 गणपति की मूर्तियां है, 200 किचन है, 500 गणपति की वुडन फ्रेम है, और सब मिला के 3,000 हो गए है। और मेरे पास मैंने ये सब एक गणेश गैलरी में एक डिस्प्ले किया है और लोगों पर अच्छी तरह से देख सके, इसलिए मैंने गैलरी बनवाई है।
0: इस अनोखी गैलरी में बापा अलग अलग आकार, साइज, डिजाइन और रंग में मिल जाएंगे। इन 3,000 कलाकृतियों का संग्रह करने में दिलीप भाई को 40 साल का लंबा वक्त लगा है, तब जाकर वो ये अनोखा संसार सजा पाए हैं। दिलीप भाई का दावा है कि आप जिस स्वरूप में बप्पा को सोचोगे उस स्वरूप में बप्पा उनके पास मौजूद हैं।
1: लास्ट 40 इयर्स से गणपति का कलेक्शन कर रहा हूँ। आज मेरे पास गणेश जी के हर एक स्वरूप पे गणपति है। स्कूटर चलाता, अच्छी क्रिकेट रमता गणपति, क्या आप कोई पण स्वरूप में बोलो मेरे पास गणेश जी है।
0: गणेशोत्सव के मौके पर बापा की अनोखी गैलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो यहाँ पर आ रहा है वो बापा के इस विशाल संग्रह को देखकर अभिभूत है।
2: जामनगर में करीब 9 दिनों का 8 दिनों का वो गणपति का महोत्सव चलता है, उसमें आपको अलग अलग स्वरूप अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3,000 से भी ज्यादा गणपति के अलग अलग स्वरूप और गणपति के अलग अलग मीडियम में आपको गणपति देखने को मिलेंगे। प्रतिमाएं हैं, पोस्टर्स हैं, कीचेन्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि आपने शायद देखा भी नहीं होगा। चावल में भी बने हुए हैं, सब तरह के आपको देखने मिलेंगे मूषक महाराज के साथ में। तो आप जरूर एक बार इधर आइए और अपने इस आर्ट गैलरी का लाभ लीजिए।

0: ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो बप्पा पधार चुके हैं देश भर में नहीं बल्कि हमारे गुड न्यूज टुडे पर भी, तो एक बार जोर से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से आ रही है, उत्सव के रंग हर जगह से दिख रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह पर बस यही जयकारे आपको सुनाई दे रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ भी बप्पा पधार चुके हैं, बप्पा एक अलग मैसेज अलग संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और वो संदेश है पॉजिटिविटी का, वो संदेश है अच्छी खबरों का, अच्छा सुने अच्छी खबरें सुनाए, और वही संदेश वही पॉजिटिविटी के संदेश के साथ बप्पा का आगमन हुआ गुड न्यूज टुडे पर।
3: बिल्कुल, देखिए तमाम रंग सुबह से समेट कर हम आपके लिए लेकर आए हैं, बप्पा का सबसे अनूठा सबसे भव्य स्वरूप महाराष्ट्र में नजर आता है।

0: यहाँ हर गली, हर चौराहे, हर चप्पे पर आपको गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा सुनाई देगा, क्योंकि मुंबई के पंडालों की रौनक अलग है। यहाँ पधारे हैं बप्पा और लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। दिखाते हैं तस्वीरें।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा। देखिए, बेहद ही खूबसूरत गणपति बप्पा का चयन आपने किया है। पिछली बार भी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर जीएनटी के बिल्कुल रंग में रंग चुके हैं, उन्हीं के कलर कोऑर्डिनेटेड पगड़ी पहनाई है। तो देखिए, बात उस हथिनी की भी करेंगे जिसे कोल्हापुर में लोग महादेवी कहते हैं। 13 महीने बाद जब महादेवी शहर वापस पहुंची तो उसको स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे देश की अलग अलग जगह से, गणपति बप्पा के पंडाल की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक की बड़ी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्त। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियों के घर आए बप्पा। तुषार कपूर समेत अन्य कलाकारों के घर भी पधारे मंगल मूर्ति। सितारों ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। पुणे में निकले श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा। शंखनाद के साथ जुलूस में दिखे आस्था के तमाम रंग। ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत। इंदौर के खजराना में 7 करोड़ के आभूषणों से बप्पा का भव्य श्रृंगार। भगवान को चढ़ाया गया 1.25 लाख मोदक का भोग। 10 दिनों तक चलेगा महाउत्सव। बद्रीनाथ धाम में वराह जयंती पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित पवित्र वराह शिला का पूजन। उतारी गई आरती। बिहार के कपिलदेव रावत ने रचा नया इतिहास। 72 की उम्र में 24,000 फीट पर की पैराग्लाइडिंग, युवाओं के लिए बने मिसाल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: चलिए आप भी हमारे साथ बोलिए एक बार फिर से, गणपति बाप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
0: तो देखिए पूरा देश इस वक्त गणपति के जयकारों के साथ लगातार गूंज रहा है। ये रंग, ये स्वरूप बप्पा के अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। दिव्य पंडालों में गणपति बप्पा पधार चुके हैं, आपके पसंदीदा चैनल में भी जीएनटी में आ गए हैं, जीएनटी के बप्पा मोरया। जी हाँ, देखिए स्वरूप बहुत निराला है, लेकिन हमने ट्राई किया है, मैंने, नवजोत ने, श्वेता ने, गीतिका ने, सब एंकर्स ने ट्राई किया है कि बप्पा को हम जीएनटी के लोगों के साथ मैच करें। कैसे लग रहे हैं?
2: वो याद है पिछली बार जब दशा गुप्ता और गीतिका गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने चयन नहीं किया, बप्पा ने चयन किया। मुझे लग रहा है कि इस बार वैसे ही तो नहीं हुआ।
0: आप बताओ,
2: न्यूज़ टुडे वाले बप्पा आपको दिख गए, उन्होंने बोला कि हाँ
0: मैं आ रहा हूँ।
3: और हर बार ना ऐसा होता है कि बहुत ही सुंदर बप्पा हमारे जीएनटी में आते हैं, जैसे पिछली बार से ज्यादा अब मुझे और खूबसूरत लग रहे हैं, और पगड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है।
0: बिल्कुल, चलिए देखिए इसके साथ ही साथ जीएनटी के बप्पा के दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाते हैं तमाम तस्वीरें पूरे देश से, किस तरीके से बप्पा के रंग में पूरा देश एक तरीके से रंगा हुआ है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह पर बप्पा के रंग नजर आ रहे हैं। और देखिए जीएनटी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जीएनटी पर जब बप्पा पधारे, जब बप्पा का ये स्वरूप हम सब के सामने नजर आया तो हम सब मंत्रमुग्ध हो गए।
4: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पल।
0: तो देखिए जैसा कि हमने, यानी जीएनटी की टीम ने आपसे वादा किया था कि हम तैयार हैं गणपति बप्पा को, अपने बप्पा को घर मिलाने के लिए, तो आपको इस यात्रा में हम करने जा रहे हैं शामिल।
5: तो देखिए कैसे बप्पा का मंडप सच के तैयार हो चुका है, बप्पा विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हमने वादा किया था सस्पेंस से पर्दा आज ही उठेगा।
0: बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में उठ जाएगा बप्पा, क्योंकि जीएनटी के घर में पधारने वाले हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि बप्पा आपके तमाम विघ्नों का नाश आज हम सब के साथ जरूर करेंगे।
5: तो चलिए आप भी हमारे साथ बप्पा को घर लेकर आते हैं।
0: चलिए गीतिका,
5: चलिए
0: चलिए चलिए। आखिरकार हम प्रस्थान कर चुके हैं, जिस चीज का इंतजार था हमें भी बड़ी बेसब्री से, वो अभी थोड़ी ही देर बाद आप सबके सामने,
5: बेसिकली सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है।
0: गणपति बप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
0: अच्छा एक और चीज है, अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोड्यूसर ने, जिनका नाम है अमान। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है गणपति जी की स्थापना को लेकर। अमान क्या कहेंगे?
6: उत्साह काफी है, पहली बार जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो एक चीज नई है एकदम, देखना है कैसा होगा क्या होगा।
0: आपने किया और जो इंतजार हमने किया, फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन अभी आपको मुख दर्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑफिस में जाकर आरती करेंगे, उसके बाद होंगे।
5: यहाँ हमने आरती कर ली है, बप्पा की आरती हो चुकी है, बप्पा को भोग लग चुका है, लेकिन मुख दर्शन ऑफिस जाके होंगे, तो थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा।
0: अब देखिए इतना पेशेंस आपने दिखाया है, इतना धैर्य थोड़ा सा और दिखाइए ना, क्योंकि जीएनटी की टीम तैयार है, हम निकल पड़े हैं बप्पा को घर लाने के लिए। अब इनको यहाँ से हम लेकर जाएंगे ऑफिस, और वहाँ पर जाकर होगी गणपति की स्थापना।
5: तो जीएनटी के बप्पा का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, और बस थोड़ी ही देर और बची है, थोड़ा सा वक्त और बचा है बप्पा के दर्शन के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप भी हमारे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
0: चलिए

0: स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। आपके बप्पा जिगेंटी के घर में फाइनली पधार चुके हैं,
1: लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कुछ मिनटों का इंतजार है और उसके बाद बप्पा के मुख दर्शन सभी को हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां ना, जैसे हम इम्पेशेंट हो रहे थे, आई एम श्योर कि आप भी इम्पेशेंट हो रहे होंगे, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। मुख दर्शन के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीएनटी में हम स्थापित करने जा रहे हैं अपने गणपति बप्पा को। देव एक बार फिर से सभी बोलिए साथ में, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: में अस्तु दशावी रघु सर्वागण गुस्वस्ताये आत्मा सानी प्रजा सानी लोका सान्य भाया सानी ही।
1: जब हम गए थे चुनाव करने के लिए तो हमने यही कहा था कि भाई हम क्या चुनाव करेंगे गणपति का, गणपति हमें चुनेंगे कि हमारे यहाँ, यानी कि गुड न्यूज टुडे पे कौन से गणपति आते हैं।
2: और पिछली बार मुझे याद है आपसे हम पूछ कर ही लेके आए थे पिछली बार भी मूर्ति, तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। हमें इस बार कोई त्रुटि हम करेंगे नहीं, वैसे ही गणपति सुंदर से
0: लाए। और मेरी प्रार्थना है गणपति से, भगवान गजानन से, कि जिस भाव से, जिस कामना से आप लोग गणपति जी को लाए हैं, गणपति वह सारी कामना जो है आपकी और हमारी जीएनटी संस्थान और हमारे आज तक संपूर्ण संस्थान की जो है उत्तर उत्तर प्रगति करें और उत्तर उत्तर उनको जो है निरोग स्वस्थ और दीर्घायु।
1: अरविंद जी आपने बहुत अच्छी पूजा कराई पूरे विधि विधान से, हालांकि मैं बाद में जुड़ी, शगुफ्ता गीतिक का शुरू से थे, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ गणपति उत्सव से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं, आपको हम बता दें कि वो सारी तस्वीरें, सारी खबरें पूरे देश से इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे।
2: लेकिन हम इस वक्त आपको लेकर गीतिका कुछ कहना चाहेंगे।
3: जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, गणपति बप्पा
4: मोरिया,
3: मंगल मूर्ति मोरिया।
5: माय गॉड, देखा कितना जोर शोर से, जोश के साथ स्वागत हुआ है, शगुफ्ता का गला ही बैठ गया।
6: मुझे लगता है ना जीएनटी में जिस तरीके से बप्पा पधारे हैं, महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया।
3: ओ माय गॉड, क्या बात है,
6: इतने जोश के साथ बप्पा आए ना, पूरे ऑफिस में शोर था भाई।
5: दीपिका, गुड न्यूज टुडे, मतलब हम शुरू से ही कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। हम सिर्फ बप्पा का आगमन नहीं, हम हर उत्सव को जीते हैं, उसे मनाते हैं खुशियों के साथ। और फिर जब बप्पा खुद आशीर्वाद देने आ रहे हो घर पे, तो स्वागत तो स्वैग से होना ही चाहिए।
6: तो बिल्कुल, देखिए पूरे ऑफिस में पॉजिटिविटी का माहौल हो चुका है, लेकिन आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं, जहां पर पंडाल बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है।
5: बिल्कुल, देखिए एक पंडाल नहीं बल्कि जहां भी आप मुंबई में इस वक्त नजर डालेंगे ना, ऐसे ही रंग और ऐसा ही जोश और उत्सव के तमाम रंग आपको नजर आएंगे। लाल बादशाह राजा की तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं।
7: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं, आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है, ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है, जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देख कर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है, पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु, लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है, तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है। आपको बताया कि परसों रात से ही पग छूने वाली जो कतार है वो लग गई थी। जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्ति नजर आएंगे। रोजाना लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3-4 लाख के आसपास गणेश भक्त आते हैं, और धीरे धीरे आंकड़ा तीसरे चौथे दिन से बढ़ी जाएगा, क्योंकि 1.5 दिन की गणपति, 3 दिन की गणपति बहुत से मुंबईकर अपने घरों में ही मनाते हैं। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें मिन्नतों का भी राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी सच्चे दिल से लालबाग के राजा से मांग लिया जाए वो उन्हें मिल जाता है। देखिए बहुत ही बड़ी तादाद में तो गणेश भक्त यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन VIP VVIP भी यहाँ पर आते हैं, और उनकी सुरक्षा का भी अच्छा खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। AI कैमरा लगा दिए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर तैनात है। BMC अधिकारी भी अपने तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं, व्यवस्था किए हुए हैं। साथ ही साथ खुद लाल बाग के राजा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी 5,000 से ज्यादा ये जो कार्यकर्ता हैं सेवादार हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए होते हैं। 3 बार लगभग लाल बाग के राजा का श्रृंगार किया जाता है और इस तरीके से लाल बाग के राजा का दर्शन करा जा रहा है। देखिए, खास बात यह है कि भले ही घंटों यहाँ पर लोग कतार में खड़े हों लेकिन जो थकावट है वो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि लालबाग के राजा को देखने के बाद ही एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग ही तरह की ताकत महसूस होने लगती है यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को। लेकिन खास बात ये भी है कि भले ही घंटों वो कतार में खड़े रहें लेकिन कई ऐसे सेवादार हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए होते हैं, जैसे कि कतार में खड़े हुए भक्तों को पानी पीने के लिए दिया जाता है, बिस्किट खाने के लिए दिया जाता है, और भी तमाम कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने यहाँ पहुँचती हैं वो सभी यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हैं। लाल बाग के राजा का पहला दिन है और अभी तो पूरे के पूरे 10 दिन बचे हुए हैं। इस बार साइत के हिसाब से 10वें दिन लाल बाग के राजा और मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित होने वाले सभी जो गणेश पंडाल हैं उनकी उनकी जो विसर्जन है वो 10वें दिन होने वाला है। और इस तरीके से लालबाग के राजा का 10वें दिन जो है विसर्जन कर दिया जाएगा। लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल लालबाग के राजा का यह पहला दिन है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे।
5: देखिए, धर्म की सारी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुंबई में रहते हैं ना वो जरूर मुंबई को इस बार मिस कर रहे होंगे। क्यों मुंबई वालों, बताओ?
4: मैंने कोई कमी तो छोड़ी नहीं अपने रूप स्वरूप में कि मुंबई वासी में मर जाऊं, मराठी मुलगी बन जाऊं, बट ठीक है, ये अपना अपना भाव है। क्योंकि वहां मैंने आपको पहले भी बात कही थी ना कि जैसे आप साड़ियां लेती हैं अलग अलग स्टेट में जाकर, वैसे ही जहाँ का त्योहार उत्सव है वहाँ एक बार अगर आप जाएं तो आपको अलग तस्वीरें नजर आती है, यू फील गुड।
6: लेकिन आप आज लग मराठी मुलगी रही हैं, आपने जो
5: ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बनता है, बेहद सुंदर। थैंक यू। चलिए, धर्म भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ श्वेता झा भी जुड़ चुकी हैं। धर्म की एक रिपोर्ट देखिए जल्दी से, आपको दिल्ली का रंग दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई गणपति के रंग में रंगी है ठीक उसी तरीके से दिल्ली पर भी पप्पा की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। सीधा श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, दिखाइए तस्वीरें वहां से।
1: बिल्कुल, आप लोगों ने तो जयकारे वहां स्टूडियो में लगा लिए, हालांकि सुबह सुबह हमने भी लगाया था जब गणपति वहां पर आए थे शगुफ्ता और गीतिका के साथ मिलकर। लेकिन चूंकि दिल्ली के महाराजा के दरबार में हम खड़े हैं और लाल बाग का राजा आपने देखा, तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इसी से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले ये दिव्य और भव्य, आप देखिए जो स्वागत द्वार बना है बेहद विशाल, दिव्य और भव्य बना है। ओम गण गणपतये नमः, ये गणेश जी का मूल मंत्र है जो यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली लक्ष्मी नगर, यहां पर हम मौजूद हैं जहां पर दिल्ली के महाराजा स्थापित है, उनकी स्थापना हो चुकी है। और इस बार की जो थीम है वो बहुत ही अलग है, इस बार विघ्नहर्ता से विकास करता, ये थीम रखी गई है। लेकिन जब आप पंडाल के अंदर आएंगी तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, चूंकि 25वां उत्सव गणेशोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है तो इस बार जो है विशेष करके तैयारी की गई है। अगर आप द्वार अंदर और एक द्वार जहां से आप एंटर करेंगे तो देखिए, केदारनाथ धाम जो मंदिर है उसका जिस तरह से उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है, और साथ ही साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग उसके दर्शन आपको अंदर होंगे। कहते हैं कि गणेशोत्सव 19वीं सदी के आखिर में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि एग्जैक्टली कब से शुरुआत हुई है गणेशोत्सव की, ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में शुरुआत लगभग कराई थी बाल गंगाधर तिलक ने। और उनका मकसद ही ये था कि गणेशोत्सव घर घर से जन जन तक पहुंचे, और जन जन तक पहुंचते हुए देखिए आज कैसे पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। जहां पर मैं मौजूद हूं, अपने कैमरामैन को कहूंगी शैलेंद्र को अंदर आए, देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ तस्वीर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाए गए हैं और भगवान गणेश को आप देखिए किस तरह से अपने पिता के गोद में यहाँ जा। शैलेंद्र आप दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर जो है भोलेनाथ के साथ, ओंकारेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, किस तरह से अपने पिता यानी कि शिव के गोद में यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो दिल्ली के महाराजा को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेहद भव्य
8: भव्य ये पंडाल बना है, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। चूंकि आज पहला दिन है, अब थोड़ी ही देर में जब यहाँ पर आरती शुरू होगी उसके बाद यहाँ पर हजारों की भीड़ होगी। लेकिन ये गणपति को आप देख सकते हैं किस तरह से विराजमान है, और साथ
5: बहुत सुंदर परिसर आप दिखा रही है। बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास, एक बार मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, जिसका जिक्र नवजोत कर रही थी कि मुंबई वासी मुंबई को बड़ा मिस कर रहे हैं। तो सीधा
2: दिल वहीं पे है,
5: दिल दिमाग इनफैक्ट दोनों वहीं पे है, यहाँ पे शरीर है इस वक्त। अच्छा धर्मेंद्र, आप इस वक्त कौन से पंडाल में मौजूद हैं? देखिए मुंबई में भी हम गणपति उत्सव के दौरान ना पंडाल हॉपिंग अक्सर करते हैं, एक पंडाल से दूसरे के दर्शन के, लेकिन सिद्धि विनायक की बात अलग होती है। लाल बादशाह राजा के दर्शन एक बार कर लेते हैं तो आप वैसे ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। दिखाइए तस्वीरें।
7: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बुलेटिन जैसे ही शुरू हुई लालबाग के राजा का सभी ने दर्शन किया, उसके बाद दिल्ली के राजा का दर्शन किया, और अब मैं जहां पहुंचा हुआ हूं उपनगर मुंबई में साकीनाका का महाराजा के दरबार में पहुंचा हूं, और आप देखें और वहां भी दर्शन करें, बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप इस समय आप गणपति बप्पा का देख रहे हैं। उपनगर मुंबई की सबसे ऊँची गणेश जी की ये प्रतिमा है, और आपको बताया कि 43 फीट इसकी ऊँचाई है। अवतार जो है खंडोबा को लेकर के यहाँ पर आए हैं। खंडोबा यानी शिव शंकर भगवान, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और खंडोबा का अवतार लेकर उन्हीं के चलचित्र में लिपटे हुए गणेश जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, जिनका दर्शन करने के लिए आसपास के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि जितने ही विशाल इनकी प्रतिमा है, जितनी ही ज़्यादा इनकी ऊँचाई है, उतने ही छोटे छोटे यहाँ मौजूद जितने भक्त हैं वो दिख रहे हैं। थोड़ा सा करीब मैं कहूंगा कि वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जी मेरे साथ आए ताकि हम ये बता पाएं आपको कि बप्पा की जो ऊंचाई है आखिर इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि देखिए यहाँ पर आने वाले जो गणेश भक्त हैं उनके पैरों तक अभी ठीक से नहीं पहुँच पा रहे हैं, सिर्फ चरणों तक पहुँच रहे हैं, और चरणों के बाकायदा दर्शन करते हुए सीधे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। मेरा भी कद उनके पैरों के चरने तक ही है, और अब देखें ये ऊंचाई, दूर से तो देखने में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन अब जब हम यहाँ खड़े हैं यहाँ से इनकी ऊंचाई देखिए, सोचिए 43 फीट के खंडोबा जिनके जिन्हें आशीर्वाद देते हुए शिव भगवान का शिवलिंग भी दिखा जा रहा है, तलवार लिए हुए हैं और त्रिशूल लिए हैं, डबरू भी है, और एक पगड़ी जो महाराष्ट्र की संस्कृति हमेशा दर्शाती है वो पगड़ी इन्होंने पहना है खंडोबा का अवतार में इस समय साकीनाका के महाराजा। धीरे धीरे चित्र होते जा रहे हैं और बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे इनके, जिन्हें देखने के बाद कोने कोने से लोग यहाँ पर इनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ा आगमन हुआ था और लाखों की तादाद में लोग जुड़ गए थे। साकीनाका एक ऐसा सिग्नल है, एक ऐसा पॉइंट है उपनगर मुंबई का जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रहता है, जितने भी कमर्शियल ऑफिस हैं वो सब यहीं होते हैं, और इसी वजह से इतने बड़े बप्पा के आ जाने के बाद सोचिए किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की भीड़ होगी।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तमाम रंग लगातार धर्मेंद्र और श्वेता दोनों दिखा ही रहे हैं, आप दोनों रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक रंग आपको दिखाते हैं, आपको ले चलते हैं चंचपोखली चिंतामणि, जिनको सबसे पुराने जो मुंबई के गणपति माने जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां की रंग।
9: मुंबई में गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो चुका है, इस वक्त हम चिंचपोकली चिंतामणि के मंडल में खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहाँ पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है, लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली से कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है, और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है, और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहां पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहां पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है, और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है, और बाकी जो लालबाग परेल इलाके में गणपति है उनके, उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है, जो ये पर्व है अगले 10 दिनों का रहने वाला है। मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई।
5: देखिए, हमने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लेकिन जेएनटे के स्टूडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी गणपति उत्सव अपने पूरे चरम पर है। अब पुणे की तस्वीरें देखिए, हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, कोलकाता की तस्वीरें देखिए, बप्पा के अलग अलग पंडालों में किस तरह से गणपति बप्पा का श्रृंगार किया गया है, गणपति के आगमन पर श्रद्धालु में कितना उत्साह है वो आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर शोभा यात्राएं निकाली जाती है, कहीं पर बप्पा के आगमन के लिए मोदक की तैयारी भी की जाती है। तस्वीरें ठीक आपके सामने है।

0: तो देखिए पुणे की सड़कों पर आज भक्ति और उमंग का सैलाब नजर आ रहा है। देखिए जो महाराष्ट्र से तस्वीरें आती है ना उनका जोश अलग ही होता है। वो जो नाशिक ढोल बजाते हैं ना मतलब वो हालांकि ढोल यहाँ पे भी बज रहा था लेकिन महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र
1: की अच्छा वहाँ की ना मोदक का स्वाद भी अलग
0: हाँ वो एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है।
2: ऑथेंटिक वाला टेस्ट मैच नहीं करता है एक्चुअल मोदक जो वहाँ का होता है ना।
3: बिल्कुल वो चावल की परत होगी बीच में कोकोनट होगा गुड़ होगा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट होगा।
0: अब आपने देखिए महाराष्ट्र का माहौल तो यहाँ बना दिया मोदक भी आपको वैसे ही लाने पड़ेंगे।
3: मैं ले आऊंगी पक्का आपने बोला मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: बिल्कुल देखिए इस बीच शोभा यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं उत्साह सड़कों पर अलग ही नजर आ रहा है तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: पुणे की विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में?
1: उम्र के 10 साल से।
0: 10 साल के ऊपर?
1: हाँ।
0: तो पंडाल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है। उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बाप्पा आएंगे पंडालों में, उसी पंडाल में आएंगे, 10 दिन सब उनके साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब सरकारी हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब समाज साथ में आए, समाज की उन्नति हो इसलिए प्रयास किया और उसके बाद भी पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई।
2: बप्पा केवल महाराष्ट्र या मुंबई के नहीं, बप्पा सबके हैं, पूरे पूरे यूनिवर्स के बप्पा हैं और इसीलिए जो रंग आप कह रही थी ना महाराष्ट्र में नजर आता, हालांकि उसकी वो क्या कहते हैं रीस
3: कंपैरिजन कोई नहीं, हाँ रीस कोई नहीं होती,
2: वो रीस कोई नहीं। देखिए इसमें भी हमने पंजाबी रंग बोल दिया लेकिन आपको दक्षिण भारत ले चलते हैं क्योंकि वहां का एक अनोखा रंग है और वहां पर किस तरीके से बप्पा का स्वागत हुआ, कैसे गणेश चतुर्थी के रंग वहां बिखरे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
4: पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देश का कोना कोना इस वक्त गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा है। हर तरफ गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दक्षिण भारत में भी गणेश चतुर्थी का रंग देखते ही बन रहा है, कहीं भव्य पंडाल में बप्पा विराजे हैं तो कहीं सदियों पुराने मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली से लेकर चेन्नई तक हर जगह पर श्रद्धालु बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में गणेश उत्सव की रौनक है, यहाँ डोडा के गणेश मंदिर में गौरी शंकर उत्सव का आयोजन किया गया। बसावनगुड़ी इलाके में इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था। यहाँ गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है, गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह देखते ही बन रहा है। बेंगलुरु की इन तस्वीरों में भक्ति है, उल्लास है और बप्पा के प्रति अटूट आस्था है। हैदराबाद के खैरताबाद में गणपति उत्सव का रंग भी देखते ही बन रहा है। यहाँ इस बार 69 फीट ऊंची पंचमुखी संकटहर गणपति की भव्य प्रतिमा विराजमान है। विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। बप्पा के इस विराट स्वरूप के सामने पहुंचकर भक्त आस्था से सर झुका रहे हैं। खैरताबाद का ये गणपति उत्सव हर साल अपनी भव्यता के लिए खास पहचान रखता है और इस बार भी विशाल प्रतिमा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और अब रुख तमिलनाडु का करते हैं, जहां गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं तक नहीं है बल्कि मंत्रों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा भी नजर आ रही है। तमिलनाडु के थुतुकुड़ी में गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ, मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। थुतुकुड़ी गणपति की प्रतिमा की स्थापना की गई। गणपति की पूजा और आरती के बाद बच्चों को तिलक लगाया गया, श्रद्धालु बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। तमिलनाडु के पिल्लयारपट्टी में विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें हैं, जो ये बता रही कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। रॉकफोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाके का मनोरम दृश्य दिखाई देने लगा। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी गणपति उत्सव की धूम है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपने घर में गणपति की स्थापना की और पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड किस तरह से रंगा है गणपति उत्सव के रंग में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। गुड न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियों के घर आए बप्पा। तुषार कपूर सहित अन्य कलाकारों के घर भी पधारे मंगल मूर्ति। सितारों ने लगाए गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, शंखनाद के साथ जुलूस में दिखे आस्था के रंग, ढोल ताश के साथ गणपति का स्वागत। प्यार के कपिल देव रावत ने रचा नया इतिहास।
2: देखिए जहाँ एक तरफ पूरा देश बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा है, बॉलीवुड सितारे अपनी तरीके से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग कलाकारों के घर बप्पा पधारे हैं और वो बप्पा के स्वागत में, बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दिखाती हैं किस तरीके से बॉलीवुड इस वक्त बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा है। सबसे पहली तस्वीर काजोल की,
3: और देखिए एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की और अपने सेलिब्रेशन की झलक भी शेयर की सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए काजोल ने बताया कि इस खास मौके पर उन्होंने जो साड़ी पहनी वो उनकी बेटी ने उन्हें गिफ्ट की थी, जबकि उनके बालों में लगा गजरा उनकी सबसे अच्छी दोस्त ने बनवाया था। सुनील शेट्टी के बारे में अब दीपिका बताएंगे।
8: बिल्कुल, देखिए सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो गणपति की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में जो सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर तुषार कपूर पारंपरिक परिधान में नजर आए और उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आरती की।
3: और देखिए एक्टर अर्जुन बिजलानी के लिए भी गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि बचपन से चली आ रही परंपराओं, परिवार के साथ बिताए पलों और विश्वास का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो अपने घर गणपति को लाते हुए और अपने परिवार के साथ नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2: एक्टर करण भाई की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिसमें वो मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर लाए हैं। वहीं वेब सीरीज ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले रोहित सराफ ने भी गणपति उत्सव की तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो बप्पा की भक्ति में लीन।
11: प्रसन्न पूजार्थे दूर्वां गुरान समर्पयामि।
2: नाना पाटेकर के घर भी गणेश चतुर्थी की धूम है। आज नाना पाटेकर के घर गणपति पधारे हैं। नाना पाटेकर और उनके परिवार ने बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया।
8: बिल्कुल, नाना पाटेकर ने पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने एक एक करके विघ्नहर्ता की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। नाना पाटेकर और उनका परिवार हर साल धूमधाम से इसी तरह गणेश उत्सव मनाता है।
11: प्रसन्न पूजार्थे दूर्वां गुरां समर्पयामि।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनूठी परंपरा जो 150 सालों से चली आ रही है। गुजरात के मेहसाणा में एक ऐसा ऐतिहासिक गणपति मंदिर है जहां गणेश उत्सव पर हर साल ये परंपरा देखने को मिलती है। मेहसाणा के प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर में भगवान गणेश को पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर यानी विशेष सलामी देती है। पूरे गुजरात में यही एक ऐसा गणपति मंदिर है जहां इस तरह की परंपरा पिछले 150 सालों से लगातार चलती आ रही है।
2: बिल्कुल, देखिए जहां जैसी जगह वैसी परंपरा, गायकवाड़ राजाओं के समय से शुरू हुई विशेष सलामी की परंपरा आज भी लोगों की अटूट आस्था से जुड़ी हुई है। और इस मंदिर का निर्माण संत निरंजन दास ने किया था और उसके बाद सयाजी राव गायकवाड़ ने यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। उस दौर में गायकवाड़ सरकार की पुलिस और सैनिकों की गणपति पर अपार श्रद्धा थी, जिसके कारण उन्होंने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देने की शुरुआत की।

0: उत्सव के दौरान हर छोटे बड़े शहर में कोशिश यही हुई है कि कैसे गणेश पंडालों को अद्भुत, खूबसूरत और थीम बेस्ड बना दिया जाए। तो ऐसा ही एक पंडाल नजर आया है हैदराबाद के ललिताबाग उप्पुगोड़ा में। यहां दरअसल गणपति पंडाल को रोबोटिक रूप में पेश किया गया है।
1: दरअसल इस पंडाल में 50वें वर्ष के आयोजन को खास बनाने के लिए विकसित भारत 2047 थीम पर यहां कुछ ऐसी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं। तो वहीं कोलकाता में भी विकास थीम पर ही एक पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

0: वक्रतुंड, सिद्ध विनायक और गजानन। भगवान गणेश के ऐसे हर रूप में दिव्य प्रकाश बसता है, उनकी ही कृपा से भक्त शांति का आशीर्वाद बरसता है। हर बार की तरह इस बार भी पंडालों में स्थापित किए गए बप्पा के ऐसे कई रूप आपने देखे हैं, जिनका मात्र दर्शन पूजन ही मन की हर अभिलाषा दूर करने वाला है। लेकिन अब क्योंकि जमाना एआई का है, तो अपने गणपति भी रोबोटिक हो गए हैं। ऐसे ही बप्पा स्थापित किए गए हैं हैदराबाद के उप्पुगुड़ा स्थित ललिता बाग में। दरअसल गणेश उत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर पर विकसित भारत 2047 की थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा है, जिसे यहाँ की मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी चौथी पीढ़ी ने तैयार किया। यानी 2047 का भारत कैसा होगा, कितना आगे जाएगा, इसको देखते हुए न केवल पंडाल और गणेश जी की मूर्ति को रोबोटिक रूप दिया गया, बल्कि पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है, जहां पिछले साल इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है।
1: 2047 का विकसित भारत, भारत 2047 तक कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में रहता, अपना भारत कितना आगे जाके कितना स्मार्ट सिटी बनता, कितना स्मार्ट इंडिया बनता, वो हम दिखाने का प्रयत्न ही है। ये विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करने का वजह है। वही थीम में सिलेक्शन के वजह से इच गणेश जी को भी जी आर्मर के रूप में हम लोग कलाकार से तैयार कराए हुए हैं। बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्केचेस करके उनको रेडी करने करके दिए कलाकार रविंद्राचार्य बोल के विश्वकर्मा डिजाइन।
0: जाहिर है इस अनोखी थीम के तहत आर्मर के रूप में दर्शन दे रहे भगवान गणपति के माध्यम से केवल ईश्वरीय भक्ति ही नहीं, बल्कि देशभक्ति के प्रति भी देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल तो एसोसिएशन द्वारा आयोजित 50वें साल के गणेश चतुर्थी समारोह में रोबोटिक बप्पा की ये प्रतिमा और आसपास की झांकी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण बनी है, जो देश के विकास और भविष्य की कल्पना संजो रही है। वहीं कोलकाता में भी एग्जीक्यूटिव पैलेस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने गणेशोत्सव को लेकर एक ऐसी अनूठी झांकी तैयार की, जिसमें मौजूदा समय में विकसित बंगाल में परिवर्तन को दर्शाया गया है। एक तरफ जहां पंडाल में बप्पा की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, तो सफेद कुर्ता और नारंगी पगड़ी पहने विघ्नहर्ता का यही रूप बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। इसमें भगवान के हाथ दूरदर्शी, नेतृत्व, जिम्मेदारी और सुशासन जैसे पहलुओं को दर्शा रहे हैं, तो विकास के विजन के साथ ही कुछ सामाजिक चुनौतियां भी इस पंडाल के मुख्य आकर्षण हैं। यकीनन ये भव्य गणेशोत्सव पंडाल किसी भी रूप में स्थापित किए गए हैं, मगर इनसे निकलता संदेश भारत के बढ़ते विकास, मजबूत भक्ति और विश्वास की मिसाल ही पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हथनी की घर वापसी ने लोगों को भावुक कर दिया। 13 महीने बाद जब हथनी माधुरी वापस अपने ठिकाने पहुंची, तो उसके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फूलों से स्वागत हुआ, पूजा अर्चना हुई, यहां तक कि उसे लाने वाले वाहन की भी पूजा की गई।
3: और देखिए, असल में माधुरी को लेकर पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से विवाद और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, और अब तमाम प्रक्रियाओं के बाद उसकी वापसी हुई है, और कोल्हापुर में इसे लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है।
2: जैसे ही 13 महीने बाद हथनी माधुरी अपने घर पहुंची, पूरा इलाका उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फूलों की बारिश की गई। इस घर वापसी का नजारा किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। माधुरी गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा में करीब 13 महीने रहने के बाद कोल्हापुर के नांदनी मठ लौटी है। जैसे ही रात के वक्त विशेष वाहन से माधुरी कोल्हापुर पहुंची, उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग वहां उमड़ पड़े। उसके स्वागत में कोई फूल बरसा रहा था, तो कोई जयकारे लगा रहा था, लेकिन माधुरी की घर वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं था।
4: हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेट है, एवरीवन इज हैप्पी एंड एवरीवन इज मतलब खुश है, सब खुश है।
5: हर एक फेस्टिवल को हमने उसे मिस किया है, और वो जब थी ना उस फेस्टिवल को हम ऐसे बनाते थे ना, ये इस साल हमने वैसा नहीं बनाया। सो करके ही बनाए हैं फेस्टिवल, लेकिन ये दिवाली कुछ खास होगी।
2: माधुरी को जुलाई 2025 में कोल्हापुर के नांदनी मठ से गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा भेजा गया था। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहतर इलाज और देखभाल के लिए उसे वंतारा भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद माधुरी की वापसी को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। माधुरी करीब 13 महीने वंतारा में रही। इस दौरान उसकी सेहत और देखभाल पर खास ध्यान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर में उसकी वापसी की मांग लगातार उठ रही थी। आखिरकार सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने नांदनी मठ की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद 9 सितंबर को माधुरी को वापस कोल्हापुर ले जाने की मंजूरी मिल गई और फिर 13 महीने बाद महादेवी अपने घर लौट आई।
6: माधुरी हथनी वापस पुनः नांदनी मठ में प्रवेश कर रही है, यह खुशी की बात है। हम सब लोगों को खुशी है और उसको भी खुशी है।
2: माधुरी की वापसी के साथ ही मठ में खास इंतजाम किए गए हैं। उसके लिए विशेष शेल्टर तैयार किया गया है। पैरों को आराम देने के लिए रबर मैट बिछाए गए हैं। गर्मी और मक्खियों से बचाव के लिए बड़े पंखों के साथ ही फॉगिंग सिस्टम और फवारे भी लगाए गए हैं। शेल्टर के पास पानी का तालाब भी बनाया गया है। माधुरी की डाइट के मुताबिक खाना तैयार करने के लिए अलग से किचन है। स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अलग सुविधा बनाई गई है और उसकी देखभाल के लिए महावत के स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था भी की गई है। अब निगरानी और तय नियमों के बीच उसकी देखभाल होगी, लेकिन कोल्हापुर की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम बता रहा है कि माधुरी की वापसी सिर्फ एक हथनी की घर वापसी नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं की वापसी भी है। कोल्हापुर से संदीप सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का दर्शकों को क्या है गिफ्ट देखिए।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: तो चलिए अब बात रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की करते हैं, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किया गया है। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज से गाया है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा। पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए मुझे स्वीकार।
3: तो चलिए यहाँ वक्त हो गया हमारे लिए छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की कवरेज लगातार जारी है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: देखिए प्राकृतिक आपदा पर आसान

0: तोड़ भी निकाल लिया गया।
1: पति की लंबी उम्र के लिए तीज पूजा करने की चिंता में डूबी महिलाओं को लग रहा था कि इस बार शायद वो बाढ़ की त्रासदी में पूजा नहीं कर पाएंगी, उपवास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसके लिए सारी सामग्री जैसे कि नए कपड़े, केला, नारियल बाजार जाकर लाना पड़ता। ऐसे में समाज सेवी मोहम्मद मुशव्वर ने नाव पर सवार होकर पूजा के सभी सामानों के साथ वो अहमदाबाद पहुंचे और पूजा के सामानों का वितरण महिलाओं के बीच किया। कभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्त। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का त्यौहार। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधिवत स्थापना, मुंबई में सोनू सूद ने घर पधारे भगवान गजानन, काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बाबा की बप्पा के चेहरे को दिया गया आकार। इंदौर के खजराना में 7 करोड़ के आभूषणों से बप्पा का हुआ दिव्य श्रृंगार, भगवान को चढ़ाया गया 1,25,000 मोदक का भोग, 10 दिनों तक चलेगा महोत्सव। यूपी के बलरामपुर में नजर आई मातृभक्ति की अनूठी तस्वीर, कजरी तीज के मौके पर मां और दादी को कांवड़ में बिठाकर करवाए भोलेनाथ के दर्शन, राप्ती नदी के जल से करवाया अभिषेक। बिहार के कपिल देव रावत ने रचा नया इतिहास, 72 की उम्र में 24,000 फीट पर की पैराग्लाइडिंग, युवाओं के लिए बने मिसाल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत हो चुकी है और जीएनटी के घर में पधार चुके हैं जीएनटी के बप्पा। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर से गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं। रौनक बिखरी हुई है, गजानन के इस उत्सव के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अलग अलग थीम से पंडालों को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशंस के रंग लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो गणेशोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतार दिया है। कहीं बप्पा के पंडाल में आपको बता दें भविष्य का भारत झलकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो कहीं भक्तों ने बप्पा को इको फ्रेंडली रूप में उतार दिया है। अब यूं समझ

0: कि तमाम जगहों से ऐसे ही तस्वीरें समेटकर हम लाए हैं जीएनटी स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर से गणपति उत्सव की ऐसी ही झलक दिखाएंगे और ऐसी ही झलकियां दिखाएंगे। रंग आपके सामने रखते हैं।
1: सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीएनटी चाराजा की तस्वीर से। गणेश चतुर्थी का शुभ दिन गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया। हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। ये तस्वीरें हैं जीएनटी के गणेश उत्सव की प्रथम आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक है, मंगल और शुभता के प्रतीक है। ठीक उसी तरह जीएनटी भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। ऐसे में इस पूरे विधि विधान और मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में इस बार गणपति बप्पा विराजे। हमारी कर्म स्थली पर हमें बप्पा के साथ का सौभाग्य मिला। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लालबाग के राजा के पंडाल से। इस बार लालबाग चाराजा का पंडाल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम की थीम पर बनाया गया है। लालबाग का राजा का पंडाल मुंबई ही नहीं देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहां अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चाराजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है।
2: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं। आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है। ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देख कर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहाँ पर पहुंच रही है। पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहाँ पर श्रद्धालु। लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिले जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है।
1: अद्भुत है लालबाग चाराजा, लेकिन ललिता बाग चाराजा भी कुछ कम निराले नहीं है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में मौजूद ललिता बाग में अब की बार गणपति बप्पा का एक बेहद अनोखा स्वरूप नजर आया। इस पंडाल में बप्पा की रोबोटिक छवि तैयार की गई है। दरअसल यहां अब की बार गणेश उत्सव की स्वर्ण जयंती का मौका है। सो इस मौके पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में गणपति आर्मर पहने नजर आ रहे हैं। यानी 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, इसकी झलक और वहां तक की यात्रा की तस्वीर यहां बनाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहाँ पिछली बार इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। देश के विकास और भविष्य की कल्पना वाली ये झांकी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आ रही है। हैदराबाद के ही खैरताबाद में महाकाय का विशाल काय स्वरूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद पांडाल में बप्पा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस साल यहां बप्पा का पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप नजर आ रहा है। इस प्रतिमा में पांच मुख और विशेष रूप से पांच सिरों वाला नाग आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके साथ ही 15 फीट ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और कालिका माता की प्रतिमा भी बनाई गई है। बप्पा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 150 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के खैरताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य और विशालकाय गणेश प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में गणेश भक्ति के अनोखे रंग बिखरे हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। साथ ही प्रतिमा पर लगभग 3,80,000 अमेरिकन डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का वजन 48 किलो है। 8 कारीगरों ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया है। गजानन के इस अनोखे और भव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और तिरुपति बालाजी की छवि भी उकेरी गई है। वैसे भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप चिंचपोकली के चिंतामणि पंडाल में भी नजर आ रहा है। चिंचपोकली चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। अब की बार पूरा पंडाल हैदराबाद में मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वर्ण गिरी मंदिर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें ऊंचे गोपुरम यानी द्वार और भव्य दीप स्तंभ बनाए गए हैं। भव्य मूर्तियां और तस्वीरों के साथ बारीक शिल्प और संरचनाएं लगाई गई हैं। गणेश उत्सव के श्री गणेश के साथ ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है।
3: वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहां पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहां पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनके उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है।
1: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर अब की बार शहर शहर कई पंडाल सजे। ऐसे ही एक भव्य गणेश पंडाल सजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां शान से विराजमान दिल्ली के महाराजा इस पंडाल को विघ्नहर्ता से विकासकर्ता थीम पर बनाया गया है। इसी थीम के तहत यहां गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के महाराज के पंडाल में अब की बार गणपति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग धामों के भी दर्शन हो रहे हैं।
4: हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है। तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे। और आपने देखा होगा इस गणपति जी के हाथ में इस बार ब्रह्मोत्सव है, मेड इन भारत। और आपने देखा होगा सेमी कंडक्टर भी है और साथ में ड्रोन भी है। भगवान गणपति का ये संदेश है कि हमारा देश भारत देश विश्व गुरु तो बन ही रहा है, लेकिन इस भारत देश पे अगर कोई संकट आता है हर भारतीय को हमें सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माता की सुरक्षा के लिए। इसलिए गणपति जी का संदेश है, इसीलिए हमने ये टाइटल दिया है कि दिल्ली का महाराजा विघ्नहर्ता से विकास

0: इसी कड़ी में पुणे में भी गणेश उत्सव के अद्भुत रंग नजर आए। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग नजर आए। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
1: सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में
2: है? उम्र के 10 साल से,
1: 10 साल के ऊपर।
2: हाँ,
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं, रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो। बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है, उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बापा आएंगे मंडलों में, उसी पांडाल में आएंगे, 10 दिन सब के साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब अंबेडकर हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे

इसी तरह बेंगलुरु में गणेश उत्सव की भव्यता को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बेंगलुरु के जेपी नगर में एजुकेशन थीम पर भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है विद्या गणेश। इस पंडाल को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट्स, कैलकुलेटर, टिफिन बॉक्स और किताबों से पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान और स्टेशनरी आइटम से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के बाद पंडाल को सजाने में काम आई सारी स्टेशनरी और किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटी जाएंगी। यानी फिलहाल विद्या गणेश के दरबार की शोभा बढ़ा रहा यह सामान फिर जरूरतमंद बच्चों के हाथों तक पहुंचेगा और पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। हर साल बेंगलुरु का ये गणेश मंडल अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार होता है, लेकिन अब की बार यहाँ की थीम देश भर में सबसे अलग नजर आ रही है।

गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर गुजरात के मेहसाड़ा से भी आई, जहां मेहसाड़ा पुलिस के जवानों ने विघ्नहर्ता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुजरात के मेहसाड़ा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाड़ा में यह परंपरा साल 1900 से ऐसी ही चली आ रही है। बताया जाता है कि साल 1900 में वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महाउत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूँकि सयाजी राव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा शुरू करवाई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बसावन गुड़ी इलाके के इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था, जहां गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह

तमिलनाडु के थूथुकुडी में गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंदिरों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई। थूथुकुडी के गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्ति

0: वहीं थूथुकुडी में ही भक्तों ने बेहद खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां भक्तों ने गजानन के विनयम गर्भ स्वरूप की शानदार प्रतिमा स्थापित की है। गणपति की इस प्रतिमा के साथ ही तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ की प्रतिकृति भी बनाई गई है। बप्पा की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के पिलियार पट्टी में मौजूद विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें बताती हैं कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रॉक फोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। गणेश भक्तों के लिए एक सौगात चेन्नई में भी तैयार है। चेन्नई कोलाथुर इलाके में भक्तों के एक ग्रुप ने लंबोदर की 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। गौरी नंदन की इस प्रतिमा पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े और मेटल के फ्रेम्स लगाए गए हैं। पूरी मूर्ति गोल्डन और कॉपर के शेड्स में तैयार की गई है। जब गजानन की इस प्रतिमा पर सूरज की किरणें पड़ी तो ये रोशनी से जगमगा उठी। गणेश उत्सव के मौके पर महाकाय के इस महारूप की सुनहरी आभा से मानो चेन्नई शहर दमक उठा है। शहर भर में इस मूर्ति की चर्चा है। लोग गजानन के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
1: अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी से भक्ति का एक अनोखा और अलग ही स्वरूप सामने आया है। वाराणसी में कलाकार भगवान गणेश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा अनूठे अंदाज में प्रकट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है ये कलाकार। आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का अनोखा हुनर है इनमें।
2: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग। देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे, मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
3: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और इस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया, और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो, बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
2: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो विघ्नहर्ता पधार चुके हैं आपके तमाम विघ्नों का नाश करने के लिए। ऐसे ही रंग, ऐसे ही तमाम झलकियां आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: सरकार की नींद उड़ाने उमड़ी हजारों की भीड़। रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में जनसैलाब। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, जान बचाकर भागे बच्चे। नन्हे हाथों से सजा सबसे क्यूट गणपति पंडाल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर की बप्पा की आराधना। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाठ बाठ के साथ था न्यू पैलेस में भगवान गजानन का आगमन। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और घुड़सवार दस्ते के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधिवत स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया है निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया गया आकार। इंदौर के खजराना में 7 करोड़ के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार। भगवान को चढ़ाया गया 1,25,000 मोदक का भोग। 10 दिनों तक चलेगा महोत्सव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नजर आई मातृशक्ति की अनूठी तस्वीर। कजरी तीज के मौके पर मां और दादी को कांवड़ में बैठाकर कराए भोलेनाथ के दर्शन। राप्ती नदी के जल से कराया गया अभिषेक।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। कलाकारों में गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो गणपति की पूजा करते हुए नजर आए। वीडियो में सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। एक्टर तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर तुषार कपूर पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, आरती की। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने भी अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया, अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी क्लिक की। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो अपने घर गणपति को लाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ नाचते गाते नजर आए। एक्टर करण वाही ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया पलों का वीडियो, अपने फैंस को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। करण वाही ने मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले रोहित सराफ ने भी गणपति उत्सव पर तस्वीर शेयर की। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर भी पधारे बप्पा, परिवार संग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी हुई बप्पा की स्थापना, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते नजर आए सचिन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों की सुनाई दी गूंज, आरती में पूरा परिवार शामिल हुआ। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति के साथ बप्पा की आराधना करते हुए नजर आई, विधि विधान के साथ बप्पा की स्थापना की। तस्वीरों में चंकी पांडे के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। अनन्या ने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। अभिनेता नाना पाटेकर के घर हुए बप्पा की स्थापना, विधि विधान के साथ बप्पा की आरती करते हुए नजर आए अभिनेता। नाना पाटेकर के घर हर साल पूरी श्रद्धा के साथ होती है बप्पा की स्थापना, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बप्पा की आरती की। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी परिवार के साथ बप्पा को वो घर लाए, गणेश जी की स्थापना की। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी अपने घर बप्पा की स्थापना की। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी के घर भी पधारे बप्पा, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा में गणेश स्थापना, पत्नी अमृता फडणवीस के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। नागपुर में गणेश उत्सव की धूम, ढोल नगाड़ों और गाजेबाजे के साथ भक्त अपने लाड़ले बप्पा को बुला रहे हैं घर। नागपुर के पंडालों में भी हो रही है बप्पा की स्थापना, विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा। एक से बढ़कर एक बप्पा की प्रतिमाओं को सजे हुए हैं नागपुर के बाजार, बप्पा की छोटी सी प्रतिमा से लेकर बड़ी प्रतिमा भी उपलब्ध। बप्पा की मूर्ति के साथ साथ तरह तरह के मूषक भी भक्तों का लुभा रहे हैं मन, जमकर हो रही है खरीदारी। मुंबई में लालबाग राजा के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़, पूरे अनुशासन के साथ भक्त कर रहे हैं दर्शन। इस साल महाकाल मंदिर की थीम पर सजा है लालबाग राजा का भव्य दरबार, भक्तों में खुशी की लहर। मुंबई मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल में आए सुबह से शुरू हुए दर्शन, उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। 11 सितंबर को दिखाई जा रही थी लाल बादशाह राजा की पहली झलक, आज से 10 दिन तक होंगे दिव्य दर्शन। गणेश चतुर्थी पर चेन्नई में बनाई गई बप्पा की 42 फीट ऊंची प्रतिमा, दूर दूर से प्रतिमा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। गणेश चतुर्थी पर अमरावती में एक पर्यावरण प्रेमी की शुभ पहल, बप्पा की प्रतिमा के साथ दे रहा एक पौधा बिल्कुल फ्री। बप्पा की सभी मूर्तियां भी मिट्टी से बनाई गई हैं और नेचुरल कलर्स का किया गया है इस्तेमाल। पर्यावरण संरक्षण और कला प्रेमी इस पहल की कर रहे हैं सराहना और लोगों से इको फ्रेंडली प्रतिमाएं खरीदने की कर रहे हैं अपील। ज्वालम गणेश चतुर्थी का उत्सव राजुरेश्वर गणपति मंदिर में हुई महापूजा। महाराष्ट्र के साढ़े तीन शक्तिपीठों में एकमात्र संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं राजूर का राजेश्वरी गणपति मंदिर। मुंबई में चिंचपोकली चा राजा के भी दर्शन हुए, शुरू पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हस्तियां। चिंचपोकली चा राजा के पंडाल में पहुंचे प्रणव और करण अडाणी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी बंगले वर्षा में गणपति की स्थापना की, परिवार के साथ आरती की। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी गणपति पूजा अर्चना की, भक्तिभाव में नजर आई। आज से घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए हैं भव्य पंडालों में विराजेंगे बप्पा और अगले 10 दिन तक धूमधाम से होगी विनायक जी की पूजा। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभायात्रा, रथ पर सवार देखे गणपति। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभायात्रा में दिखे महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के अद्भुत रंग। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभायात्रा में दिखी नारी शक्ति की झांकी, महिलाओं ने पेश किया युद्ध कौशल। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ मंगला आरती गाई गई। नागपुर में श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में गणेशोत्सव के सिलसिले में चरम पर देखा लोगों का उत्साह, ढोलताशों के साथ गणपति का स्वागत। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में श्री गणेश सिद्धपीठ में दिख रही है गणेशोत्सव की रौनक, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें। चंदौसी के मंदिर में गणपति का भव्य दिव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन में जुटे श्रद्धालु। चंदौसी में निकाली गई गणपति की भव्य शोभायात्रा, बैंड बाजी के साथ भव्य स्वागत। राजस्थान के पाली में बनाई गई गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हैदराबाद के खैरताबाद में 69 फीट ऊंचे गणपति पंचमुखी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में शानदार तरीके से सजा मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार, सुबह 6:15 से शुरू हुए दर्शन। स्वर्ण मुकुट से सजे मोती डूंगरी वाले गणपति राजसी पोशाक और आभूषणों से तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज सुबह किए मोती डूंगरी वाले गणपति के दर्शन, पूजन मंदिर में पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी पर गुवाहाटी में भी गणपति के दर्शन और पूजन करने के लिए मंदिरों में भारी भीड़। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लक्खी मेले की हो गई शुरुआत। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मंदिर में गणपति की भव्य प्रतिमा। डोडा गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गौरी गणेश उत्सव का भव्य आयोजन। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में मंदिरों में भगवान विनायक के दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। तूतुकुड़ी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान विनायक की अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई, प्रतिमा के साथ मदुरई की थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर जलाई जाने वाली दिव्य ज्योति की भी दर्शन हुए। त्रिशि में भगवान गणेश की उच्ची पिलियार मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। हैदराबाद में बेगम बाजार के फीलखाना इलाके में अनोखे गणपति के दर्शन हुए, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड भगवान गणेश की प्रतिमा। 3,80,000 से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से सजी गणपति की प्रतिमा, अलौकिक दर्शन। प्रतिमा का वजन है 48 किलोग्राम, पंचधातु से किया गया है निर्माण। 8 कुशल कारीगरों ने 8 महीनों में बनाई है मूर्ति, दशावतार और तिरुपति बालाजी के डिजाइन शामिल। लगातार 30 साल हुई है यहां पर गणपति की स्थापना, दिखाई गई बेहतरीन कारीगरी। नागपुर में गणेश उत्सव की धूमधाम के साथ हो गई शुरुआत, खजेबाजी के साथ बप्पा को घर ले जा रहे हैं भक्त। नागपुर के चितार ओली इलाके में गणपति प्रतिमाएं लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अकोला में धूमधाम से हुआ बप्पा का स्वागत, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आए श्रद्धालु। एक परिवार में पिता और बच्चे मिलकर बप्पा को लाए अपने घर, बहुत उत्साह और श्रद्धा का माहौल। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार, बाल गणपति से लेकर सेल्फी और माखन चोर तक की प्रतिमाएं। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर विराजे गणपति बप्पा, भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के पिल्लयारपट्टी में करगप्पा विनायक मंदिर में गणपति दर्शन करने के लिए लगी लंबी कतार, लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। शिवगंगा जिले में भगवान गणेश का अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है करगप्पा विनायक मंदिर। चेन्नई में सज्जे धजे हाथियों के साथ निकाली गई भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा। तिरुमाला में आयोजित होने वाले सालाना श्रीवारी ब्रह्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हजारों लोग चेन्नई से विशेष रूप से तैयार पवित्र छतरियां लेकर तिरुपति जाते हैं। अकोला में छाई हरतालिका तीज पर्व की खुशियां, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। महिलाओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए मांगी दुआ। उज्जैन में देखने को मिली हरतालिका तीज की रौनक, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए महादेव के दरबार में पहुंची सुहागिनें। देर रात से ही दर्शन करने के लिए मंदिर में जुटने लगी थी महिलाओं की भारी भीड़, माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन करके परिवार की खुशहाली की कामना। कटिहार में बाढ़ पर भारी नजर आई आस्था, बाढ़ में डूबे गांव में नाव पर पहुंचाई गई महिलाओं को व्रत की सामग्री। बेतिया में एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में पहुंची फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर। अभिनेत्री करिश्मा कपूर की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़, और प्रशंसकों के बीच सेल्फी लेते हुए नजर आए फैंस। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दोहन सिंह पहुंचे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन पूजन किए। अभिनेता ने संतों का आशीर्वाद लिया और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन को बताया मन को शांति देने वाला। दरअसल फिल्म अभिनेता कबीर दुहन राम मंदिर निर्माण पर बनाना चाहते हैं एक फिल्म। आगरा में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के घर पर मनाया गया जश्न, एशिया कप के फिनाले में भारतीय महिला टीम के जीत के बाद खुशी की लहर। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ माहौल, सैलानियों के लिए स्वागत। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही मेडिकल टीम। जम्मू श्रीनगर के श्रीनगर में मौसम हुआ सुहाना, डल झील में शिकारी का मजा ले रहे हैं सैलानी। राजौरी में इस बार हुई अखरोट की शानदार पैदावार, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का, समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। स्मारक स्तंभ का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा, काम की हुई समीक्षा, नृपेंद्र मिश्र ने पुराने अस्थायी मंदिर के चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। एमपी के आगरमालवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात, लड़ती बहना योजना की 40वीं किश्त खाते में कुल 1,835,00,000 रुपए ट्रांसफर हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन समारोह हुआ। खेल विभाग ने टीम और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। घाटी में खेलों को बढ़ावा देना टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हिस्सा। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने शिरकत की। चीन में शिगात्से की मोनेस्ट्री में बौद्ध भिक्षु ने मनाया उत्सव। पारंपरिक छम डांस का आयोजन किया गया। खुशहाली और समृद्धि का माहौल। बौद्ध धार्मिक रिवाजों से जुड़ी है छम नृत्य की कला। तिब्बत के कियांग मू भिक्षु समुदाय के लोग होते हैं इसमें शामिल। चीन की ओर से सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया छम। प्राचीन परंपरा और वेशभूषाओं में होती है परफॉर्मेंस। चीन के जिनजियांग में खोला गया अनोखा साइंस म्यूजियम। मिलेंगी डायनासोर से जुड़ी जानकारियां। छियालीस सौ स्क्वायर मीटर इलाके में बना है म्यूजियम। पहली बार अरबों साल पहले मौजूद जीवों के रहस्यों से उठेगा पर्दा।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: सरकार की नींद उड़ाने उमड़ी हजारों की भीड़। रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में जनसैलाब। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, जान बचाकर भागे बच्चे। नन्हे हाथों से सजा सबसे क्यूट गणपति पंडाल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत देश में हो चुकी है। देखिए, शहर शहर बप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज चुके हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन गुजरात के जामनगर में बप्पा के एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने घर में ही बप्पा का अनोखा संसार सजा रखा है। इस अनोखे संसार में विघ्नहर्ता की 3000 कलाकृतियां मौजूद हैं, जो गणेशोत्सव के महापर्व के दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

0: घड़ी में बापात, चाबी के गुच्छों और पेन में विघ्नहर्ता की छवि, पेंटिंग्स में बापा, धातु और लकड़ी में बापा का स्वरूप, कांच के शोपीस और सजावटी आइटम में गजानन की छवि। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ गौरीपुत्र गणेश ही नजर आएंगे। ये कोई दुकान नहीं है बल्कि विघ्नहर्ता का ये अनोखा सा संसार सजा है गुजरात के जामनगर के रहने वाले दिलीप ध्रुव के घर में, जहां बापा की एक दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, तीस नहीं, बल्कि 3000 कलाकृतियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं।
1: मेरे पास टोटल मिला के 3000 गणपति है, उसमें से 800 गणपति की मूर्तियां है, 200 किचन है, 500 गणपति की वुडन फ्रेम है, और सब मिला के 3000 हो गए है। और मेरे पास मैंने ये सब एक गणेश गैलरी में डिस्प्ले किया है और लोगों पर अच्छी तरह से देख सके, इसलिए मैंने गैलरी बनवाई है।
0: इस अनोखी गैलरी में बापा अलग अलग आकार, साइज, डिजाइन और रंग में मिल जाएंगे। इन 3000 कलाकृतियों का संग्रह करने में दिलीप भाई को 40 साल का लंबा वक्त लगा है, तब जाकर वो ये अनोखा संसार सजा पाए हैं। दिलीप भाई का दावा है कि आप जिस स्वरूप में बापा को सोचोगे उस स्वरूप में बापा उनके पास मौजूद हैं।
1: लास्ट 40 इयर्स से गणपति का कलेक्शन कर रहा हूँ। आज मेरे पास गणेश जी के हर एक स्वरूप पे गणपति है, स्कूटर चलाता, अच्छी क्रिकेट रमता गणपति, क्या आप कोई पण स्वरूप में बोलो मेरे पास गणेश जी है।
0: गणेशोत्सव के मौके पर बापा की अनोखी गैलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो यहाँ पर आ रहा है वो बापा के इस विशाल संग्रह को देखकर अभिभूत है।
2: जामनगर में करीब 9 दिनों का 8 दिनों का वो गणपति का महोत्सव चलता है, उसमें आपको अलग अलग स्वरूप अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा गणपति के अलग अलग स्वरूप और गणपति के अलग अलग मीडियम में आपको गणपति देखने को मिलेंगे। प्रतिमाएं हैं, पोस्टर्स हैं, कीचेन्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि आपने शायद देखा भी नहीं होगा। चावल में भी बने हुए हैं, सब तरह के आपको देखने मिलेंगे मूषक महाराज के साथ में। तो आप जरूर एक बार इधर आइए और अपने इस आर्ट गैलरी का लाभ लीजिए।
0: आस्था और भक्ति जब अपने चरम को छू जाए तो वो केवल एक भावना नहीं रह जाती बल्कि भक्त का भगवान के प्रति अटूट समर्पण बन जाता है। ऐसा ही समर्पण दिलीप भाई का विघ्नहर्ता के प्रति है, जिसे उन्होंने इस अनोखी गैलरी की हर छोटी से छोटी चीज में संजोया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, मंदिरों में भगवान गजानन के दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर की बप्पा की आराधना, नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बापा की पूजा अर्चना, जीएनटी संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसीट हाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन, घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से स्थापना, मुंबई में सोनू सूद ने घर में पधारे भगवान गजानन, काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया आकार। इंदौर के खजराना में 7 करोड़ के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार, भगवान को चढ़ाया गया 1,25,000 मोदक का भोग, 10 दिनों तक चलेगा महाउत्सव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नजर आई मातृभक्ति की अनूठी तस्वीर, कजरी तीज के मौके पर मां और दादी को कावड़ में बिठाकर कराए भोलेनाथ के दर्शन, राप्ती नदी के जल से कराया अभिषेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। गणेश उत्सव का रंग अब पूरे देश पर चढ़ चुका है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, जयपुर और कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं, तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है शहर शहर गणपति बप्पा का शुभ आगमन। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई के लालबाग में सजे लालबाग के राजा के दरबार में आस्था का सबसे बड़ा नजारा देखने को मिल रहा है। यहां बप्पा के दर्शन के लिए आम हो या खास, हर कोई उनके दरबार में पहुंचता है।

वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकायेषु सर्वदा। गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, हर गली हर मोहल्ले हर पंडाल में बप्पा के भक्तों की बहार है। चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय उठा है। बप्पा के स्वागत में पंडालों को भव्य रूप दिया गया है तो कहीं गणपति की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं। आस्था और भक्ति के ये रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई के शहर में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है।

0: मुंबई में गणपति उत्सव की बात हो, लालबाग के राजा का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बप्पा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
1: खूबसूरत लग रहे हैं हर साल की तरह, इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूं, सारी चीजें ठीक कर दूंगा। देखिए, सोने का मुख और सोने के बहुत से ऐसे गहने इस बार लालबाग के राजा पहन करके विराजमान यहाँ पर हैं। लालबाग के राजा इस समय जिस मंदिर में हैं, चांदी से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, रामेश्वरम की थीम दी गई है। और जिस मंदिर में इस समय लालबाग के राजा हैं, उसके ऊपर का आप सीधे तस्वीर देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ है, जिसे डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है।
2: आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली, मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है।
0: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में देखने के लिए मिली। यहाँ श्रीमंत दगडूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंखनाद के साथ श्रीमंत दगडूशेठ गणपति का जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 100 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव में बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान गणेश को हीरे जड़ित नेत्र और करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरों से बने आभूषण अर्पित किए। विशेष श्रृंगार में सजे भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कौन न्यूज टुडे।
3: और दिल्ली में भी गणपति बप्पा पंडालों में विराजमान हो चुके हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर का गणेश पंडाल इस बार 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, लिहाजा यहां पर भव्य इंतजाम किए गए।
4: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, दिल्ली के महाराजा विराजमान हो चुके हैं अपने पंडाल में। आप देख सकते हैं इस बार का जो थीम है, विघ्नहर्ता से विकास करता। एक हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल है तो दूसरे हाथ में आप बप्पा के ड्रोन भी देखेंगे और साथ ही साथ एक हाथ में उनके लैपटॉप भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि विराजमान हो चुके हैं गणपति बप्पा। साज सज्जा इतनी खूबसूरत है कि नजरें हटाने का आपको मन नहीं करेगा। खास करके जो फेटा उनके सर पर बांधा गया है वो इतना भव्य और दिव्य है कि वो अद्भुत लग रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि दिल्ली के महाराजा का जो ये पंडाल है कई मायनों में खास है। एक तो हर बार ये कोई ना कोई समाज को मैसेज देता है और इस बार चूंकि वो अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है ये पंडाल, आपको बता दें कि इस मंडल की तरफ से, गणेशोत्सव मंडल की तरफ से विशेष इंतजाम भी कई किए गए हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पंडाल मंच की बात करें तो गणेश जी के अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण को भी आप देख सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर स्थापना की गई है। और पूरे पूजा के लिए देखिए किस तरह से पूरे थाली को सजाया गया है। आप थाल में देख सकते हैं किस तरह से दीप, फल, मिष्ठान और तमाम पूजा की जो सामग्री होती है, हल्दी, चंदन, रोली, तमाम चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं।
3: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल में गणपति विराज रहे हैं। आपके अपने पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे पर भी गणपति पधार चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है जीएनटी में पधारे गणपति। जी हाँ, आपको बता दें कि गुड न्यूज टुडे पर जब मंगल मूर्ति का आगमन हुआ तो पूरी टीम बप्पा के स्वागत में उमड़ पड़ी। बप्पा का अभिनंदन किया गया, फिर बप्पा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई।

0: स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। आपके बप्पा जयंती के घर में फाइनली पधार चुके हैं,
1: लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कुछ मिनटों का इंतजार है और उसके बाद बप्पा के मुख दर्शन सभी को हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां ना, जैसे हम इम्पेशेंट हो रहे थे, आई एम श्योर कि आप भी इम्पेशेंट हो रहे होंगे, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। मुख दर्शन के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीएनटी में हम स्थापित करने जा रहे हैं अपने गणपति बप्पा को। दे एक बार फिर से सभी बोलिए साथ में, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: अस्तु दशा भी रघु सर्वा गण गुस्वस्ताए आत्मा सानी प्राजा सानी लोह का सान्य भाजा सानी ही।
1: जब हम गए थे चुनाव करने के लिए तो हमने यही कहा था कि भाई हम क्या चुनाव करेंगे गणपति का, गणपति हमें चुनेंगे कि हमारे यहाँ, यानी कि गुड न्यूज टुडे पे कौन से गणपति आते हैं।
2: और पिछली बार मुझे याद है आपसे हम पूछ कर ही लेके आए थे पिछली बार भी मूर्ति, तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। हमने कहा इस बार कोई त्रुटि हम करेंगे नहीं, वैसे ही गणपति सुंदर से
0: लाए। और मेरी प्रार्थना है गणपति से, भगवान गजानन से, कि जिस भाव से जिस कामना से आप लोग गणपति जी को लाए हैं, गणपति वह सारी कामना जो है आपकी और हमारी जीएनटी संस्थान और हमारे आज तक संपूर्ण संस्थान की जो है उत्तर उत्तर प्रगति करें और उत्तर उत्तर उनको जो है निरोग स्वस्थ और दीर्घायु।
1: अरविंद जी आपने बहुत अच्छी पूजा कराई पूरे विधि विधान से, हालांकि मैं बाद में जुड़ी शगुफ्ता गीते का शुरू से थे, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ गणपति उत्सव से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं, आपको हम बता दें कि वो सारी तस्वीरें सारी खबरें पूरे देश से इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे।
2: लेकिन हम इस वक्त आपको लेकर गीतिका कुछ कहना चाहेंगे।
3: जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी गणपति बप्पा
4: मोरिया,
3: मंगल मूर्ति मोरिया।
1: गणेश चतुर्थी के साथ साथ आज हरतालिका तीज की पर्व भी धूमधाम से मनाई जा रही है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और अखंड सौभाग्य का पर्व है। बिहार में बाढ़ के बावजूद इस पर्व के प्रति महिलाओं की आस्था कम नहीं हुई है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। बाढ़ में भी मन रहा अखंड सौभाग्य का पर्व तीज। जी हाँ, हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती है।

0: माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और चूड़ियां, 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं। ये तस्वीरें हैं हरितालिका तीज के उत्सव की। आस्था और सुहाग का वो पर्व जिसका इंतजार महिलाएं पूरे साल करती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की थी। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सुयोगपति की कामना और जीवन साथी की दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। बिहार में हरितालिका तीज को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिलता है। बाढ़ आए या तूफान, आस्था के इस पर्व को मनाने का संकल्प कम नहीं होता। और इस बार जब बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने महिलाओं के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, चारों ओर पानी ही पानी, बाजार तक पहुंचना मुश्किल था और तीज की पूजा का सामान जुटाना उससे भी बड़ी चुनौती। लेकिन तभी उनकी इस परेशानी का समाधान लेकर एक समाज सेवी पहुंच गए। नाव पर पूजा का पूरा सामान लेकर समाज सेवी ने महिलाओं की मदद की।
1: ऐसे में हमारे एक समाज सेवी हैं जो कि यहाँ नाव से चलकर, यहाँ आप देख सकते हैं कि दर्जनों महिलाएं हैं, ये दर्जनों महिलाएं जो कि तीज व्रती हैं, पूजा करने वाली हैं, और ये इनको जो है ये समाज सेवी जो है मुसव्वर मोहम्मद मुसव्वर, ये अपने निजी कोष से ये तीज के सामान को पूजा के लिए वितरित कर रहे हैं।
0: जिस रास्ते पर पानी ने आवाजाही रोक दी थी, उसी रास्ते से ही समाज सेवी महिलाओं तक पहुंचे और उनके हाथों में तीज की खुशियां सौंप दी।
2: खूब परेशान थे हम लोग, पानी में खरीदने नहीं जा सकते हैं और हम लोग खारा उपास करने का प्रयास कर रहे थे, तो एक शहर आया है, उसको भगवान करे उसको आरो आगे बढ़ते जाए, भगवान उसको सही सलामत रखे।
1: तो क्या ऐसे बाढ़ में पूरा घर द्वार डूबा हुआ है?
2: हाँ, घर में एक कमर पानी है सर।
1: तीज तो करना जरूरी है
2: पर... हाँ जी सर, टंकी के ऊपर में रहते हैं ना, इटका तरह के इटका ये पानी में डूबल है टंकी, एक हाथ ऊपर है इटका से, उसी में रहते हैं।
0: बिहार समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट को न्यूज टुडे।
3: और आज हिंदी दिवस भी है, ऐसे में प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी को सिर्फ भाषाओं और आयोजनों तक सीमित रहने के बजाय न्याय के क्षेत्र में उसे व्यवहारिक रूप से स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली जो यानी कि चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, वो है न्याय की भाषा में हिंदी को मिल रही नई पहचान। आपको बता दें कि आज के दौर में अंग्रेजी को आधुनिकता, रोजगार और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। नई पीढ़ी में अंग्रेजी के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में जस्टिस गौतम चौधरी ने न्याय व्यवस्था में हिंदी के इस्तेमाल और आम आदमी को उसकी अपनी भाषा में न्याय समझाने की जरूरत पर फोकस किया है। जस्टिस गौतम चौधरी की पहचान न्याय के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर तो होती ही है, साथ ही हिंदी में न्यायिक आदेश और निर्णय लिखने के उनके प्रयासों ने उन्हें अलग पहचान दी है। उन्होंने अब तक कुल 96,000 से ज्यादा जजमेंट दिए हैं, जिनमें हिंदी में दिए गए आदेशों और निर्णयों की संख्या 38,000 से अधिक पहुंचाई है। उनके द्वारा आज भी हिंदी में आदेश और निर्णय लिखने का यह सिलसिला लगातार जारी है। परंपरागत रूप से हाईकोर्ट में न्यायिक आदेश और निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लेकिन जस्टिस चौधरी ने हिंदी में निर्णय लिखकर एक नई मिसाल पेश की है।
4: मेरी मातृभाषा है, उसका अनादर या उसका अपमान नहीं होना चाहिए, और जन साधारण को निर्णय और न्याय उसकी भाषा में अगर सुलभ कराया जाए तो उसको समझने में भी आसानी होती है और उसका जो क्रियान्वयन है वो भी वो सही ढंग से कर पाता, अन्यथा बहुत सी चीज़ें टूटी पूर्ण हो जाती है। नौजवान लोगों से बात हुई है, वो बहुत उत्साही हैं कि हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा पर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हिंदी ही नहीं आप कर पा रहे हैं तो अंग्रेजी तो आप भी आज भी आप अपने ऊपर एक तरीके से आपने होड़ रखी है। तो अंग्रेजी से मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा राग द्वेष नहीं, लेकिन हिंदी में होना चाहिए काम, मेरी ये आशा है लोगों।
3: और अब बात संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर ऐतिहासिक दधिकन्नू मेले की भव्यता देखने को मिली। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर भगवान श्री कृष्ण, राधा से लेकर भोलेनाथ, माता पार्वती तक की आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है ऐतिहासिक दधिकन्नू मेले में भगवान की भव्य झांकी। जी हां, मेले में अलग अलग देवी देवताओं की भव्य झांकियां निकाली गई। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के सिर से निकलती अग्नि देखकर लोग बेहद रोमांचित हुए, तो कृष्ण राधा के नृत्य ने जमकर दर्शकों की तालियां बटोरी।
5: संगम नगरी प्रयागराज में ऐतिहासिक दधिकन्नू मेले में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रयागराज में दधिकन्नू मेले का आनंद उठाने और देवताओं की झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। इस मौके पर जगमगाती रोशनी के बीच सजी हुई दुकानें, चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ और देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। मेले में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की झांकी लोगों के आकर्षण का खास केंद्र रही। भगवान भोलेनाथ के सिर से निकलती आग का दृश्य देखकर लोग रोमांचित हो उठे। लोग अपने मोबाइल कैमरों में इन अद्भुत पलों को कैद करते नजर आए। वहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी ने भी लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण राधा के मनमोहक नृत्य पर मेले में मौजूद लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। वहीं माँ काली के आकर्षक नृत्य ने सबका मन मोह लिया।
6: ये बहुत वर्षों पुरानी परंपरा है, दधिकन्नू मेला हमारे सुलेन सराय का जो शहर पश्चिमी में आयोजित होता है, और यह सबसे बड़ा मेला प्रयागराज का है। लगभग कम से कम 10 किलोमीटर लंबा यह झांकियां निकलती हैं, कृष्ण राधा और बलदाव की झांकियां निकलती हैं। यह भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। आप देख सकते पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है।
5: प्रयागराज के सुलेम सराय में सजा दधिकन्नू का ऐतिहासिक मेला सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बना, बल्कि यहां मनोरंजन और खरीदारी का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में लगे इस मेले में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने अपने परिवार के साथ मेले में सजी रंग बिरंगी दुकानों पर जमकर खरीदारी की।
7: और यहां पे धार्मिक चौकियां निकाली जा रही है और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहां झांकियां देखने आए हैं। जैसे राधा कृष्ण की झांकियां निकल रही है और महादेव जी की निकल रही है, माँ पार्वती जी की निकल रही है, बजरंग बली की निकल रही है, बहुत अच्छा लगता है।
5: दधिकन्नू मेले में भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। दरअसल प्रयागराज में लगने वाला दधिकन्नू मेला वर्षों से आयोजित होता आ रहा है और हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। मेले के अलग अलग रंगों से सजा प्रयागराज का यह ऐतिहासिक मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है।
8: इस दधिकन्नू मेले में भगवान की झांकियां निकाली जा रही है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम भगवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, भोलेनाथ, पार्वती और भगवान कृष्ण, राधा, और यहाँ पर तमाम झांकियां निकाली जा रहे हैं और लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आए हैं। प्रयागराज में ऐतिहासिक दधिकन्नू मेले की ऐतिहासिक परंपरा है और यहाँ पर तमाम भगवानों के जो स्वरूप है वो देखने को मिलते हैं और भगवान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस मेले में आते हैं और रात भर ये चौकियां निकलती हैं, इसके बाद इस परंपरा को निभाया जाता है। पंकज यादव, प्रयागराज, गुड न्यूज।
3: और पन्ना के अकोला बफर गेट पर अब पर्यटक विश्व की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की प्रतिमा का दीदार कर सकेंगे। हथनी वत्सला ने करीब 107 साल का जीवन पूरा किया था। यह प्रतिमा पन्ना आने वाले पर्यटकों और भावी पीढ़ियों को वत्सला के इतिहास के बारे में जानकारी देगी। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है और वो है पन्ना में विश्व की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की यादें। जी हाँ, आपको बता दें पन्ना के जंगलों में कभी अपनी उम्र और खास पहचान से पर्यटकों को आकर्षित करने वाली हथनी वत्सला अब एक नए अंदाज में नजर आएगी। पन्ना के अकोला बफर गेट पर अब पर्यटक विश्व की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की भव्य प्रतिमा का दीदार कर सकेंगे। जेके सीमेंट की ओर से लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई ये प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इस प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार ने किया है। पन्ना में कभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का होना अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक रहा। अब प्रतिमा के माध्यम से देश प्रदेश और बाहर से आने वाले पर्यटक भी उसके इतिहास और पन्ना से उसके जुड़ाव को जान सकेंगे। बता दें कि वत्सला लंबे समय तक पन्ना के जंगलों और वन्यजीव पर्यटन से जुड़ी रही और अपनी उम्र के कारण विशेष पहचान बनाई थी। अकोला बफर गेट पर स्थापित ये प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र बनेगी।
9: ऐतिहासिक फैसला है और जब भी लोग इधर से निकलेंगे तो 107 वर्ष जिसने पूरे किए हों ऐसे जीव के दर्शन करेंगे तो अपने जीवन को भी कृतार्थ करेंगे। और इस मूर्ति को जब बनाया गया है तो निश्चित रूप से जो वेस्ट प्लास्टिक उसके माध्यम से बनाया गया कि इको फ्रेंडली भी रहे, पर्यावरण के हितों की संरक्षा भी हो। इस प्रतिमा से यह भी संदेश निकलता है और मैं इस अच्छे ऐतिहासिक काम के लिए हमारे विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी और जेके प्लांट के लोग और वन विभाग के सभी लोगों का हृदय से।
3: पर्यटन सीजन के पहले फेरे में विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन स्वर्णगिरी जैसलमेर पहुंची, जहां पर देसी विदेशी मेहमानों का राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। इस शाही काफिले का जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर देसी विदेशी पर्यटकों का फूलमाला और तिलक से अभिनंदन किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, पैलेस ऑन व्हील्स के सैलानियों का भव्य स्वागत। जी हां, राजस्थानी गीतों की धुन, ढोल नगाड़ों की गूंज और रेड कार्पेट पर पर्यटकों का फूलमालाओं से स्वागत। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस वक्त राजस्थानी रंग में रंगा नजर आया जब पर्यटन सीजन के पहले फेरे में पैलेस ऑन व्हील्स जैसलमेर पहुंची। इस मौके पर राजस्थानी लोक धुनों पर बैंड की प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि शाही मेहमान भी थिरकते नजर आए। इस शाही सफर में कुल 75 देसी विदेशी पर्यटक जैसलमेर पहुंचे हैं। इनमें 64 भारतीय और 11 विदेशी सैलानी शामिल। जैसलमेर की धरती पर उतरते ही पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति और यहां की मेहमान नवाजी का अनुभव मिला। अब ये शाही मेहमान सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, ऐतिहासिक हवेलियों और रेगिस्तान के सुनहरे दौरों का दीदार करेंगे। शाही ट्रेन के जैसलमेर पहुंचने से पर्यटक कारोबारियों के चेहरे पर भी काफी खुशी है। होटल कारोबारी हों, टैक्सी संचालक हों, स्थानीय गाइड हों या हस्तशिल्प से जुड़े व्यापारी, सभी को उम्मीद है कि शाही ट्रेन के जरिए आने वाले पर्यटकों से जैसलमेर के पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी।
10: सारी दुनिया में नहीं देखा वो राजस्थान में मिलता है। अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए और आपको कहीं हिंदुस्तान क्या दुनिया में ऐसा कहीं इतिहास नहीं मिलेगा। और किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, अपना धर्म बचाना है और सबसे प्यार करना है। आओ भगत तो इनसे सीखिए। और दूसरी बात क्या, हमें पूरे राजस्थान पे मान है। और जो महाराणा प्रताप हुए, अब उनका परिवार पहले भी हमारे हीरो थे, हमारे बुजुर्गों के, और हमारे भी हीरो हैं।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य
13: कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर की बप्पा की आराधना। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे बप्पा। न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा, जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन, घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन, काजल और अनन्या ने भी मंगल पूर्ति की आराधना की। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया आकार। शिरडी के साई मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र, मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने दान किया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे पर किन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन दोनों वायरल वीडियोज की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डरकर भागने लगे। इसकी सच्चाई क्या है, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी मैदान पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजारा है, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। कुछ लोग इस वीडियो को रायबरेली का बताकर वायरल कर रहे हैं। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों से मुलाकात भी की। इन सब के बीच लोगों की भारी भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नजारा है, यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी। वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है। भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब उत्तर प्रदेश। वही कुछ ने इसे खास तौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी मैदान में हजारों लोगों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में जल सैलाब उमड़ा। कई लोग इस वीडियो को राहुल गांधी के हालिया रायबरेली दौरे से जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं। वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है। वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये नजर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस के झंडे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि किसी कांग्रेस की रैली से जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। वीडियो में कई जगह पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जब हमारा ध्यान इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर गया, तब हमने इसे जूम करके देखा तो इन गाड़ियों पर गुजरात के नंबर प्लेट देखने को मिले। इससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। अगर वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो फिर यहां पर सिर्फ गुजरात की गाड़ियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? रैली उत्तर प्रदेश में है और गाड़ियां सिर्फ गुजरात की, ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ गुजराती आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर रैली हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है तो फिर यहां पर गुजराती ही क्यों सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय स्थानीय जनता, व्यापारियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की थी और दिशा की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऐसे में सवाल यही है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने किसी रैली को संबोधित किया तो इसके बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि कहीं किसी पुरानी रैली के वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा? सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे इन्होंने 10 मई 2022 को पोस्ट किया था। इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि वीडियो गुजरात के दाहोद का है। हमें राहुल गांधी के दाहोद दौरे से जुड़ी साल 2022 में प्रकाशित हुई कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आदिवासी समुदाय की चिंताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का उत्तर प्रदेश रायबरेली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात का है और करीब 4 साल पुराना है। के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
9: इंडोनेशिया में सितंबर की शुरुआत में 4 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे उठते धुएं और राख के गुब्बार के बीच कुछ बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
10: हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। लंबे समय तक सक्रिय रहे इस ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। अब इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बीच घबराकर कई बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का भयावह दृश्य है। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर को शुरू हुआ विस्फोट कई घंटों तक जारी रहा और लंबे समय तक सक्रिय रहे ज्वालामुखी के इसे राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी से जोड़ता हुआ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखता है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने ये वीडियो हाल फिलहाल का है, इंडोनेशिया का ही है, ये जानने की कोशिश की, इसकी जांच शुरू की। वीडियो में जो हमें सबसे खटकने वाली बात नजर आई वो थी वीडियो का क्वालिटी, अप टू मार्क नजर नहीं आ रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये हाल फिलहाल का नहीं बल्कि काफी पुराना वीडियो हो सकता है। हाँ, ये इशारा जरूर मिल रहा था कि ये वीडियो इंडोनेशिया का ही है, लेकिन इसमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि ये काफी हद तक बहासा इंडोनेशियाई जैसा है, जो कि इंडोनेशिया की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। इससे करीब 50 फीट ऊपर तक राख उड़ी, लेकिन इसकी सबसे करीबी बस्ती 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लोगों को सक्रिय क्रेटर से 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और कई दिन पहले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि चेतावनी के बावजूद स्कूल कैसे खुला रह सकता है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के काफी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
10: अब ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर झूठ फैलाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 20 फरवरी 2018 को एक यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले।
8: रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा स्थित कारो जिले के गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के दौरान एसडी नेगरी नमन तेरल स्कूल के छात्र घबरा गए और स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगे। इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 की पुरानी घटना का था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सुमात्रा के कारो जिले में स्थित गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी में राख का घना गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठा था। बतौर रिपोर्ट राख के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। 20 फरवरी 2018 को एक और वेबसाइट पर भी यही वीडियो प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। ज्वालामुखी से धुएं और राख का एक विशाल बादल उठा और उत्तरी सुमात्रा के एक गांव की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूली बच्चे घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए और भागने लगे। हमारे पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो इंडोनेशिया में हुए हालिया ज्वालामुखी विस्फोट का नहीं है। ये करीब 8 साल पुराना वीडियो है जिसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक कुंजी।
9: और फैक्ट चेक में फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: कड़े
10: उत्सव आते ही शहरों में बड़े बड़े पंडाल नजर आने लगते हैं। कहीं लाखों रुपए खर्च करके भव्य सजावट की जाती है तो कहीं गणपति की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इन चमकदार पंडालों के बीच एक छोटा सा गणपति पंडाल सामने आया है जिसने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई बड़ी सजावट, ना महंगी लाइटें और ना ही किसी तरह का दिखावा, बस एक बच्चा, उसके नन्हे हाथ और भगवान गणेश के प्रति आस्था। बच्चा बेहद लगन से गणपति की प्रतिमा को रंगता नजर आया जिसे देखकर लोग इसकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं। गणपति की प्रतिमा पर रंग भरने के बाद उसका रूप काफी सुंदर दिखाई देता है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा किसी शानदार स्टूडियो या बड़े सेटअप में नहीं बल्कि सड़क किनारे बेहद सीमित सुविधाओं के बीच तैयार की गई है। नन्हे हाथों से सजा ये छोटा सा गणपति पंडाल भले ही आकार में छोटा हो लेकिन लोगों के दिलों में इसकी जगह काफी बड़ी बन गई है। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलने सीखने की कोशिश करते हैं। वह सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है। वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात यह है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही हैं और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं।

0: एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। उन्होंने छात्र को चिप्स, चॉकलेट, ठंडे पेय जैसे जंक फूड खिलाए और फिर नकली पेट स्कैन के जरिए पेट में कीड़े दिखाए। स्क्रीन पर एनिमेटेड बड़े कीड़े दिखते हैं जो जंक फूड खाकर पेट में पनप रहे हों। बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं, कई बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कुछ रोने लगते हैं। ये प्रदर्शन जंक फूड से बच्चों को दूर रखने के इरादे से किया गया था, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं निकला। बच्चे एनिमेटेड कीड़ों को देखकर भयभीत हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई आई। कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और समझदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से सिखाई गई बात बच्चे जल्दी याद रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की।
1: మంగళమూరటి మారుట నందన సకల అమంగళమూలని కందన మంగళమూరటి మారుట నందన సకల అమంగళమూలని కందన శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మనము గురు సుధారి బరణో రఘుబర బిమల జోదయ కఫలచారి బుద్ధిహీన తనుజాని కే సుమిరం పవన కుమార బలబుడి విద్యా దేహు మహీన్ హరు కలేశ వికార సియావర రామచంద్ర పద జయశరణం।
0: भारत की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति संगीत का असर अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये विदेशी शख्स बिना किसी झिझक के लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि उसकी रफ्तार काफी तेज होने के बाद वह शब्दों को, पंक्तियों को पूरे ध्यान के साथ बोलता नजर आता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ शब्दों का दोहरा नहीं रहा ऐसा लगता है कि जैसे वह सिर्फ शब्दों को दोहरा नहीं रहा बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर रहा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे
1: हैं। राम मिलाया रज पर दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर बानु लीलियोता मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मलि मुख माइन जल्दी लंगी गाय चरज नाइन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी

0: कम।
1: अच्छी खबर में गेंदों की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से बरोबर सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आला रे आला गणपति आला, गुड न्यूज टुडे के न्यूज रूम में पधारे विघ्नहर्ता, शहर शहर बप्पा की भक्ति के रंग, आस्था संस्कृति और परंपरा के भव्य उत्सव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और कैंसर के खिलाफ जंग में एआई की ताकत भी देखिए, वक्त पर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान होने की उम्मीद जगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता।

0: मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर की बप्पा की आराधना। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जयंती संग मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर पापा की विधिवत स्थापना। मुंबई में सोनू सूद ने के घर पधारे भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया गया आकार। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने दान किया।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले गणेश चतुर्थी की, और इस शुभ अवसर पर बप्पा जगह जगह विराजमान हो चुके हैं और बप्पा के आगमन से जुड़े उत्सव के रंग से पूरा देश सराबोर है। जेएनटी यानी कि गुड न्यूज टुडे के न्यूज रूम में भी गणपति विराजमान है और मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों के बीच जो उत्साह है उसकी तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत और निराली है। अब अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक आस्था का ये रंग यूं ही बिखरा रहेगा।

0: पूरा देश बापा की भक्ति के रंग में सराबोर है। पंडाल में, घरों में बापा का आगमन हुआ है। इसी तरह गणपति गुड न्यूज टुडे के न्यूज रूम में भी धूमधाम से पधारे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
2: हम तैयार हैं गणपति बप्पा को अपने बप्पा को घर में लाने के लिए, तो आपको इस यात्रा में हम करने जा रहे हैं शामिल।
0: पूरे विधि विधान से, श्रद्धा से, सम्मान से बप्पा गुड न्यूज टुडे आए। सबसे पहले पूजा का थाल सजाया गया और भक्ति भाव से उनके भक्त चले।
2: गणपति बाप्पा
3: मोरया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरया।
2: लिफ्ट में पहुंच चुके हैं,
3: 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति
2: हमारे साथ, हमारे और आप सबके साथ हैं गणपति बाप्पा। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं।
0: अब जरा पूजा की

0: थाली के बारे में जान लीजिए।
1: इतनी तैयारी हमने की है, शगुप्ता ने कितनी सुंदर थाली सजाई है। बप्पा
2: देखिए एक बार,
1: भोग जो लगता है वो बेसन के लड्डुओं का लगता है और हमने बप्पा की पसंद के बेसन के लड्डू भी लिए।
2: अच्छा, ये जो थाली है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब गणपति जी को लेने जाते हैं तो वहां पर जाकर गणपति जी की आरती की जाती है। इस थाली में आपको फूल नजर आएंगे। ये कपड़ा रखा गया है जिससे उनके मुख को कवर किया जाएगा लाने से पहले। यहाँ पे आपको चावल नजर आएंगे, वहां पे हम जोत जलाएंगे, धूप है, अगरबत्ती है और सारी का इंतजाम हमने कर लिया है। तो चलिए,
0: जीएनटी की टीम उल्लास और उमंग के साथ गणपति प्रतिमा को लाने निकली और फिर उस जगह पहुंची जहां से मूर्ति लानी थी। मूर्ति लाने के लिए जो विधि विधान है उसको निभाने के बाद आरती की गई।
1: कि यहां हमने आरती कर ली है, बप्पा की आरती हो चुकी है, बप्पा को भोग लग चुका है, लेकिन मुख दर्शन ऑफिस जाके होंगे तो थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा।
0: आरती के बाद बाप्पा की प्रतिमा को गाड़ी में विराजमान कर जीएनटी की टीम दफ्तर के लिए निकल पड़ी। दफ्तर पहुंचने पर बाप्पा का भव्य स्वागत किया गया और फिर जोश के साथ स्थापना के लिए उन्हें लाया गया। इसके बाद बाप्पा की प्रतिमा से लाल कपड़ा हटा और उनके भव्य दर्शन हुए। पूजा अर्चना के बाद जीएनटी के न्यूज रूम में बापा की स्थापना की गई।
3: दुर्वांकुरा हरि ओम माँ कांडात कांडात प्ररोहंती परुका परुकस्परी एवानो दुर्बे प्रतानुशासन सतेन च।
0: जो माहौल गुड न्यूज टुडे के न्यूज रूम में है वही पूरे देश में है। गणेश उत्सव की दिव्य छठा है और मंदिरों से लेकर पंडालों तक भक्तों की भीड़ बापा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है। मुंबई में भी जगह जगह धूमधाम के साथ बाप्पा को घर से लेकर पंडालों में विराजमान कराने के लिए लाया गया। गणेश चतुर्थी पर मुंबई के परेल लालबाग इलाके में सबसे प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों का सुबह से ही हुजूम उमड़ पड़ा। सभी बाप्पा के भव्य रूप के दर्शन कर भाव विभोर दिखे। बापा की दिव्य प्रतिमा की तस्वीरें लेने के लिए भक्त आतुर दिखे। इसके अलावा पंडाल की भव्यता भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
4: गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है। मैं मौजूद हूं मुंबई के बहुचर्चित पंडाल में लाल बाग के राजा के दरबार में और आप खुद भी तस्वीरों के माध्यम से लाल बाग के राजा का दर्शन करिए। वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। देखिए सोने का मुख और सोने के बहुत से ऐसे गहने इस बार लालबाग के राजा पहन करके विराजमान यहाँ पर हैं। लालबाग के राजा इस समय जिस मंदिर में हैं, चांदी से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। रामेश्वरम की थीम दी गई है और जिस मंदिर में इस समय लालबाग के राजा हैं उसके ऊपर का आप सीधे तस्वीर देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ है जिसे डायमंड से सजाया गया है। जितने खूबसूरत बप्पा आज दिख रहे हैं उतना ही खूबसूरत उनका दरबार भी है। यही वजह है कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु इस समय बप्पा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि देखिए यूएसए के डॉलर का बहुत बड़ा हार माला इस समय गणपति बप्पा को पहनाया गया है। तो इस तरीके से पहला दिन लालबाग के राजा का बीते जा रहा है।
0: अब 10 दिनों तक इसी तरह लालबाग के राजा समेत दूसरे पंडालों में भी इसी तरह दिव्य रंग देखने को मिलेंगे। अब गणेश चतुर्थी पर चिंचपोकली के चिंतामणि के इस दरबार को जरा देखिए। यहाँ भी सुबह से ही बाप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगने लगा। हर भक्त बाप्पा के पास जाकर उनके दर्शन करना चाह रहा था। यहाँ भीड़ को देखते हुए अलग से स्टेज भी बनाया गया था, वो भी भक्तों से पूरी तरह भरा हुआ दिखा।
5: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बापा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है, जो ये पर्व है अगले 10 दिनों तक रहने वाला है।
0: मुंबई में आम से लेकर खास तक सभी गणेश चतुर्थी पर बापा की आराधना में लीन दिखे। बॉलीवुड के सितारों से लेकर टीवी स्टार्स भी पूरे भक्ति भाव से बापा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नारा पाटेकर, तुषार कपूर से लेकर कई नामचीन चेहरों ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति की स्थापना की। गणेश चतुर्थी पर एक्टर सोनू सूद, अभिनेत्री डेजी शाह समेत कई स्टार्स धूमधाम के साथ गणपति को स्थापित करने अपने साथ प्रतिमा लेकर आए। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी आस्था के इस उत्सव के दिव्य और भव्य रंग दिखाई दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर घर से लेकर पंडालों तक में बप्पा विराजमान हो चुके हैं और इसके अलावा गणेश मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ है। गणेशोत्सव के लिए अलग अलग थीम पर बने पंडाल और बप्पा की प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित कर रही हैं।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पूरा देश इस जयकारे से गूंज रहा है। गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के साथ ही हर तरफ उल्लास का वातावरण है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक यहाँ इस उत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे हो या फिर नागपुर या अकोला या जालना, इन जगहों पर पंडालों से लेकर गणेश मंदिरों तक के पूरे विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। पूजा अर्चना से लेकर आरती हुई और गणपति दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पुणे का पारंपरिक गणेशोत्सव शहर की 5 मानाचे गणपति मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ और इसी परंपरा के मुताबिक धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था, भक्ति और उत्साह के भव्य रंग देखने को मिले।

0: कि विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। ये बाहर देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, भाऊ साहेब रंगारी हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब समाज साथ में आए, समाज की उन्नति हो इसलिए प्रयास किया और उसके बाद पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई।
1: इसी तरह नागपुर में नागपुर के राजा विधिवत पूजा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य पंडाल में विराजमान हुए। अकोला में भी भक्तों ने धूमधाम के साथ बप्पा को अपने साथ ले जाकर उनकी स्थापना की। जालना में भी गणेश चतुर्थी पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुआ। बप्पा के जय घोष के बीच राज राजेश्वर गणपति मंदिर में शासकीय महापूजा सम्पन्न हुई। गुजरात में भी गणेशोत्सव का दिव्य शुभारम्भ हुआ। ये तस्वीरें महेसाणा की हैं, जहां गणेश चतुर्थी पर प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर में भगवान गणेश को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर यानी विशेष सलामी दी गई। इस मंदिर में गायकवाड़ शासनकाल से गणपति को विशेष सलामी देने की परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है। वडोदरा में 100 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा के साथ गणेशोत्सव का भव्य रूप से शुभारम्भ हुआ। गायकवाड़ राज परिवार के लक्ष्मी विलास पैलेस में भगवान गणेश की शाही आगवानी हुई। बारिश और शहनाई की धुनों के बीच बप्पा को एक विशेष पालकी में दरबार हॉल में लाया गया और फिर राजगुरु ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की स्थापना संपन्न करवाई। वहीं पाटन जिले के सबसे पुराने गणेश महोत्सव स्थल गणेशवाड़ी में 149वें गणेश महोत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ पालकी यात्रा निकाल कर विधि विधान से स्थापित किया गया। गणेश चतुर्थी पर राजस्थान के मंदिरों में भी आस्था का हुजूम उमड़ा। जयपुर के गणेश डोंगरी मंदिर में सुबह से ही आम लोगों से लेकर खास भक्तों का दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार चलता रहा। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। गणेश चतुर्थी पर यहां 3 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में भी गणेशोत्सव की भव्य तस्वीरें देखने को मिली। लक्ष्मीनगर में दिल्ली के महाराजा का भव्य दरबार सजाया गया।
2: यहां पर दिल्ली का महाराजा साक्षात यहां पर विराजमान हो चुके हैं। देखिए इनकी दिव्यता और भव्यता। पूरे इस बार के पूजा पंडाल की थीम क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं उनके हाथ में ड्रोन कैमरा है, ब्रह्मोस आप देख रहे हैं और तमाम चीजें यानी कि विघ्नहर्ता से विकासकर्ता जो इस बार का मुख्य थीम है यहां का, वो यहां दर्शाया गया है।
3: दिल्ली का महाराजा 24 सालों से कार्य कर रहा है और इस बार 25वीं सिल्वर जुबली है, तो हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे, हम क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है, तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे।
1: उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक देश के हर हिस्से में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। हैदराबाद में एक से बढ़कर एक बप्पा की भव्य प्रतिमाएं बिठाई गई हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां 2047 के विकसित भारत थीम पर भव्य मंडप सजाया गया है, जिसमें रोबोटिक गणपति विराजमान है।
4: गणेश महाराज के मंडप में विकसित भारत रूप में विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करके इस बार मंडप को तैयार कर रहे। बुलेट ट्रेन भी हम लोग टेम्पल में लगाए, गणेश महाराज को भी रोबोटिक गणेश मतलब आर्मर ड्रेस पहना के रोबोटिक स्टाइल में गणेश महाराज को तैयार करे। इसे
1: यही नहीं, हैदराबाद के बेखम बाजार में फिलखाना इलाके में कीमती मूर्तियां देखने को मिल रही है। यहाँ 24 कैरेट सोने की परत वाली गणेश जी की मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे 3.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है।
5: इस मूर्ति का कुल वजन 48 केजीज है और ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की हुई है मूर्ति। बोलो गणेश महाराज की जय।
6: 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये मूर्ति तैयार की है, जिसमें 3,50,000 से भी ज्यादा अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं और ये जो मूर्ति है पंचधातु में बनी हुई है, पांच अलग अलग मेटल यूज करके बनाई हुई है। इसका बेस मेटल ब्रास है और जैसे कि आप देख सकते हैं मूर्ति के अंदर काफी अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं और सारा का सारा स्टोन फिटेड है, इसमें कोई भी स्टोन चिपका हुआ नहीं है। और पीछे आपको दशावतार के दर्शन होंगे, ऊपर तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे।
1: पूरे देश गणेशोत्सव के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर असम के गुवाहाटी के गणेश मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पुणे से ओमकार बाबले, नागपुर से योगेश पांडे, अकोला से धनंजय सामले, जालना से गौरव विजयशाली, महसाणा से मनीष मिश्री, वडोदरा से तुषार पटेल, पाटन से सुनील पटेल, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात महिलाओं को होने वाले एक कैंसर के खिलाफ नई उम्मीद की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिन का राष्ट्रीय एआई मंथन 2.0 आयोजित किया गया, जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई की संभावनाओं पर मंथन हुआ। इस दौरान भारतीय महिलाओं के लिए सबसे आम कैंसर बन चुके ब्रेस्ट कैंसर की जल्द से जल्द पहचान पर भी जोर दिया गया। दरअसल ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मेमोग्राफी टेस्ट का सटीक विश्लेषण करने वाले कुशल रेडियोलॉजिस्ट और सीनियर टेक्नीशियन ज्यादातर बड़े शहरों के अस्पतालों तक सीमित रहते हैं और यह एक वजह है कि ज्यादातर समय ग्रामीण और छोटे शहरों में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी बीमारी वक्त पर नहीं पकड़ी जाती है। शुरुआती दौर में पहचान नहीं हो पाने की वजह से भारत में हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के कारण एक महिला की मौत हो रही है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अब प्रशासन, उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने में हो रहा है। मेडिकल साइंस में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दखल से अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नतीजे सामने आ रहे हैं। ये नई तकनीक चिकित्सा सेवाओं को ज्यादा सटीक और आसान बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बीमारी का जल्दी पता चलने के साथ उपचार भी जल्दी हो रहा है। इसके जरिए किसी भी मरीज के मेडिकल डेटा का तेज और अचूक विश्लेषण मुमकिन हो पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आने की आहट सुनाई देने लगी है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिन का राष्ट्रीय एआई मंथन 2.0 आयोजित किया गया, जहां अनुसंधान, रोबोटिक, नवाचार, कृषि, उच्च शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई की संभावनाओं पर मंथन हुआ। इस दौरान शुरुआती दौर में ही ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए सबसे बड़ा हथियार मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में एक अत्यंत गंभीर और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। भारतीय महिलाओं में होने वाला ये सबसे आम कैंसर बन चुका है, जो महिलाओं में मिलने वाले कुल कैंसर मामलों का लगभग एक तिहाई यानी कि करीब 28% हिस्सा है। पहले महिलाओं में सर्विकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा होते थे, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने इसकी जगह ले ली है। देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारत में हर 4 मिनट में एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। दुर्भाग्य से भारत में हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के कारण एक महिला की मौत हो जाती है। हर साल करीब 90,000 महिलाएं इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। हर 28 में से एक भारतीय महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है।
7: इंडिया में डायग्नोस ही नहीं होता है अर्ली स्टेज में। जैसे अब हमने ये बात करना स्टार्ट किया है, 4 मिनट हुआ है, इस 4 मिनट में एक व्यक्ति इस देश में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हुआ है। अगर हम 4 मिनट और बात करें, एक व्यक्ति मर भी जाएगा ब्रेस्ट कैंसर से, इतना ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का है। और इंडिया में ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट जो उसकी जो स्टडी होती है, मैमो एक्सरे होते हैं, उसको रीड करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए ज़रूर एआई की वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बिफोर इट स्प्रेड, वो जैसे फैल जाता है बॉडी में, उससे पहले उसकी ट्रीटमेंट देने के हमारे पास आज एआई टूल्स हैं, उनको बहुत जगह पे यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। लोगों को सीखना चाहिए कैसे यूज़ करें। ज़रूर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के तो हम कम कर सकते हैं एआई की वजह से।
1: दरअसल ब्रेस्ट कैंसर का पता करने वाले मेमोग्राफी टेस्ट से जुड़ी एक्सरे और स्कैन को पढ़ना यानी कि इंटरप्रिटेशन और उनकी सटीक जांच करना एक जिम्मेदारी भरा काम है। ट्रेन्ड टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से कई बार शुरुआती दौर में बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी तक ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी शामिल है। अगर समय पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज न हो तो शरीर के दूसरे अंगों में फैलकर यह जानलेवा हो सकता है। पहले चरण में ही पता चलने पर ट्यूमर या प्रभावित हिस्सों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेमोग्राफी टेस्ट से ब्रेस्ट कैंसर से जिंदगी को होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छे खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि क्योंकि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:44 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:21 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इसीलिए आज हम गणेश जी की महिमा का एक विशेष एंगल आपको बताने वाले हैं। गणेश जी का वास्तु के साथ क्या संबंध है? देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक, दोषों को बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और कार्य स्थल के वास्तु दोष भगवान गणेश की सही मूर्ति लगाने से नष्ट हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि भगवान गणेश के चित्र का, मूर्ति का प्रयोग कैसे करें ये आप जान लें और ये आप समझ लें। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से सही रंग की, सही आकृति की गणपति की मूर्ति लगाएंगे तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर में अभी रुकावट रहेगी। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो उसके नियम क्या हैं? याद रखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में ना रखें और पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की तीन मूर्तियां कभी ना रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड़ बाई तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो, और बहुत बड़ी मूर्ति न रखें। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फिट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है। इसको स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ है और आप अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करिए और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा। वैसे तो गणपति की कृपा से आप किसी भी दोष को दूर कर सकते हैं। वो विघ्न नाशक हैं, संकट हरने वाले हैं। वास्तु दोष कैसे गणेश जी की कृपा से दूर होगा? बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाइए या इसी रंग का चित्र लगाइए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण मत करिए। एक साथ बहुत सारी गणपति की मूर्तियां ना लगाएं। एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखें। शयन कक्ष में, बेडरूम में वैसे तो किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें, लेकिन गणपति की मूर्ति बिल्कुल भी आपको बेडरूम में नहीं रखनी है। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं। बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति न लगाएं। अपने घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र लगाएं। रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। घर में बहुत सारे गणपति अगर आप लगाना चाहते हैं तो तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं या जगह जगह पर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। स्वस्तिक गणपति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ऐसा भी करें तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन गए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। किस तरह के गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाई जाए या किस रंग का चित्र गणपति का कहाँ लगाया जाए जिससे समस्याएं और वास्तु दोष दूर हो जाएं। गणेश जी की धातु की प्रतिमा अगर मेटल की प्रतिमा है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो इसको लिविंग एरिया में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर गणपति की मेटल की मूर्ति लिविंग एरिया में लगाते हैं तो इससे घर के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की छोटी सी प्रतिमा या चित्र धन स्थान पर रखें, निरंतर धन आता रहेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखेंगे, ऐसा करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या हरे रंग के गणेश जी का चित्र पढ़ने या काम करने के स्थान पर रखें, ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा होता जाएगा, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जब आप गणपति की मूर्ति या चित्र लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, यानी गणपति की पीठ बाहर की तरफ होगी और चेहरा अंदर की तरफ होगा, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणपति के दर्शन होंगे। इस तरह से अगर आप अंदर की तरफ गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मेन डोर पर देवी देवताओं का चित्र बिल्कुल मत लगाइए, उचित नहीं है। मेन डोर पर आप कोई प्रतीक, कोई चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम लिख के लगा सकते हैं, जैसे स्वस्तिक बना सकते हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल लगा सकते हैं। कोई चिन्ह या कोई प्रतीक, या सबसे अच्छा होगा कि मेन डोर के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी एक एक स्वस्तिक लाल रंग का बना के लगा दिया जाए, या लाल रंग के स्वस्तिक का चित्र वहां लगा दें, तो ऐसा करने से घर में शुभता ज्यादा आएगी। अगर नियमित रूप से आप धन का आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आता रहे, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करके अगर मंगलवार को प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे? गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें या सफेद रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और रोज शाम को कपूर जलाकर उनकी आरती करें। निरंतर 3 महीने तक ऐसा करते जाएं, आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पक में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पक पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बापा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शनों के लिए उमड़े भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित

0: भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधिवत स्थापना। मुंबई में सोनू सूद ने घर पधारे भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया आकार। शिरडी के साई मंदिर में बप्पा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को मिले गार्ड ऑफ ऑनर की भी है। देखिए,
1: के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश का भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान गणेश को हीरे जड़ित नेत्र और करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरों से बने आभूषण अर्पित किए गए। विशेष श्रृंगार में सजे भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वहीं परंपरा के अनुसार ध्वजा पूजन के साथ 10 दिन के गणेश उत्सव की शुरुआत की गई।

0: गुजरात के मेहसाणा में प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर में भगवान गणेश को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा निभाई गई। पूरे गुजरात में एकमात्र ऐसा गणपति मंदिर है जहां इस तरह की परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है। इस मंदिर का निर्माण संत निरंजन दास ने किया था और इसके बाद सयाजी राव गायकवाड़ ने यहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। उस दौर में गायकवाड़ सरकार के सैनिकों की गणपति दादा पर अपार श्रद्धा थी, जिसके चलते उन्होंने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देने की शुरुआत की थी। श्रद्धा और समर्पण की ये परंपरा आज भी बनी है। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 की थीम पर बनी गणपति की प्रतिमा लोगों का ध्यान खींच रही है। ये भव्य प्रतिमा है हैदराबाद की ललिता बाग में मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्थापित की गई। एसोसिएशन के गणेश चतुर्थी मनाने के 50 साल पूरे होने पर स्थापित की गई इस प्रतिमा में 1947 से 2027 तक के भारत की यात्रा दिखाई गई। संगम नगरी प्रयागराज में ऐतिहासिक दंडी कादू मेले की भव्यता देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण राधा से लेकर भोलेनाथ माता पार्वती तक की आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। भोलेनाथ के स्वरूप से सिर से निकलती अग्नि देखकर लोग रोमांचित हुए। राधा कृष्ण के स्वरूप में नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। माँ काली के स्वरूप ने सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर अब पर्यटक विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की प्रतिमा का दीदार कर पाएंगे। लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई इस प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया है। वत्सला ने लगभग 100 से 107 साल का एक लंबा और गौरवशाली जीवन जिया। पिछले साल जुलाई में उम्र से संबंधित बीमारियों के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता एलिफेंट कैंप में उनका निधन हो गया।
1: और अब बात करते हैं गणपति उत्सव की। पूरे देश में गणेश उत्सव का रंग चढ़ चुका है और जगह जगह गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों के बीच जो उत्साह है, उसकी तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत और निराली हैं। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में आस्था का सबसे बड़ा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आम हो या खास, हर कोई उनके दरबार में पहुंच रहा है। और चिंचपोकली चिंतामणि में भी बप्पा के भक्तों की भरमार है। और अब अगले

0: हम सब के गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं। हर पंडाल गली मोहल्ले में बप्पा के जयकारों की गूंज है। कहीं ढोल ताशों की गूंज तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। बप्पा के स्वागत में पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है तो कहीं गणपति की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं। भक्ति और आस्था की ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा पर्व है। मुंबई में गणपति उत्सव की बात हो तो लालबाग के राजा का नाम सबसे पहले आता है। लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है, मैं मौजूद हूँ मुंबई के बहुचर्चित पंडाल में, लाल बाग के राजा के दरबार में, और आप खुद भी तस्वीरों के माध्यम से लाल बाग के राजा का दर्शन करिए। वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा। देखिए, सोने का मुख और सोने के बहुत से ऐसे गहने इस बार लाल बाग के राजा पहन करके विराजमान यहाँ पर हैं। यही वजह है कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु इस समय बप्पा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि देखिए, यूएसए के डॉलर का बहुत बड़ा हार माला इस समय गणपति बप्पा को पहनाया गया है। दो तरह की कतारें हैं जहां से चलकर बप्पा का दर्शन करने लोग पहुंचते हैं। पहला तो मुख दर्शन है, दूसरा पग दर्शन है। मुख दर्शन के लिए लगभग 2-3 घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आकर के बप्पा का पैर छूने का मौका मिले तो लगभग 8-10 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा कतार में रह करके, क्योंकि बप्पा को मिन्नतों के राजा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी बप्पा से मांगा जाए बप्पा तुरंत ही पूरी कर देते हैं। बड़ी खास बात होती है जब बप्पा की दान पेटी खुलती है, जिसमें कई प्रकार की चिट्ठियां भी खुली होती हैं। उन चिट्ठियों में माताएं अपनी बेटी की शादी करने की दुआएं मांगती हैं, पिता बेटे के नौकरी लग जाने की दुआएं मांगते हैं, बच्चा पास हो जाए इस तरह की दुआएं मांगी जाती है, प्रेमिका प्रेमी एक दूसरे से शादी हो जाए इस बात की मन्नतें मांगते हैं। खास बात है कि कुछ चिट्ठियां ऐसी भी निकलती हैं जो धन्यवाद के रूप में होती हैं, बप्पा को धन्यवाद कहा जाता है, और यही वजह है कि देखिए बप्पा को मिन्नतों का राजा कहा जाता है।
0: लालबाग के राजा के दरबार में सुबह से उनके दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई है और भक्त बप्पा की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बप्पा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु घंटों कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इस तरह की गूंज यहाँ पर गूंज रही है, और सीधे अब लालबाग के राजा का आप दर्शन करें, बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं हर साल की तरह। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी खासियत इस बात को लेकर के है क्योंकि रामेश्वर की थीम दी गई है। आप बप्पा के पीछे का जो चलचित्र देखें वो भी रामेश्वर की तरह ही दिख रहा है, साथ ही साथ जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में, ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर, इस समय बहुत ज्यादा खुश है।
0: लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करने में बिल्कुल नहीं थकते। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि श्रद्धालु अपने मोबाइल में बप्पा की खूबसूरत तस्वीर को कैद करते नजर आ रहे हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
1: अमूनन 2-4 लाख श्रद्धालु रोजाना ही बप्पा के दरबार में आते हैं। आज पहला दिन है और इस बार 12वें दिन विसर्जन होना है, यानी कि 11 दिन बचे हैं। 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन करने के बाद, 3 दिन की गणपति का विसर्जन करने के बाद, 5 दिन की गणपति का विसर्जन करने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र के लोग अपने परिवार संग लालबाग के राजा के दरबार में आएंगे, और ये जो 3-4 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा है ये सीधे 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आपको बताएं कि क्या आम क्या खास, बहुत से सेलेब्स भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए कार्यकर्ता है, आपसे बात करते हैं तो कैसा चलेगा ये 10-12 दिन लगातार?
2: इस बार ऐसा है कि बप्पा 10-11 दिन बल्कि 12 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा लोगों को अपने दर्शन देंगे, और जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भक्तों की श्रद्धा है बप्पा के प्रति, जो बप्पा ने इनकी इच्छाएं पूरी की है, जो आंख में भाव है, श्रद्धा है, वो लेके बप्पा के आशीर्वाद लेने यहाँ पे पधारे हैं।
1: अच्छा, सेलर्स भी आए हैं आप
2: यहाँ पे सुबह? जो आज विद्युत जमवाल जी खुद आए थे और डमरू का उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, डमरू बजाया था अपने हाथों से, और सेल्फ का आना जाना लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे भक्तों के नजरों, बप्पा के नजरों में सब एक ही है।
0: मुंबई के ही चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई और यहाँ भी श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है।
3: मुंबई में गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो चुका है। इस वक्त हम चिंतपोकली चिंतामणि के मंडल में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहाँ पर पांच बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंतपोकली ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहाँ पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परेल इलाके में गणपति है उनके, उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है, जो ये पर्व है अगले 10 दिनों तक रहने वाला।
0: आम श्रद्धालुओं के अलावा तमाम प्रसिद्ध हस्तियों ने लालबाग के राजा और सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया और विधिवत पूजा अर्चना की। अभिनेता नाना पाटेकर हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेशोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटा प्रसाद पाटेकर समेत परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, तुषार कपूर, जिल्पा शेट्टी ने अपने घर में बप्पा का स्वागत किया। ऐसे में सवाल है कि गणेश उत्सव की शुरुआत कब और कैसे हुई? वैसे तो प्राचीन समय में गणेश उत्सव केवल घरों और मंदिरों में मनाया जाता था। परिवार अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते थे, यानी महाराष्ट्र सहित कई क्षेत्रों में ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। वहीं गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप देने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। वर्ष 1893 में उन्होंने इस उत्सव को बड़े स्तर पर मनाने की शुरुआत की। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और अंग्रेज सरकार लोगों के बड़े समूह में एकत्र होने पर कड़े प्रतिबंध लगाती थी। तिलक ने महसूस किया कि यदि किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से लोगों को एक मंच पर लाया जाए तो समाज में एकता बढ़ेगी और स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। इसी विचार से उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। तो सवाल ये भी है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव के पीछे उद्देश्य क्या था? लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन जागरण करना, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को मजबूत बनाना, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का मुकाबला करना। गणेश उत्सव के दौरान भजन, कीर्तन, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। इससे लोगों में देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता बढ़ी। यही वजह है कि आज गणेश उत्सव केवल धार्मिक त्योहार नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ धर्मेंद्र दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी आपने मुंबई में लालबाग के राजा और चिंचपोकली चिंतामणि के दरबार में भक्तों का सैलाब देखा। अब राजधानी दिल्ली में बप्पा को लेकर कितना उत्साह और उमंग है ये भी देखिए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजे श्री गणेश सेवा मंडल में गणपति बप्पा विराजमान है और श्रद्धालुओं की भीड़ बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। वहीं बाल बटुकों ने स्वस्ति वाचन का मंत्रोच्चार कर सबका दिल जीत लिया।
4: मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहाँ भव्य दिल्ली के महाराजा का पंडाल जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस भव्यता और दिव्यता की। लेकिन जब आप ऐसे किसी भी पंडाल में आते हैं, ऐसे किसी भी धाम में आते हैं जहाँ इतने बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी के दिन, तो यहाँ की शोभा कुछ और ही होती है। इस वक्त मेरे साथ कश्मीरी गेट से पहुंचे हुए बाल बटुक कुछ हैं जो कुछ मंत्रोच्चार करके गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आज के दिन सुनाना चाहते हैं। कौन सा मंत्र होगा आपका?
5: जी मंगलाचरण
4: सुनाएं।

और अब बात शहर शहर गणेश उत्सव की। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर घर से लेकर पंडालों तक में गणपति विराजमान हो चुके हैं। शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को आकर्षित कर रहा है। गणेशोत्सव के लिए अलग अलग थीम पर बने पंडाल और बप्पा की प्रतिमाएं भक्तों को खूब रास आ रही। बप्पा के आगमन से जुड़े उत्सव के रंग से देश का ज्यादातर हिस्सा सराबोर है।

0: पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देश का कोना कोना गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का जयघोष गूंज रहा है। हर बार की तरह इस बार भी पंडालों में बप्पा को विराजमान किया गया है, जिनके दर्शन मात्र से हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में शंख ध्वनि से गणपति बप्पा के आगमन का आगाज हो चुका है। यहाँ शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों से बप्पा का स्वागत किया जा रहा है।
1: पुणे की विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में?
2: उम्र के 10 साल से।
1: 10 साल के ऊपर?
2: हाँ, आपकी उम्र मेरा 61 साल है। मेरे पिताजी मेरे खुद के पढ़ लेते घर के। मैं बचपन से गणपति संभाले। मेरा पंडाल का जो पंडाल का मैं मुख्य कार्यकर्ता हूँ।
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते के इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, सभी लोग अलग अलग जगहों से यहाँ शामिल हो चुके हैं गणपति बाप्पा के आगमन के लिए। बाप्पा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बाप्पा आज विराजमान होंगे पुणे में।
0: महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत का उत्साह देखते ही बन रहा है। बप्पा की प्रतिमाएं घर घर पहुंचने लगी हैं और उनके स्वागत में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, हर कोई खुशी से झूमता नजर आ रहा है। गणेश भक्त ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए बप्पा को अपने घर ले जाते नजर आए। वहीं एक परिवार में पिता और बेटे ने मिलकर गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा को बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ घर पहुंचाया।
3: गणपति बप्पा का आगमन जो है वो हर घर में हो रहा है। हम फिलहाल एसीसी ग्राउंड में हैं और यहाँ पर देखिए कि भक्त जो है अरे धूम के साथ जो है ढोल नाचो नगाड़ों के साथ जो है घूमते नजर आए। बप्पा को जो है अपने मैं भी इसमें शामिल होता हूँ। देखिए ये बात जरूर है कि बप्पा आने के बाद जो है ढोल बजने के बाद हम भी झूम उठते हैं और हर कोई जो है देखिए लगभग 70 साल से अधिक है उम्र, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। बप्पा आ रहे हैं, कितनी खुशी लाई है,
1: बहुत खुशी हो रही है।
3: गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा को क्या विघ्न हरने के लिए कहेंगे?
1: विघ्न हरने के लिए बप्पा को कहेंगे बप्पा और तो पानी तो सब अच्छे से खेती वाला करे सबको बहुत सुख शांति लाओ।
3: और क्या बप्पा को आज ले आ रहे हो? बप्पा से क्या मांगा है? 10 दिन आप कैसे उनको मोदक खिलाओगे?
1: 10 दिन बप्पा की बहुत अच्छे से सेवा करती है और बप्पा से मांगना तो जिसकी बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बसा।
3: तो देखिए बप्पा के भक्तों में जो है वो उत्साह इतना है क्योंकि अब धीरे धीरे जो है इस मार्केट में भी जो है रन भरने लगे हैं।
0: पूरब पश्चिम और उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी गणेश चतुर्थी का रंग देखते ही बन रहा है। कहीं भव्य पंडाल में बप्पा विराजे हैं तो कहीं सदियों पुराने मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार है। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली से लेकर चेन्नई तक हर जगह श्रद्धालु बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में गणेश उत्सव की रौनक है। यहाँ डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह देखते ही बन रहा है।
4: Happy हैप्पी गणेश चतुर्थी।
0: मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 500 साल पहले किया गया था। यहाँ गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। बेंगलुरु की इन तस्वीरों में भक्ति है और बप्पा के प्रति अटूट आस्था है। वहीं हैदराबाद के खैरताबाद में गणपति उत्सव का रंग देखते ही बन रहा है। यहाँ इस बार 59 फीट ऊंचे पंचमुखी संकटहर महागणपति की भव्य प्रतिमा विराजमान है। विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बप्पा के इस विराट स्वरूप के सामने पहुंचकर भक्त आस्था में सिर झुका रहे हैं। खैरताबाद का ये गणपति उत्सव हर साल अपनी भव्यता के लिए खास पहचान रखता है और इस बार भी विशाल प्रतिमा भक्तों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु के थुथुकुडी में गणपति की प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंत्रों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। गणपति की पूजा आरती के बाद बच्चों को तिलक लगाया गया। यहाँ श्रद्धालु बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लायर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। रॉकफोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाके का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी वरदान से कम नहीं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी गणपति उत्सव की धूम है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपने घर में गणपति की स्थापना की और पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया। अकोला से धनंजय साबले के साथ पुणे से ओमकार बाबले, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेशोत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शनों के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की गजानन की आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से पूजा अर्चना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया गया आकार। शिरडी के साई मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: मैं परी हूँ भाई।
0: इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हों। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। कठपुतली का खेल आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन इस कलाकार की कलाकारी जरा देखिए। गाने की धुन बजती है और उसके साथ ही कठपुतली ऐसे थिरकने लगती है जैसे उसे हर सुर का पता हो। कलाकार अपने हुनर से कठपुतली के हर कदम को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले बस देखते रह गए। आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखी कला को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। जंपी हो रही है, और हो भी क्यों ना, काम का प्रेशर जो इतना रहता है। अब देखिए इस प्यारे बच्चे को आराम से बैठकर बिना किसी चिंता के अपने सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा है। जैसे जैसे जंपी हो रही है, बच्चे के चेहरे पर सुकून और खुशी भी बढ़ती जा रही है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दबाजी, बस आराम ही आराम। बच्चे के इस अंदाज को देख कर शायद आपका भी मन करेगा कि एक जंपी तो बनती है। मौसम चाहे जैसा हो, बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में ये नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
7: और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी गणपति उत्सव के बीच पब्लिक हेल्थ से जुड़े एक बड़े बदलाव की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत तमाम शहरों में गणेशोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है और इस उत्सव के दौरान भक्तों को प्रसाद भी बांटा जाता है। लेकिन इस साल मुंबई के गणपति पंडालों में बंटने वाले प्रसाद या फिर भंडारा को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखने वाली संस्था FDA ने प्रसाद की शुद्धता और साफ सफाई को लेकर इस बार सख्त नियम लागू किए हैं। महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे के निर्देशों के मुताबिक अब कोई भी पंडाल या फिर सोसाइटी बिना उचित मानकों का पालन किए भक्तों को प्रसाद नहीं बांट सकेगा। FDA की ओर से लागू किए गए फेस्टिवल एनफोर्समेंट कैलेंडर के तहत प्रसाद की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियम के तहत प्रसाद बनाने के लिए कच्चा माल या फिर बना हुआ भोजन केवल रजिस्टर्ड और फूड लाइसेंस प्राप्त सप्लायर से ही खरीदा जा सकता है। गणेश उत्सव के लिए खरीदाई गई हर तरह की खाद्य सामग्री का पक्का बिल और रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी किया गया है। पंडालों को यह पता होना चाहिए कि प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली हर चीज कहां से आई है और प्रसाद बनाने और बांटने की जगह पर साफ सफाई का ध्यान रखना अनिवार्य है। FDA ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रसाद या फिर भंडारा बनाते समय सभी लोग एप्रन, सिर पर कैप और हाथों में ग्लव्स पहने। खाना बनाने और पीने के लिए RO वाटर की व्यवस्था की जाए। प्रसाद को स्टील या फिर फूड ग्रेड कंटेनर में स्टोर करके रखा जाए। फूड सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केस दर्ज होने के साथ ही 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर उठाए गए इस कदम का ज्यादातर मंडलों ने खुले दिल से स्वागत किया है और वे नई व्यवस्था के साथ खुद को ढाल रहे हैं। मुंबई के मशहूर GSB गणपति सेवा मंडल ने FDA के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर बड़ी मिसाल पेश की है। बड़े मंडलों की तुलना में छोटे मंडलों के लिए रजिस्टर मेंटेन करना, CCTV लगाना और कागजी कार्रवाई करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन सभी इसका पालन कर रहे हैं। महाराष्ट्र FDA की नई गाइडलाइंस को लेकर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
8: साहब भंडारा है
9: जी, तो 23 तारीख को भंडारा है हमारे यहाँ।
8: अच्छा, तो क्या आप उन सारी चीजों का पालन करेंगे जो मुंडे साहब ने कहा है?
9: हाँ जरूर जरूर, और हम लोग हर साल करते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में अपने कार्यकर्ता खुद खड़े रहते, भरे बाहर वाले को अपन अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि खाना बनाना है कुछ है, फिर भी उसको जो कुछ ला के देना है सामान वो सब अपन खुद ही ला के देते, ऐसा नहीं कि वो खरीदा और बनाया, सिर्फ उसको बनाने का अपन काम देते, और खाना लेके पब्लिक तक देना वो सब हमारे कार्यकर्ता खुद ही करते, कि बाहर वाला कुछ कर सके वैसा कुछ करने होने देंगे नहीं,
8: मतलब बकायदा तैयारी पूरा एकदम कानून। क्या कहेंगे साहब, मेरा सवाल था, आपने भी सुना कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस बार भंडारा के समय?
10: बेशक ख्याल तो रखना ही है, क्योंकि इसमें लोगों की सेहत की बात है, और तुकाराम मुंडे जी ने जो भी गाइडलाइंस जारी किया है और वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और क्वालिटी मेंटेन करते हुए, साफ सफाई मेंटेन करते हुए लोगों का ध्यान रखना है, और कुछ मतलब इन केस कोई हादसा हो या कोई खराबी निकले तो उसको साइड करके हमको अच्छे से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना है और सब कुछ साथ को लेके चलना है।
8: इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी करेंगे वो, क्या कहेंगे आप?
11: बेशक कार्रवाई, मतलब उन्होंने जो निर्णय लिया एक अत्यंत योग्य निर्णय, गुड डिसीजन करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुहर्रम के बीच वक्त में बीच में एक मुहर्रम का जो जुलूस हुआ था, तो भाईकला में भी एक रैट का जो पॉइजन का जो मसला हुआ था, तो इसलिए बहुत से लोगों की जाने जा सकती थी। ये आस्था का विषय भी है, और मतलब श्रद्धालु आस्था से वो प्रसाद खाता है, तो हमें हमारा फर्ज है कि बेस्ट उनको दें, क्योंकि ये आस्था भी अलग चीज है और खाना एक अलग चीज, जो हमारे सेहत के लिए उसका इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया, हमारा मंडल तो हमेशा इसका प्रिकॉशन लेता ही है, और हर एक मंडल ने, मैं तो अपील करूंगा हर एक मंडल से कि हमें उस इंसान की श्रद्धा और आस्था और उसकी सेहत का भी ध्यान हमें ही रखना है। ये तीनों चीजें का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि मतलब बहुत गुड डिसीजन है और हमें तो इसे फॉलो करना ही है, और सभी करेंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है।
8: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आजकल तो ऑनलाइन भी लोग सीधे खाना मंगा लेते हैं कि भाई हमारे पास में 50 जनों को खिलाना है, 50 पंडितों को खिलाना है, तो ऑनलाइन पे भरोसा है या ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे करोगे?
12: हम तो ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते हैं, बिकॉज क्या है, खाना बनाने के लिए हम अच्छे कोई ब्राह्मण को बोले या किसी के घर में बोल के अच्छा अपना घरगुती खाना भी बना के दे सकते हैं, और कैसा है तुकाराम मुंडे जी ने प्रशासन में जो बोला है, तो हमारा मंडल प्रशासन के खिलाफ तो काम कभी करता नहीं है और ना करेगा। FDA का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो पाल के हम भंडारा करेंगे।
8: अच्छा एक सवाल एकदम आखिरी वाला जाते हैं आपसे, कि सही कर रहे हैं कमिश्नर साहब का काम, कैसा लग रहा है?
12: बहुत बहुत बढ़िया, हम खुद होटल में खाना खाने जा रहे, कोई कलर नहीं दिख रहा आजकल, कोई कलर नहीं दिख रहा, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, फूड में टेस्ट भी बढ़ गया है, और ये बहुत अच्छा निर्णय है उनका।
8: अच्छा मुंडे साहब ने बीच में ये भी करा था कि उन्होंने ये किया था कि जब आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए तो पहले ही वो लोग बिस्लेरी या कुछ और मिनरल वाटर लाके रख देते हैं, लेकिन अभी वो भी वो नहीं दिख रहा।
9: ये वाटर कूलर लगाया उन्होंने, उसका पानी पिलाते हैं और बोलते हैं अगर आपको वो चाहिए तो देंगे, नहीं तो फिर ये पानी लो, और अभी साफ सुथरा है, पहले से बहुत अच्छा है। जहाँ पे टेस्ट उन लोग मसाला जो डालते थे तो गर्दी था, तो अभी उनका धंधा थोड़ा कम भी हुआ है, पर जो लोग समझते उन लोग जरूर खाना भी खाते उधर, और बहुत अच्छा निर्णय उनका ही।
7: गणेश चतुर्थी पर शिरडी के साई मंदिर में भक्तों ने दिया करोड़ों का चढ़ावा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
13: बिहार के भोजपुर में बाढ़ और गंगा कटान की मार झेल रहे लोगों के बीच मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बड़हरा के पेपरपांती गांव में गंगा कटान की वजह से अपना घर बार गंवा चुके परिवारों के बीच भोजपुरी स्टार और बीजेपी MLC पवन सिंह की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई गई। पवन सिंह के परिवार की ओर से पीड़ितों के बीच सूखा राशन, साड़ी, बच्चों के कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बांटा जा रहा है। राहत सामग्री मिलने के बाद बेघर हुए परिवारों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। शिरडी साईं बाबा मंदिर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लगभग 2,80,00,000 रुपए मूल्य का चांदी का चढ़ावा अर्पण किया गया। अमेरिका के भक्त चंद्रशेखर ने लगभग 9 किलो चांदी की नक्काशीदार छतरी साईं बाबा को अर्पित की, जिस पर 250 ग्राम शुद्ध सोने की कोटिंग की गई है। इस छतरी को बनवाने में चंद्रशेखर ने 75,00,000 रुपए खर्च किए। इसके अलावा आगरा के एक साईं भक्त ने 54 किलोग्राम चांदी से बना नंदी मंदिर को भेंट किया। इस नंदी की स्थापना मंदिर में साईं बाबा मूर्ति के सामने विधिवत पूजा से की गई। इस नंदी की कीमत 1,33,00,000 रुपए आकी गई है। आगरा के साईं भक्त ने अपना नाम उजागर न करने के लिए मंदिर ट्रस्ट से विनती की है। सोमवार को देश भर में महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा और भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन किया। उज्जैन के सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में रात 12 बजे से ही महिलाओं के मंदिर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था, जो पूरे दिन चलता रहा। मंदिर पहुंची महिलाओं ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया और मंदिर में हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी। हरतालिका तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस पावन दिन महिलाएं सज संवर कर अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन का विधान है। हर साल की तरह इस साल भी पुणे में अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर गणपति बप्पा का भव्य आगमन हुआ है, लेकिन इस बार सोनाली कुलकर्णी का गणेश उत्सव बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने इस साल का गणेश उत्सव अन्नदाता यानी किसानों को समर्पित किया है। इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की प्रतिमा इस बार बैलगाड़ी पर विराजमान है और खास बात यह है कि इस खूबसूरत प्रतिमा को सोनाली के भाई और भाभी ने मिलकर तैयार किया है। किसानों के प्रति सम्मान और बलि राजा के संघर्ष को सलाम करने वाला सोनाली कुलकर्णी का यह अनोखा गणेश उत्सव अब चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के प्रसिद्ध गणपति मंदिर में गणपति आरती का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणेश उत्सव के अवसर पर होने वाली इस आरती में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत करके भगवान गणपति की आरती की और दर्शन किए। इस दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर लोगों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। ये गणपति मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और गणेश उत्सव के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गणपति मंदिर में संपन्न हुई इस विशेष आरती ने शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को और भक्तिमय बना दिया। गुजरात के पंचमहाल जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल और शक्तिपीठ पावागढ़ पहाड़ी पर आज तड़के मौसम में अचानक बदलाव आया। घने काले बादलों के बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के कारण पहाड़ी से नीचे आ रहे पानी की वजह से सीढ़ियों पर झरने बहने जैसे अद्भुत दृश्य देखने को मिले। यहां हुई बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए मां काली के जयकारों के साथ सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने मंदिर पहुंचे। भक्तों ने मां कालका के दर्शन कर धन्यता और आत्मिक शांति की अनुभूति की।
14: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हथिनी की घर वापसी ने लोगों को भावुक कर दिया। 13 महीने बाद जब माधुरी नाम की हथिनी वापस अपने ठिकाने पहुंची तो उसके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फूलों से स्वागत हुआ, पूजा अर्चना हुई और यहां तक कि उसे लाने वाले वाहन की भी पूजा की गई। माधुरी को लेकर कई महीनों से विवाद और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अब तमाम प्रक्रियाओं के बाद उसकी वापसी हुई है और कोल्हापुर में इसे लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
15: जैसे ही 13 महीने बाद हथिनी माधुरी अपने घर पहुंची, पूरा इलाका उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फूलों की बारिश की गई। इस घर वापसी का नजारा किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। माधुरी गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा में करीब 13 महीने रहने के बाद कोल्हापुर के नांदनी मठ लौटी है। जैसे ही रात के वक्त विशेष वाहन से माधुरी कोल्हापुर पहुंची, उसके एक झलक पाने के लिए हजारों लोग वहां उमड़ पड़े। उसके स्वागत में कोई फूल बरसा रहा था तो कोई जयकारे लगा रहा था, लेकिन माधुरी की घर वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं था।
16: हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेट हुआ, एवरीवन इज हैप्पी एंड एवरीवन इज मतलब खुश है, सब खुश है।
17: हर एक फेस्टिवल को हमने उसे मिस किया है और वो जब थी ना उस फेस्टिवल को हम ऐसे बनाते थे ना, ये इस साल हमने वैसा नहीं बनाया, सो सो करके ही बनाए फेस्टिवल, लेकिन ये दिवाली कुछ खास होगी।
15: माधुरी को जुलाई 2025 में कोल्हापुर के नांदनी मठ से गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा भेजा गया था। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेहतर इलाज और देखभाल के लिए उसे वंतारा भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद माधुरी की वापसी को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। माधुरी करीब 13 महीने वंतारा में रही। इस दौरान उसकी सेहत और देखभाल पर खास ध्यान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर में उसकी वापसी की मांग लगातार उठ रही थी। आखिरकार सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने नांदनी मठ की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद 9 सितंबर को माधुरी को वापस कोल्हापुर ले जाने की मंजूरी मिल गई और फिर 13 महीने बाद महादेवी अपने घर लौट आई।
18: माधुरी हथिनी वापिस पुनः नांदनी मठ में प्रवेश कर रही है। यह खुशी की बात है, हम सब लोगों को खुशी है और उसको भी खुशी है।
15: माधुरी की वापसी के साथ ही मठ में खास इंतजाम किए गए हैं, उसके लिए विशेष शेल्टर तैयार किया गया है। पैरों को आराम देने के लिए रबर मैट बिछाए गए हैं। गर्मी और मक्खियों से बचाव के लिए बड़े पंखों के साथ ही फॉगिंग सिस्टम और फवारे भी लगाए गए हैं। शेल्टर के पास पानी का तालाब भी बनाया गया है। माधुरी की डाइट के मुताबिक खाना तैयार करने के लिए अलग से किचन है। स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अलग सुविधा बनाई गई है और उसकी देखभाल के लिए महावत के स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था भी की गई है। अब निगरानी और तय नियमों के बीच उसकी देखभाल होगी, लेकिन कोल्हापुर की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम बता रहा है कि माधुरी की वापसी सिर्फ एक हथनी की घर वापसी नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं की वापसी भी है। कोल्हापुर से संदीप सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे,
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
5: भारत में हॉकी टूर्नामेंट खेलने आएगी पाकिस्तान की टीम। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधा चलें खेल चक्कर।
15: अगले महीने होने वाले हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पंजाब में होना है। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आएगी। भगवंत मान ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को लेकर केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत इसे मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खेल नीति के मुताबिक भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। रिकॉर्ड 8वीं बार एशियन चैंपियन बनी भारतीय महिला टीम की स्टार पेसर क्रांति गौड़ पर आईसीसी ने कार्रवाई की है। 13 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ हुए फाइनल में क्रांति गौड़ को आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का दोषी पाया गया है। इसके एवज में 23 साल की पेसर को उनकी मैच फीस का 10% बतौर जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा क्रांति गौड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। ये घटना श्रीलंका की पारी के पहले ओवर में हुई, जब ओपनर रमेशा दुलानी को आउट करने के बाद क्रांति गौड़ ने पवेलियन की ओर इशारा किया था। एशियन गेम्स की भारतीय वुशु टीम से आखिरी समय में बाहर की गई दिव्यांशी चौधरी ने नया वीडियो जारी किया है।
1: नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है, मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ है।
15: इसमें उन्होंने बताया कि खेल मंत्रालय के सेक्रेटरी ने पटियाला में उनसे मुलाकात की। 18 साल की दिव्यांशी ने कहा कि अब वह ठीक हैं।
1: सभी ने मुझे समझाया कि सबसे पहले आप हम सबके लिए आपका जो है आपकी हेल्थ आपकी फिटनेस है।
15: 11 सितंबर को दिव्यांशी ने एक वीडियो जारी कर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होंने ये आरोप एशियन गेम्स के महिला 60 किलोग्राम वर्ग में उनकी जगह रोशिबीना देवी को भेजे जाने के फैसले के बाद लगाया था।
5: इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे,
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।

0: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की गजानन की आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधिवत स्थापना हुई। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया है निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया गया है आकार। शिरडी के साई मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भव्य स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान।
1: एवरेस्ट शुद्ध केसर

ओखली और साकिनाका के गणपति का भव्य पंडाल दिखाएंगे। लालबाग शाहराजा के दरबार की सजावट और उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें सामान्य लोगों के साथ अगर आप देखेंगे तो राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। इसके बाद आपको दिल्ली के राजा के पंडाल भी लिए चलेंगे, जहां पर न सिर्फ भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है बल्कि गणेशोत्सव के पहले दिन शानदार शोभा यात्रा भी निकाली गई। आखिर में बात होगी फिल्मी सितारों के घर पधारे गणपति बप्पा की। नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और सैफ अली खान समेत कई बड़े सितारों के घर बप्पा पधारे हैं। पहले दिन उन्होंने गणपति की पूजा कैसे की, आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। भाई, शुरुआत करते हैं मुंबई में गणेश उत्सव के साथ। देखिए, पहले दिन जाने माने पंडालों में बप्पा की पूजा अर्चना की गई और पहले ही दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु गणपति के दर्शन करने के लिए उमड़े। खासकर अगर आप देखेंगे लालबाग शाहराजा के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। दर्शन करने वालों में आम लोग भी हैं और खास भी हैं। इसी तरह से चिंचपोकली के चिंतामणि के पंडाल में जबरदस्त रौनक है। मुंबई की प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी गजानन का आशीर्वाद लेने के लिए जबरदस्त भीड़ रही। 10 दिनों तक मुंबई के पंडालों में ऐसी ही धूम रहेगी और हमेशा की तरह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए मुंबई पहुंचेंगे। चलिए आपको लालबाग शाहराजा और चिंतामणि पंडाल के दर्शन करवाते हैं।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की। देश भर में इस वक्त एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मोरिया। पंडालों में, घरों में बप्पा का आगमन हुआ है। खासकर महाराष्ट्र और मुंबई में पंडालों की रौनक अद्भुत है, देखने लायक है। आज आपको मुंबई के लालबाग के राजा के साथ ही चिंच

जिनके दर्शन से ही होती है मनोकामना की पूर्ति। ऐसे हैं मंगल मूर्ति, मन्नतों के राजा यानी लाल बागचा राजा। इस एक पल के लिए भक्तों ने पूरे साल इंतजार किया है, बापा की राह देखी है। और देखिए, जब लाल बागचा राजा अपने दरबार में विराजमान हैं, तो उन्हें देखकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर कैसा संतोष है, कैसी खुशी है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात है लाल बागचा राजा का पंडाल। और देखिए, हर साल की तरह ही कैसा भव्य सजा है। पूरे पंडाल में चांदी की परत लगी है, दरबार जैसे किसी महल की तरह जगमगा रहा है। पंडाल के ऊपर त्रिशूल और डमरू जिसे हीरे से सजाया गया है,

12 ज्योतिर्लिंग धामों में शामिल रामेश्वरम धाम की तर्ज पर बने इस भव्य पंडाल में अपने चिर परिचित और पारंपरिक अंदाज में विराजमान है बप्पा। संतरी रंग की धोती और सिर पर सोने का भारी मुकुट, आस्था के फूलों से बनी अनगिनत मालाएं, जिसमें एक माला US डॉलर की भी नजर आई। गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ हजारों लाखों भक्तों का हुजूम अपने आराध्य के दर्शन के लिए परेल के लिए निकल पड़ा है। पंडाल में लालबाग चार राजा का दर्शन आसान नहीं, सिर्फ मुख दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे कतार में खड़ा होना पड़ता है और पग दर्शन के लिए 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये मुश्किल नहीं बल्कि आनंद का क्षण है।

0: क्योंकि रामेश्वर की थीम दी गई है। आप बप्पा के पीछे का जो चलचित्र देखें वो भी रामेश्वर की तरह ही दिख रहा है, साथ ही साथ जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में, ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर। इस समय बहुत ज्यादा खुश है, फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से बप्पा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां मौजूद हो रहे हैं। आज पहला दिन है, सुबह 5 बजे से ही दर्शन शुरू हो गया है, दरबार बप्पा का खोल दिया गया था। और जरा गणेश भक्तों की ये भीड़ देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज पहला दिन है। जहां तक भी नजर जाए, जहां तक भी हम देखें, सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्त श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि रोजाना गणपति बप्पा का, लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3 से 4 लाख लोग आते हैं और 3 दिन बाद ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी 1.5 दिन की गणपति है, 3 दिन की गणपति। बहुत से लोगों ने अपने घर में ही स्थापना की है गणेश जी की, उनके विसर्जन के बाद वो भी लालबाग के राजा की तरफ बढ़ेंगे। लगभग 2-3 घंटे कतार लगने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा बप्पा को सिर्फ दूर से देखकर, यानी कि दूरदर्शन करके, क्योंकि बप्पा का पग छूने के लिए एक दूसरी कतार है जो बप्पा के समीप से जाती है और उसकी जो लाइन है उसका जो समय है 8 से 10 घंटे का समय लगता है, तब जाकर के वो बप्पा तक पहुँच पाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 8-10 घंटे लोग भले ही कतार में खड़े हों, लेकिन जैसे ही बप्पा को देखते हैं उनकी थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है।
1: क्या आम क्या खास,

क्या नेता, क्या अभिनेता। लालबाग चैराजा के पंडाल में सिर झुकाने की होड़ है। ये सिलसिला जो गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ है, अगले 10 दिनों तक यूं ही नजर आने वाला है। ना तो ये भीड़ खत्म होगी और ना जय घोष थमेगा। लालबाग चैराजा की एक झलक के लिए भक्त बेचैन है, लेकिन ऐसी तादाद के बावजूद संयम है, अनुशासन है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं।

0: मान्यता है कि लालबाग का राजा सभी की मन्नत पूरी करते हैं, इसलिए दान पात्रों में जहां लोग रकम दान करते हैं वहीं बाप्पा के नाम चिट्ठियां भी छोड़ देते हैं। कोई बेटे या बेटी की शादी की अर्जी देता है तो कोई रोजगार की। बाप्पा में आस्था ऐसी है कि कई प्रोफेशनल इस दौरान अपना काम छोड़कर पंडाल में सेवा करते हैं।
1: इस बार ऐसा है कि बप्पा 10-11 दिन बल्कि 12 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा लोगों को अपने दर्शन देंगे। और जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भक्तों की श्रद्धा है बप्पा के प्रति, जो बप्पा ने इनकी इच्छाएं पूरी की है, जो आंख में भाव है, श्रद्धा है, वो लेके बप्पा के आशीर्वाद लेने यहाँ पे पधारे हैं।
2: अच्छा, सेलेस भी आए हैं
1: यहाँ पे सुबह, जो आज विद्युत जम्वाल जी खुद आए थे और डमरू का उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, डमरू बजाया था अपने हाथों से, और सेलेब्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे भक्तों के नजरों, बप्पा के नजरों में सब एक ही है।
0: मुंबई के पुतलाबाई चौल में सजने वाले इस पंडाल की कहानी करीब 100 साल पुरानी है। तब परेल का इलाका कपड़ा मिलों से भरा हुआ था, इसलिए इसे गिरन गांव कहते थे। लेकिन 1930 के दशक में कपड़ा मिलें बंद होने लगी और लोकल कारोबारियों और मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। कहते हैं उन्होंने गणपति से गुहार लगाई और बापा ने उनकी सुन ली। रोजगार के लिए उन्हें नई जगह मिली जहाँ आज मशहूर लालबाग मार्केट बसा है। मन्नत पूरी होने की खुशी में लोगों ने 1934 में सार्वजनिक गणेश महोत्सव मंडल की स्थापना की और बाजार का एक हिस्सा बाप्पा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। तभी से बाप्पा लालबाग के राजा पुकारे गए और नाम पड़ा नवसाचा गणपति, यानी जो मन्नतें पूरी करते हैं। जैसा महत्व लालबाग चा राजा का है, वैसी ही ख्याति चिंचपोकली के चिंतामणि की भी है। और हमेशा की तरह इस पंडाल को भी भव्य तरीके से सजाया गया है।
3: मुंबई में गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो चुका है। इस वक्त हम चिंचपोकली चिंतामणि के मंडल में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहाँ पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान ने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहां पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहां पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनपे, उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है, जो ये पर्व है अगले 10 दिनों का रहने वाला है।
0: चिंचपोकली चा चिंतामणि मुंबई का दूसरा सबसे पुराना सार्वजनिक गणपति है और अपने 107वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस पंडाल की विरासत मुंबई की भक्ति, एकता और सांस्कृतिक धड़कन का प्रतीक है। अपनी अनूठी थीम के लिए मशहूर इस मंडल ने इस साल दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला और उनकी भव्यता को अपने पंडाल में उतारा है। बाप्पा की मूर्ति तिरुमला तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की थीम पर बनाई गई है, जिसमें गरुड़, कीर्तिमुख, शंख, चक्र और कपूर तिलक जैसे पारंपरिक पवित्र प्रतीक शामिल हैं, जबकि इसका विशाल पंडाल हैदराबाद और भुवनगिरी के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की तरह है, जिसमें ऊंचे गोपुरम, पवित्र दीप स्तंभ और नक्काशीदार रक्षक आकृतियां उकेरी गई हैं। लालबाग चा राजा की तरह यहां भी भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है, जिसमें सामान्य लोग भी हैं और नामचीन भी। मुंबई के जाने माने पंडालों में साकी नाका के गणपति भी शामिल हैं, जहां इस साल बाप्पा की प्रतिमा अद्भुत है। बाप्पा के पंडालों में तो भक्ति का मेला है ही, आस्था का समंदर सिद्धि विनायक मंदिर में भी उमड़ा है, जहां ढोल और मांझ की आवाज में ड्रम की ध्वनि भी शामिल है। हजारों की तादाद में आए भक्तों ने गणपति के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में मौजूद सिद्धि मंदिर महत्वपूर्ण और भव्य मंदिर है, जहां आम दिनों भी भक्तों की लंबी कतार मौजूद होती है, तो फिर गणेश उत्सव में भक्तों का जोश समझा जा सकता है। इस वक्त मुंबई बप्पा की पूजा आराधना में मगन है। पंडाल हो या मंदिर, हर जगह बस एक ही जय घोष है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।

0: मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए गणेशोत्सव की धूम दिल्ली में भी है। मुंबई के राजा या लालबाग का राजा की तर्ज पर दिल्ली के राजा का भी भव्य पंडाल बना है। ये 25वां साल है जब दिल्ली के राजा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, इसलिए चमक दमक भी ज्यादा है। गणेशोत्सव के पहले दिन महिलाओं ने शानदार शोभा यात्रा भी निकाली। देखिए हमारी संवाददाता श्वेता झा की रिपोर्ट।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महाराजा के दरबार में, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ दिल्ली के महाराजा विराजमान है। इस बार विघ्नहर्ता से विकासकर्ता का थीम दिया गया है। हाथ में ब्रह्मोस है, दूसरे हाथ में आप देख सकते हैं ड्रोन यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ पर है, यानी कि किस तरह से समय के साथ साथ हमारे जो देवता है वो भी बदल रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन संदेश वही है कि विघ्न तो वो हरेंगे, लेकिन जितनी भी जीवन में बाधाएं आपके क्यों ना आए, आपको हिम्मत, आपको शक्ति बनाए रखना है। ये भी संदेश बप्पा देते हैं।

अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण को भी आप देख सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर स्थापना की गई है। और पूरे पूजा के लिए देखिए किस तरह से पूरे थाली को सजाया गया है। आप थाल में देख सकते हैं किस तरह से दीप, फल, मिष्ठान और तमाम पूजा की जो सामग्री होती है, हल्दी, चंदन, रोली, तमाम चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं।

0: ज्यादा महिलाएं जो है वो कलश यात्रा लेकर आई है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शक्तिपीठ की मैंने बात की, मेरा कैमरामैन शैलेंद्र दिखाएंगे, ये देखिए
1: माता शक्ति रूप के रूप में कलश लिया है हम लोगों ने। 108 कलश है, 52 शक्तिपीठ है और 52 सब हमने अपने हाथों से सजाया है।
0: आप देख सकते हैं कि खुद जो शक्ति की स्वरूपा है यानी कि हम महिलाएं, उनके हाथ में देखिए किस तरह से यहाँ पर जो शक्ति है, शक्ति की उपासना यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह से तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके यहाँ पर शक्ति कलश लेकर के आ रही हैं। लगभग ऐसी और कितनी महिलाएं होंगी?
2: कम से कम होंगी 151
1: 210
2: है, जिसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और गुजराती और हमारा राजस्थानी सब कवर किया है। 7 स्टेटों को कवर किया है, जिसमें हम 21 लेडीज हैं और हम सब अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे।

हमें जो रेनबो में कलर मिला है येलो छठ पूजा का, और ये हम जो

0: बनी है जो कि बंगाल में जब शादी विवाह होता है विशेष करके तो ये
1: है हम लोग का। जब भी कोई भी पूजा होता है उसमें शंख और ये उलुधनी होना चाहिए और हर एक के हाथ में आरती की थाली होती है, हाथ में अलता होती है।
0: यहाँ पर पहुँच चुके हैं दिल्ली के महाराजा के दरबार में और ये वो पल होता है, ये वो क्षण होता है जो अपने आप में अलौकिक होता है, इसी का इंतजार करते हैं। आपको बता दें आज गणेश चतुर्थी के इस मौके पर ये तस्वीर देखने लायक होती है। जब आप देख सकते हैं भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है क्योंकि बप्पा पधार चुके हैं।
2: देखिए पूरे देश में बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है और आम देशवासियों की तरह बॉलीवुड के सेलेब्स भी गणेश चतुर्थी का जश्न धूमधाम से मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जाने माने एक्टर नाना पाटेकर अपने घर पर बप्पा की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की और पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे नाना और उनका पूरा परिवार जो है गणपति की पूजा में मगन नजर आ रहा है।

और देखिए, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए एक स्पेशल ट्वीट भी शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि देखिए, गणपति बप्पा के आगमन से हर घर में खुशियां और हर दिल में सुकून आए। गणपति बप्पा मौर्या सलमान खान गणपति की पूजा के लिए अपने भाई सुहेल के घर गए और पूरे भक्ति भाव से बप्पा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, सलमान खान जब पहुंचे बप्पा की शरण में और एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरों में वो अपनी पत्नी संग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर तुषार कपूर ने अपने घर पधारे गणपति की झलक जो है फैंस के साथ भी शेयर की। इंडस्ट्री के कई अन्य सितारों ने भी गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया। सैफ अली खान की पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सैफ अली खान द्वारा मिट्टी से बनाई गई भगवान गणेश की प्यारी सी प्रतिमा शेयर की है। और इस तरह एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया ने भी अपने घर में बप्पा का स्वागत किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। फोटोज में दोनों अपने बच्चों और परिवार के साथ त्यौहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और एक्टर सोनू सूद ने भी बप्पा की प्रतिमा लाने और उन्हें स्थापित करने की वीडियो शेयर किया। ये देखिए तस्वीरें। इसी तरीके से एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं। फोटोज में वो अपनी फैमिली संग गणपति बप्पा की पूजा करते हुए नजर आ रही हैं। कुल मिला के पूरा बॉलीवुड और आमची मुंबई गणपति बप्पा की जय जयकार कर रहा है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। वहीं पर देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर बप्पा की आराधना की। तस्वीरें देखिए, गृहमंत्री ने पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह लालबाग चौराहा के दरबार में भी पहुंचे। यहां पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस प्रकार से बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की गजानन की आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। गुड न्यूज टुडे पर गणेश उत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाई है गणेश चतुर्थी का पर्व। कोल्हापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधिवत स्थापना। मुंबई में सोनू सूद ने घर पधारे उनके भगवान गजानन। काजोल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे को दिया गया आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर रागरा के भक्त ने किया दान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणेश उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। विधि विधान के साथ उतारी गजानन की आरती। मुंबई में अंबानी परिवार में भी हुई बप्पा की स्थापना। फिल्मी हस्तियों समेत सियासी हस्तियों ने शिरकत की। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी पहुंचे एंटीरिया। सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ बप्पा के स्वागत में पहुंचे। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत। ऑरेंज साड़ी में सुंदर नजर आई नीता। कथावाचक अजय किशोर भी बप्पा का स्वागत करने पहुंची एंटीलिया। रश्मिका वंदना ने भी अपने घर में गणपति की स्थापना की इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। रामचरण ने विधि विधान के साथ अपने घर में बप्पा की स्थापना की इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की उतारी आरती। परिवार के साथ तमाम सदस्य मौजूद रहे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हर साल की तरह इस साल भी परिवार के साथ गणपति की स्थापना की। फैंस के साथ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में पूरे परिवार के साथ पारंपरिक लिबास में नजर आई अभिनेत्री। अपने हाथों से कर रही हैं बप्पा का श्रृंगार। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे। कलाकारों में गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया जिसमें वो गणपति की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर तुषार कपूर राव पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की आरती उतारी। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने भी अपने घर में बप्पा का स्वागत किया। अपने फैंस के साथ तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो अपने घर गणपति को लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर करण वाही ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किए खास पल। अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। करण वाही ने मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले रोहित सराफ ने गणपति उत्सव पर तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस नील नितिन मुकेश के घर भी पधारे बप्पा। परिवार संग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी बप्पा की स्थापना की गई। तस्वीरों में बप्पा की आरती करते नजर आए सचिन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। आरती में पूरा परिवार शामिल हुआ। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति भाव के साथ बप्पा की आराधना करते हुए नजर आई। विधि विधान के साथ बप्पा की स्थापना की। तस्वीरों में चंकी पांडे के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आए। अनन्या ने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। अभिनेता नाना पाटेकर के घर हुई बप्पा की स्थापना। विधि विधान के साथ बप्पा की आरती करते नजर आए अभिनेता। नाना पाटेकर के घर हर साल पूरी श्रद्धा के साथ होती है बप्पा की स्थापना। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बप्पा की आरती की। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी परिवार के साथ बप्पा की स्थापना की। गणेश जी की स्थापना करके सुख समृद्धि की कामना। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी अपने घर पर बप्पा की स्थापना की, पूजा पाठ किया, सभी लोगों को पर्व की बधाई दी। फिल्म अभिनेत्री अंशिका मोटवानी के घर भी पधारे बप्पा, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की।

हर साल की तरह इस साल भी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर हुआ गणपति बप्पा का आगमन। सोनाली ने इस साल गणेशोत्सव किसानों को किया समर्पित। नागपुर के पंडालों में भी हो रहा है बप्पा की स्थापना का विधि विधान के साथ की जा रही गणेश जी की पूजा अर्चना। एक से बढ़कर एक बप्पा की प्रतिमाओं को रूप दिया जा रहा है। नागपुर के बाजारों में बप्पा की छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं। बप्पा की मूर्ति के साथ तरह तरह के मूषक भी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। जमकर हो रही है खरीदारी। मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा में गणेश स्थापना। पत्नी अमृता फडणवीस के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। नागपुर में गणेश उत्सव की धूम। ढोल नगाड़ों और गाजेबाजे के साथ भक्त अपने लाड़ले बप्पा को ला रहे हैं घर। पर्व की खुशियां बांटने मुख्यमंत्री फडणवीस के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भक्तिभाव से बप्पा की आरती की। मुख्यमंत्री की पत्नी ने गृह मंत्री का कर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बप्पा की मूर्ति भेंट की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी के घर भी पधारे बप्पा। परिवार के साथ बप्पा की आरती की। देश की खुशहाली की कामना। महाराष्ट्र के लालबाग के राजा दरबार में दिल्ली के पीतमपुरा में भी सजा लालबाग के राजा का भव्य दरबार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान गणेश की प्रतिमा का अनावरण किया। भक्तिभाव से बप्पा की पूजा अर्चना हुई। बप्पा के आगमन पर 2100 शंखनाद के साथ दिल्ली में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ ही एक समय पर बजाए गए 2100 शंख। पंडितों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने भी बजाया शंख। सभी ने मिलकर बप्पा की आरती की। बप्पा के दरबार की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में बप्पा के भक्त पहुंच रहे हैं पंडाल।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को लगाया गया 5,51,000 मोदकों का भोग। गणेश चतुर्थी पर भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, मंदिर परिसर में ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए बप्पा के भक्त। स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर सजाया गया गणपति का दरबार, महाआरती के बाद भक्तों को वितरित किया गया प्रसाद। आने वाले 10 दिनों तक भक्तों को बांटा जाएगा ये प्रसाद, बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते भक्त। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में परिसर में स्थित सिद्धिविनायक गणेश जी का ये मंदिर विक्रमादित्य कालीन है और करीब 2,500 साल पुराना है।

0: गणेश चतुर्थी पर हैदराबाद में देखा बप्पा का अलौकिक दृश्य। 24 कैरेट गोल्ड से बनी बप्पा की अद्भुत प्रतिमा। गणेश प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग लगी हुई है। 3.8 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड्स भी लगे। करीब 48 किलो वजनी इस प्रतिमा को तैयार करने में 8 महीने का समय लगा और 8 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया। नासिक की एक ही मिठाई की दुकान पर सजे गोल्ड कवर वाले मोदक का 27,000 रुपए प्रति किलो है कीमत। सोने और चांदी से सजे मोदक बने चर्चा का मुख्य विषय। बड़ी संख्या में लोग मोदक देखने के लिए पहुंच रहे हैं मिठाई की दुकानों में। गणेश चतुर्थी के मौके पर हैदराबाद के बीजेपी ऑफिस में भी भव्य सजावट। गणेश जी का स्थापना। पार्टी से सभी कार्यकर्ता और नेता बप्पा की आरती में शामिल हुए। देश की उन्नति और प्रगति की कामना। पार्टी ऑफिस में बप्पा की मिट्टी की स्थापना। प्रतिमा स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विशाखापट्टनम में ओडिशा के गवर्नर किए सदस्य गणपति के दर्शन। 21,000 पौधों का उपयोग करके तैयार की गई है सस्य गणपति की प्रतिमा। महाराष्ट्र के साकीनाका में सजा विघ्नहर्ता गणपति का दरबार। बप्पा का अलौकिक रूप देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। इस पंडाल में गणपति बप्पा विट्ठल के अवतार में नजर आ रहे मानव गरुण पर बैठे हैं विराजमान। बप्पा की प्रतिमा लगभग 33 फीट की और इसका संतुलन गजब का है। बप्पा एक पैर के बूते मानव गरुण पर सवार। गणेश चतुर्थी पर जामनगर में आयोजित की गई लड्डू ईटिंग प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में शामिल हुए बप्पा के भक्त। इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 30 महिलाओं 20 पुरुषों और 5 बच्चे शामिल हैं। पिछले 18 वर्षों से आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता। कोल्हापुर में शाही ठाटबाट के साथ हुआ गणेशोत्सव का आगमन समारोह। न्यू पैलेस में घुड़सवार दस्ते के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा। बजाई गई पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सभी सदस्यों ने पूरी विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। अमरावती में नेता नवनीत राणा के घर भी हुआ बप्पा का आगमन। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। घर में देखने को मिला भक्तिमय माहौल। परिवार के साथ सभी सदस्य और मौजूदा लोगों ने पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा की आरती की। गणेश चतुर्थी पर अमरावती में एक पर्यावरण प्रेमी की शुभ पहल। बप्पा की प्रतिमा के साथ दे रहा एक पौधा बिल्कुल फ्री। बप्पा की सभी मूर्तियों भी मिट्टी से तैयार की गई हैं। नेचुरल कलर का इस्तेमाल हुआ। पर्यावरण संरक्षण और कला प्रेमी इस पहल की कर रहे हैं सराहना। लोगों से इको फ्रेंडली प्रतिमाएं खरीदने की अपील। झालम गणेश चतुर्थी का उत्साह। राजूरेश्वर गणपति मंदिर में हुई भव्य महापूजा। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में एकमात्र संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है राजूर का राजूरेश्वर गणपति मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में लालबाग चार राजा के दर्शन पूजन किए। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के आगमन के बाद घर घर गौरी गणेश के आगमन की तैयारियां। गणपति आगमन के 2 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। महिलाओं के लिए माना जाता है बहुत शुभ। तिरुचिरापल्ली के हाथी रिहैब सेंटर में भी मनाई गई गणेश चतुर्थी। हाथियों को पहनाई गई फूलमालाएं। हाथियों को लगाया गया फलों और मोदकों का भोग। यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर निभाई जाती है परंपरा। अकोला में छाई हरतालिका तीज पर्व की खुशियां, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। महिलाओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए मांगी दुआ। उज्जैन में देखने को मिली हरतालिका तीज की रौनक, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने महादेव के दरबार में पहुंची सुहागिनें। देर रात से ही दर्शन करने के लिए मंदिर में जुटने लगी थी महिलाओं की भारी भीड़। माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन करके परिवार की खुशहाली की कामना। कटिहार में बाढ़ पर भारी नजर आई आस्था, बाढ़ में डूबे गांव में नाव पर पहुंचाई गई महिलाओं को व्रत की सामग्री। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना की गई। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। बिहार में बाढ़ की मार, झेल रहे परिवारों के लिए मदद लेकर पहुंची भोजपुरी स्टार पवन सिंह। ग्रेटर नोएडा में वन विभाग की टीम ने 7 उल्लुओं का किया रेस्क्यू। पिछले 3 दिन से इन उल्लुओं के हमलों से लोग परेशान थे। श्री बद्रीनाथ धाम में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई वराह जयंती। पोखरण में पहली बार वायुसेना का ड्रोनथॉन 2026, 60 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। इस वर्ष आयोजित मुख्य उद्देश्य इसका स्वदेशी ड्रोन, हमलावर प्रणालियों और एंटी ड्रोन तकनीकों की परिचालन क्षमता और लाइव परीक्षण को प्रदर्शित करना। ये 3 दिवसीय सैन्य आयोजन विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वाम टेक्नोलॉजी पर है केंद्रित। इस तकनीक प्रदर्शन को ऊपर रखने और भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए समाधान खोजने का मकसद। वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में इन तकनीकों की युद्धक क्षमता और प्रभावशीलता का सटीक मूल्यांकन किया जाता है। बीतिया में एक ज्वेलरी शोरूम में उद्घाटन में पहुंची फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दुल्हन सिंह पहुंचे अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। अभिनेता ने संतों का आशीर्वाद दिया और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन को बताया मन को शांत कर देने वाला। दरअसल फिल्म अभिनेता कबीर दुहन राम मंदिर निर्माण पर बनाना चाहते हैं एक फिल्म। इस कड़ी में उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती, नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संघ मनाई है गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाठबाड़ के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन, घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना, मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट्स से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र, मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना, गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज, स्वदेशी ड्रोन के साथ

0: निरंतर आपके पास धन आता रहे तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करके अगर मंगलवार को प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 15 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:44 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:21 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि गणेश जी और वास्तु का आपस में संबंध क्या है।
0: जी देखिए, गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इसीलिए आज हम गणेश जी की महिमा का एक विशेष एंगल आपको बताने वाले हैं। गणेश जी का वास्तु के साथ क्या संबंध है? देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक, दोषों को बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और कार्य स्थल के वास्तु दोष भगवान गणेश की सही मूर्ति लगाने से नष्ट हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि भगवान गणेश के चित्र का मूर्ति का प्रयोग कैसे करें ये आप जान लें और ये आप समझ लें। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से सही रंग की, सही आकृति की गणपति की मूर्ति लगाएंगे तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, उनका क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार।

0: तैयार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं गणेश जी की स्थापना के क्या क्या नियम हैं।
0: अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो उसके नियम क्या हैं? याद रखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में ना रखें और पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी ना रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड़ बाईं तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो, और बहुत बड़ी मूर्ति न रखें। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फिट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है, इसको स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ है। और आप अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करिए और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा।
1: और आइए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर में अभी रुकावट रहेगी। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न दिया ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। 27 जुलाई 1967 का जन्म है, 10:30 रात को भुज गुजरात। ये पूछ रही हैं कि मेरे विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है और आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दिया जी आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और मीन राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा केतु की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप कई बार विदेश की यात्राएं कर सकती हैं, विदेश जा सकती हैं, लेकिन विदेश में सेटल होने की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। आपकी कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन बहुत एवरेज है और 2027 में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, अन्यथा वहां पर इस उम्र में आकर भी आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। 2028 से आपका जीवन बेहतर दिख रहा है, लेकिन आप सेटल होंगी भारत में ही और 2028 से जिंदगी आराम से चल पाएगी। एक मोती बनवा के पहने, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उसका जवाब पंडित जी से, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न मनीष चौहान जी ने हमें उज्जैन से लिखा है, 29 अगस्त सन 2000 का जन्म है, 1:10 दोपहर में, नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, किस तरह की तैयारी करूं, किस तरह के करियर में जाने का प्रयास करूं। मनीष आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह, महादशा सूर्य की और अंतर दशा केतु की चल रही है। अगर आप कानून के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो 2027-28 का अच्छा समय है। इस समय में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कानून संबंधी क्षेत्र में, या एमपीएससी की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए जान लेते हैं कि कैसे गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष दूर हो सकते हैं।
0: वैसे तो गणपति की कृपा से आप किसी भी दोष को दूर कर सकते हैं, वो विघ्न नाशक हैं, संकट हरने वाले हैं। वास्तु दोष कैसे गणेश जी की कृपा से दूर होगा? बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाइए या इसी रंग का चित्र लगाइए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण मत करिए, एक साथ बहुत सारी गणपति की मूर्तियां ना लगाएं, एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखें। शयन कक्ष में, बेडरूम में वैसे तो किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें, लेकिन गणपति की मूर्ति बिल्कुल भी आपको बेडरूम में नहीं रखनी है। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति न लगाएं। अपने घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र लगाएं। रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। घर में बहुत सारे गणपति अगर आप लगाना चाहते हैं तो तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं या जगह जगह पर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। स्वस्तिक गणपति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ऐसा भी करें तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन गए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह की गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे।
0: किस तरह के गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाई जाए, या किस रंग का चित्र गणपति का कहां लगाया जाए जिससे समस्याएं और वास्तु दोष दूर हो जाएं। गणेश जी की धातु की प्रतिमा अगर मेटल की प्रतिमा है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो इसको लिविंग एरिया में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर गणपति की मेटल की मूर्ति लिविंग एरिया में लगाते हैं तो इससे घर के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की छोटी सी प्रतिमा या चित्र धन स्थान पर रखें, निरंतर धन आता रहेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखेंगे। ऐसा करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या हरे रंग के गणेश जी का चित्र पढ़ने या काम करने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा होता जाएगा। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न पुष्पा जी ने वाशिम से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि इनकी पुत्री का नाम और बर्थ डिटेल ना बताया जाए। अपनी पुत्री के लिए पूछ रही हैं, क्या कुंडली में कोई दोष है, विवाह कब होगा, कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पुष्पा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी पुत्री की कुंडली में ऐसा कोई विराट या भयंकर दोष नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनका शुक्र कमजोर है, जिस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। साल 2028 के जून के बाद 2028 में इनका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन एवरेज है, उसको बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं कहेंगे। एक उनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाइए। इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को अगर केले का दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम सवाल की ओर, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न एक महिला ने हमें पुणे से लिखा है, अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। इनकी जन्म तारीख है 26 जनवरी 1982, 5:35 प्रातः, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से नौकरी बदलना चाहती हूँ, मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं, तो भविष्य में मेरा करियर और मेरा जीवन कैसा रहेगा। आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मकर राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। नौकरी बदलने का समय आपका अक्टूबर 2026 के बाद है, नवंबर 2027 से जून 27 के बीच में अगर आप प्रयास करें तो आपकी नौकरी बेहतर तरीके से बदलेगी, लेकिन साल 2026 और 27 में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट, दुर्घटना और सर्जरी से बचने का प्रयास करिए। पीला पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहना है, वो पहने रहिए, साथ में एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम गणपति के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि गणपति की जो पिक्चर होती है, जो फोटो होती है, उसे घर से बाहर नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा क्यों?
0: जी देखिए, ऐसा लोग समझते हैं कि घर का मुख्य द्वार है, बड़ा पवित्र स्थान है, तो बहुत सारे लोग वहाँ देवी देवताओं का चित्र लगा देते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ स्वस्तिक लगा देते हैं, कुछ लोग मंत्र लिख देते हैं, श्लोक लिख देते हैं, बहुत सारे लोग तो कलर्ड जिसपे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं वो टाइल भी लगवा लेते हैं अपने मेन डोर पे। ऐसा करना लेकिन उचित नहीं है। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ आपको गणपति का चित्र नहीं लगाना है या गणपति की मूर्ति स्थापित नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति की पीठ में पीठ की तरफ दरिद्रता रहती है और गणपति के पेट की तरफ संपन्नता रहती है। तो अगर गणपति को आप बाहर की तरफ लगाएंगे तो उनका पेट बाहर की तरफ होगा, रोड साइड में होगा, और उनकी पीठ अंदर की तरफ होगी, यानी दरिद्रता आपके घर के अंदर की तरफ होगी और घर में आर्थिक समस्याएं और दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र या मूर्ति स्थापित ना करें। देखिए, जब आप गणपति की मूर्ति या चित्र लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, यानी गणपति की पीठ बाहर की तरफ होगी और चेहरा अंदर की तरफ होगा, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणपति के दर्शन होंगे, इस तरह से अगर आप अंदर की तरफ गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मेन डोर पर देवी देवताओं का चित्र बिल्कुल मत लगाइए, उचित नहीं है। मेन डोर पर आप कोई प्रतीक, कोई चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम लिख के लगा सकते हैं, जैसे स्वस्तिक बना सकते हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल लगा सकते हैं। कोई चिन्ह या कोई प्रतीक, या सबसे अच्छा होगा कि मेन डोर के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी एक एक स्वस्तिक लाल रंग का बना के लगा दिया जाए, या लाल रंग के स्वस्तिक का चित्र वहां लगा दें, तो ऐसा करने से घर में शुभता ज्यादा आएगी।
1: तो आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन आने वाला है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 15 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की पूजा में क्या अर्पित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, विष्णु जी अलंकार से और सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा में उन्हें सिंदूर और मोदक अर्पित किया जाता है, लेकिन गणपति प्रसन्न होते हैं दूर्वा अर्पित करने से। गणेश जी की पूजा में आप कुछ भी अर्पित ना करें, केवल दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 15 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 15 सितंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल अच्छी होती है। आज की गुडलक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। आपको एक स्टील का छल्ला धारण करना चाहिए हमेशा। ऐसा करने से आपके जीवन के उतार चढ़ाव कम होंगे।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे, गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें या सफेद रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और रोज शाम को कपूर जलाकर उनकी आरती करें। निरंतर 3 महीने तक ऐसा करते जाएं, आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को। Yeah.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी आस्था के इस उत्सव के दिव्य और भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर घर से लेकर पंडालों तक भी गणपति विराज चुके हैं। इसके अलावा गणेश मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव के लिए अलग अलग थीम पर बने पंडाल और बप्पा की प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पूरा देश इस जयकारे से गूंज रहा है। गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के साथ ही हर तरफ उल्लास का वातावरण है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक यहाँ इस उत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे हो या फिर नागपुर या अकोला या जालना, इन जगहों पर पंडालों से लेकर गणेश मंदिरों तक के पूरे विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। पूजा अर्चना से लेकर आरती हुई और गणपति दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पुणे का पारंपरिक गणेशोत्सव शहर की 5 मानाचे गणपति मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ और इसी परंपरा के मुताबिक धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था, भक्ति और उत्साह के भव्य रंग देखने को मिले।

0: विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। ये माहौल देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब सरकारी हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब समाज साथ में आए, समाज की उन्नति हो इसलिए प्रयास किया और उसके बाद पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई।
1: इसी तरह नागपुर में नागपुर के राजा विधिवत पूजा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य पंडाल में विराजमान हुए। अकोला में भी भक्तों ने धूमधाम के साथ बप्पा को अपने साथ ले जाकर उनकी स्थापना की। जालना में भी गणेश चतुर्थी पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुआ। बप्पा के जयघोष के बीच राज राजेश्वर गणपति मंदिर में शासकीय महापूजा सम्पन्न हुई। गुजरात में भी गणेशोत्सव का दिव्य शुभारम्भ हुआ। ये तस्वीरें महेसाणा की हैं, जहां गणेश चतुर्थी पर प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर में भगवान गणेश को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर यानी विशेष सलामी दी गई। इस मंदिर में गायकवाड़ शासनकाल से गणपति को विशेष सलामी देने की परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है। वडोदरा में 100 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा के साथ गणेशोत्सव का भव्य रूप से शुभारम्भ हुआ। गायकवाड़ राज परिवार के लक्ष्मी विलास पैलेस में भगवान गणेश की शाही आगवानी हुई। बारिश और शहनाई की धुनों के बीच बप्पा को एक विशेष पालकी में दरबार हॉल में लाया गया और फिर राजगुरु ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की स्थापना संपन्न करवाई। वहीं पाटन जिले के सबसे पुराने गणेश महोत्सव स्थल गणेशवाड़ी में 149वें गणेश महोत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ पालकी यात्रा निकाल कर विधि विधान से स्थापित किया गया। गणेश चतुर्थी पर राजस्थान के मंदिरों में भी आस्था का हुजूम उमड़ा। जयपुर के गणेश डोंगरी मंदिर में सुबह से ही आम लोगों से लेकर खास भक्तों का दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार चलता रहा। वहीं सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। गणेश चतुर्थी पर यहां 3 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में भी गणेशोत्सव की भव्य तस्वीरें देखने को मिली। लक्ष्मीनगर में दिल्ली के महाराजा का भव्य दरबार सजाया गया।
2: यहां पर दिल्ली का महाराजा साक्षात यहां पर विराजमान हो चुके हैं। देखिए इनकी दिव्यता और भव्यता। पूरे इस बार के पूजा पंडाल की थीम क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं उनके हाथ में ड्रोन कैमरा है, ब्रह्मोस आप देख रहे हैं और तमाम चीजें यानी कि विघ्नहर्ता से विकास करता जो इस बार का मुख्य थीम है यहां का, वो यहां दर्शाया गया है।
3: दिल्ली का महाराजा 24 सालों से कार्य कर रहा है और इस बार 25वीं सिल्वर जुबली है, तो हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है, तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे।
1: उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक देश के हर हिस्से में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। हैदराबाद में एक से बढ़कर एक बप्पा की भव्य प्रतिमाएं बिठाई गई हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां 2047 के विकसित भारत थीम पर भव्य मंडप सजाया गया है, जिसमें रोबोटिक गणपति विराजमान है।
4: गणेश महाराज के मंडप में विकसित भारत रूप में विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करके इस बार मंडप को तैयार कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी हम लोग टेम्पल में लगाए, गणेश महाराज को भी रोबोटिक गणेश मतलब आर्मर ड्रेस पहना के रोबोटिक स्टाइल में गणेश महाराज को तैयार करे। इसे
1: यही नहीं, हैदराबाद के बेखम बाजार में फिलखाना इलाके में कीमती मूर्तियां देखने को मिल रही है। यहाँ 24 कैरेट सोने की परत वाली गणेश जी की मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे 3.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है।
5: इस मूर्ति का कुल वजन 48 केजीज है और ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की हुई है मूर्ति। बोलो गणेश महाराज की जय।
6: 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये मूर्ति तैयार की है, जिसमें 3,50,000 से भी ज्यादा अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। और ये जो मूर्ति है पंच धातु में बनी हुई है, 5 अलग अलग मेटल यूज करके बनाई हुई है। इसका बेस मेटल ब्रास है और जैसे कि आप देख सकते हैं मूर्ति के अंदर काफी अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं और सारा का सारा स्टोन फिटेड है, इसमें कोई भी स्टोन चिपका हुआ नहीं है। और पीछे आपको दशावतार के दर्शन होंगे, ऊपर तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे।
1: पूरे देश गणेशोत्सव के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर असम के गुवाहाटी के गणेश मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पुणे से ओमकार बाबले, नागपुर से योगेश पांडे, अकोला से धनंजय सामले, जालना से गौरव विजय साली, महसाणा से मनीष मिश्री, वडोदरा से तुषार पटेल, पाटन से सुनील पटेल, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दी है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा, पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज, जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज, रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
3: बात करते हैं महिलाओं को होने वाले एक कैंसर के खिलाफ नई उम्मीद की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिन का राष्ट्रीय एआई मंथन 2.0 आयोजित किया गया, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई की संभावनाओं पर मंथन हुआ और इस दौरान भारतीय महिलाओं के लिए सबसे आम कैंसर बन चुके ब्रेस्ट कैंसर की जल्द से जल्द पहचान पर भी जोर दिया गया। दरअसल ब्रेस्ट कैंसर जिससे जुड़े मैमोग्राफी टेस्ट का सटीक विश्लेषण करने वाले कुशल रेडियोलॉजिस्ट और सीनियर टेक्नीशियंस ज्यादातर बड़े शहरों के अस्पतालों तक सीमित हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर समय ग्रामीण और छोटे शहरों में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी बीमारियां वक्त पर पकड़ी नहीं जाती। शुरुआती दौर में पहचान नहीं हो पाने की वजह से भारत में हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के कारण एक महिला की मौत हो जाती है।
4: भारत में आज
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अब प्रशासन, उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने में हो रहा है। मेडिकल साइंस में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दखल से अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नतीजे सामने आ रहे हैं। ये नई तकनीक चिकित्सा सेवाओं को ज्यादा सटीक और आसान बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बीमारी का जल्दी पता चलने के साथ उपचार भी जल्दी हो रहा है। इसके जरिए किसी भी मरीज के मेडिकल डेटा का तेज और अचूक विश्लेषण मुमकिन हो पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आने की आहट सुनाई देने लगी है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिन का राष्ट्रीय AI मंथन 2.0 आयोजित किया गया, जहां अनुसंधान, रोबोटिक, नवाचार, कृषि, उच्च शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी AI की संभावनाओं पर मंथन हुआ। इस दौरान शुरुआती दौर में ही ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए सबसे बड़ा हथियार मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में एक अत्यंत गंभीर और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। भारतीय महिलाओं में होने वाला ये सबसे आम कैंसर बन चुका है, जो महिलाओं में मिलने वाले कुल कैंसर मामलों का लगभग एक तिहाई यानी कि करीब 28% हिस्सा है। पहले महिलाओं में सर्विकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा होते थे, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने इसकी जगह ले ली है। देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारत में हर 4 मिनट में एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। दुर्भाग्य से भारत में हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के कारण एक महिला की मौत हो जाती है। हर साल करीब 90,000 महिलाएं इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। हर 28 में से एक भारतीय महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है।
4: इंडिया में डायग्नोस ही नहीं होता है अर्ली स्टेज में। जैसे अब हमने ये बात करना स्टार्ट किए हैं, 4 मिनट हुआ है, इस 4 मिनट में एक व्यक्ति इस देश में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हुआ है। अगर हम 4 मिनट और बात करें, एक व्यक्ति मर भी जाएगा ब्रेस्ट कैंसर से, इतना ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का है। और इंडिया में ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट जो उसकी जो स्टडी होती है, मैमो एक्सरे होता है, उसको रीड करने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए ज़रूर AI की वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बिफोर इट स्प्रेड, वो जैसे फैल जाता है बॉडी में, उससे पहले उसकी ट्रीटमेंट देने के हमारे पास आज AI टूल्स है, उनको बहुत जगह पे यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। लोगों को सीखना चाहिए कैसे यूज़ करें। जरूर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के तो हम कम कर सकते हैं AI की वजह।
0: दरअसल ब्रेस्ट कैंसर का पता करने वाले मेमोग्राफी टेस्ट से जुड़ी एक्सरे और स्कैन को पढ़ना यानी कि इंटरप्रिटेशन और उनकी सटीक जांच करना एक जिम्मेदारी भरा काम है। ट्रेन्ड टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से कई बार शुरुआती दौर में बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी तक ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी शामिल है। अगर समय पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज न हो तो शरीर के दूसरे अंगों में फैलकर यह जानलेवा हो सकता है। पहले चरण में ही पता चलने पर ट्यूमर या प्रभावित हिस्सों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेमोग्राफी टेस्ट से ब्रेस्ट कैंसर से जिंदगी को होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। वहीं पर देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर बप्पा की आराधना की। तस्वीरें देखिए, गृहमंत्री ने पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह लालबाग चौराजा के दरबार में भी पहुंचे। यहां पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत हो चुकी है और जीएनटी के घर में पधार चुके हैं जीएनटी के बप्पा। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर से गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं, रौनक बिखरी हुई है। गजानन के इस उत्सव के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अलग अलग थीम से पंडालों को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशंस के रंग लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो गणेशोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतार दिया है। कहीं बप्पा के पंडाल में आपको बता दें भविष्य का भारत झलकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो कहीं भक्तों ने बप्पा को इको फ्रेंडली रूप में उतार दिया है। अब यूं समझिए कि तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें समेटकर हम लाए हैं जीएनटी स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर से गणपति उत्सव की ऐसी ही झलक दिखाएंगे और ऐसी ही झलकियां दिखाएंगे, रंग आपके सामने रखते हैं।

0: हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। ये तस्वीरें हैं GNT के गणेश उत्सव की प्रथम आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक हैं, मंगल और शुभता के प्रतीक हैं। ठीक उसी तरह GNT भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। ऐसे में इस पूरे विधि विधान और मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में इस बार गणपति बप्पा विराजे। हमारी कर्म स्थली पर हमें बप्पा के साथ का सौभाग्य मिला। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लालबाग के राजा के पंडाल से। इस बार लालबाग चौराजा का पंडाल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम की थीम पर बनाया गया है। लालबाग का राजा का पंडाल मुंबई ही नहीं देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहां अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चौराजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है।
1: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूँ। आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है। ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है, जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देख कर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है। पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु। लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है।
0: अद्भुत है लालबाग चौराजा, लेकिन ललिता बाग चौराजा भी कुछ कम निराले नहीं है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में मौजूद ललिता बाग में अब की बार गणपति बप्पा का एक बेहद अनोखा स्वरूप नजर आया। इस पंडाल में बप्पा की रोबोटिक छवि तैयार की गई है। दरअसल यहां अब की बार गणेश उत्सव की स्वर्ण जयंती का मौका है। सो इस मौके पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में गणपति आर्मर पहने नजर आ रहे हैं। यानी 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, इसकी झलक और वहां तक की यात्रा की तस्वीर यहां बनाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहाँ पिछली बार इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। देश के विकास और भविष्य की कल्पना वाली ये झांकी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आ रही है। हैदराबाद के ही खैरताबाद में महाकाय का विशाल काय स्वरूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद पंडाल में बप्पा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस साल यहाँ बप्पा का पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप नजर आ रहा है। इस प्रतिमा में 5 मुख और विशेष रूप से 5 सिरों वाला नाग आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके साथ ही 15 फीट ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और कालिका माता की प्रतिमा भी बनाई गई है। बप्पा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस

0: जिसमें वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 150 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के खैरताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य और विशालकाय गणेश प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में गणेश भक्ति के अनोखे रंग बिखरे हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। साथ ही प्रतिमा पर लगभग 380,000 अमेरिकन डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का वजन 48 किलो है। 8 कारीगरों ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया है। गजानन के इस अनोखे और भव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और तिरुपति बालाजी की छवि भी उकेरी गई है।
1: वैसे भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप चिंचपोकली के चिंतामणि पंडाल में भी नजर आ रहा है। चिंचपोकली चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। अब की बार पूरा पंडाल हैदराबाद में मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वर्ण गिरी मंदिर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें ऊंचे गोपुरम यानी द्वार और भव्य दीप स्तंभ बनाए गए हैं। भव्य मूर्तियां और तस्वीरों के साथ बारीक शिल्प और संरचनाएं लगाई गई हैं। गणेश उत्सव के श्री गणेश के साथ ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है।
2: वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहाँ पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनके उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है।
1: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर अब की बार शहर शहर कई पंडाल सजे। ऐसे ही एक भव्य गणेश पंडाल सजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां शान से विराजमान दिल्ली के महाराजा इस पंडाल को विघ्नहर्ता से विकासकर्ता थीम पर बनाया गया है। इसी थीम के तहत यहां गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के महाराष्ट्र के पंडाल में अब की बार गणपति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग धामों के भी दर्शन हो रहे हैं।
3: हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है। तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे। और आपने देखा होगा इस गणपति जी के हाथ में इस बार ब्रह्मोत्सव है, मेड इन भारत। और आपने देखा होगा सेमी कंडक्टर भी है और साथ में ड्रोन भी है। भगवान गणपति का ये संदेश है कि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु तो बन ही रहा है, लेकिन इस भारत देश पे अगर कोई संकट आता है हर भारतीय को हमें सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माता की सुरक्षा के लिए। इसलिए गणपति जी का संदेश है, इसीलिए हमने ये टाइटल दिया है कि दिल्ली का महाराजा विघ्नहर्ता से विकास करता।

0: इसी कड़ी में पुणे में भी गणेश उत्सव के अद्भुत रंग नजर आए। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग नजर आए। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
1: विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में है?
2: उम्र के 10 साल से।
1: 10 साल की उम्र?
2: हाँ।
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है। उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बापा आएंगे मंडलों में, उसी पंडाल में आएंगे, 10 दिन सब के साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, भाऊ साहेब रंगारी हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे

इसी तरह बेंगलुरु में गणेश उत्सव की भव्यता को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बेंगलुरु के जेपी नगर में एजुकेशन थीम पर भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है विद्या गणेश। इस पंडाल को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट्स, कैलकुलेटर, टिफिन बॉक्स और किताबों से पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान और स्टेशनरी आइटम से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के बाद पंडाल को सजाने में काम आई सारी स्टेशनरी और किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटी जाएंगी। यानी फिलहाल विद्या गणेश के दरबार की शोभा बढ़ा रहा यह सामान फिर जरूरतमंद बच्चों के हाथों तक पहुंचेगा और पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। हर साल बेंगलुरु का ये गणेश मंडल अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार होता है, लेकिन अब की बार यहाँ की थीम देश भर में सबसे अलग नजर आ रही है।

गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर गुजरात के मेहसाड़ा से भी आई, जहां मेहसाड़ा पुलिस के जवानों ने विघ्नहर्ता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुजरात के मेहसाड़ा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाड़ा में यह परंपरा साल 1900 से ऐसी ही चली आ रही है। बताया जाता है कि साल 1900 में वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महाउत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूँकि सयाजी राव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा शुरू करवाई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बसावनगुड़ी इलाके के इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था, जहां गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह

तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंदिरों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई। थूथुकुड़ी के गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय

0: वहीं थूथुकुडी में ही भक्तों ने बेहद खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां भक्तों ने गजानन के विनयम गर्भ स्वरूप की शानदार प्रतिमा स्थापित की है। गणपति की इस प्रतिमा के साथ ही तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ की प्रतिकृति भी बनाई गई है। बप्पा की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के पिलियार पट्टी में मौजूद विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें बताती हैं कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रॉक फोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। गणेश भक्तों के लिए एक सौगात चेन्नई में भी तैयार है। चेन्नई कोलाथुर इलाके में भक्तों के एक ग्रुप ने लंबोदर की 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। गौरी नंदन की इस प्रतिमा पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े और मेटल के फ्रेम्स लगाए गए हैं। पूरी मूर्ति गोल्डन और कॉपर के शेड्स में तैयार की गई है। जब गजानन की इस प्रतिमा पर सूरज की किरणें पड़ी तो ये रोशनी से जगमगा उठी। गणेश उत्सव के मौके पर महाकाय के इस महारूप की सुनहरी आभा से मानो चेन्नई शहर दमक उठा है। शहर भर में इस मूर्ति की चर्चा है। लोग गजानन के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
1: अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी से भक्ति का एक अनोखा और अलग ही स्वरूप सामने आया है। वाराणसी में कलाकार भगवान गणेश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा अनूठे अंदाज में प्रकट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है ये कलाकार। आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का अनोखा हुनर है इनमें।
2: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग। देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे, मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
3: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और उस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया, और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो, बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
2: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो विघ्नहर्ता पधार चुके हैं आपके तमाम विघ्नों का नाश करने के लिए। ऐसे ही रंग, ऐसे ही तमाम झलकियां आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देखिए देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। वहीं पर देखिए महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर बप्पा की आराधना की। तस्वीरें देखिए, गृहमंत्री ने पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह लालबाग चौराहा के दरबार में भी पहुंचे। यहाँ पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस प्रकार से बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाई है गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट्स से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज, स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण 16 सितंबर तक, फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे पर के लिए शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। जैसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन दोनों वायरल वीडियोज की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डरकर भागने लगे। इसकी सच्चाई क्या है, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी मैदान पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजारा है, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। कुछ लोग इस वीडियो को रायबरेली का बताकर वायरल कर रहे हैं। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों से मुलाकात भी की। इन सबके बीच लोगों की भारी भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नजारा है, यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी। वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है। भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर से लिखा, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब उत्तर प्रदेश। वही कुछ ने इसे खास तौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी मैदान में हजारों लोगों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में जल सैलाब उमड़ा। कई लोग इस वीडियो को राहुल गांधी के हालिया रायबरेली दौरे से जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं। वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है। वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये नजर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस के झंडे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि किसी कांग्रेस की रैली से जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। वीडियो में कई जगह पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जब हमारा ध्यान इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर गया, तब हमने इसे जूम करके देखा तो इन गाड़ियों पर गुजरात के नंबर प्लेट देखने को मिले। इससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। अगर वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो फिर यहां पर सिर्फ गुजरात की गाड़ियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? रैली उत्तर प्रदेश में है और गाड़ियां सिर्फ गुजरात की, ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ गुजराती आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर रैली हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है तो फिर यहां पर गुजराती ही क्यों सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय स्थानीय जनता, व्यापारियों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की थी और दिशा की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऐसे में सवाल यही है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने किसी रैली को संबोधित किया तो इसके बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि कहीं किसी पुरानी रैली के वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे इन्होंने 10 मई 2022 को पोस्ट किया था। इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि वीडियो गुजरात के दाहोद का है। हमें राहुल गांधी के दाहोद दौरे से जुड़ी साल 2022 में प्रकाशित हुई कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आदिवासी समुदाय की चिंताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का उत्तर प्रदेश रायबरेली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात का है और करीब 4 साल पुराना है। के साथ तीन गुड न्यूज़ टुडे।
1: इंडोनेशिया में सितंबर की शुरुआत में 4 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे उठते धुएं और राख के गुब्बार के बीच कुछ बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
4: हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। लंबे समय तक सक्रिय रहे इस ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। अब इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बीच घबराकर कई बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का भयावह दृश्य है। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर को शुरू हुआ विस्फोट कई घंटों तक जारी रहा और लंबे समय तक सक्रिय रहे ज्वालामुखी के से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी से जोड़ता हुआ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखता है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने ये वीडियो हाल फिलहाल का है, इंडोनेशिया का ही है, ये जानने की कोशिश की, इसकी जांच शुरू की। वीडियो में जो हमें सबसे खटकने वाली बात नजर आई वो थी वीडियो का क्वालिटी अप टू मार्क नजर नहीं आ रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये हाल फिलहाल का नहीं बल्कि काफी पुराना वीडियो हो सकता है। हाँ, ये इशारा जरूर मिल रहा था कि वीडियो इंडोनेशिया का ही है, लेकिन इसमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि ये काफी हद तक बहासा इंडोनेशियाई जैसा है, जो कि इंडोनेशिया की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, इससे करीब 50 फीट ऊपर तक राख उड़ी, लेकिन इसकी सबसे करीबी बस्ती 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लोगों को सक्रिय क्रेटर से 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और कई दिन पहले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि चेतावनी के बावजूद स्कूल कैसे खुला रह सकता है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के काफी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
4: अब ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर झूठ फैलाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 20 फरवरी 2018 को एक यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा स्थित कारो जिले के गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के दौरान एसडी नेगरी नमन तेरल स्कूल के छात्र घबरा गए और स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगे। इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 की पुरानी घटना का था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सुमात्रा के कारो जिले में स्थित गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी में राख का घना गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठा था। बतौर रिपोर्ट राख के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। 20 फरवरी 2018 को एक और वेबसाइट पर भी यही वीडियो प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। ज्वालामुखी से धुएं और राख का एक विशाल बादल उठा और उत्तरी सुमात्रा के एक गांव की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूली बच्चे घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए और भागने लगे। हमारे पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो इंडोनेशिया में हुए हालिया ज्वालामुखी विस्फोट का नहीं है। ये करीब 8 साल पुराना वीडियो है जिसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक कुनिश्रेय।
5: और फैक्ट चेक में फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: उत्सव आते ही शहरों में बड़े बड़े पंडाल नजर आने लगते हैं। कहीं लाखों रुपए खर्च करके भव्य सजावट की जाती है तो कहीं गणपति की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इन चमकदार पंडालों के बीच छोटा सा गणपति पंडाल सामने आया है जिसने अपने सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई बड़ी सजावट, ना महंगी लाइटें और ना ही किसी तरह का दिखावा, बस एक बच्चा, उसके नन्हे हाथ और भगवान गणेश के प्रति आस्था। बच्चा बेहद लगन से गणपति की प्रतिमा को रंगता नजर आया जिसे देखकर लोग इसकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं। गणपति की प्रतिमा पर रंग भरने के बाद उसका रूप काफी सुंदर दिखाई देता है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा किसी शानदार स्टूडियो या बड़े सेटअप में नहीं बल्कि सड़क किनारे बेहद सीमित सुविधाओं के बीच तैयार की गई है। नन्हे हाथों से सजा ये छोटा सा गणपति पंडाल भले ही आकार में छोटा हो लेकिन लोगों के दिलों में इसकी जगह काफी बड़ी बन गई है। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलने सीखने की कोशिश करते हैं। वह सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है। वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात ये है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही हैं और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं।

0: एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। उन्होंने छात्रों को चिप्स, चॉकलेट, ठंडे पेय जैसे जंक फूड खिलाए और फिर नकली पेट स्कैन के जरिए पेट में कीड़े दिखाए। स्क्रीन पर एनिमेटेड बड़े कीड़े दिखते हैं जो जंक फूड खाकर पेट में पनप रहे हों। बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं, कई बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कुछ रोने लगते हैं। ये प्रदर्शन जंक फूड से बच्चों को दूर रखने के इरादे से किया गया था, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं निकला। बच्चे एनिमेटेड कीड़ों को देखकर भयभीत हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई आई। कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और समझदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से सिखाई गई बात बच्चे जल्दी याद रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की।
1: मंगलमूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगलमूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानी के सुमिरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरो कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय श्री नाम।
0: भारत की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति संगीत का स्तर अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये विदेशी शख्स बिना किसी झिझक के लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि उसकी रफ्तार काफी तेज होने के बाद वह शब्दों को, पंक्तियों को पूरे ध्यान के साथ बोलता नजर आता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ शब्दों का दोहरा नहीं रहा ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ शब्दों को दोहरा नहीं रहा बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर रहा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: राम मिलाया रज पर दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुख माइन जल्दी लंगी गाय चरज नाइन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो।
2: तो क्या होता अगर इस गाने का रिप्लाई वर्जन माता पार्वती की तरफ से होता? सुनते हैं।
0: हनुमानंज फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देख कर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। आप भी इन्हें सुनिए।
3: तिरंगी चाहे उनके प्रेम को पाने

असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यह जज्बा खेल को खास बनाता है क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।

वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वह जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देख कर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की यह मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देख कर लोग हंस भी रहे हैं और उस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

0: असम के इस फुटबॉलर गजराज का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीतला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मग्न थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुरक्षित दूरी से बच्चों ने देखा कि विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: Good news today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दी है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा, पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर, साई पल्लवी स्टारर, पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए भी मुझे स्वीकार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज। स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण। 16 सितंबर तक फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत हो चुकी है और जीएनटी के घर में पधार चुके हैं जीएनटी के बप्पा। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर से गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं, रौनक बिखरी हुई है। गजानन के उस उत्सव के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अलग अलग थीम से पंडालों को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशन के रंग लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो गणेशोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतार दिया है। कहीं बप्पा के पंडाल में आपको बता दें भविष्य का भारत झलकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो कहीं भक्तों ने बप्पा को इको फ्रेंडली रूप में उतार दिया है। अब यूं समझिए कि तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें समेट कर हम लाए हैं जीएनटी स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर से गणपति उत्सव की ऐसी ही झलक दिखाएंगे और ऐसी ही झलकियां दिखाएंगे, रंग आपके सामने रखते हैं।
1: सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीएनटी चाराजा की तस्वीर से। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया। हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। ये तस्वीरें हैं जीएनटी के गणेश उत्सव की प्रथम आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक हैं।

0: هات جميلة. हर बार की तरह इस बार भी बप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लालबाग के राजा के पंडाल से। इस बार लालबाग चौराजा का पंडाल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम की थीम पर बनाया गया है। लालबाग का राजा का पंडाल मुंबई ही नहीं देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहां अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चौराजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है।
1: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूँ। आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है। ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देख कर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है। पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है।
0: अद्भुत है लालबाग चौराजा, लेकिन ललिता बाग चौराजा भी कुछ कम निराले नहीं है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में मौजूद ललिता बाग में अब की बार गणपति बप्पा का एक बेहद अनोखा स्वरूप नजर आया। इस पंडाल में बप्पा की रोबोटिक छवि तैयार की गई है। दरअसल यहां अब की बार गणेश उत्सव की स्वर्ण जयंती का मौका है, सो इस मौके पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में गणपति आर्मर पहने नजर आ रहे हैं। यानी 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, इसकी झलक और वहां तक की यात्रा की तस्वीर यहां बनाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहाँ पिछली बार इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। देश के विकास और भविष्य की कल्पना वाली ये झांकी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आ रही है। हैदराबाद के ही खैरताबाद में महाकाय का विशाल काय स्वरूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद पंडाल में बप्पा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस साल यहाँ बप्पा का पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप नजर आ रहा है। इस प्रतिमा में 5 मुख और विशेष रूप से 5 सिरों वाला नाग आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके साथ ही 15 फीट ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और कालिका माता की प्रतिमा भी बनाई गई है। बप्पा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 150 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के खैरताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य और विशाल काय गणेश प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में गणेश भक्ति के अनोखे रंग बिखरे हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। साथ ही प्रतिमा पर लगभग 3,80,000 अमेरिकन डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का वजन 48 किलो है। 8 कारीगरों ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया है। गजानन के

0: अनोखे और भव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और तिरुपति बालाजी की छवि भी उकेरी गई है।
1: वैसे भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप चिंचपोकली के चिंतामणि पंडाल में भी नजर आ रहा है। चिंचपोकली चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। अब की बार पूरा पंडाल हैदराबाद में मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वर्ण गिरी मंदिर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें ऊंचे गोपुरम यानी द्वार और भव्य दीप स्तंभ बनाए गए हैं। भव्य मूर्तियां और तस्वीरों के साथ बारीक शिल्प और संरचनाएं लगाई गई हैं। गणेश उत्सव के श्री गणेश के साथ ही यहां भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है।
2: वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहाँ पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनके उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है।
1: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर अब की बार शहर शहर कई पंडाल सजे। ऐसे ही एक भव्य गणेश पंडाल सजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां शान से विराजमान दिल्ली के महाराजा इस पंडाल को विघ्नहर्ता से विकासकर्ता थीम पर बनाया गया है। इसी थीम के तहत यहां गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के महाराष्ट्र के पंडाल में अब की बार गणपति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग धामों के भी दर्शन हो रहे हैं।
3: हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है। तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे। और आपने देखा होगा इस गणपति जी के हाथ में इस बार ब्रह्मोत्सव है, मेड इन भारत। और आपने देखा होगा सेमी कंडक्टर भी है और साथ में ड्रोन भी है। भगवान गणपति का ये संदेश है कि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु तो बन ही रहा है, लेकिन इस भारत देश पे अगर कोई संकट आता है हर भारतीय को हमें सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माता की सुरक्षा के लिए। इसलिए गणपति जी का संदेश है, इसीलिए हमने ये टाइटल दिया है कि दिल्ली का महाराजा विघ्नहर्ता से विकास करता।

0: इसी कड़ी में पुणे में भी गणेश उत्सव के अद्भुत रंग नजर आए। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग नजर आए। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
1: विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में?
2: उम्र के 10 साल से।
1: 10 साल के ऊपर?
2: हाँ।
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है। उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बापा आएंगे पंडालों में, उसी पंडाल में आएंगे, 10 दिन सब उनके साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब अंबेडकर हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब

इसी तरह बेंगलुरु में गणेश उत्सव की भव्यता को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बेंगलुरु के जेपी नगर में एजुकेशन थीम पर भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है विद्या गणेश। इस पंडाल को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट्स, कैलकुलेटर, टिफिन बॉक्स और किताबों से पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान और स्टेशनरी आइटम से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के बाद पंडाल को सजाने में काम आई सारी स्टेशनरी और किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटी जाएंगी। यानी फिलहाल विद्या गणेश के दरबार की शोभा बढ़ा रहा यह सामान फिर जरूरतमंद बच्चों के हाथों तक पहुंचेगा और पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। हर साल बेंगलुरु का ये गणेश मंडल अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार होता है, लेकिन अब की बार यहाँ की थीम देश भर में सबसे अलग नजर आ रही है।

गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर गुजरात के मेहसाड़ा से भी आई, जहां मेहसाड़ा पुलिस के जवानों ने विघ्नहर्ता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुजरात के मेहसाड़ा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाड़ा में यह परंपरा साल 1900 से ऐसी ही चली आ रही है। बताया जाता है कि साल 1900 में वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महाउत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूँकि सयाजी राव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा शुरू करवाई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बसावन गुड़ी इलाके के इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था, जहां गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह

तमिलनाडु के थूथुकुडी में गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंदिरों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई। थूथुकुडी के गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्त

0: वहीं थूथुकुडी में ही भक्तों ने बेहद खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां भक्तों ने गजानन के विनियम गर्भ स्वरूप की शानदार प्रतिमा स्थापित की है। गणपति की इस प्रतिमा के साथ ही तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ की प्रतिकृति भी बनाई गई है। बप्पा की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के पिलियार पट्टी में मौजूद विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें बताती हैं कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रॉक फोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। गणेश भक्तों के लिए एक सौगात चेन्नई में भी तैयार है। चेन्नई कोलाथुर इलाके में भक्तों के एक ग्रुप ने लंबोदर की 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। गौरी नंदन की इस प्रतिमा पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े और मेटल के फ्रेम्स लगाए गए हैं। पूरी मूर्ति गोल्डन और कॉपर के शेड्स में तैयार की गई है। जब गजानन की इस प्रतिमा पर सूरज की किरणें पड़ी तो ये रोशनी से जगमगा उठी। गणेश उत्सव के मौके पर महाकाय के इस महारूप की सुनहरी आभा से मानो चेन्नई शहर दमक उठा है। शहर भर में इस मूर्ति की चर्चा है। लोग गजानन के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
1: अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी से भक्ति का एक अनोखा और अलग ही स्वरूप सामने आया है। वाराणसी में कलाकार भगवान गणेश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा अनूठे अंदाज में प्रकट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है ये कलाकार। आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का अनोखा हुनर है इनमें।
2: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग। देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे, मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
3: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और इस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया, और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो, बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
2: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो विघ्नहर्ता पधार चुके हैं आपके तमाम विघ्नों का नाश करने के लिए। ऐसे ही रंग, ऐसे ही तमाम झलकियां आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देखिए, देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूर्वी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। वहीं पर देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर बप्पा की आराधना की। तस्वीरें देखिए, गृहमंत्री ने पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह लालबाग चौराहा के दरबार में भी पहुंचे। यहां पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाठबाड़ के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज। स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण। 16 सितंबर तक फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे पर के लिए शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन दोनों वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डरकर भागने लगे। इसकी सच्चाई क्या है, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी मैदान पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजारा है, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। कुछ लोग इस वीडियो को रायबरेली का बताकर वायरल कर रहे हैं। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों से मुलाकात भी की। इन सबके बीच लोगों की भारी भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नजारा है, यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी। वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है। भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब उत्तर प्रदेश। वहीं कुछ ने इसे खास तौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी मैदान में हजारों लोगों को देखा जा सकता है, और इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में जल सैलाब उमड़ा। कई लोग इस वीडियो को राहुल गांधी के हालिया रायबरेली दौरे से जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं। वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है। वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये नजर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस के झंडे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि किसी कांग्रेस की रैली से जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। वीडियो में कई जगह पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जब हमारा ध्यान इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर गया, तब हमने इसे जूम करके देखा तो इन गाड़ियों पर गुजरात के नंबर प्लेट देखने को मिले। इससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। अगर वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो फिर यहां पर सिर्फ गुजरात की गाड़ियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? रैली उत्तर प्रदेश में है और गाड़ियां सिर्फ गुजरात की, ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ गुजराती आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर रैली हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है तो फिर यहां पर गुजराती ही क्यों सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय स्थानीय जनता, व्यापारियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की थी और दिशा की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऐसे में सवाल यही है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने किसी रैली को संबोधित किया तो इसके बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि कहीं किसी पुरानी रैली के वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा? सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
6: दावे के सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे इन्होंने 10 मई 2022 को पोस्ट किया था। इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि वीडियो गुजरात के दाहोद का है। हमें राहुल गांधी के दाहोद दौरे से जुड़ी साल 2022 में प्रकाशित हुई कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आदिवासी समुदाय की चिंताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का उत्तर प्रदेश रायबरेली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात का है और करीब 4 साल पुराना है। के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज़ टुडे।
7: इंडोनेशिया में सितंबर की शुरुआत में 4 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे उठते धुएं और राख के गुब्बार के बीच कुछ बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
6: हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। लंबे समय तक सक्रिय रहे इस ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। अब इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बीच घबराकर कई बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का भयावह दृश्य है। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर को शुरू हुआ विस्फोट कई घंटों तक जारी रहा और लंबे समय तक सक्रिय रहे ज्वालामुखी के से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी से जोड़ता हुआ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखता है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने ये वीडियो हाल फिलहाल का है, इंडोनेशिया का ही है, ये जानने की कोशिश की, इसकी जांच शुरू की। वीडियो में जो हमें सबसे खटकने वाली बात नजर आई वो थी वीडियो का क्वालिटी। अप टू मार्क नजर नहीं आ रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये हाल फिलहाल का नहीं बल्कि काफी पुराना वीडियो हो सकता है। हाँ, ये इशारा जरूर मिल रहा था कि वीडियो इंडोनेशिया का ही है, लेकिन इसमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि ये काफी हद तक बहासा इंडोनेशियाई जैसा है, जो कि इंडोनेशिया की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, इससे करीब 50 फीट ऊपर तक राख उड़ी, लेकिन इसकी सबसे करीबी बस्ती 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लोगों को सक्रिय क्रेटर से 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और कई दिन पहले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि चेतावनी के बावजूद स्कूल कैसे खुला रह सकता है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के काफी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
6: अब ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर झूठ फैलाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 20 फरवरी 2018 को एक यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा स्थित कारो जिले के गुनुंग सिनबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के दौरान एसडी नेगरी नमन तेरल स्कूल के छात्र घबरा गए और स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगे। इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 की पुरानी घटना का था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सुमात्रा के कारो जिले में स्थित गुनुंग सिनबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी में राख का घना गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठा था। बतौर रिपोर्ट राख के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। 20 फरवरी 2018 को एक और वेबसाइट पर भी यही वीडियो प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया में सिनबुंग ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। ज्वालामुखी से धुएं राख का एक विशाल बादल उठा और उत्तरी सुमात्रा के एक गाँव की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूली बच्चे घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए और भागने लगे। हमारे पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो इंडोनेशिया में हुए हालिया ज्वालामुखी विस्फोट का नहीं है। ये करीब 8 साल पुराना वीडियो है जिसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है।
7: और फैक्ट चेक में फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: गणेश उत्सव आते ही शहरों में बड़े बड़े पंडाल नजर आने लगते हैं। कहीं लाखों रुपए खर्च करके भव्य सजावट की जाती है तो कहीं गणपति की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इन चमकदार पंडालों के बीच छोटा सा गणपति पंडाल सामने आया है जिसने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई बड़ी सजावट, ना महंगी लाइटें और ना ही किसी तरह का दिखावा, बस एक बच्चा, उसके नन्हे हाथ और भगवान गणेश के प्रति आस्था। बच्चा बेहद लगन से गणपति की प्रतिमा को रंगता नजर आया जिसे देखकर लोग इसकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं। गणपति की प्रतिमा पर रंग भरने के बाद उसका रूप काफी सुंदर दिखाई देता है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा किसी शानदार स्टूडियो या बड़े सेटअप में नहीं बल्कि सड़क किनारे बेहद सीमित सुविधाओं के बीच तैयार की गई है। नन्हे हाथों से सजा ये छोटा सा गणपति पंडाल भले ही आकार में छोटा हो लेकिन लोगों के दिलों में इसकी जगह काफी बड़ी बन गई है। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलने सीखने की कोशिश करते हैं। वह सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है। वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात ये है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही हैं और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है।
8: चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं।

0: एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। उन्होंने छात्र को चिप्स, चॉकलेट, ठंडे पेय जैसे जंक फूड खिलाए और फिर नकली पेट स्कैन के जरिए पेट में कीड़े दिखाए। स्क्रीन पर एनिमेटेड बड़े कीड़े दिखते हैं जो जंक फूड खाकर पेट में पनप रहे हों। बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं, कई बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कुछ रोने लगते हैं। ये प्रदर्शन जंक फूड से बच्चों को दूर रखने के इरादे से किया गया था, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं निकला। बच्चे एनिमेटेड कीड़ों को देखकर भयभीत हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई आई। कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और समझदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से सिखाई गई बात बच्चे जल्दी याद रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की।
1: మంగళమూరతి మారుత నందన సకల అమంగళ మూల నికందన మంగళమూరతి మారుత నందన సకల అమంగళ మూల నికందన శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మనము గురు సుధారి వర్ణ రఘుబర విమల జోదయ కఫలచారి బుద్ధిహీన తనుజాని కే సుమిరం పవన కుమార బలబుడి విద్యా దేహు మోహిన్ హర కలేశ వికార సియావర రామచంద్ర పద జయశలనం।
0: भारत की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति संगीत का स्तर अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये विदेशी शख्स बिना किसी झिझक के लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि उसकी रफ्तार काफी तेज होने के बाद वे शब्दों को, पंक्तियों को पूरे ध्यान के साथ बोलता नजर आता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ शब्दों का दोहरा नहीं रहा बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर रहा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे
1: हैं।
2: तो क्या होता अगर इस गाने का रिप्लाई वर्जन माता पार्वती की तरफ से होता? सुनते हैं।
0: हनुमान अंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई, पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है, उसे देख कर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। आप भी इन्हें सुनिए।
3: ऐसे ही मुझको लेना हो बैराग, उनके प्रेम को पाने।

असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यह जज्बा खेल को खास बनाता है क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।

वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वह जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देख कर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की यह मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देख कर लोग हंस भी रहे हैं और उस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

0: असम के इस फुटबॉलर गजराज का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीदला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मग्न थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुरक्षित दूरी से बच्चों ने देखा कि विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दी है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा, पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए भी मुझे स्वीकार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से
3: कम लोगों को खबरें तो
4: पति के किस प्रतिमा से कर्ज से कौन सी प्रतिमा लगाने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: देशभर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाट बाट के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति। 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज। स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण। 16 सितंबर तक फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत हो चुकी है और जीएनटी के घर में पधार चुके हैं जीएनटी के बप्पा। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर से गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं। रौनक बिखरी हुई है, गजानन के उस उत्सव के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अलग अलग थीम से पंडालों को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशन के रंग लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो गणेशोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतार दिया है। कहीं बप्पा के पंडाल में आपको बता दें भविष्य का भारत झलकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो कहीं भक्तों ने बप्पा को इको फ्रेंडली रूप में उतार दिया है। अब यूं समझिए कि तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें समेट कर हम लाए हैं जीएनटी स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर से गणपति उत्सव की ऐसी ही झलक दिखाएंगे और ऐसी ही झलकियां दिखाएंगे, रंग आपके सामने रखते हैं।
1: सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीएनटी चाराजा की तस्वीर से। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया। हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। ये तस्वीरें हैं जीएनटी के गणेश उत्सव की प्रथम आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक है, मंगल और शुभता के प्रतीक है। ठीक उसी तरह जीएनटी भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। ऐसे में इस पूरे विधि विधान और मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में इस बार गणपति बप्पा विराजे। हमारी कर्म स्थली पर हमें बप्पा के साथ का सौभाग्य मिला। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लालबाग के राजा के पंडाल से। इस बार लालबाग चाराजा का पंडाल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम की थीम पर बनाया गया है।

0: देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग का कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चौराहा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है।
1: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं। आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा। रामेश्वरम की थीम इस बार लालबाग के राजा को दी है। ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें दिख रही है, जो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपनी आंखों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों में देखकर ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है। पहला तो मुख्य दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख्य दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु। लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है।
0: अद्भुत है लालबाग चौराहा, लेकिन ललिता बाग चौराहा भी कुछ कम निराले नहीं है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में मौजूद ललिता बाग में अब की बार गणपति बप्पा का एक बेहद अनोखा स्वरूप नजर आया। इस पंडाल में बप्पा की रोबोटिक छवि तैयार की गई है। दरअसल यहां अब की बार गणेश उत्सव की स्वर्ण जयंती का मौका है। सो इस मौके पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में गणपति आर्मर पहने नजर आ रहे हैं। यानी 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, इसकी झलक और वहां तक की यात्रा की तस्वीर यहां बनाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहाँ पिछली बार इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। देश के विकास और भविष्य की कल्पना वाली ये झांकी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आ रही है। हैदराबाद के ही खैरताबाद में महाकाय का विशाल काय स्वरूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद पंडाल में बप्पा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस साल यहाँ बप्पा का पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप नजर आ रहा है। इस प्रतिमा में 5 मुख और विशेष रूप से 5 सिरों वाला नाग आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके साथ ही 15 फीट ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और कालिका माता की प्रतिमा भी बनाई गई है। बप्पा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 150 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के खैरताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य और विशाल काय गणेश प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में गणेश भक्ति के अनोखे रंग बिखरे हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। साथ ही प्रतिमा पर लगभग 3,80,000 अमेरिकन डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का वजन 48 किलो है। 8 कारीगरों ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया है। गजानन के इस अनोखे और भव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और तिरुपति बालाजी की छवि भी उकेरी गई है।
2: वैसे भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप चिंचपोकली के चिंतामणि पंडाल में भी नजर आ रहा है। चिंचपोकली चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है।

0: इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। अब की बार पूरा पंडाल हैदराबाद में मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वर्णगिरी मंदिर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें ऊंचे गोपुरम यानी द्वार और भव्य दीप स्तंभ बनाए गए हैं। भव्य मूर्तियां और तस्वीरों के साथ बारीक शिल्प और संरचनाएं लगाई गई हैं। गणेश उत्सव के श्री गणेश के साथ ही यहां भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है।
1: इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का वहाँ पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनके उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है।
0: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर अब की बार शहर शहर कई पंडाल सजे। ऐसे ही एक भव्य गणेश पंडाल सजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां शान से विराजमान दिल्ली के महाराजा। इस पंडाल को विघ्नहर्ता से विकासकर्ता थीम पर बनाया गया है। इसी थीम के तहत यहां गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के महाराष्ट्र के पंडाल में अब की बार गणपति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग धामों के भी दर्शन हो रहे हैं।
2: हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है। तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे। और आपने देखा होगा इस गणपति जी के हाथ में इस बार ब्रह्मोत्सव है, मेड इन भारत। और आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर भी है और साथ में ड्रोन भी है। भगवान गणपति का ये संदेश है कि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु तो बनी रहा है, लेकिन इस भारत देश पे अगर कोई संकट आता है, हर भारतीय को हमें सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माता की सुरक्षा के लिए। इसलिए गणपति जी का संदेश है, इसीलिए हमने ये टाइटल दिया है कि दिल्ली का महाराजा विघ्नहर्ता से विकास करता।

0: इसी कड़ी में पुणे में भी गणेश उत्सव के अद्भुत रंग नजर आए। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग नजर आए। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
1: सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में?
2: उम्र के 10 साल से,
1: 10 साल के ऊपर।
2: हाँ,
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है। उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बापा आएंगे मंडलों में, उसी पंडाल में आएंगे, 10 दिन सब के साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, भाऊ साहेब रंगदारी हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे

इसी तरह बेंगलुरु में गणेश उत्सव की भव्यता को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बेंगलुरु के जेपी नगर में एजुकेशन थीम पर भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है विद्या गणेश। इस पंडाल को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट्स, कैलकुलेटर, टिफिन बॉक्स और किताबों से पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान और स्टेशनरी आइटम से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के बाद पंडाल को सजाने में काम आई सारी स्टेशनरी और किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटी जाएंगी। यानी फिलहाल विद्या गणेश के दरबार की शोभा बढ़ा रहा यह सामान फिर जरूरतमंद बच्चों के हाथों तक पहुंचेगा और पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। हर साल बेंगलुरु का ये गणेश मंडल अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार होता है, लेकिन अब की बार यहाँ की थीम देश भर में सबसे अलग नजर आ रही है।

गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर गुजरात के मेहसाड़ा से भी आई, जहां मेहसाड़ा पुलिस के जवानों ने विघ्नहर्ता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुजरात के मेहसाड़ा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाड़ा में यह परंपरा साल 1900 से ऐसी ही चली आ रही है। बताया जाता है कि साल 1900 में वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महाउत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूँकि सयाजी राव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा शुरू करवाई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बसावन गुड़ी इलाके के इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था, जहां गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह

तमिलनाडु के थूथुकुडी में गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंदिरों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई। थूथुकुडी के गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय

0: वहीं थूथुकुडी में ही भक्तों ने बेहद खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां भक्तों ने गजानन के विनयम गर्भ स्वरूप की शानदार प्रतिमा स्थापित की है। गणपति की इस प्रतिमा के साथ ही तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ की प्रतिकृति भी बनाई गई है। बप्पा की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के पिलियार पट्टी में मौजूद विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें बताती हैं कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रॉक फोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। गणेश भक्तों के लिए एक सौगात चेन्नई में भी तैयार है। चेन्नई कोलाथुर इलाके में भक्तों के एक ग्रुप ने लंबोदर की 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। गौरी नंदन की इस प्रतिमा पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े और मेटल के फ्रेम्स लगाए गए हैं। पूरी मूर्ति गोल्डन और कॉपर के शेड्स में तैयार की गई है। जब गजानन की इस प्रतिमा पर सूरज की किरणें पड़ी तो ये रोशनी से जगमगा उठी। गणेश उत्सव के मौके पर महाकाय के इस महारूप की सुनहरी आभा से मानो चेन्नई शहर दमक उठा है। शहर भर में इस मूर्ति की चर्चा है। लोग गजानन के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं।
1: अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी से भक्ति का एक अनोखा और अलग ही स्वरूप सामने आया है। वाराणसी में कलाकार भगवान गणेश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा अनूठे अंदाज में प्रकट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है ये कलाकार। आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का अनोखा हुनर है इनमें।
2: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग। देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे, मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
3: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और इस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया, और बाबा अब आंख बंद हो या खुला हो, बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
2: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो विघ्नहर्ता पधार चुके हैं आपके तमाम विघ्नों का नाश करने के लिए। ऐसे ही रंग, ऐसे ही तमाम झलकियां आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देखिए, देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। वहीं पर देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर बप्पा की आराधना की। तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री ने पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह लालबाग चौराहा के दरबार में भी पहुंचे। यहां पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती, नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाठबाड़ के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन, घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना, मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र, मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना, गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज, स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण 16 सितंबर तक, फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे पर के लिए शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन दोनों वायरल वीडियोज की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डरकर भागने लगे। इसकी सच्चाई क्या है, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी मैदान पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजारा है जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। कुछ लोग इस वीडियो को रायबरेली का बताकर वायरल कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों से मुलाकात भी की। इन सबके बीच लोगों की भारी भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नजारा है, यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी। वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है। भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, उत्तर प्रदेश। वहीं कुछ ने इसे खास तौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी मैदान में हजारों लोगों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में जल सैलाब उमड़ा। कई लोग इस वीडियो को राहुल गांधी के हालिया रायबरेली दौरे से जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं। वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है। वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये नजर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस के झंडे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि किसी कांग्रेस की रैली से जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। वीडियो में कई जगह पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जब हमारा ध्यान इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर गया, तब हमने इसे जूम करके देखा तो इन गाड़ियों पर गुजरात के नंबर प्लेट देखने को मिले। इससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। अगर वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो फिर यहां पर सिर्फ गुजरात की गाड़ियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? रैली उत्तर प्रदेश में है और गाड़ियां सिर्फ गुजरात की, ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ गुजराती आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर रैली हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है तो फिर यहां पर गुजराती ही क्यों सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय स्थानीय जनता, व्यापारियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की थी और दिशा की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऐसे में सवाल यही है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने किसी रैली को संबोधित किया तो इसके बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि कहीं किसी पुरानी रैली के वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा? सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे इन्होंने 10 मई 2022 को पोस्ट किया था। इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि वीडियो गुजरात के दाहोद का है। हमें राहुल गांधी के दाहोद दौरे से जुड़ी साल 2022 में प्रकाशित हुई कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आदिवासी समुदाय की चिंताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का उत्तर प्रदेश रायबरेली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात का है और करीब 4 साल पुराना है। के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
2: इंडोनेशिया में सितंबर की शुरुआत में 4 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे उठते धुएं और राख के गुब्बार के बीच कुछ बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। लंबे समय तक सक्रिय रहे इस ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। अब इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बीच घबराकर कई बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का भयावह दृश्य है। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर को शुरू हुआ विस्फोट कई घंटों तक जारी रहा और लंबे समय तक सक्रिय रहे ज्वालामुखी के से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी से जोड़ता हुआ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखता है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने ये वीडियो हाल फिलहाल का है, इंडोनेशिया का ही है, ये जानने की कोशिश की, इसकी जांच शुरू की। वीडियो में जो हमें सबसे खटकने वाली बात नजर आई वो थी वीडियो का क्वालिटी, अप टू मार्क नजर नहीं आ रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये हाल फिलहाल का नहीं बल्कि काफी पुराना वीडियो हो सकता है। हाँ, ये इशारा जरूर मिल रहा था कि ये वीडियो इंडोनेशिया का ही है, लेकिन इसमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि ये काफी हद तक भाषा इंडोनेशियाई जैसा है, जो कि इंडोनेशिया की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। इंडोनेशिया के अनाक क्रकाटाऊ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, इससे करीब 50 फीट ऊपर तक राख उड़ी, लेकिन इसकी सबसे करीबी बस्ती 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लोगों को सक्रिय क्रेटर से 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और कई दिन पहले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि चेतावनी के बावजूद स्कूल कैसे खुला रह सकता है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के काफी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
4: अब ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर झूठ फैलाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 20 फरवरी 2018 को एक यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा स्थित कारो जिले के गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के दौरान एसडी नेगरी नमन तेरल स्कूल के छात्र घबरा गए और स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगे। इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 की पुरानी घटना का था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सुमात्रा के कारो जिले में स्थित गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी में राख का घना गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठा था। बतौर रिपोर्ट राख के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। 20 फरवरी 2018 को एक और वेबसाइट पर भी यही वीडियो प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। ज्वालामुखी से धुएं और राख का एक विशाल बादल उठा और उत्तरी सुमात्रा के एक गांव की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूली बच्चे घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए और भागने लगे। हमारे पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो इंडोनेशिया में हुए हालिया ज्वालामुखी विस्फोट का नहीं है। ये करीब 8 साल पुराना वीडियो है जिसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक
2: और फैक्ट चेक में फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: कड़े उत्सव आते ही शहरों में बड़े बड़े पंडाल नजर आने लगते हैं। कहीं लाखों रुपए खर्च करके भव्य सजावट की जाती है तो कहीं गणपति की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इन चमकदार पंडालों के बीच छोटा सा गणपति पंडाल सामने आया है जिसने अपने सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई बड़ी सजावट, ना महंगी लाइटें और ना ही किसी तरह का दिखावा, बस एक बच्चा, उसके नन्हे हाथ और भगवान गणेश के प्रति आस्था। बच्चा बेहद लगन से गणपति की प्रतिमा को रंगता नजर आया जिसे देखकर लोग इसकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं। गणपति की प्रतिमा पर रंग भरने के बाद उसका रूप काफी सुंदर दिखाई देता है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा किसी शानदार स्टूडियो या बड़े सेटअप में नहीं बल्कि सड़क किनारे बेहद सीमित सुविधाओं के बीच तैयार की गई है। नन्हे हाथों से सजा ये छोटा सा गणपति पंडाल भले ही आकार में छोटा हो लेकिन लोगों के दिलों में इसकी जगह काफी बड़ी बन गई है। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलने सीखने की कोशिश करते हैं। वह सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है। वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात ये है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही हैं और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं।

0: एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। उन्होंने छात्रों को चिप्स, चॉकलेट, ठंडे पेय जैसे जंक फूड खिलाए और फिर नकली पेट स्कैन के जरिए पेट में कीड़े दिखाए। स्क्रीन पर एनिमेटेड बड़े कीड़े दिखते हैं जो जंक फूड खाकर पेट में पनप रहे हों। बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं, कई बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कुछ रोने लगते हैं। ये प्रदर्शन जंक फूड से बच्चों को दूर रखने के इरादे से किया गया था, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं निकला। बच्चे एनिमेटेड कीड़ों को देखकर भयभीत हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई आई। कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और समझदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से सिखाई गई बात बच्चे जल्दी याद रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की।
1: मंगलमूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगलमूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरं पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहिन हरो कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
0: भारत की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति संगीत का असर अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये विदेशी शख्स बिना किसी झिझक के लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि उसकी रफ्तार काफी तेज होने के बाद वह शब्दों को, पंक्तियों को पूरे ध्यान के साथ बोलता नजर आता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ शब्दों का दोहरा नहीं रहा ऐसा लगता है कि जैसे वह सिर्फ शब्दों को दोहरा नहीं रहा बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर रहा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: राम मिलाया रज पर दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुख माइन जल्दी लंगी गाय चरज नाइन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो।
2: तो क्या होता अगर इस गाने का रिप्लाई वर्जन माता पार्वती की तरफ से होता? सुनते हैं।
0: हनुमानंद फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी है। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देख कर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। आप भी इन्हें सुनिए।
3: ऐसे ही मुझको लेना हो बैराग उनके प्रेम को पाने।

असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यह जज्बा खेल को खास बनाता है क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।

0: वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वह जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देख कर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देख कर लोग हंस भी रहे हैं और उस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई। असम के इस फुटबॉलर गजराज का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीदला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मग्न थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुरक्षित दूरी से बच्चों ने देखा कि विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दी है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा। पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। साहित्य तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए मुझे स्वीकार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ। जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती। नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना। जीएनटी संघ मनाइए गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाठवाड़ के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन। घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना। मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण। सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज। स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण। 16 सितंबर तक फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत हो चुकी है और जीएनटी के घर में पधार चुके हैं जीएनटी के बप्पा। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर से गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं। रौनक बिखरी हुई है, गजानन के इस उत्सव के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अलग अलग थीम से पंडालों को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशन के रंग लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं बप्पा के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो गणेशोत्सव के इस खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतार दिया है। कहीं बप्पा के पंडाल में आपको बता दें भविष्य का भारत झलकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो कहीं भक्तों ने बप्पा को इको फ्रेंडली रूप में उतार दिया है। अब यूं समझिए कि तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें समेटकर हम लाए हैं जीएनटी स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर से गणपति उत्सव की ऐसी ही झलक दिखाएंगे और ऐसी ही झलकियां दिखाएंगे, रंग आपके सामने रखते हैं।
1: सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीएनटी चाराजा की तस्वीर से। गणेश चतुर्थी का शुभ दिन गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया। हमारे स्टूडियो में हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। ये तस्वीरें हैं जीएनटी के गणेश उत्सव की प्रथम आरती की। अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो सही मायने में गुडनेस के प्रतीक है, मंगल और शुभता के प्रतीक है। ठीक उसी तरह जीएनटी भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। ऐसे में इस पूरे विधि विधान और मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में इस बार गणपति बप्पा विराजे। हमारी कर्म स्थली पर हमें बप्पा के साथ का सौभाग्य मिला। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा के उत्सव की बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं लालबाग के राजा के पंडाल से। इस बार लालबाग चाराजा का पंडाल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम की थीम पर बनाया गया है। लालबाग का राजा का पंडाल मुंबई ही नहीं, देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से भक्त यहां अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चौराहा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है।
2: लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूँ, आज पहला दिन है। सबसे पहले तो आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, देखिए कितने ज्यादा भव्य सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। वाकई में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगते हुए इस समय गणपति बप्पा।

0: है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुख जो है मैं हर लूंगा। थोड़ी सी सुंदरता देखें, लालबाग के राजा का ये जो दरबार है और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया है, चांदी का पूरा ये सेट जो है बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रावण के मद्देनजर और शंकर भगवान शिव जी को लेकर के इस बार रामेश्वर की थीम गणपति बप्पा को लेकर की है। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, डमरू है और डायमंड से पूरे माहौल को सजाया गया है। दो तरह की कतारें, दो तरह की लाइनें यहां पर पहुंच रही है, पहला तो मुख दर्शन के लिए और दूसरा पग दर्शन के लिए। मुख दर्शन करने आ रहे हैं जो भी यहां पर श्रद्धालु, लगभग 2-3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाता है, लेकिन पग छूने नहीं मिलता है। और अगर पैर छूने, पैर छूकर दर्शन लेना है तो ये कतार लगभग 8-10 घंटे की होती है।
1: अद्भुत है लालबाग का राजा, लेकिन ललिता बाग का राजा भी कुछ कम निराले नहीं है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में मौजूद ललिता बाग में अब की बार गणपति बप्पा का एक बेहद अनोखा स्वरूप नजर आया। इस पंडाल में बप्पा की रोबोटिक छवि तैयार की गई है। दरअसल यहां अब की बार गणेश उत्सव की स्वर्ण जयंती का मौका है, सो इस मौके पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में गणपति आर्मर पहने नजर आ रहे हैं, यानी 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, इसकी झलक और वहां तक की यात्रा की तस्वीर यहां बनाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है, जहाँ पिछली बार इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। देश के विकास और भविष्य की कल्पना वाली यह झांकी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आ रही है। हैदराबाद के ही खैरताबाद में महाकाय का विशाल काय स्वरूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद पंडाल में बप्पा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस साल यहां बप्पा का पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप नजर आ रहा है। इस प्रतिमा में 5 मुख और विशेष रूप से 5 सिरों वाला नाग आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके साथ ही 15 फीट ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और कालिका माता की प्रतिमा भी बनाई गई है। बप्पा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 150 कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के खैरताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य और विशाल काय गणेश प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में गणेश भक्ति के अनोखे रंग बिखरे हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, साथ ही प्रतिमा पर लगभग 3,80,000 अमेरिकन डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का वजन 48 किलो है। 8 कारीगरों ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया है। गजानन के इस अनोखे और भव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और तिरुपति बालाजी की छवि भी उकेरी गई है।
2: वैसे भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप चिंचपोकली के चिंतामणि पंडाल में भी नजर आ रहा है। चिंचपोकली चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ हर साल बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित की जाती है। इस साल भी बप्पा की बेहद मनमोहक प्रतिमा विराजमान की गई है। अब की बार पूरा पंडाल हैदराबाद में मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वर्ण गिरी मंदिर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें ऊंचे गोपुरम यानी द्वार और भव्य दीप स्तंभ बनाए गए हैं। भव्य मूर्तियां और तस्वीरों के साथ बारीक शिल्प और संरचनाएं लगाई गई हैं। गणेश उत्सव के श्री गणेश के साथ ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन को उमड़ रही है।
3: वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है और 10 दिनों तक ये पर्व जो है ये मुंबई में चलने वाला है।

0: कहीं ना कहीं इस साल हर मंडल ने भक्तों के लिए एक तरह से बैठने की जगह बनाई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि उन जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये मूर्ति के पास ही नहीं, जो एंट्रेंस है इस मंडल का, वहां पर लंबी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मंडल में ऊपर जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो यहां पर दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं वो एक भारी भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही भीड़ लालबाग का राजा में है और बाकी जो लालबाग परे इलाके में गणपति है उनके, उसके साथ साथ मुंबई के कई घरों में बाप्पा विराजमान होते हैं। लोगों के घर पर जाना, प्रसाद लेना, बाप्पा का दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आज मुंबई में एक बड़ा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है।
1: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर अब की बार शहर शहर कई पंडाल सजे। ऐसे ही एक भव्य गणेश पंडाल सजा है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां शान से विराजमान दिल्ली के महाराजा इस पंडाल को विघ्नहर्ता से विकासकर्ता थीम पर बनाया गया है। इसी थीम के तहत यहां गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के महाराज के पंडाल में अब की बार गणपति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग धामों के भी दर्शन हो रहे हैं।
2: हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे हम, क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है। तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे। और आपने देखा होगा इस गणपति जी के हाथ में इस बार ब्रह्मोत्सव है, मेड इन भारत। और आपने देखा होगा सेमी कंडक्टर भी है और साथ में ड्रोन भी है। भगवान गणपति का ये संदेश है कि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु तो बन ही रहा है, लेकिन इस भारत देश पे अगर कोई संकट आता है, हर भारतीय को हमें सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माता की सुरक्षा के लिए। इसलिए गणपति जी का संदेश है, इसीलिए हमने ये टाइटल दिया है कि दिल्ली का महाराजा विघ्नहर्ता से विकास करता।

0: इसी कड़ी में पुणे में भी गणेश उत्सव के अद्भुत रंग नजर आए। पुणे में आज श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग नजर आए। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
1: सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। इस पंडाल के हमारे साथ है, कितने सालों से आप साथ में?
2: उम्र के 10 साल से।
1: 10 साल के ऊपर?
2: हाँ।
1: जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लोग आते जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, बापा आएंगे, सुख शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बापा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले पांच जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है। उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बापा आएंगे मंडलों में, उसी पंडाल में आएंगे, 10 दिन सब उनके साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे और उसके बाद ये माहौल देखिए आप पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब अंबेडकर हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब

इसी तरह बेंगलुरु में गणेश उत्सव की भव्यता को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बेंगलुरु के जेपी नगर में एजुकेशन थीम पर भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है विद्या गणेश। इस पंडाल को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट्स, कैलकुलेटर, टिफिन बॉक्स और किताबों से पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान और स्टेशनरी आइटम से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के बाद पंडाल को सजाने में काम आई सारी स्टेशनरी और किताबें सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटी जाएंगी। यानी फिलहाल विद्या गणेश के दरबार की शोभा बढ़ा रहा यह सामान फिर जरूरतमंद बच्चों के हाथों तक पहुंचेगा और पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। हर साल बेंगलुरु का ये गणेश मंडल अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार होता है, लेकिन अब की बार यहाँ की थीम देश भर में सबसे अलग नजर आ रही है।

गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर गुजरात के मेहसाणा से भी आई, जहां मेहसाणा पुलिस के जवानों ने विघ्नहर्ता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। मेहसाणा में यह परंपरा साल 1900 से ऐसी ही चली आ रही है। बताया जाता है कि साल 1900 में वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महाउत्सव की यहाँ शुरुआत की थी। चूँकि सयाजी राव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा शुरू करवाई थी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डोडा के गणेश मंदिर में गौरी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बसावन गुड़ी इलाके के इस गणपति मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले किया गया था, जहां गणपति की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। गणेश उत्सव पर मंदिर की शानदार सजावट की गई है। गणपति की प्रतिमा को भी फूलों और मालाओं से सजाया गया है। आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा की विशेष आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, खासकर युवाओं में गणेश चतुर्थी का उत्साह

तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में गणपति की भक्ति सिर्फ भव्य प्रतिमाओं में नहीं बल्कि मंदिरों, हवन, पूजा और आरती की पवित्र परंपरा में भी नजर आई। थूथुकुड़ी के गणपति मंदिर में हवन और पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्त

0: वहीं थूथुकुड़ी में ही भक्तों ने बेहद खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां भक्तों ने गजानन के विनयम गर्भ स्वरूप की शानदार प्रतिमा स्थापित की है। गणपति की इस प्रतिमा के साथ ही तमिलनाडु के थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ की प्रतिकृति भी बनाई गई है। बप्पा की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के पिलियार पट्टी में मौजूद विनायक मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें बताती हैं कि दक्षिण भारत में गणपति के प्रति आस्था कितनी गहरी है। गणेश चतुर्थी पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उच्ची पिल्लयार मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। आज बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रॉक फोर्ट पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तिरुचिरापल्ली और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आज हर श्रद्धालु के लिए बप्पा का दर्शन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। गणेश भक्तों के लिए एक सौगात चेन्नई में भी तैयार है। चेन्नई कोलाथुर इलाके में भक्तों के एक ग्रुप ने लंबोदर की 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। गौरी नंदन की इस प्रतिमा पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े और मेटल के फ्रेम्स लगाए गए हैं। पूरी मूर्ति गोल्डन और कॉपर के शेड्स में तैयार की गई है। जब गजानन की इस प्रतिमा पर सूरज की किरणें पड़ी तो ये रोशनी से जगमगा उठी। गणेश उत्सव के मौके पर महाकाय के इस महारूप की सुनहरी आभा से मानो चेन्नई शहर दमक उठा है। शहर भर में इस मूर्ति की चर्चा है। लोग गजानन के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं।
1: अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों तक गणपति पूजन की रौनक ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको। ऐसे में बप्पा के प्रति अपनी भक्ति को जताने के लिए आस्थावान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी से भक्ति का एक अनोखा और अलग ही स्वरूप सामने आया है। वाराणसी में कलाकार भगवान गणेश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा अनूठे अंदाज में प्रकट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है ये कलाकार। आंखों पर पट्टी बांधकर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाने का अनोखा हुनर है इनमें।
2: लगभग 35 सालों की साधना, बगैर देखे कुछ सेकंड्स में अपने आराध्य बापा की शानदार पेंटिंग बनाना, विजय कुमार की ये कला साधारण तो नहीं है। सोचिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, सामने कैनवास है, हाथों में रंग, देखने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर बगैर देखे तस्वीर बनेगी कैसे। मगर देखिए ना, कुछ ही सेकंड्स में कैनवास पर विघ्नहर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। काशी की गलियों में मूर्तिकार परिवार में पला बढ़ा बचपन से ही पत्थरों को तराशने और चित्र बनाने के शौकिया इस कलाकार ने जब अपनी इस अद्भुत कला को आंखों पर पट्टी बांधकर कैनवास पर उतारा तो विजय कुमार का ये हुनर लोगों को उनका मुरीद बना रहा है। कभी खुली आंख से भगवान गणपति की तस्वीर को कैनवास पर आकार देने वाले विजय के लिए बंद आंखों से बप्पा की चित्रकारी करना महज उनकी आराधना का ही फल है। मगर आंखों पर पट्टी बांधकर चित्र बनाने की शुरुआत भी किसी चुनौती से कम नहीं थी।
3: सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु गणपति की कृपा से हम लोग काशी में ही जन्म लिए और काशी में ही अभ्यास किए, यहीं सानिध्य मिला और बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं खुले आंख से बनाता रहता था हमेशा, और एक दिन इसी कार्यक्रम के बीच मेरे भतीजे ने मेरे आँख पर पट्टी बांधा ईशान ने, और बोला अब बना के दिखाइए। हमने प्रयास किया, बने, और इस पर मैंने निरंतर अभ्यास किया। और बाबा, अब आंख बंद हो या खुला हो, बाबा हृदय में रहते हैं, वो आते रहते हैं, बनते रहते हैं।
2: निरंतर अभ्यास से लाखों तस्वीर उकेरने वाले कलाकार विजय कहते हैं कि जब वो अपने आराध्य भगवान गणेश की तस्वीर उकेरते हैं तो अपने दिल दिमाग में उनका ही ख्याल रखते हैं। बता दें कि विजय कुमार ने काशी के पंचकोसी मार्ग पर 56 मिनट में 56 विनायकों की चित्रकला बनाई। कला के क्षेत्र में विजय कुमार को काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। यही नहीं, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी उन्होंने 2 बार 51 और 56 घंटे तक लगातार बाप्पा की तस्वीरें उकेरी। इस तरह से विजय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि अब अपनी पेंटिंग को बनाने में वो कम से कम समय लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश की पेपर पर बगैर देखे हूबहू पेंटिंग बनाना विजय कुमार के लिए कला की साधना और आराधना का माध्यम बना हुआ है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो विघ्नहर्ता पधार चुके हैं आपके तमाम विघ्नों का नाश करने के लिए। ऐसे ही रंग, ऐसे ही तमाम झलकियां आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देश भर में धूमधाम से हुआ गणेश उत्सव का शुभारंभ, जगह जगह पंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवान गजानन के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बप्पा की आराधना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजानन की उतारी आरती, नागपुर में नितिन गडकरी के घर भी पधारे गणपति। न्यूज टुडे पर गणेशोत्सव की रौनक, श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा अर्चना, जीएनटी संघ मनाई है गणेश चतुर्थी का पर्व। सोलापुर में राजसी ठाठबाड़ के साथ न्यू पैलेस में पधारे भगवान गजानन, घुड़सवार दस्ते के साथ भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्रपति घराने के सदस्यों ने की पूजा अर्चना। पुणे में एक्टर नाना पाटेकर के घर बप्पा की विधि विधान से हुई स्थापना, मुंबई में सोनू सूद के घर पधारे भगवान गजानन का झूल और अनन्या ने की मंगल मूर्ति की आराधना। गणेश चतुर्थी के मौके पर चेन्नई में स्थापित किए गए 42 फीट ऊंचे गणपति, 5,500 प्रिंटेड मेटल एलिमेंट से किया गया निर्माण, सूर्य चक्र से बप्पा के चेहरे का आकार। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो चांदी का छत्र, मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी स्थापना, गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने किया दान। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आगाज, स्वदेशी ड्रोन के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण 16 सितंबर तक, फ्यूचर फॉर फेयर की तैयारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे पर के लिए शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन दोनों वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है। क्या है सच्चाई आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी मैदान पर हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजारा है जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। कुछ लोग इस वीडियो को रायबरेली का बताकर वायरल कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों से मुलाकात भी की। इन सबके बीच लोगों की भारी भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नजारा है, यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी। वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है। भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब उत्तर प्रदेश। वही कुछ ने इसे खास तौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी मैदान में हजारों लोगों को देखा जा सकता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में जल सैलाब उमड़ा। कई लोग इस वीडियो को राहुल गांधी के हालिया रायबरेली दौरे से जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं। वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है। वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये नजर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस के झंडे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि किसी कांग्रेस की रैली से जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। वीडियो में कई जगह पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जब हमारा ध्यान इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर गया, तब हमने इसे जूम करके देखा तो इन गाड़ियों पर गुजरात के नंबर प्लेट देखने को मिले। इससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। अगर वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो फिर यहां पर सिर्फ गुजरात की गाड़ियां ही क्यों दिखाई दे रही हैं? रैली उत्तर प्रदेश में है और गाड़ियां सिर्फ गुजरात की, ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ गुजराती आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर रैली हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है तो फिर यहां पर गुजराती ही क्यों सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय स्थानीय जनता, व्यापारियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की थी और दिशा की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऐसे में सवाल यही है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने किसी रैली को संबोधित किया तो इसके बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि कहीं किसी पुरानी रैली के वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा? सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे इन्होंने 10 मई 2022 को पोस्ट किया था। इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि वीडियो गुजरात के दाहोद का है। हमें राहुल गांधी के दाहोद दौरे से जुड़ी साल 2022 में प्रकाशित हुई कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आदिवासी समुदाय की चिंताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का उत्तर प्रदेश रायबरेली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात का है और करीब 4 साल पुराना है। के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज़ टुडे।
4: इंडोनेशिया में सितंबर की शुरुआत में 4 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था और इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे उठते धुएं और राख के गुब्बार के बीच कुछ बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूल के बच्चे डर कर भागने लगे। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। लंबे समय तक सक्रिय रहे इस ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। अब इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बीच घबराकर कई बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है।
5: वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का भयावह दृश्य है। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखी फटे हैं, जिसके कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर को शुरू हुआ विस्फोट कई घंटों तक जारी रहा और लंबे समय तक सक्रिय रहे ज्वालामुखी के से राख और धुएं का गुब्बार उठने के कारण आसपास के हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर इंडोनेशिया के हवाई यातायात पर देखने को मिला। इन सब के बीच सोशल मीडिया के पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इसी से जोड़ता हुआ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें आसमान में राख और धुएं का विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखता है। वहीं भयभीत बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकलकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने ये वीडियो हाल फिलहाल का है, इंडोनेशिया का ही है, ये जानने की कोशिश की, इसकी जांच शुरू की। वीडियो में जो हमें सबसे खटकने वाली बात नजर आई वो थी वीडियो का क्वालिटी अप टू मार्क नजर नहीं आ रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये हाल फिलहाल का नहीं बल्कि काफी पुराना वीडियो हो सकता है। हाँ, ये इशारा जरूर मिल रहा था कि वीडियो इंडोनेशिया का ही है, लेकिन इसमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि ये काफी हद तक बहासा इंडोनेशियाई जैसा है, जो कि इंडोनेशिया की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाओ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। इससे करीब 50 फीट ऊपर तक राख उड़ी, लेकिन इसकी सबसे करीबी बस्ती 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लोगों को सक्रिय क्रेटर से 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और कई दिन पहले स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि चेतावनी के बावजूद स्कूल कैसे खुला रह सकता है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के काफी पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
5: अब ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर झूठ फैलाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 20 फरवरी 2018 को एक यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा स्थित कारो जिले के गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के दौरान एसडी नेगरी नमन तेरल स्कूल के छात्र घबरा गए और स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगे। इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 की पुरानी घटना का था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सुमात्रा के कारो जिले में स्थित गुनुंग सिनाबुंग में 19 फरवरी 2018 की सुबह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी में राख का घना गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठा था। बतौर रिपोर्ट राख के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। 20 फरवरी 2018 को एक और वेबसाइट पर भी यही वीडियो प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। ज्वालामुखी से धुएं राख का एक विशाल बादल उठा और उत्तरी सुमात्रा के एक गांव की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्कूली बच्चे घबराकर स्कूल से बाहर निकल आए और भागने लगे। हमारे पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो इंडोनेशिया में हुए हालिया ज्वालामुखी विस्फोट का नहीं है। ये करीब 8 साल पुराना वीडियो है, जिसे हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक कुनिश्रे।
4: और फैक्ट चेक में फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: उत्सव आते ही शहरों में बड़े बड़े पंडाल नजर आने लगते हैं। कहीं लाखों रुपए खर्च करके भव्य सजावट की जाती है तो कहीं गणपति की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इन चमकदार पंडालों के बीच एक छोटा सा गणपति पंडाल सामने आया है, जिसने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई बड़ी सजावट, ना महंगी लाइटें और ना ही किसी तरह का दिखावा, बस एक बच्चा, उसके नन्हे हाथ और भगवान गणेश के प्रति आस्था। बच्चा बेहद लगन से गणपति की प्रतिमा को रंगता नजर आया, जिसे देखकर लोग इसकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं। गणपति की प्रतिमा पर रंग भरने के बाद उसका रूप काफी सुंदर दिखाई देता है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा किसी शानदार स्टूडियो या बड़े सेटअप में नहीं, बल्कि सड़क किनारे बेहद सीमित सुविधाओं के बीच तैयार की गई है। नन्हे हाथों से सजाई छोटा सा गणपति पंडाल भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन लोगों के दिलों में इसकी जगह काफी बड़ी बन गई है। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलने सीखने की कोशिश करते हैं। वे सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है। वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात यह है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही है और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं।

0: एक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाया। उन्होंने छात्र को चिप्स, चॉकलेट, ठंडे पेय जैसे जंक फूड खिलाए और फिर नकली पेट स्कैन के जरिए पेट में कीड़े दिखाए। स्क्रीन पर एनिमेटेड बड़े कीड़े दिखते हैं जो जंक फूड खाकर पेट में पनप रहे हों। बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं, कई बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कुछ रोने लगते हैं। ये प्रदर्शन जंक फूड से बच्चों को दूर रखने के इरादे से किया गया था, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं निकला। बच्चे एनिमेटेड कीड़ों को देखकर भयभीत हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई आई। कुछ यूजर्स ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और समझदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से सिखाई गई बात बच्चे जल्दी याद रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की।
1: మంగళమూరటి మారుట నందన సకల అమంగళ మూలని కందన మంగళమూరటి మారుట నందన సకల అమంగళ మూలని కందన శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మనము గురు సుధారి వర్ణో రఘుబర విమల జసు జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరం పవన కుమార బలబుడి విద్యా దేహు మోహిన్ హర కలేశ వికార సియావర రామచంద్ర పద జయశలనం।
0: भारत की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति संगीत का असर अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये विदेशी शख्स बिना किसी झिझक के लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ता दिखाई देता है। खास बात यह है कि उसकी रफ्तार काफी तेज होने के बाद वे शब्दों को, पंक्तियों को पूरे ध्यान के साथ बोलता नजर आता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ शब्दों का दोहरा नहीं रहा बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर रहा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे
1: हैं। लंकेश्वर युग सहसर प्रभु मुद्रिका जल्दी लंगी गाय
2: तो क्या होता अगर इस गाने का रिप्लाई वर्जन माता पार्वती की तरफ से होता? सुनते हैं।
0: हनुमान अंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देख कर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। आप भी इन्हें सुनिए।
3: ऐसे ही मुझको लेना हो बैराग, उनके प्रेम को पाने ऐसे।

असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यह जज्बा खेल को खास बनाता है क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।

0: वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वह जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की यह मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देख कर लोग हंस भी रहे हैं और उस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई। असम के इस फुटबॉलर गजराज का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीतला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मग्न थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुरक्षित दूरी से बच्चों ने देखा कि विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की, जिसका पहला गाना आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दी है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा। पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए मुझे स्वीकार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: पति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी।